सुप्रभात, ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की तिथि 30, तदनुसार 21 जुलाई सन 2026 ईस्वी। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 और 38 सेकंड हो रहे हैं। आरंभ होता है हमारा आज का प्रसारण। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू मैसेडोनिया के राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोस्का दावुका के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टियन मिकोस्की, असेंबली के स्पीकर अफ्रिम गाशी से भी मुलाकात करेंगी और उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचावास्केज से मुलाकात की। बैठक में डॉ जयशंकर ने लैटिन अमरीका और कैरेबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने व्यापार, कारोबार, विकास, समुद्री मामलों, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। इससे पहले विदेश मंत्री ने भरोसा जताया कि पनामा के विदेश मंत्री की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और पनामा आपसी साझेदारी प्रगाढ़ करने के लिए उत्सुक हैं। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से

0: सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि केवल एक महीने में देश ने कई उपलब्धियां प्राप्त की हैं।
1: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 118 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करने वालों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया, पुलिस और दूसरी सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। पुलिस ने कहा कि झड़प के दौरान करीब 60 प्रदर्शनकारियों के भी घायल होने की खबर है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में कल प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधि मंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य बनाने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या राम मंदिर के दान में कथित हेराफेरी की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने की संभावना के बारे में जानकारी मांगी है। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में मौसम विभाग द्वारा जारी रेड अलर्ट के मद्देनजर आज सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार मंडी जिले की 11 और चंबा जिले की 10 सड़कों सहित कुल 36 सड़कें बंद हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, कर्नाटक, तेलंगाना, विदर्भ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बिजली गरजने और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की आशंका व्यक्त की है। इस बीच दिल्ली में हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई है। पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुडा शामिल हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और HS प्रणॉय टीम का हिस्सा हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 MHz पर। लीजिए अब सुनिए आज का चिंतन।
3: जीवन की परवाह, क्योंकि उनके हृदय में असीम करुणा थी। हाँ, वो करुणा ही तो थी जो उमड़ पड़ी थी उनके अंतरतम से। यही करुणा मानव को महामानव बना देती है। तभी तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर मानव जाति के लिए एक दृष्टांत बनकर इतिहास के पृष्ठ में अमर हो गए। मनुष्य के अंदर दया और करुणा होनी चाहिए। वो दया और करुणा अपने परिवार तक ही सीमित न होकर अड़ोस पड़ोस, परिचित अपरिचित किसी के लिए भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोक सेवा के लिए आपके पास प्रचुर धन राशि हो। आपके पास कुछ नहीं है, पर आपके हृदय में मात्र करुणा के दो चार कण हैं तो वो भी बहुत बड़ा खजाना है। समस्याएं कहां नहीं बिछी हैं, संकटग्रस्त कौन नहीं है। सेवा और करुणा की जरूरत चारों ओर है। आपको जरूरत है उसकी चादर बिछाने की। रास्ते के हर मोड़ पर पीड़ित हैं, असहाय हैं। जरूरत है उनकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने की, उनके दर्द को अपना दर्द समझने की। कुछ क्षण के लिए आप स्वयं पीड़ितों के जीवन की कल्पना कीजिए, उसकी देहरी पर खड़े होकर देखिए और सोचिए। आपके

0: हृदय में स्वयं करुणा उमड़ पड़ेगी और उमड़ी हुई करुणा के दो चार छींटों से ही उन्हें नहलाइए, फिर देखिए उनके आशीर्वादों की फुहार, उसमें नहाकर आपको कैसी अलौकिक शांति मिलती है। छोटी छोटी सेवाओं को भी कभी छोटा मत समझिए। अड़ोस पड़ोस, मोहल्ला, रास्ता, नगर, कहीं भी आप ऐसी जरूरत देखिए, अपनी करुणा का दरवाजा तुरंत खोल दीजिए। हो सकता है आपकी करुणा भरी छोटी सी सेवा सहायता किसी को काल के गाल से निकाल दे, किसी माँ का लाल लौटा दे, किसी सुहागिन का लुटता हुआ सुहाग लौटा दे, किसी बच्चे को अनाथ होने से बचा दे, किसी वृद्ध या किसी परिवार को बेसहारा होने से बचा दे। हो सकता है इसके लिए बदले में आपको कोई कीमत ना मिले, पर आपका हृदय परमानंद से परिपूर्ण जरूर होगा। दया और करुणा रहित मानव मंदिर जाए, मस्जिद जाए, गिरजाघर जाए, वो ईश्वर से बहुत दूर है। और ईश्वर के नजदीक वही है जिसने सोच लिया है परहित सरिस धर्म नहीं भाई। सम्राट अकबर के दरबार में रहने वाले प्रधान सेनापति खानखाना रहीम, हाथ में एक पत्र है। पत्र में हैं सिर्फ दो पंक्तियां, सुरतीय नरतीय नागतीय यह चाहत सब कोई। पत्र लाने वाला है एक दीन दरिद्र ब्राह्मण। रहीम सोच में है, पत्र किसी ऐरे गैरे का नहीं, ये तो उनके परम श्रद्धेय मित्र संत तुलसी का है। उन्होंने तुलसी के अधूरे दोहे को पूरा किया, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। साथ ही ब्राह्मण की थैली उन्होंने पर्याप्त अशर्फियों से भर दी। उसे धन की जरूरत थी, बेटी की शादी करनी थी, वो निर्धन था। तुलसी के पहेली नुमा इशारे पर यहां रहीम ने ब्राह्मण को धन दिया। महत्व उसका नहीं है, महत्व है रहीम के भाव का, उनके उदात्त चरित्र का। क्योंकि तुलसी ब्राह्मण है, हिंदू है, और खानखाना रहीम मुसलमान, पर वे तो तुलसी के परम मित्र हैं, परम भक्त हैं, तुलसी के मर्यादा पुरुषोत्तम राम से भी वे प्रभावित हैं। रहीम तो काशी उनकी कुटिया में भी आए हैं, तुलसी ने उनका आलिंगन किया है, भव्य सम्मान दिया है अपनी कुटिया में। रहीम ने मोहरों की थैली भेंट की है और तुलसी के इनकार करने पर कहा है इसे रखना ही होगा, क्योंकि चित्रकूट में जो तुम संत सम्मेलन और भंडारा कर रहे हो उसमें इसे लगा देना, मैं भी उस सत्संग में भाग लेने जरूर आऊंगा। चित्रकूट में रहीम संत तुलसी के साथ बहुत दिन तक रहे थे, इसके प्रमाण भी हैं। एक दिन तुलसी ने चित्रकूट में एक हाथी को स्नान के बाद सूंड से अपने ऊपर धूल डालते देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने मित्र रहीम से पूछा, धूरी धरत निज शीश पर, कहु रहीम के ही काज? और रहीम ने चट जवाब में कहा, जेहिरज मुनि पत्नी तरी सो ढूंढत गजराज। बात तुलसी और रहीम की नहीं, बात इन कविताओं और कवित्व प्रतिभा की भी नहीं, बात है कट्टर जात पात के उस जमाने में भी हिंदू मुस्लिम एकता की, सद्भावना की। कहां है वहां सांप्रदायिकता का द्वेष या भेदभाव? कोई भी संत या सूफी जाति पाति के प्रपंच से बहुत ऊपर होता है, वह तो मानवता का उपासक होता है। उसके जीवन का एक ही लक्ष्य होता है, त्याग, परोपकार, अहिंसा और दया। उसका कोई दुश्मन नहीं होता। कबीर, नानक, रैदास आदि संत फकीर हिंदू मुस्लिम धर्मकांडों से बहुत ऊपर उठ चुके थे। उन्होंने बहुत पहले ही इस बात का अनुभव कर लिया था, सांप्रदायिक भावना से एकता का खंडन होता है, वह राष्ट्र की जड़ को खोखला करता है, हिंसा और रक्तपात कराता है। उन्होंने एकता की डोर से उसे एक करने की कोशिश की, तभी तो कहा, हिंदू कहे हम बड़े, मुसलमान कहे हम, एक मूंग दो दाल हैं, को ज्यादा को कम। उन्होंने बार बार समझाया, राम रहीम एक हैं, उन्हें दो मत जानो। अपनी आत्मा को निर्मल बनाने पर, स्वयं को सुधारने पर ही उन्होंने हमेशा जोर दिया, संपूर्ण मानव जाति एक ही परमात्मा की संतान है। जात पात के भेदभाव से परे होकर जो मानवता को मानव धर्म मानता है, जो भिन्न और विरोधी मतों को एक एकता की सुदृढ़ डोर से बांधने का प्रयास करता है, वही संत है, वही मानव है और वही ईश्वर या अल्लाह के निकट है।
1: बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये था आज का चिंतन। और अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

0: सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। सुबह के 6:40 लीजिए अब सुनिए श्री रामचरित मानस कान की आज की कड़ी।
1: एपिसोड 37।

पार्वती से विवाह करने की भगवान शिव की सहमति पाकर देवगण पर्वतराज हिमाचल के पास पहुंचे। महादेव के प्रताप का प्रभाव विचार कर अति प्रफुल्लित मन से उन्होंने श्रेष्ठ मुनियों को आदरपूर्वक बुला भेजा और शुभ दिन, नक्षत्र तथा शुभ घड़ी आदि विचार कर विवाह लग्न निश्चित करने की विनती की। लग्न

पत्रिका तैयार हुई तो उसे सप्त ऋषियों के हाथ ब्रह्मा को भिजवाई, जिसे पढ़कर ब्रह्मा अत्यंत प्रसन्न हुए। इधर शिव की बारात में जाने के लिए देवतागण अपने भांति भांति के विमान सजाने लगे। शिवजी के सेवकों ने स्वामी का श्रृंगार करना आरंभ किया। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर चढ़ाया गया। सांपों के ही कुंडल और कंकण, शरीर पर विभूति का लेप और वस्त्र के नाम पर व्याघ्र चर्म, सुंदर भाल पर चंद्रमा सुशोभित हुए, सिर पर गंगावतरण, तीन नेत्र, सर्पों का यज्ञोपवीत, गले में विष तथा छाती पर नरमुंडों की माला, ऐसा भयावह और अशुभ दिखने वाला वेश था मंगलकारी महादेव का।

आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस कांड की आज की कड़ी। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब कार्यक्रम विवरण के तहत आपको जानकारी देते चले आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग से आप सुनेंगे सुबह 7 बजे और स्वास्थ्य वार्ता कार्यक्रम सुबह 7:20 पर। बरसात के मौसम में बच्चों में होने वाली बीमारियों एवं बचाव विषय पर बातचीत आपको सुनवाएंगे। सुबह 7:30 पर कार्यक्रम गीत संगीत। 8 बजे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज। 8:30 पर प्रादेशिक समाचार।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी से आप सुनेंगे सुबह 8:45 पर और 9 बजे से विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे मुंबई केंद्र से। आज सुबह 10 बजे आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम आदमी मुसाफिर है। ग्यारह बजे से विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे मुंबई केंद्र से और शाम 4:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की आज की कड़ी। शाम 5:02 पर कार्यक्रम किसान वाणी। आज के कार्यक्रम में चर्चा का विषय है बीज चयन और उन्नत बीजों का महत्व। शाम 5:32 पर कार्यक्रम खेती बारी। चर्चा का विषय रहेगा सूक्ष्म सिंचाई का महत्व। शाम 6:02 पर कार्यक्रम युववाणी। चर्चा का विषय कौशल विकास का महत्व। फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम 6:30 पर। शाम 7 बजे प्रादेशिक समाचार और 7:15 पर जिले में आजकल रांची केंद्र से आप सुनेंगे। फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार शाम 7:15 पर और ऑल टाइम हिट्स इसे आप सुनेंगे शाम 7:30 पर। रात 8 बजे संसद समीक्षा आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से और 8:15 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत। रात 8:45 पर समाचार संध्या और रात 9 बजे अंग्रेजी समाचार न्यूज एट 9। 9:15 पर स्पॉटलाइट आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से और 9:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे मुंबई केंद्र से। रात 10 बजे संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही का रिकॉर्डिंग का प्रसारण आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से। रात 10:30 पर आज के फनकार और रात 11 बजे हिंदी में समाचार। 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से और हर रोज की तरह सभा समाप्त होगी रात 11:10 पर।

ये थी जानकारी कार्यक्रम विवरण के तहत आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:54 और 51 सेकंड। कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:47 लीजिए अब सुनिए लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: ये था लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य वार्ता। आज के इस कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं आपको बातचीत बरसात के मौसम में होने वाली बीमारियां और बचाव विषय पर डॉक्टर सुभाष प्रसाद से बातचीत कर रहे हैं मोहम्मद अली शब्बीर अंसारी। ये भेंट वार्ता का पुनः प्रसारण है।
1: श्रोताओं, आज हमारे साथ कार्यक्रम में आमंत्रित हैं शहर हजारीबाग के जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष प्रसाद, जिनसे आज हम बात करेंगे बरसात के मौसम में खास तौर से बच्चों की होने वाली कौन सी बीमारियां हैं और उनके होने के कारण क्या है, उससे कैसे बचाव किया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो बरसात का मौसम चल रहा है तो इन दिनों बच्चों की जो आम बीमारियां हैं वो कौन कौन सी?
2: बरसात के दिनों में जो बच्चों में होने वाली जो बीमारियां हैं, कॉमन बीमारियां हैं, जिनमें आपका डायरिया है
1: जी,
2: जिसको हम लोग गैस्ट्रोएंटेराइटिस बोलते हैं
1: जी,
2: उसके बाद टाइफाइड है
1: जी,
2: और हेपेटाइटिस है जिसको हम लोग जॉन्डिस बोलते हैं।
1: जॉन्डिस बोलते हैं जी।
2: एक कॉमन जो बीमारियां है
1: जी,
2: ये गंदे खाने या गंदा पानी पीने से होती है
1: जी।
2: तो इससे इसके लक्षण जो है, जैसे किसी को दस्त हो रहा है
1: जी,
2: तो अगर किसी को 3 से ज्यादा बार
1: दस्त हो रहा है जी,
2: तो उसको हम लोग बोलते हैं कि इसको डायरिया
1: जी।
2: अगर किसी को लूज मोशन के साथ उसके ब्लड आ रहा है
1: जी,
2: तो उसको हम लोग डिसेंट्री
1: जी।
2: तो इसमें लक्षण क्या आता है कि बच्चे में क्या होगा कि जो मोशन होगा, लूज मोशन
1: जी,
2: या दस्त होगा, वो 3 से ज्यादा बार होगा
1: जी,
2: पानी जैसा होने लगेगा
1: जी,
2: ज्यादा बार होगा
1: जी,
2: बच्चा उसमें पेशाब जो है देर से करेगा
1: जी,
2: बच्चा सुस्त हो जाएगा
1: जी,
2: हो सकता है कि बच्चा माँ का दूध ना पकड़े, इतना सुस्त हो जाएगा
1: जी,
2: उसका जीभ सूखने लगेगा
1: जी,
2: क्योंकि माँ उतना पानी नहीं पिला पाते, छोटे बच्चे हैं उतना पानी पी भी नहीं पाते
1: जी,
2: उसमें उल्टी भी होता है। तो उसमें क्या होता है, शरीर में जो है जैसे दस्त ज़्यादा होने लगता है
1: जी,
2: तो क्या होता है, शरीर में पानी की मात्रा घटने लगती
1: है जी,
2: जिससे क्या होता है कि अगर माँ उतना पानी नहीं पिला पा रही है तो उससे क्या होता है, पानी की मात्रा जो घटने से शरीर जो है, बच्चे का शरीर सुस्त पड़ने लगता है, चमड़ा सिकुड़ जाता है
1: जी,
2: जीव उसका सूखने लगता है, जिसको मेकस मेम्ब्रेन बोलते हैं
1: जी,
2: पेशाब का जो क्वांटिटी है या पेशाब की जो मात्रा है
1: जी,
2: या पेशाब का जो टाइमिंग
1: करने का जो समय,
2: देर समय पेशाब देर से होने लगता है, अगर इसका समुचित इलाज और नहीं हो
1: जी,
2: तो बच्चा गंभीर हो सकता है,
1: गंभीर हो सकता है सर।
2: तो इसमें इसमें जो है हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे को, माँ को ये जानना चाहिए कि मेरा बच्चा अगर पखाना 3 से ज्यादा हो रहा है
1: जी,
2: और मेरा बच्चा सुस्त हो रहा है, पानी जितना हम चाहते हैं जितना पीना चाहिए
1: नहीं पी रहा,
2: उतना नहीं पी रहा है
1: जी,
2: तो तुरंत हमको बच्चे को तुरंत डॉक्टर को दिखाना जी, चाहिए
1: जी। सर, इसमें दो बातें आपने कही कि एक ये कि गंदा पानी पीने से होता है या गंदा खाने से होता है, तो वो बच्चे जो खाना खान पान करते हैं, और एक बात आपने कही कि जो बच्चे दूध नहीं पकड़ पाते हैं, दूध नहीं पी पाते हैं, तो ये किस उम्र के बच्चों में ये इसका
2: फर्क? जो छोटे बच्चे जो 1 साल से नीचे के बच्चे हैं
1: जी जी,
2: उसमें जो है दस्त की, दस्त होने की संभावना ज़्यादा रहती है
1: जी,
2: अगर जिन बच्चों ने वैक्सीन नहीं लिया
1: जी,
2: जो डायरिया का वैक्सीन आता है
1: जी जी,
2: तो रोटा वायरस के चलते जो डायरिया होता है, वायरल डायरिया
1: जी जी जी,
2: उसका आप सरकारी अस्पताल में
1: जी
2: आपका वैक्सीन अवेलेबल है
1: जी जी,
2: तो जिन बच्चों को वैक्सीन नहीं दिया गया है
1: जी,
2: उनमें लूज मोशन या दस्त होने की संभावना ज्यादा
1: बढ़ जाती है जी,
2: बढ़ जाती है
1: जी। तो ये बात आपने कही कि जो बच्चे दूध पीने वाले जो बच्चे हैं उनको तो वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए, वैक्सीनेट हो जाना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो ज्यादा ग्रसित होने का संभावना में बढ़ जाता है। वो जो बच्चे पानी, गंदा पानी पी लेते हैं, मतलब 1 साल से जो ऊपर के बच्चे होते हैं,
2: बच्चे
1: वो तो पानी पीते हैं, गंदा पानी पी लिया तो वो उससे प्रभावित हो जाते हैं। तो माँ को इसमें ख्याल रखना होता है कि बच्चा कितने कितने दिनों पैखाना कर रहा है या पेशाब की मात्रा उसका कितना है, कितनी देर में करता है, और वो सुस्त अगर पड़ रहा है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना है।
2: उसमें ध्यान ये देना है
1: जी
2: कि अगर बच्चा दस्त ज्यादा कर रहा है, आप कहीं गाँव में रह रहे हैं
1: जी जी,
2: तो घर का चीज जैसे आप के अगर ORS अवेलेबल है
1: जी,
2: WHO का ORS छोटा पैकेट मिलता है जिसको एक गिलास में घोल के आप पिला सकते हैं
1: जी,
2: वो चीज है। दूसरा है कि जो हम लोग चावल बनाते हैं माड़ है
1: जी जी,
2: उसमें नमक डाल के आप उसको दे सकते हैं,
1: उससे कम से कम पानी का जो
2: पानी का जो मात्रा कमी है वो पूरा होते रहेगा,
1: बैलेंस हो सकता है जी।
2: या जो न्यूट्रिशन है बच्चे में क्या होता है कि डायरिया अगर दस्त बहुत दिन तक हो, चार दिन हो गया
1: जी जी जी
2: और नहीं दिखाया आपने
1: जी,
2: तो कम से कम घर में जो अवेलेबल है
1: वो चीज दें,
2: होम मेड है
1: जी,
2: घर का है
1: जी,
2: जैसे कि आपका
1: चावल का
2: खीर हो गया, माड़ हो गया
1: जी, दाल का पानी भी दे सकते हैं सर,
2: दाल का पानी भी दे सकते हैं, आपका दही है जो बड़े बच्चे हैं
1: जी,
2: दही नमक के साथ घोल के दे सकते हैं, या कोकोनट वाटर है
1: जी,
2: ये सब चीज जो घर में अवेलेबल हम जहाँ पर अवेलेबल है जो दे सकते हैं
1: जी,
2: फ्रूट जूस अगर मिलता है उसको भी दे सकते हैं, न्यूट्रिशन के लिए आप दलिया दे सकते हैं
1: जी,
2: गीला चावल खिचड़ी तेल के साथ खिला सकते हैं
1: सर। तो ये ना डायरिया और डिसेंट्री के बारे में आपने बता दिया, अब आपने टाइफाइड भी कहा था कि इससे भी बच्चे प्रभावित हो जाते हैं, तो इसमें इसका

0: उसका भी कारण वही है, गंदा खाना, खान पान
1: जी।
0: और उसमें होता क्या है कि बच्चे का जो बुखार है, मदर आके कंप्लेन करेगी कि इसको बहुत तेज बुखार हो, और 5 दिन हो गया, 7 दिन हो गया, बुखार उसका रहता है।
1: एक चीज़ और सर इसमें देखा जाता है आमतौर से कि इस तरह की जो परेशानी होती है, चाहे डायरिया डिसेंट्री में होता है या बुखार में आता है गुड़ में, तो लोग ओवर द काउंटर मेडिसिन लेकर के लोग जो दवा
0: नहीं देते हैं, ओवर द काउंटर मेडिसिन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों में हर दवा का, हर ड्रग का डोज होता है,
1: वेट के हिसाब से
0: पर के जी डोज या पर के जी पर डे के हिसाब से।
1: केमिस्ट को तो ये बात मालूम नहीं होती,
0: मालूम नहीं होता
1: जी जी,
0: तो वो बोलेगा कि आप ठीक है इसको एक चम्मच, लेकिन डोज वो पर्याप्त मात्रा में उसको नहीं मिल रहा है।
1: बच्चे का वेट भी लेना होता है और उसका वजन देखना है,
0: वजन
1: उम्र भी देखनी है,
0: स्पेशली वजन के अनुसार दवा चलती
1: है जी जी। तो ये गलती नहीं करनी चाहिए,
0: नहीं
1: खास सबसे बच्चों के लिए,
0: बच्चों के
1: लिए ओटीसी आपको नहीं करना है। तीसरी बात आपने कही थी कि ये जॉन्डिस, जॉन्डिस के भी ग्रसित हो जाते हैं बच्चे, तो इसमें क्या है?
0: उसमें भी वही चीज है, कंटामिनेटेड फूड
1: जी जी
0: एंड कंटामिनेटेड वाटर
1: जी जी, मेन है कि पानी और खाना ही,
0: पानी खाना मेन चीज, जो रेनी सीजन में ज्यादातर जो कॉमन है। तो उसमें क्या होता है कि बच्चा जो है, अगर जॉन्डिस किसी को हो गया, पीलिया जिसको बोलते हैं
1: जी,
0: तो क्या होगा कि पेशाब उसका डार्क होने लगा, पेशाब पीला
1: होने लगता है जी।
0: या तो मदर नोटिस करेगी या बच्चा खुद बताएगा कि बच्चा पेशाब पीला हो रहा है, आँख जो है उसका कंजक्टिवा जिसको, वो क्या होगा पीला होने लगा
1: जी।
0: तो उसमें क्या होगा, बच्चा खुद क्या करेगा, अगर जॉन्डिस बढ़ रहा है तो क्या होगा, भूख नहीं लगेगा उसको, उल्टी हो सकता है
1: जी,
0: सुस्त हो सकता है,
1: तो ये
0: पेट दर्द बसा सकता है
1: जी। तो ये हर उम्र के बच्चे ग्रसित हो जाते हैं इससे?
0: हाँ, हर ज्यादातर जो बच्चे जो 1.5 साल 2 साल के हैं
1: जी,
0: ज्यादा, चूंकि जो बाहर से खा रहे
1: जी, वो ज्यादा
0: तो होने का चांस ज्यादा है, या बाहर जाके पानी पी ले रहे हैं
1: सर। तो इसके और है, जैसे जॉन्डिस के बारे में आपने कही, तो लक्षण बताया आपने कि पेशाब डार्क हो जाता है, पीला हो जाता है, या शरीर में भी पीलापन आ जाता है, तो ये लक्षण हुआ। और ये जब सिम्टम दिखता है गार्जियन को या माँ को दिखता है, तो वो डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, तो फिर जब आपके यहाँ आते हैं, डॉक्टर के यहाँ जब गार्जियन आते हैं बच्चों को लेकर के, तो उसमें किस तरह का कोई जांच वगैरह भी कराना होता है आपको, या फिर
0: जॉन्डिस के लिए हम लोग उसमें जांच कराते हैं, जॉन्डिस का इसको बोलते हैं सिरप बिलरुबिन
1: जी,
0: उसमें हम लोग देखते हैं, और एक होता है एसजीपीटी
1: जी,
0: जो लीवर में शो करता है उसका इन्फ्लेमेशन है, सूजन है लीवर में
1: जी,
0: बताता है।
1: तो अगर खुदा ना खास्ते बच्चे जॉन्डिस से ग्रसित हो गए हो, तो इसका इलाज कितने दिनों में पूर्ण रूप से हो जाता है?
0: तो डिपेंड करता है कि सीरम बिलिरुबिन का लेवल जो है कितना है
1: जी,
0: अगर किसी का बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है
1: तो
0: समय लगता है।
1: तो उसमें इलाज के दौरान खाने पीने में क्या सावधानी बरतनी है?
0: खाने पीने में यही है कि उसको जो हम लोग यहाँ पर बताते हैं
1: जी, दवा देते हैं, और
0: दवा देते हैं उसको बताते हैं कि आप जो है बच्चे को, चूंकि आपका जो पाचन करने वाला तंत्र है
1: जी,
0: वो थोड़ा खराब है
1: जी,
0: तो ज्यादा एक्टिव एक्टिविटी नहीं करना है
1: जी,
0: कुछ ज्यादा
1: ऐसा खाना मतलब नहीं देना जिसको मेहनत करना पड़े पचाने के लिए।
0: हाँ, तो सादा खाना हम लोग बोलते हैं, तेल और मसाला छोड़
1: जी,
0: उसको सादा खाना दिया
1: जाए, सादा खाना माल हो गया, माल भात वगैरह हो गया,
0: जो भी सादा खाना
1: देना, चाहे आसानी से पच जाए।
0: ये सब जो बरसात के जो बीमारियां
1: जी जी
0: जो बताए हम
1: जी,
0: डायरिया है या डिसेंट्री है या
1: जॉन्डिस
0: है या टाइफाइड, ये सब के मेन जो प्रिवेंशन का जो करने का तरीका है
1: जी जी,
0: वो है सबसे बेस्ट है पर्सनल हाइजीन
1: जी,
0: हैंड वॉशिंग
1: जी।
0: आप डायरिया से बचाव के लिए है, सबसे अच्छा है उसमें 3C है
1: जी,
0: क्लीन हैंड
1: जी जी,
0: क्लीन कंटेनर
1: जी,
0: क्लीन एनवायरनमेंट
1: जी, और 3C जो है वो हाथ साफ रखना है आपको, माहौल भी साफ रखनी है,
0: बर्तन आपका जो बनाते हैं वो साफ होना चाहिए, एनवायरनमेंट जो आपके जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं अच्छा अच्छा सैनिटेशन होना चाहिए
1: जी जी जी,
0: जो पानी भी आप दे पिला रहे हैं बच्चे को
1: जी
0: एकदम साफ होना चाहिए, या फिल्टर्ड होना चाहिए, या खोला करके ठंडा पानी होना चाहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हैंड वॉशिंग।
1: कहाँ कहाँ से आप होके आए हैं, जैसे हम लोगों ने देखा था कोविड के समय में देखा था कि वो जरूरी हो गया था,
0: जरूरी हो गया था, अभी भी जरूरी है,
1: हमेशा जरूरी होता है वो,
0: हमेशा जरूरी है
1: जी जी। सर एक चीज़ और आखिर में हम जानना चाहेंगे आपसे कि जो जॉन्डिस में जो मामला आता है, तो जो न्यू बॉर्न बेबीज जो होते हैं, देखा जाता है कि उनको कभी कभी जैसे बच्चे की विलादत हुई

0: रिजन होगा और उनको फोटोथेरेपी की जरूरत पड़ जाती है, इसमें इसका क्या?
1: जो न्यूबॉर्न है, जो 28 दिन से कम के बच्चे हैं जी, उसमें फिर दो तरह का जॉन्डिस होता है, एक फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है जो कि बॉडी एडाप्ट करता है और मदर मिल्क में एक केमिकल होता है जिसके चलते बिलिरुबिन का लेवल
0: बढ़ जाता है।
1: तो किसी जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है उसमें किसी चीज़ का करने का जरूरत नहीं
0: है
1: और वो जो लेवल जाता है अप टू 15 मिलीग्राम पर डीएल जाता है। लेकिन जो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है जो कि बहुत तेजी से बढ़ता है, बहुत तेजी से बढ़ता है, 20 हो गया, 22 हो गया, उस स्थिति में आपको मशीन फोटोथेरेपी का
0: जरूरत पड़ती है। और जिस तरह से लेवल उसके हिसाब से उतना समय भी उसमें लगता है, हफ्ता दिन भी, 10 दिन भी लगता है या 2-3 दिन में वो ठीक हो जाता है।
1: और जो बरसात में और बीमारियां जो होती है
0: जी,
1: जो सांस से रिलेटेड बीमारियां
0: जी,
1: इसमें होता है कि चूंकि एनवायरमेंट में नमी के चलते जो छोटे बच्चे हैं
0: जी,
1: उसमें क्या होता है कि नाक के अंदर मिकोसा होता है, उसमें सूजन हो जाता है, तो उससे क्या होगा, उसको नेजल कंजेशन का प्रॉब्लम। दूसरी जो बीमारी है वो इन्फ्लुएंजा है, फ्लू
0: जी जी,
1: जिसमें होता है कि बुखार होगा, सर्दी खांसी होगा। तीसरा जो सांस से होने वाली बीमारी है वो है निमोनिया
0: जी।
1: अगर किसी को सर्दी खांसी है और साथ में उसका सांस का गति जो है, रेस्पिरेटरी रेट जिसको बोलते हैं,
0: बढ़ा हुआ,
1: अगर उसका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा हुआ
0: जी,
1: और सांस लेने में दिक्कत हो रहा है
0: जी,
1: या सांस ले रहा है तो उसको आवाज हो रहा है
0: जी, घर घर
1: की आवाज हो रही है, तो उस स्थिति में उसको थोड़ा डॉक्टर दिखाने की
0: जरूरत करना चाहिए जी।
1: हाँ, और जो बरसात से रिलेटेड और जो बीमारियाँ, चूंकि होता क्या है कि पानी का स्टैग्नेशन होता है बरसात में
0: जी,
1: कहीं कहीं जमा हो जाता है, घर में भी आपका पानी टंकी और कहीं छत पर है पानी, तो उससे क्या होता है मच्छरों का प्रकोप
0: बढ़ जाता है जी।
1: तो मच्छर से होने वाली बीमारियाँ भी आपको ज्यादातर मिलेंगी,
0: मलेरिया से हो सकते हैं जी,
1: जिसमें मच्छर से होने वाली बीमारियों में मलेरिया है
0: जी,
1: डेंगू है, चिकनगुनिया है
0: जी,
1: और एक जापानी इंसेफ्लाइटिस जो कि हम लोग के हजारीबाग में होता है।
0: तो सर, बरसात के दिनों में, रेनी सीजन में खास तौर से कौन कौन सी ऐसी बीमारियां जिससे बच्चे ग्रसित हो जाते हैं, तो उन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, उसके क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इस बारे में जो आपने जानकारी हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य वार्ता। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। अगला प्रोग्राम बस थोड़ी देर में।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: चल रहा है कार्यक्रम गीत संगीत, और ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। सुनवा रहे हैं अगला गीत आलिशा की आवाज में।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत संगीत। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8 बजने वाले हैं, कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात और फिर अंग्रेजी समाचार मॉर्निंग न्यूज। 8:30 पर प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे हमारे रांची केंद्र से। अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से बस थोड़ी देर में।

0: राज्य में वरिष्ठ नागरिकों, विधवा और दिव्यांगों के लिए मासिक पेंशन बढ़ाई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जवाबी कार्रवाई की चेतावनी के बाद अमेरिका ने ईरान पर घातक हमले किए। और पीवी सिंधु आज से शुरू हो रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व करेंगी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक मंगल मिलन आज संसद भवन में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक को संबोधित करेंगे। सत्र के दौरान ये बैठक पारंपरिक रूप से मंगलवार को आयोजित की जाती है। बैठक का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता और समन्वय को प्रदर्शित करना है। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मानसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं।
1: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: तीन राष्ट्रों की यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी

0: इसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू स्कोपिये में मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टिजन मिकोस्की और असेंबली के स्पीकर आफ्रिम गाशी से भी मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू का उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज से मुलाकात की। बैठक में डॉ. जयशंकर ने लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया।
1: पनामा वैश्विक व्यापार मार्गों के लिए एक प्राकृतिक सेतु और व्यापक लैटिन अमेरिकी क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। पनामा नहर के कारण यहाँ की लॉजिस्टिक अवसंरचना विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण पहचान रखती है। हम शिक्षा, छात्रवृत्ति, औषधि उद्योग, प्रौद्योगिकी और सबसे महत्वपूर्ण व्यापार सहित अनेक क्षेत्रों में आपके सहयोग और साझेदारी की रुचि की सराहना करते हैं। हमें विश्वास है कि इन क्षेत्रों में मिलकर कार्य करने से दोनों देशों के बीच आर्थिक, शैक्षिक और तकनीकी संबंध और अधिक सुदृढ़ होंगे।
0: श्री जयशंकर ने बेल्जियम के राष्ट्रीय दिवस पर वहां के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रिवोट तथा देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत बेल्जियम के साथ अपनी बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने यूक्रेन के ओडिशा बंदरगाह से रवाना हो रहे जहाज एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 1 भारतीय गंभीर रूप से घायल है। मंत्रालय के अनुसार घटना के समय जहाज पर 17 चालक दल के सदस्य सवार थे, जिनमें 5 भारतीय नागरिक शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 अगस्त से वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली मासिक आर्थिक सहायता को 1000 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए करने की मंजूरी दी है। कल जारी एक आदेश में सरकार ने कहा कि बढ़ी हुई राशि सभी पात्र लाभार्थियों को मौजूदा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT प्रणाली के माध्यम से दी जाएगी। निर्वाचन आयोग आज कोलकाता में डाक मतपत्र प्रणाली को अधिक समावेशी, सुरक्षित और सुलभ बनाने पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के सभी 24 चुनावी जिलों के चुनाव अधिकारी, साथ ही भारत और कई अन्य देशों के चुनाव प्रशासक, नीति निर्माता, शिक्षाविद और चुनाव विशेषज्ञ शामिल होंगे। चर्चा का मुख्य विषय पोस्टल बैलेट और विशेष मतदान व्यवस्थाओं को ज्यादा समावेशी, सुलभ और सुरक्षित बनाने के तरीकों पर होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्य चुनाव अधिकारी नीलम मीना इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। कार्यक्रम में पोस्टल बैलेट, चुनावी निष्पक्षता बनाए रखने, धोखा धड़ी रोकना, ऑडिट सिस्टम, कानूनी ढांचे, टेक्नोलॉजी पर आधारित विशेष वोटिंग सिस्टम और रिमोट वोटिंग के भविष्य जैसे विषयों पर सत्र होंगे। अंतर्राष्ट्रीय सत्र के दौरान नेपाल, अल्बानिया, बोस्निया और हर्जेगोविना और अन्य देशों के चुनाव विशेषज्ञ वर्चुअली अपने अनुभव साझा करेंगे। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून सक्रिय है और कई क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है।

0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय मौसम विभाग ने आज राज्य के 5 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
1: हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार हो रही मानसूनी वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भूस्खलन के कारण अनेक संपर्क सड़कें अवरुद्ध हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में बिजली और पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। प्रभावित इलाकों में बहाली का कार्य जारी है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज कांगड़ा, मंडी, चंबा, सिरमौर और कुल्लू जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एहतियात के तौर पर कांगड़ा, मंडी, चंबा और सिरमौर जिलों में सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों को आज लगातार दूसरे दिन भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अनावश्यक यात्रा से बचने तथा नदियों, नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: उधर जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़ी नई घटनाओं में एक महिला और उसके दो बच्चों सहित 11 लोगों की मौत हो गई है। इससे पिछले 3 दिनों में मरने वालों की संख्या 23 हो गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी दिन के दौरान मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। सिक्किम के नामची जिले के समरडुंग में एनएचपीसी जल विद्युत परियोजना की बन रही सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए तलाश और बचाव अभियान जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: ये घटना कल दोपहर दक्षिण सिक्किम के समरडुंग में एनएचपीसी प्रोजेक्ट पर घटी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और दूसरी एजेंसियों को तुरंत ही बचाव कार्यों में लगाया गया है, लेकिन गैस लीक होने के कारण बचाव दल शुरुआत में घटना स्थल तक नहीं पहुंच पाए थे। हालांकि सभी की कोशिशों से अब तक 8 शव बरामद किए जा चुके हैं। माना जा रहा है कि भूस्खलन के कारण बन रही सुरंग को नुकसान पहुंचा है, लेकिन असली वजह अब तक नहीं पता चल पाया है। बचाव दल फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिनमें मजदूर, एनएचपीसी के अधिकारी और एक प्राइवेट इंजीनियरिंग फर्म के कर्मचारी शामिल हैं। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंडी बर्नहम को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि भारत और ब्रिटेन साझा लोकतांत्रिक मूल्यों से बंधे हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जन संबंधों में व्यापक सहयोग है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हाल ही में जॉर्डन में 2 अमेरिकी सैनिकों और इराक में 1 सैनिक के मारे जाने के बाद उनकी ये चेतावनी आई है। इस बीच अमेरिकी सेना ने आज ईरान के खिलाफ नए हमलों की शुरुआत की है। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस सैन्य क्षमताओं को और कमजोर करना है, जिनका इस्तेमाल होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले के लिए किया जाता है। इससे पहले ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि उसने ईरानी प्रांतों पर अमरीकी हमलों के जवाब में मिसाइल और ड्रोन हमलों के 3 दौर के जरिए बहरीन और कुवैत में अमरीकी संपत्तियों और ठिकानों पर तेज प्रहार किए हैं। चाइना ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से शुरू हो रही है। प्रतियोगिता में भारत का नेतृत्व पीवी सिंधु करेंगी। महिला सिंगल्स के पहले दौर में सिंधु का सामना उन्नति हुडा से होगा। देविका सिहाग भी महिला सिंगल्स में खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में भारत की ओर से लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एचएस प्रणॉय चुनौती पेश करेंगे। पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन अंश करुणन भारत के खिलाड़ी हैं। वहीं ओलंपियन तनिषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला, रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे मिक्स्ड डबल्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। महिला डबल्स में भारत की कोई भी खिलाड़ी नहीं है। और हॉकी में FIH यूथ 5S एशियाई चैंपियनशिप में भारत की पुरुष और महिला सब जूनियर टीमों ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। ओमान के मस्कत में खेले गए मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने कजाकिस्तान को 8-3 से हराया। भारतीय पुरुष टीम ने अपने पहले मैच में बांग्लादेश को 7-3 से शिकस्त दी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
3: राजधानी दिल्ली से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। अमर उजाला ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अपने मुख्य पृष्ठ पर लिखा है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर राजनीति ना हो, SIT के पुनर्गठन की संभावना तलाशें। हिंदुस्तान ने इसी खबर पर सुर्खी दी है, चढ़ावा चोरी की जांच नई एसआईटी करे। दिल्ली में कल हुए प्रदर्शन को भी अधिकतर अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स लिखता है, संसद मार्च में झड़प, सरकार से बात, आंदोलन जारी। राजस्थान पत्रिका ने केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और सीजेपी प्रतिनिधियों की मुलाकात का चित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, सरकार से आश्वासन के बाद दीपके ने अनशन तोड़ा, 100 प्रदर्शनकारी घायल। अमर उजाला ने संपादकीय में इसी खबर का उल्लेख किया है, संसद के बाहर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनौती का संकेत है, जिसमें संवाद का स्थान धीरे धीरे टकराव लेता जा रहा है। ये निर्विवाद है कि संविधान नागरिकों को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने का अधिकार देता है। लोकतंत्र की मजबूती भी इसी में है कि असहमति को स्थान मिले और सरकारें जन भावनाओं के प्रति संवेदनशील हों, लेकिन ये भी उतना ही आवश्यक है कि प्रदर्शन संविधान और कानून की सीमाओं के भीतर हो। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है, एथेनॉल से कार ही नहीं चलेगी चूल्हा भी जलेगा। एलपीजी के अलावा एथेनॉल को रसोई ईंधन का विकल्प बनाने की तैयारी, सितंबर तक नीति का मसौदा तैयार कर सकती है सरकार।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपिये में उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिलियानोवस्का दाफकोवा के साथ वार्ता करेंगी। यूक्रेन के ओडिशा बंदरगाह के पास एक व्यापारिक जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीयों की मौत, 1 घायल, भारत ने हमले की निंदा की। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वरिष्ठ नागरिकों, विधवा और दिव्यांगों के लिए मासिक पेंशन बढ़ाई। और पीवी सिंधु आज से शुरू हो रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व करेंगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to address NDA Parliamentary Party meeting at Parliament House this morning. President Draupadi Murmu to hold talks with a North Macedonian counterpart in Skopje today. 4 Indians killed and 1 critically injured in attack on a commercial vessel near Odessa port in Ukraine. India condemns attack on the ship. West Bengal government hikes monthly pension for senior citizens, widows and specially abled persons in the state. US launches fresh strikes on Iran as President Donald Trump warns of massive retaliation. And PV Sindhu to lead India's challenge at the China Open Badminton tournament beginning today. The National Democratic Alliance, NDA Parliamentary Party's weekly strategy meeting, now known as Mangal Milan, will be held in the Parliament House this morning. Prime Minister Narendra Modi is scheduled to address the meeting. The meetings are traditionally held on Tuesdays during Parliament sessions with an intent to demonstrate complete alliance unity. NDA Alliance partners will pass a congratulatory motion during the meeting, honouring Mr. Modi for becoming the longest-serving elected Prime Minister of India. President Draupadi Murmu will hold talks with her North Macedonian counterpart Gordana Siljanovska Dabkova in Skopje today. President Murmu is also scheduled to meet Prime Minister Hristiyan Miskosti and Speaker of the Assembly Afrim Gashi and address the Parliament. She will also address the India-North Macedonia Business Forum. More from a correspondent.
5: President Murmu arrived in North Macedonia last night on a two-day state visit as part of her three-nation tour to Moldova, North Macedonia and Romania. She is the first Indian president to visit North Macedonia. The visit reflects the importance India attaches to strengthening bilateral ties with the three countries and its engagement with wider Eastern European region. Both sides have shown keen interest in deepening economic ties in priority sectors such as agriculture, pharmaceuticals, science and technology, information technology and IT-enabled services. North Macedonia is a landlocked country in southeastern Europe. The Indian community in the country is very small, with most members working in the IT sector, teaching at universities or serving as executives in multinational companies. With Subhashree Mahapatra, this is Yashasvi Kiryal for Akashvani News, Delhi.
4: India condemned the attack on the vessel MV Golden Leo while departing the port of Odessa in Ukraine. External Affairs Ministry said four Indian nationals have tragically lost their lives, while one is hospitalized in a critical condition. The ministry said that at the time,

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह पार्लियामेंट हाउस में एनडीए पार्लियामेंट
1: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार। आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की वन एवं पर्यावरण विभाग की समीक्षा। राज्य के सभी वन क्षेत्रों का एक महीने के भीतर टेक्निकल और डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने का दिया निर्देश। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राजनीतिक दलों के साथ की एसआईआर अभियान की समीक्षा। कांग्रेस ने मतदाता सूची सुधार की अवधि 15 दिन और बढ़ाने की मांग की। राज्य कैबिनेट की बैठक में आज शैक्षणिक संस्थानों में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को 75% उपस्थिति से मिल सकती है छूट। रिम्स गवर्निंग बॉडी में भी कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। रांची समेत 17 जिलों में आज भारी बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट। मॉनसून की सक्रियता बढ़ने से राज्य में बारिश की कमी घटकर हुई 33%। और धनबाद में पहली झारखंड राज्य लेजर रन चैंपियनशिप संपन्न। मेजबान धनबाद ने सर्वाधिक पदक जीतकर पहला स्थान किया हासिल। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में वन और पर्यावरण विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को एक महीने के भीतर सभी वन क्षेत्रों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने शहरी क्षेत्रों में पौधारोपण बढ़ाने पर जोर देते हुए पेड़ लगाओ 5 यूनिट फ्री बिजली पाओ योजना का व्यापक प्रचार करने को कहा, जिसके तहत एक पेड़ लगाने पर नागरिकों को 5 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राजनीतिक दलों के साथ मतदाता सूची पुनरीक्षण की समीक्षा की। उन्होंने 22 जुलाई को सभी केंद्रों पर होने वाली चुनाव पाठशाला और बीएलओ बैठक में प्रतिनिधियों की 100% उपस्थिति का आग्रह किया। मतदाताओं से फॉर्म भरने और डिजिटाइजेशन प्रक्रिया में सहयोग की अपील की गई है। झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू ने रांची में प्रेस वार्ता कर सचिवालय में मीडिया के प्रवेश पर रोक का विरोध किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस पाबंदी को हटाने की मांग का भरोसा दिया। इसके अलावा कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिलकर एसआईआर की समय सीमा 15 दिन बढ़ाने का आग्रह किया है। पार्टी विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि कई व्यावहारिक दिक्कतों की वजह से बड़ी संख्या में लोग इस प्रक्रिया से छूट गए हैं।
2: हम सबों ने कहा कि भाई आप 15 दिन का और समय दें ताकि एक भी वोटर यह जो डिजिटाइजेशन है उससे वंचित ना हो, क्योंकि अभी वर्षा का समय है, खेती प्रधान है, 80% लोग यह कृषि पर निर्भर करते हैं, प्रवासी मजदूरों की संख्या काफी है।
1: राज्य कैबिनेट की बैठक आज शाम 3 बजे से रांची के प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होगी। इस बैठक में मुख्य रूप से अदालत के आदेशों के आलोक में सरकारी कर्मचारियों के पेंशन वेतन और सेवा नियमितीकरण से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावना है। रिम्स में आज गवर्निंग बॉडी की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक में अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए कई बड़े प्रस्ताव पर मुहर लगने की उम्मीद है। रिम्स के अधिकारियों ने बताया कि चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार और नए डॉक्टरों की बहाली जैसे अहम मुद्दे पर इस बैठक में विस्तार से चर्चा की जाएगी।
3: कुछ प्रोजेक्ट का यहाँ पे इनोग्रेशन होना है। डिजिटल मेमोग्राफी है जिसकी सुविधा मिलने वाली है, और सेंट्रल लैब जो ऑलरेडी चल रहा है लेकिन उसका विधिवत उद्घाटन किया जाना है। 1400 से ज्यादा सीसीटीवी लगे हुए हैं, उन सेंट्रलाइज कमांड कंट्रोल सेंटर है। साथ ही साथ पूरा कैंपस बीएसएनएल के द्वारा वाईफाई जोन कर दिया गया है, और इन सारे प्रोजेक्ट का इनोग्रेशन होना है।
1: खूंटी जिले के तोरपा थाना क्षेत्र में कल एक दर्दनाक हादसे में दो स्कूली छात्रों की करंट लगने से मौत हो गई, जबकि सात अन्य छात्र घायल हो गए। कोटेग सेरा स्थित मौसीबाड़ी के समीप लंच ब्रेक के दौरान छात्र एक रथ को घुमाने का प्रयास कर रहे थे, तभी वे 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गए। घायल छात्रों का इलाज खूंटी सदर अस्पताल में चल रहा है, जहां उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई गई है। पुलिस प्रशासन मामले की जांच में जुट गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNewsRanchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। आजसो सुप्रीमो सुदेश महतो ने रामगढ़ के कुजू मुरपा में पार्टी इकाइयों की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने युवाओं को आगे लाने के लिए नेतृत्व के विकेंद्रीकरण पर जोर दिया। महतो ने वर्तमान सरकार पर विस्थापन नीति और रोजगार के झूठे वादे करने का आरोप लगाया।
4: कोई योजना का कोई स्वरूप नहीं और कोई योजना कल्याणकारी के नाम पर लोगों के हित में निरंतर चलने वाली कोई योजना इनकी नहीं, बल्कि इनकी योजनाओं के में जनता को छलने की बू आती है और ये केवल योजनाओं के माध्यम से छलने का काम कर रहा है।
1: चाईबासा की अदालत ने टोंटो थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म और उसके पिता की हत्या के दोषी जमादार सिरका को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस द्वारा पेश वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने दोषी पर दो अलग अलग धाराओं में आजीवन कारावास और कुल 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोडरमा पुलिस ने 8 जुलाई को हुई मोटरसाइकिल डिक्की तोड़कर जेवरात चोरी मामले का खुलासा करते हुए अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि विशेष टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर उड़ीसा के जाजपुर से 2 आरोपियों और रेकी करने वाली एक महिला को पकड़ा है।
5: हमने भद्रक और जाजपुर से 2 लोगों को गिरफ्तार किया, राजू दास और धनराज प्रधान। राजू दास की जो पत्नी है ट्विंकल दास, वो भी इस मामले में रेकी में इन्वॉल्व थी और वो कोडरमा रेलवे स्टेशन पे ही रह रही थी सारे सामान के साथ जो चोरी की गई थी। हमने ट्विंकल दास को भी अरेस्ट कर लिया। हमने इस मैटर में 100% रिकवरी कर ली है। ये जो इनकी गैंग है ये ओडिशा के 6 डिस्ट्रिक्ट में फैली हुई है और ये पूरे इंडिया में घूम घूम के इसी एमओ के साथ ऐसे घटनाओं को कारित करते हैं।
1: मौसम विभाग ने राजधानी रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा और सिमडेगा समेत राज्य के 17 जिलों में आज भारी बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने आम लोगों से खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। राज्य में मानसून की सक्रियता बढ़ने से बारिश की कमी घटकर अब 33% रह गई है। रांची में डुरंड कप 2026 की तैयारियों को लेकर उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने समीक्षा बैठक की। उन्होंने सुरक्षा, यातायात और बिजली पानी जैसे व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। बैठक के बाद उन्होंने बताया कि मैच के लिए कल से मोरहाबादी स्टेडियम के 12 काउंटरों से रोजाना निःशुल्क प्रवेश पत्र बांटे जाएंगे।
6: सभी लोग आके मैच का आनंद उठाएं। टिकट्स का शुल्क नहीं है लेकिन टिकट लेना आवश्यक है। 22 तारीख से काउंटर्स लगेंगे। सभी तैयारियां ट्रैफिक मैनेजमेंट हो गए और जितने भी वीआईपी मैनेजमेंट और जितने फोर्स के लोग आ रहे हैं उन सभी का हम लोगों ने सभी विभागों के साथ मिलकर तैयारी लगातार कर रहे हैं और अंतिम रूप दिया जाएगा।
1: धनबाद के बिरसा मुंडा मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पहली झारखंड राज्य लेजर रन चैंपियनशिप संपन्न हो गई है। 12 जिलों के 170 खिलाड़ियों में से मेजबान धनबाद ने सर्वाधिक पदक जीतकर पहला स्थान हासिल किया। समापन पर जिला खेल पदाधिकारी उमेश लोहरा ने विजेताओं को ट्रॉफियां देकर सम्मानित किया। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने खूंटी में करंट से 2 छात्रों की मौत और 7 के घायल होने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, जेपीएससी यूपी में ब्लैक लिस्टेड एजेंसी झारखंड में करा रही भर्ती परीक्षाएं। प्रभात खबर ने लिखा है शहर में जमीन भवन लेना हुआ महंगा, रजिस्ट्री के लिए देना होगा 10% अतिरिक्त सरचार्ज, ये राशि नगर निकायों को मिलेगी। हिंदुस्तान के शब्द है वासेपुर के गैंगस्टर फहीम खान की रिहाई पर शीर्ष कोर्ट की मुहर। दैनिक जागरण लिखता है कल से मिलेंगे डूरंड कप के मुफ्त टिकट, 26,000 से अधिक दर्शक देखेंगे मुकाबला। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की वन एवं पर्यावरण विभाग की समीक्षा, राज्य के सभी वन क्षेत्रों का एक महीने के भीतर टेक्निकल और डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने का दिया निर्देश। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राजनीतिक दलों के साथ की SIR अभियान की समीक्षा। कांग्रेस ने मतदाता सूची सुधार की अवधि 15 दिन और बढ़ाने की मांग की। राज्य कैबिनेट की बैठक में आज शैक्षणिक संस्थानों में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को 75% उपस्थिति से सकती है छूट। रिम्स गवर्निंग बॉडी में भी कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। रांची समेत 17 जिलों में आज भारी बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट। मानसून की सक्रियता बढ़ने से राज्य में बारिश की कमी घटकर हुई 33%। और धनबाद में पहली झारखंड राज्य लेजर रन चैंपियनशिप संपन्न, मेजबान धनबाद ने सर्वाधिक पदक जीतकर पहला स्थान किया हासिल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:45 हो रहे हैं।

0: शुभम बख्शी की बोल और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, आवाज मोहम्मद रफी की और फिल्म लोफर। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का प्रोग्राम मॉर्निंग मेलोडी आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज को आप सुन रहे हैं दस्तूर फिल्म के इस गीत में। बोल मजरू सुल्तानपुरी की और धुन तैयार किया था आनंद मिलन ने। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी यही समाप्त होता है।

एफएम संगीत का कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:59 और 25 सेकेंड्स। कुछ ही देर में आप सुनेंगे मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। इस अंतराल पर जाने से पहले जो गीत आपने सुना वो था धमाल चार। इस फिल्म से संजू राठौड़ की आवाज सी रश्मि विराग और संजू राठौड़ ने इस गीत को लिखा, तनिष्क बागची और संजू राठौड़ का संगीत। और आइए अब आपको अगला गीत सुनवाते हैं भूल भुलैया तीन। इस फिल्म से आदित्य रिखारी और तुलसी कुमार की आवाजों में ये गीत है। आदित्य रिखारी ने इसे लिखा है और संगीत है लीजो जॉर्ज का।

0: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
2: मुबारक हो सबको समाय सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
3: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
0: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
4: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास, एक सिनेमा हॉल था वहाँ।

0: पे पास में पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है, उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
1: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक, मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।
0: होठों

0: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
1: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
2: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
0: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
4: चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं पति पत्नी और वो, इस फिल्म वो दो। पति पत्नी और वो दो इस फिल्म का गीत अब आप सुनेंगे बादशाह कृष मोंदल, किशोर मोंदल और इप्सिता की आवाजों में। इस गीत को लिखा है बादशाह और कुणाल वर्मा ने, बादशाह हितेन और देव सदाना का संगीत।

यारियां दो। इस फिल्म का गीत अब सुनिए यो यो हनी सिंह नेहा कक्कर की आवाजों में। इस गीत को लिखा खलीफ और यो यो सिंह ने, संगीत खलीफ और यो यो सिंह का।

ब्रेक के बाद एक बार फिर हम हाजिर हैं चित्रलोक कार्यक्रम लेकर। आइए अब आपको सुनवाते हैं ये पारंपरिक गीत जुग जुग जियो। इस फिल्म से कनिष्क सेठ और कविता सेठ की आवाजें हैं और इस गीत को संगीत से सजाया है कविता सेठ और कनिष्क सेठ ने।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दू।
1: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
2: एक और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए
6: थैंक गॉड फिल्म का गीत सुनिए, योहानी, जुबिन नौटियाल और सूर्य रघुनाथन की आवाजों में, रश्मि विराग की रचना, तनिष्क बागची और चमत्कार संगीत का संगीत।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है? किशोरदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, तो मुझे वो गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे गीतकार की जिसने मुंबई की शहरी चमक दमक के बारे में ये बात कही।

0: पागल।
1: दोस्तों आनंद बख्शी की गीतकारी का संसार इतना विस्तृत है कि आधे घंटे के एक कार्यक्रम में उनकी गीतों की दुनिया को समेटना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम अपने तरीके से याद करेंगे इस अनमोल गीतकार को जो 21 जुलाई 1930 को जन्मा था रावलपिंडी में। वो रावलपिंडी जो बंटवारे के बाद सरहद के उस पार रह गई, तब ये लड़का 17 बरस का था और उसकी प्यारी रावलपिंडी उससे छूटी जा रही थी। इस रावलपिंडी की याद में बहुत बरस बाद आनंद बख्शी ने लिखी एक नज्म, और ये नज्म हमें फोन पर सुना रहे हैं उनके बेटे राकेश बख्शी।
2: जब पाठशी में हुआ था, बख्शी साहब 17 साल के थे, तो उन्होंने 17 साल जिंदगी जीती रावलपिंडी में, तो दूसरा देश बन गया, लेकिन वो थी बख्शी साहब की जन्मभूमि, उन्होंने वहां जन्म लिया था, वहीं गाने सुने, वहां उधर का कल्चर उन्होंने पिया और खाया, जिसकी वजह से वो गीतकार भी बने आगे जाके। पंजाबी कल्चर, फोक कल्चर, सूफी गाने, जब यहाँ हिंदुस्तान आए तो उन्होंने एक नज़म लिखी, उस नज़म का नाम है रावलपिंडी, और तकसीम के ऊपर है उनकी फीलिंग्स, और उन्होंने इस खूबसूरत पोएम को इस तरीके से लिखा जैसे कि एक आदमी एक बिलेवड के लिए लिखता है या कोई जो छूट जाता है जिंदगी में पीछे, उन्होंने उस हिसाब से ये पोएम लिखी है। तो मैं ये नरेट करना चाहता हूँ दो अपने बख्शी साहब फैंस के लिए।
1: जरूर।
2: सनहा ये मेरी जिंदगी सह गई, सनहा ये मेरी जिंदगी सह गई, मैं यहाँ आ गया वो वहां रह गई, कुछ ना मैं कर सका, कुछ ना मैं कर सका, देखता ही रह गया, कुछ ना वो कर सकी, देखती रह गई। लोग कहते हैं तकसीम सब हो गया, लोग कहते हैं तकसीम सब हो गया, जो नहीं बट सकी चीज वो रह गई। याद पिंडी की आती है अब किस लिए, याद पिंडी की आती है अब किस लिए, मेरी मिट्टी थी जहलम में वो बह गई, इन जमीनों ने कितना लहू पी लिया, ये खबर आसमानों तलक है गई, रास्ते में खड़ी हो गई सरहदें, रास्ते में खड़ी हो गई सरहदें, सरहदों पे खड़ी बेबसी रह गई, दे गई घर गली शहर मेरा किससे, दे गई घर गली शहर मेरा किससे, क्या पता किससे बख्शी वो क्या कह गई।
1: क्या बात है।
2: ये तकसीम के ऊपर बख्शी आपका जो दर्द था कि अपनी जन्मभूमि को पीछे छोड़ के आना पड़ा,
1: जी जी,
2: माँ की तरह, इस पोएम से ही जाहिर होता है।
1: जी, आनंद बख्शी एक जमाने में फौज में थे, लेकिन वहाँ उनका मन नहीं लगता था, वो तो फिल्मी दुनिया में बतौर गायक शामिल होना चाहते थे, लेकिन ये हो न सका। मुंबई में उन्होंने संघर्ष किया और किस्मत ने उन्हें गीतकार बना दिया। सन 1962 में आनंद बख्शी को पहली कामयाबी मिली, फिल्म थी मेहंदी लगी मेरे हाथ। सन 1965 आनंद बख्शी की कामयाबी का एक बेमिसाल साल, क्योंकि तब आई

ये वो दौर था जब आनंद बख्शी बाकायदा एक कामयाब गीतकार बनने के रास्ते पर आगे बढ़ते चले जा रही थी। सन 1967 में फिल्म मिलन के गाने उन्होंने लिखे।

0: आनंद बख्शी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है। वो रेल से सफर कर रहे थे, एक प्लेटफॉर्म पर ट्रेन रुकी थी और गांव का एक व्यक्ति मिलन फिल्म का उनका एक गाना गा रहा था। आनंद बख्शी का दिल बहुत खुश हुआ और उन्हें ये एहसास हो गया कि अब वो पक्के गीतकार बन चुके हैं, क्योंकि अब वो जन जन तक पहुंच चुके हैं। आनंद बख्शी के कुछ गानों की कहानी फोन पर सुना रहे हैं उनके बेटे राकेश बख्शी।
1: शुक्रिया यूनुस जी, और मैं इतना खुश हूँ कि मैं विविध भारती पे हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं हर चैनल सुनता हूँ। मैं हिंदुस्तान में जितने चैनल हैं, बाहर के भी जो चैनल हैं, मैं ऑनलाइन सुनता हूँ। और मैं अभी भी कहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई चैनल नंबर वन है भारती जो है, दैट इज एक्चुअली द रीडर डाइजेस्ट ऑफ रेडियो।
0: राकेश जी, बख्शी साहब की याद का दिन है और पूरा देश जो है वो उन्हें याद कर रहा है, संगीत के चाहने वाले, गीतों के चाहने वाले। हम चाहते हैं कि कुछ गानों के बनने की कहानियां आप सुनाएं।
1: बख्शी साहब का एक गाना था एक फिल्म में, जहाँ पर विलियन और वैम्प ने हीरो को बांध कर रखा हुआ है और उसका फैसला नहीं हो रहा कि क्या किया जाए इसके साथ। तो बख्शी साहब को एक लाइन याद आई, उन्होंने अपने स्कूल में पढ़ी थी या कहीं कहानी में पढ़ी थी, कि जब इंडिया वॉज इन्वेडेड बाय अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर ने हरमा हमला किया था हिंदुस्तान पे, तो तब जब किंग पोरस को कैद कर दिया गया, डिफीट कर दिया गया, तो तब ये सवाल उठा था कि क्या किया जाए उनका, उनको मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। तो उनको ये बात याद आई, और जो राजकोट साहब की फिल्म थी मेरा गांव मेरा देश में जो सिचुएशन बनी, तो उन्होंने फिर वो वहां यूज किया, मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए।
0: क्या बात है, मतलब देखिए इतिहास से रेफरेंस लेके और उन्होंने उसे एक मॉडर्न गाने में बदल दिया।
1: यस यस,
0: एक तो अच्छा तो हम चलते हैं की भी बड़ी दिलचस्प कहानी है।
1: हाँ, वो बख्शी साहब और जब सेटिंग चल रही थी गाने की, तो काफी वक्त निकल गया, मेरे ख्याल में एक दो दिन कुछ बात नहीं बनी, सेटिंग हो रही थी लक्ष्मी जी प्यारलाल और बख्शी साहब और डायरेक्टर साहब जी ओम प्रकाश जी, और कुछ बात नहीं बन रही थी, कुछ मुखड़ा नहीं बन रहा था, कुछ अंतरे नहीं बन रहे थे, कुछ बन ही नहीं रहा था। जब तो मुखड़ा नहीं बनेगा फिर अंतरे नहीं निकल सकते, क्योंकि अंतरे मुखड़े से ही निकलते हैं। तो बड़े परेशान हो गए, फड़प हो गए वो लोग, और उन्होंने बख्शी साहब ने उठा, या बख्शी साहब उठे या लक्ष्मी जी उठे, उन्होंने कहा भाई बहुत हो गया, अच्छा तो हम चलते हैं। बख्शी साहब ने पूछा फिर कब मिलोगे, तो जब वो जवाब देने लगे तो बख्शी साहब ने उनको रोक दिया, उन्होंने कहा कि रुको रुको, बैठो बैठो, अभी मुझे एक आइडिया है। और वहीं उन्होंने वहीं थर्ड लाइन लिखी, जब तुम कहोगे, और उससे गाना गाने की शुरुआत होती है, अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे, जब तुम कहोगे, आधी रात को, हाँ हाँ आधी रात को, कहाँ वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं।
0: क्या बात,
1: तो ये वहां से वो बात निकली।
0: अच्छा,
1: गाना है अपना, एक बार सुभाष घाई साहब आए थे घर पे
0: जी,
1: उन्होंने बख्शी साहब से कहा कि मैंने नई फिल्म बना रहा हूँ, तो मैं आपको आज आके स्टोरी सुनाता हूँ। तो स्टोरी सुनते सुनते वो रात हो गई और खाने का वक्त हो गया, और खाना वाना खाया, और जब खाना खा के जब हाथ धोने चले गए बख्शी साहब वॉश बेसिन पे, तो हाथ धोते धोते बख्शी साहब ने सुभाष जी घाई साहब को कहा कि एक यार मुझे एक लाइन याद आ रही है, तेरी फिल्म का नाम सौदागर है, मुझे एक लाइन याद आ रही है, सौदागर सौदागर सौदागर, दिल लेकर दिल देकर। वॉश बेसिन में हाथ धोते धोते वो लाइन उनके दिमाग में आ गई। एक और मुझे बड़ा अच्छा किस्सा याद आ रहा है कि एक बार वो बख्शी साहब कहीं गाड़ी में जा रहे थे बम्बई, क्योंकि शायद फादर आ रहे थे बाहर गाँव से, तो वो बम्बई सेंट्रल स्टेशन जा रहे थे उनके अपने पिताजी को लेने के लिए। उनके साथ एक दोस्त था उनकी गाड़ी में, उनके दोस्त अपने दोस्त की गाड़ी में गए थे, क्योंकि तब उनके पास पैसे नहीं थे अपनी गाड़ी खुद की गाड़ी खरीदने के लिए। तो दोस्त की गाड़ी में जा रहे थे और बख्शी साहब बैठे थे बाजू में, दोस्त चला रहे थे, तो वहीं पर रस्ते में कहीं बख्शी साहब ने गाड़ी रोक दी। मतलब रुक रुक रुक, कुछ लिखना है मुझे, और उन्हें कागज पे लिखा कि गाना है अपना मेरी हम सफर का, राह पर इस मोड़ पर कहीं तुम,
0: किसी राह पर किसी मोड़ पर कहीं चल न देना छोड़कर।
1: हाँ, तो वो एक आगे ट्रक जा रहा था और ट्रक के पीछे लिखा था मेरी हम सफर।
0: ओहो,
1: वहां से उन्होंने ये लाइन पकड़ी कि गाड़ी निकल जाएगी, सड़क निकल जाएगी, लोग निकल जाएंगे, मेरा साथ नहीं छोड़ना, मेरे हम सफर।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: दोस्त है उनका हरी मेहरा, उनके दोस्त हैं, जिनके रिकॉर्ड की शॉप थी, अभी भी है स्वीट, तो रोज डेली जाते थे पान खाने खार स्टेशन के बाहर। तो एक बार पान खा के वहां से निकले, और वहां पर एक स्कूल है खार में, सेक्रेड हार्ट स्कूल, स्कूल के स्कूल से आगे आ रहे थे एसवी रोड की तरफ, और सामने से कोई बहुत खूबसूरत लड़की चलती हुई आ रही थी, तो वहीं पर बख्शी साहब ने वापस गाड़ी रोक दी। रुक रुक रुक, मुझे कोई लिखना है। उन्होंने कुछ अपने उनके पास एक जब उनके पास किताब नहीं रहती थी ना, तो वो अपना 555 सीजर पैकेट पे पीछे लिख देते थे लाइनें, मुक्ते जो भी था, क्योंकि पेपर तब तो मोबाइल नहीं था, कुछ लोग हमेशा पेपर लेके नहीं घूमते थे, पेन तो हमेशा रहता था जेब में, राइटर है तो हमेशा पेन लेके घूमते थे। और 3-4-6 महीने बाद जब एक बार ट्रायल हुआ फिल्म का, तो बख्शी साहब ले गए अपने दोस्त को ट्रायल के लिए, चलते कोई नई फिल्म दिखाता हूँ लगने वाली 2 हफ्ते में, वो चले गए फिल्म देखने। और जब वो गाना आया तो बख्शी साहब ने बोला, याद है तेरे को हमने वो खूबसूरत लड़की को देखा था, तूने क्या कहा था, तूने कहा था क्या रूप पाया इस लड़की ने, तो मुझे वहीं पे लाइन स्ट्राइक की थी और मैंने ये गाना लिखा था तब, कि रुक तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, भूल कहीं हमसे ना हो जाए।
0: ओहो, तो इस तरह से बहुत छोटी छोटी जिंदगी की घटनाओं को उन्होंने गीत का रूप दे दिया। कोई एक घटना बताइए, एक फादर के तौर पर कैसे थे बख्शी साहब, पिता पुत्र की कोई घटना याद कीजिए।
1: हजारों घटनाएं हैं, 2 घटनाएं जो हैं, एक तो जब मैं छोटा था तो हमेशा रात को लेट आते थे काम से, क्योंकि 70s में बहुत पॉपुलर हो गए थे बख्शी साहब, 68-64 के बाद बहुत पॉपुलर हो गए थे, जब जब फूल गले रिलीज हो गई थी, मिलन आ गई थी, आराधना आ गई थी, तो ही वॉज वेरी पॉपुलर, वेरी इन डिमांड, तो लिखते भी थे 10-15 घंटे डेली, 10 घंटे लिखना डेली, फिर रात को फिर दोस्तों की पार्टी, फिल्मी पार्टी में जाना, इवेंट्स में अपना अवार्ड फंक्शन में जाना, काफी बार लेट आते थे रात को, हम सो जाते थे, बख्शी डैडी आए घर पे, लेकिन हम तो सोए हुए रहते थे, 1-2 बजे आते थे, 3 कभी 3 बजे आते थे। तो जब मैं बहुत छोटा था, उनकी आदत थी, वो हमेशा आके सर को या बदन को हमारे थपथपाते थे, यू नो लाइक जैसे माँ कैसे लोरी गाती है बच्चे के लिए, वो हमेशा वो बच्चे को थपथपाती है हाथ से, यू नो हाथ के हाथ ऐसे लगा के टप टप करके, तो वो हमेशा रात को आके ही शुड डू दैट फॉर टू मी एंड टू माई ब्रदर टू माई सिस्टर। लेकिन उनके हाथ लगाने से मैं जाग जाता था, जब मैं जाग जाता था वो शर्मा जाते थे और वो चले जाते थे, फिर वो फिर नहीं करते थे वो छोटा कोई लोरी सुनाना या कुछ। तो मुझे याद है कि मैं हमेशा फिर जब आते थे, अगर मैं उठ जाता था तो मैं आंख बंद ही रखता था ताकि उनको पता चल जाएगा तो चले जाएंगे, मैं आंख बंद करके उसका मजा लेता था उनकी उनकी लोरियों का। दूसरी मुझे एक बात याद है कि जब शायद कॉलेज में था, तो मैंने नाश्ता किया और अंडा छोड़ दिया, अंडा नहीं खाया मैंने, तो मेरे डैडी ने कहा कि तेरे को पता है अंडे का भाव क्या है, तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, होगा 50 पैसे 25 पैसे जो भी होगा, 1 रुपया होगा, आई डोंट नो। तो इसे की जब तुम छोटे थे ना, तुम दो भाई दो बहने छोटे थे, तुम्हारी माँ एक अंडा 4 टुकड़े में बांट के तुम चारों को देती थी और खुद नहीं खाती थी ताकि तुमको न्यूट्रिशन मिले, तुम्हारी माँ ने ये प्राइस पे किया एक अंडे का, बिकॉज माय फादर वाज स्ट्रगलिंग फॉर एटलीस्ट 10-15 इयर्स ऑफ हिज करियर इन द बिगनिंग।
0: बिल्कुल।
1: तो तब उनके पास शायद अंडे के भी पैसे नहीं होते थे, तो एक ही अंडा हम चारों को बांटना पड़ता था फैमिली में, तो मेरे फादर ने कहा था कि ये है अंडे की कीमत, तो ये तुम्हारी माँ ने जो अंडे की कीमत दी है ना, वो अंडे की कीमत कभी नहीं भूलना, फूड कभी वेस्ट नहीं करना, खाना कभी वेस्ट नहीं करना।
0: क्या बात है,
1: भले वो एक अंडा ही हो।
0: क्या बात है।
1: इसी बात मुझे बड़ी अच्छी याद है कि एक बार मैं मेरा कॉलेज में किसी के साथ अफेयर हो गया
0: जी,
1: और वो मेरे डैडी की पसंद की नहीं थी, तो मेरे डैडी ने कहा कि मिलना जुलना सब बंद करो, ये सब लव वर्व नहीं चलता, अभी पढ़ाई का वक्त है, पढ़ाई करो। तो मैंने झट से एकदम रूडली उनको एकदम कॉन्फिडेंटली जवाब दिया, मैंने कहा अरे आप तो आनंद बख्शी हो, आपने तो अभी लव स्टोरी में गाना लिखा है, आपने प्रताप में गाना लिखा, जब हम जमा होंगे जाने कहाँ होंगे, आपने लव स्टोरी में कुमार गौरव के लिए कितने अच्छे गाने लिखे हैं, आपने बॉबी में इतना अच्छा लगा गाना लिखा है, आपने रॉकी फिल्म में इतना लव स्टोरी लिखी, अच्छी गाने लिखे, आपने एक दूसरे के लिए कितने अच्छे लव स्टोरी गाने लिखे, अब अभी मेरा वक्त आया तो आप बोल रहे कि यू कैन नॉट मीट हर, अभी तुम्हारा रोमांस का टाइम नहीं है, पढ़ाई का टाइम है
0: जी।
1: तो मुझे डैडी ने कहा कि वो मेरा शौक नहीं है, वो मेरा काम है, काम में और शौक में फर्क होता है, वो मैं जो गाने लिखता हूँ लव स्टोरी के लिए तुम्हारे लिए नहीं लिखता, मैं लिखता हूँ क्योंकि वो स्टोरी की डिमांड होती है, कैरेक्टर की डिमांड होती है, एक सिचुएशन की डिमांड होती है, वो मैं अपनी फैमिली के लिए लिखता, अब तुम्हारा वक्त है स्टडीज करने का, लव स्टोरी में पढ़ने का अभी तुम्हारा वक्त नहीं है।
0: क्या बात है। अच्छा अब मुझे बताइए कि बख्शी

0: साहब की याद में आप कौन सा गाना समर्पित करना चाहेंगे अपनी तरफ से विविध भारती पर?
1: गाने तो बहुत हैं, हजार है। जैसे कि क्या होता है, हर गाना आपको एक जब आप किस मूड में हो उस मूड के हिसाब से आपको कोई गाना अच्छा लगता है।
0: मैं समझ सकता
1: हूं। मुझे याद है एक बार मेरा हार्ट ब्रेक हो गया था, मेरा अफेयर डामल डोल से चला गया था, यू नो, विद अ गर्ल। कॉलेज में था शायद, वो मेरा अफेयर टूट गया था, मेरा बड़ा दिल का बड़ा मुझे दर्द हुआ था। तो मैं कम से कम 2 हफ्ते एक ही गाना सुनता रहा, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आता किनारा मिल गया था। तो मेरे डैडी ने झट से एक बार रूम में आके पूछा था क्या हो गया तेरे को, 2 हफ्ते से एक ही गाना सुन रहा है मेरा, कुछ लफड़ा उड़ा नहीं हो गया लड़की के साथ कुछ? तो मुझे बहुत पसंद है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत चाहेंगे हम अगर तू संग है। क्योंकि काफी वक्त हम जिंदगी में शायद अगर हमारे साथ कोई नहीं होना हम हार मान जाते हैं, तो अगर कोई हो साथ में, माँ हो, बाप हो, लवर हो, बिलवड हो, भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, तो हर एक इंसान को कुछ ताकत चाहिए। तो इसलिए वो गाना मुझे आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट।
0: क्या बात है,
1: ऐसा ही एक गाना है बख्शी साहब का जो मेरे ख्याल में किसी की भी जिंदगी के में काम आ सकता है। और ये गाना है फिल्म अंगार का, मुश्किल में है कौन किसी का, मुश्किल में है कौन किसी का, लेकर अपना नाम कभी तुम खुद को आवाज दो।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: काफी बार क्या होता है, हम जब मुश्किल में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, तो हम दूसरों पे डिपेंड करते हैं, दोस्तों पे, रिलेटिव्स पे, लेकिन काफी बार ये सब भाग जाते हैं लोग, कोई साथ नहीं देता। तो बख्श साहब ने ये कहा था मुझे कि कभी भी तुम जिंदगी में तकलीफ में होगे तो खुद को याद करो हमेशा, दुनिया अपने आप साथ चलेगी तुम्हारे।
0: क्या बात है।
1: लेकिन पहले खुद को याद करो,
0: किसी
1: और को याद करने से पहले, भगवान को याद करने से पहले भी पहले खुद को याद करो। तो ये लाइन आई थिंक ये गाना किसी की भी जिंदगी के काम आ सकता है। मुझे लगता है यही एक अच्छा गाना हो सकता है तो किसी की जिंदगी के काम आ जाए।
0: जी राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बख्शी साहब की याद का दिन और आपने ये लम्हे हमारे लिए यादगार बनाए, बहुत शुक्रिया।

0: से क्या।
1: आनंद बख्शी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उन्होंने हर तरह के हर सिचुएशन के गीत लिखे हैं, और कमाल की बात यह है कि बातचीत को गीतों में बदल देने का हुनर है आनंद बख्शी के पास।
2: सुनो कहा सुना

0: फिल्मी दुनिया के तमाम संगीतकारों के साथ आनंद बख्शी ने काम किया और कोई ऐसा रेडियो स्टेशन दुनिया में नहीं होगा और शायद दुनिया में कोई ऐसा हिंदी रेडियो स्टेशन नहीं होगा जहां से आनंद बख्शी के गाने नहीं बजते होंगे।
1: रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना।

जाए। फिल्मी दुनिया के युग बदलते चले गए, संगीतकारों की पीढ़ियां बदलती चली गईं और आनंद बख्शी का काम बदलता चला गया। जहां उन्होंने चित्रगुप्त के साथ लिखा तो आनंद मिलिंद के साथ भी लिखा, एसडी बर्मन के लिए गाने लिखे तो आरडी बर्मन के लिए भी लिखे, रोशन के लिए लिखे तो उनके बेटे राजेश रोशन के लिए भी लिखे, कल्याण जी आनंद जी के लिए लिखे तो विजू शाह के लिए भी लिखे। यानी संगीतकारों की ही कई पीढ़ियों के साथ बख्शी साहब ने काम किया। फिल्म फेयर पुरस्कारों की बातें करें, सन 1979 फिल्म अपनापन का ये गाना।

बख्शी साहब 30 मार्च 2002 को इस फानी दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए अपने हजारों गाने, और उन गानों का गाने सुनने वाली जनता से अभूतपूर्व लगाव।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गीतकार आनंद बख्शी पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

एक ताजमहल, एक लता मंगेशकर, एक विविध भारती। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: 10 o'clock.
1: FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है। आज 21 जुलाई जन्मदिन है मशहूर शायर और गीतकार आनंद बख्शी साहब का। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम आदमी मुसाफिर है। इस विशेष कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं आनंद बख्शी साहब के सुपुत्र राकेश आनंद बख्शी और उनसे बातें कर रहे हैं राजीव कुमार। एडिटिंग और मिक्सिंग की है अभिषेक कुमार ने, तकनीकी सहयोग दिया है शंभुनाथ और संजीव मुर्मू ने, प्रस्तुत करता है राजीव कुमार और संयोजक विक्रम कुमार रंजन।

0: आनंद बख्शी, एक अजीम शायर, एक महान गीतकार, शब्दों के ऐसे जादूगर सिर्फ याद नहीं आते बल्कि हर वक्त रहते हैं अपने चाहने वालों के दिलों में। आज जन्मदिन है उनका और इस खास मौके पर हमारे साथ हैं आनंद बख्शी साहब के सुपुत्र राकेश आनंद बख्शी। बहुत स्वागत आपका राकेश जी और नमस्कार आपको।
1: राजीव जी नमस्ते और नमस्कार सारे ऑल इंडिया रेडियो प्रसार भारती के सुनने वालों को। आनंद बख्शी जी की जन्म तिथि है आज 21 जुलाई, और मुझे आपका इंट्रोडक्शन बड़ा अच्छा लगा। आप लोग क्या होते हैं, नॉर्मली कहते हैं गीतकार आनंद बख्शी, बहुत रेयरली किसी ने कहा है शायर और गीतकार आनंद बख्शी, क्योंकि वो ऐसे इंसान थे, वो ऐसे लिरिसिस्ट थे और वो ऐसे शायर थे जो हमेशा कहते थे भाई मैं शायर ही नहीं हूं, मैं तो लिरिसिस्ट हूं, मैं तो सिर्फ गीत लिखता हूँ, फिल्मी गीत। मैंने कभी ना शायर होने का दावा किया, ना मैं बनना चाहता हूँ, ना मैं बनने आया था। और जो उनके चाहने वाले हैं, और जो सबसे बड़े उनके चाहने वाले थे साहिर साहब, साहिर साहब ने तो उनको कितने अनगिनत प्रोड्यूसरों और डायरेक्टरों को मिलाया 1960s में और 1970s में भी, और 1980s में भी यश चोपड़ा जी को बोल रहे थे वो कि आप अपना आनंद बख्शी को भी लो कभी, वो अच्छा लिखता है, हमेशा मुझे ही क्यों लेते हो। तो जो लोग कहते थे तब कि आनंद बख्शी शायर नहीं है, शायर तो साहिर हैं, अब सोचो कितनी आयरनिकल बात है कि जिसको वो शायर कहते थे और जिसको वो शायर कहते थे, वो कहते थे कि आनंद बख्शी शायर नहीं है और साहिर शायर है, वो ही शायर साहिर जी आनंद बख्शी को रिकमेंड कर रहे थे 60s 70s 80s में भी। आपने जो शायर कर दिया मुझे साहिर साहब की याद आ गई।
0: लेकिन राकेश जी एक गीत उन्होंने लिखा था फिल्म बॉबी के लिए, मैं शायर तो नहीं मगर मुझे शायरी आ गई।
1: हाँ ये उनका जवाब था उन लोगों के लिए जो क्रिटिसाइज कर रहे थे तब कि आप तो शायर ही नहीं हो, आप तो गीतकार हो।
2: मैं शायर

0: ये राकेश जी सिल्वर स्क्रीन के लिए आनंद बख्शी साहब के लिखे गीतों की संख्या देखिए बेशुमार है। हम रोमांटिक गीतों की बात करें या फिर दर्द भरे नगमों की, देशभक्ति की भावना से भरे गीत हों या फिर जिंदगी के हर फलसफे या फिर पहलू को बयां करने वाले गीत हों, उनके हर गीत लाजवाब हुआ करते। फिल्म इंडस्ट्री के लिए काम करते हुए क्या, एक मैं निजी सवाल कर रहा हूं, अपने घर में भी वो उतने ही फिल्मी थे? घर के सदस्यों और खासकर अपने बच्चों के साथ क्या वो फिल्मी थे या सिर्फ एक अभिभावक एक स्ट्रिक्ट पिता थे?
1: तो मुझे याद आ रहा है कि मैं जब कॉलेज में था तो एक मेरा एक लड़की के साथ रोमांस हो गया था। तो मैं उसको बड़ा घुमाता था, मेरे पास डैडी ने मुझे एक नई मोटरसाइकिल लेके दी थी।
2: अच्छा।
1: तो मैं उसे मोटरसाइकिल में इधर उधर सब जगह घुमाता था शाम को। तो एक बार मैं घर आया तो डैडी ने बोला कि भाई बेटा सुना तेरा कुछ चक्कर शुरू हो गया है। तो मैंने कहा भाई हम तो पंजाबी हैं तो हमें पता है चक्कर का मतलब क्या होता है। जब डैडी बोलते हैं बेटे को भी तेरा कोई चक्कर तो नहीं शुरू हो गया, उसका मतलब है कि रोमांटिक कुछ रिलेशनशिप शुरू हो गया आपका। तो मैंने कहा कि मैं तो इमीडिएटली डिफेंसिव पे चला गया। मैंने बोला नहीं डैडी मेरा तो ऐसा कोई चक्कर वक्कर नहीं किसी के साथ। इसे भाई झूठ मत बोल मेरे से, मैंने तेरे को देखा, मैं दो तीन बार देखा तू उसको घुमाता है काटर रोड पे बैंड स्टैंड पे घुमाता है मोटरसाइकिल पे। तो मैंने बोला भाई अभी मैं पकड़ा गया, मेरी चोरी पकड़ी गई भाई, हम भी रोमांस कर रहे थे कॉलेज के दिनों में। तो उन्होंने बोला देखो अभी सब बकवास बातें हैं, ये सब बंद करो, अभी तुम्हारी पढ़ाई का वक्त है, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। हम जवान थे तो हमें बड़ा गुस्सा आ गया, हमने बोला भाई डैडी आप तो बिल्कुल हिपोक्रेट हो। तो उन्होंने बड़े गुस्से में पूछा मुझे व्हाट यू मीन हिपोक्रेट, कि क्या तुम बड़े बड़े वर्ड सीख के आते हो कॉलेज में स्कूल में, अभी मुझे आप अपने डैडी मम्मी पर ठोकते हो, व्हाट यू मीन हिपोक्रेट, मैंने ऐसा क्या किया जो मैं हिपोक्रेट बन गया तुम्हारे। तो मैंने कहा भाई डैडी ने आपने तो कम से कम 1-2 हजार गाने लिख दिए रोमांस पे, जब हम जवां होंगे जाने कहां होंगे, क्या करें जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, सावन का महीना पवन करे शोर। आप अभी कहते हो अभी आपके बेटे का चांस है रोमांस करने का, तो आप बोलते हो भाई गलत बात है, ये बिल्कुल बेकार बातें हैं। तो ये आप यूरो हिपोक्रेट, आपके गाने कुछ अलग बात कह रहे हैं और आप रियल लाइफ में तो अलग ही हो। तो इसे देखो बेटा मैं एक शायर हूँ, मैं गीतकार हूँ और मुझे गीत लिखने के पैसे मिलते हैं, प्रोड्यूसर मुझे गीत लिखने के पैसे देता है, ये मेरा पेशा है। मैं ये जो गीत लिखता ना ये एक इमेजिनरी कैरेक्टर होते हैं फिल्म में, इमेजिनरी स्टोरी होती है, राइटर होता है, डायरेक्टर होता है, एक्टर होते हैं सारे, एवरीबॉडी इज पेड टू डू द जॉब एंड आई एम ऑल्सो डूइंग माई जॉब, मैं भी नौकरी कर रहा हूँ अपने प्रोड्यूसर के लिए। ये जो गाने ये मैं तुम्हारे लिए नहीं लिखता, ये मैं अपनी फैमिली के लिए नहीं लिख रहा हूँ कि मैं जो लिख रहा हूँ जब तुम जिंदगी में ऐसा करो, ये एक फिल्म की कहानी है, फिल्म का गाना है, अभी तुम ये सब

0: आनंद बख्शी साहब ने अनगिनत रोमांटिक गीत लिखे जो सिनेमा के पर्दे पर काफी सफल रहे और आज भी सदाबहार गीतों की श्रेणी में वे गीत आते हैं। प्यार में आकंठ डूबे ऐसे गीत लिखने की प्रेरणा उन्हें कहां से मिलती थी?
1: पहली बात यह है कि आपने कहा कि उन्होंने अनगिनत रोमांटिक गीत लिखे हैं। रोमांटिक गीतों से मुझे याद आता है कि एक बार एक जर्नलिस्ट ने बख्शी साहब को पूछा था कि बख्शी साहब आपने इतने ढेर सारे हजारों रोमांटिक गाने लिखे हैं, क्योंकि हमारे फिल्मों में ऐसे रोमांटिक सिचुएशन तो आते ही आते हैं हर फिल्म में, तो आपकी तो लाइफ में बहुत रोमांस होगा, आपने तो इतने गाने लिख दिए रोमांस पे और सब अलग अलग गाने हैं, एक भी कोई दूसरे का कॉपी नहीं है, तो बताइए आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा रोमांस है कि आप इतने सारे गीत लिख लेते हैं, इतने 40 साल से आप लिखते आ रहे हैं नॉन स्टॉप। तो बख्शी जी का जवाब था कि बेटा अगर मेरी जिंदगी में रोमांस होता तो मैं कभी रोमांटिक गीत लिख ही नहीं पाता, क्योंकि वो जो चीज आपकी जिंदगी में रह जाती है, वो जो चीज पीछे रह जाती है या वो जिंदगी में थोड़ी कम होती है ना, उसी को तरसता है इंसान आदमी।

0: होगा।
1: राकेश जी,
2: ये फिल्मी दुनिया में आने से पहले ऐसा मैंने सुना है कि आनंद बख्शी साहब का जीवन जो है वो काफी संघर्ष से भी भरा रहा और फिल्मों में एक शायर और गीतकार के रूप में खुद को स्थापित करने की राह भी उनकी बहुत आसान नहीं थी, कई चैलेंजेस थे, थोड़ा बताएंगे इस बारे में।
3: सबसे बड़ा पहला जो चैलेंज उनकी जिंदगी में आया वो था कि उनकी जो माँ है वो 5 साल की उम्र में वो गुजर गई, तो वो एक बहुत बड़ा उनको सदमा पहुंचा था। तो कि उसके बाद फिर उनके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी, तो उनकी दूसरी माँ भी अच्छी थी, लेकिन क्या होता है खुद की एक माँ होती है या कोई चली माँ होती है, थोड़ा फर्क तो हो गई, थोड़ा फर्क होता है, मामूली सा फर्क भी हो, लेकिन बच्चे को वो छोटा फर्क भी ज्यादा फर्क लगेगा, क्योंकि वो छोटी उम्र का है, 6-7 साल का है। तो वो एक उनको एक धक्का लगा था कि मेरी माँ चली गई मुझे छोड़ के। तो इसलिए मुझे याद है जब हम अपनी मम्मी के साथ लड़ते थे ना, हम जब बच्चे थे छोटे थे तो हम बहुत लड़ाई करते थे मम्मी डैडी के साथ, कुछ ना कुछ चाहिए नहीं मिलेगा तो लड़ाई करता बच्चा, क्योंकि माँ बाप ही दो लोग हैं पूरी दुनिया में, पूरी संसार में दो ही लोग हैं जो आपकी हमारी बकवास सुन लेते हैं, माँ और बाप। बाकी कहीं हम बकवास करेंगे तो सीधा थप्पड़ पड़ेगा या घर से निकाले जाए या ऑफिस से निकाले जाएंगे। तो हम जब झगड़ा करते हैं तो डैडी हमेशा बोलते थे, तो डैडी के साथ झगड़ा करते थे तो डैडी को कभी बुरा नहीं मानते थे, लेकिन हम कभी भी मम्मी से झगड़ा करते थे ना तो बहुत बुरा मानते, बहुत गुस्सा हो जाते थे वो, और वो कहते थे कि तुम अपनी माँ से बदतमीजी से क्यों बात कर रहे हो पता है, क्योंकि तुम्हारी माँ जिंदा है, हमसे पूछो जिनकी माँ चली गई छोटी उम्र में कि माँ से कैसे बात की जाती है, तुम्हें माँ की इज्जत ही नहीं है क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने खड़ी है, जिस दिन ये चली जाएगी ना तुम समझोगे माँ की कीमत क्या होती है, माँ की अहमियत क्या होता है, उनका पोजीशन घर में या किसी भी बच्चे की जिंदगी में। देखिए लेकिन ये एक वजह है, क्योंकि माँ हमें आसानी से मिल जाती है, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आज की माँ काफी मदर्स जो है मेट्रो सिटीज में वो नौकरी कर रही है, बिजनेस कर रही है, कुछ कर रही है, तो उनको बच्चों के साथ वक्त कम मिलता है। लेकिन जो हमारे जमाने के लोग हैं उनकी माँ तो बाय एंड लार्ज ज्यादातर घर पे ही, घर उन्होंने घर ही संभाला था। तो जब हमारे पिताजी गुजर गए तो मुझे एहसास हुआ कि माँ तो मिली हमें आसानी से मिल गई, क्योंकि माँ तो हमेशा घर में ही थी, हमें जिनका प्यार नहीं मिला वो थे डैडी। और ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, मैंने किताब लिखी डायरेक्टर्स डायरीज, उसमें मैंने इंडिया के भारत के सबसे बढ़िया गीत जो फिल्म मेकर्स हैं 24-25 फिल्म मेकर्स की मैंने पूरी जीवनी लिखी है उनकी, बचपन से लेकर उनकी पहली फिल्म तक। तो मैं काफी डायरेक्टर को मिला और मैंने एक चीज पाया, वेदर दे वर मेल डायरेक्टर्स या फीमेल डायरेक्टर्स, मैंने एक चीज पाई कि जब वो अपनी मम्मी के बारे में बात करते थे तो दे शुड बी वेरी इमोशनल, लेकिन कई ऐसे डायरेक्टर थे जब वो अपने डैडी के बारे में बात करते थे वो रो पड़ते थे वो। तो मुझे तब एहसास हुआ कि मैं क्यों अपना इमोशनली अटैच हूं अपने डैडी के साथ ज्यादा अभी, क्योंकि हमें डैडी के साथ, क्योंकि हमारे डैडी बिजी होते हैं, बाहर जाते हैं काम पे, जैसे आप आज ऑलरेडी रेडियो में हैं या जहां भी हैं, आप घर से निकलते हो ऑफिस जाते हो, शाम हो जाती है आते आते, कभी कभी तो हम डैडी घर आते तो हम तो सो जाते थे काफी बार, क्योंकि रिकॉर्डिंग खत्म होती है 9 बजे, 10 बजे, 8 बजे, 11 बजे, 12 बजे रात को, तो हम सो जाते हैं, सुबह 6 बजे हम स्कूल चले जाते थे। तो हमें जिंदगी में डैडी के साथ बहुत कम वक्त मिला, तो इसीलिए अब जब मुझे लोग कहते हैं यार तुमने इतनी अच्छी डैडी पे जीवनी लिखी है, तुम अपने डैडी के लिए कितने बातें करते हो, सब जगह आप कहीं भी बुलाते हैं हम आप आ जाते हैं, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि क्योंकि मेरे को मेरे डैडी बहुत कम मिले, और ये मेरी सिर्फ कहानी नहीं है, ये काफी लोगों की कहानी होगी कि उनको अपने डैडी बहुत कम मिलते हैं वक्त, ज्यादा वक्त मम्मी के साथ ही मिल जाता है, तो इसलिए आई मिस हिम मोर देन आई मिस माय मदर, आई लव माय मदर एज मच, माँ से भले मुझे ज्यादा या कम प्यार हो लेकिन डैडी को मैं ज्यादा मिस करता हूँ, क्योंकि बहुत कम वक्त मिला हमें उनके साथ, और जो चीज जिंदगी में कम मिलती है वो हमेशा याद रह जाती है, ज्यादा करीब हो जाती है हमारे दिल के। देखिए जब विभाजन हुआ ना तो वो 17 साल के थे, रावलपिंडी में भारत का विभाजन से पहले भारत था, तो रावलपिंडी में उनको पता चला कि जो हमारा मोहल्ला है यहाँ पर अटैक होने वाला है, और अटैक बहुत बुरे होते थे तब, बहुत बुरा हाल हो जाता था औरतों का, धन दौलत का, घर का, दुकान का, तो उनको मौका मिला निकलने का इमीडिएटली यहां से भागो, तो उन्होंने एकदम इमीडिएटली डिसाइड किया कि अभी के अभी निकलना है, कोई सुबह तक वेट नहीं करना है क्योंकि रात को शायद आ जाएं लोग, तो जिसके जो हाथ लगा हो उन्होंने हाथ में थामा और भागे, और बहुत लकी थे वो, बहुत लकी थे क्योंकि उनके जो ग्रैंडफादर थे, दादाजी थे, वो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस थे पंजाब जेल के, पूरे पंजाब के जेल, अनडिवाइडेड पंजाब के जितने जेल थे उनके अंडर थे।
2: अच्छा।
3: तो वो बहुत लकी थे कि उनको सेफली एयरपोर्ट तक लेके गए पुलिस, और वहां पर एक डकोटा प्लेन खड़ा था, उस डकोटा प्लेन में काफी रेफ्यूजीज थे, उसमें डैडी की फैमिली भी, पूरी फैमिली, दरोगा जी, उनके बाबूजी, उनके डैडी के पिताजी, बाबूजी, सारे लोग उसमें इकट्ठा हुए प्लेन में, और वो बाई प्लेन दिल्ली आए। रेफ्यूजी कैंप पहुंचे। जब रेफ्यूजी कैंप पहुंचे तो तीन चार दिन में सेटल हो गए, तो वहां फिर सबको पूछा भाई तुम क्या लाए, तुम क्या लाए, जो जो कुछ ले आया। तो जब डैडी को पूछा कि बेटा तू क्या लाया, तू वहां से क्या घर से क्या उठा के लाया, तो उन्होंने दिखाया कि वो क्या लाया, तो वो शौक हो गए सब जो बुजुर्ग थे, बड़े थे बाबूजी और दादाजी, और उनको खूब डांट पड़ी कि तू घसा है, बेवकूफ है, तू क्या ले आया उठा के, किसी के काम आने वाला, कुछ और चीज उठा के लिया था, हमारे काम आती इधर दिल्ली में, तो क्या ले आए थे वो रातों रात, जब ऐसा वक्त आया जब आपको घर छोड़ के भागना पड़े। मम्मी की फोटोज, उनकी जो माताजी थी उनकी जो फोटोज थी वो उठा के ले आए, खाली वो सर एल्बम में उठा के ले आए, जितने एल्बम थे घर में सारे एल्बम उठा के ले आए। तो उन्होंने कहा कि देखो बाबूजी अभी हम काम करने से पैसे आ जाते हैं घर में, लेकिन अगर माँ की फोटो पीछे रह जाती तो मैं माँ को कैसे याद करता, क्योंकि मैं तो 4-5 साल की उम्र था, मम्मी गुजर गई, माँ गुजर गई, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है मम्मी के बारे में। तो मुझे जब मम्मी का ध्यान आता है तो मैं माताजी की फोटोज देख के ही मेरा दिल बहलाता हूँ, अगर ये फोटो रह जाती तो मैं अपनी जिंदगी कैसे काटूंगा, पैसे तो आ जाएंगे नौकरी करके, जिंदगी कैसे कटेगी मेरी माँ की फोटो के बगैर। ये जो इंसान 17 साल का बच्चा जो रातों रात भागने के वक्त लाइफ डेंजर में है, फैमिली डेंजर में है, वो अगर माँ की तस्वीर लेके निकला है घर से, यही एक इंसान है जो गाना लिख सकता है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी प्यारी है माँ, ये सब यही इंसान लिख सकता है सर।

0: न सिर्फ एक शायर और गीतकार के रूप में बल्कि कई गीतों को स्वर देने में भी आनंद बख्शी साहब का जवाब नहीं रहा। कई गीतों की खूबसूरती तो उनकी वजह से ही है जिसमें साथी कलाकार के साथ उन्होंने स्वर दिया है। वे चाहते तो गायन का रास्ता भी चुन सकते थे, लेकिन चुनिंदा गीतों में ही उन्होंने स्वर दिया। राकेश जी, इस संबंध में थोड़ी चर्चा करेंगे आप?
1: पहली बात ये कि बख्शी साहब को जब भी किसी ने उनके काम की तारीफ की तो हमेशा कहते थे, भैया ये सिर्फ मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये टीम वर्क होता है। इसमें एक संगीतकार और एक सिंगर का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। और काफी वक्त इतने बड़े बड़े एक्टर हमारे फिल्म की स्क्रीन पे हमारे गीत गाते हैं तो उसकी वजह से भी फर्क पड़ता है। जैसे अगर मेरे गाने लोगों को पसंद आ रहे हैं जो राजेश खन्ना ने फिल्म में गाए हैं तो वो राजेश खन्ना सुपरस्टार है इसलिए वो ज्यादा पसंद आए हैं। और उन्होंने एक और बात कही है जो मैंने आज तक किसी से किसी के मुंह से नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि मेरे अगर गीत आपको पसंद आ रहे हैं तो उसकी एक और वजह है। उसकी दूसरी एक वजह ये है कि जो वो गीत अगर आप सोचते हो कि गीत मैंने बहुत अच्छा लिखा है तो उसकी वजह क्या, उसकी वजह है कि वो जो फिल्म का डायरेक्टर है वो अच्छी कहानी मेरे पास लाया। उसने मुझे बहुत अच्छी कहानी बढ़िया कहानी से इंस्पायर किया। उसने अपनी जिंदगी की कोई 2-3-4-5 किस्से सुनाए मुझे उस कहानी से रिलेटेड जो मुझे इंस्पायर किए। वो फिल्म का जो राइटर है और जो फिल्म का डायरेक्टर है उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे काम में, मेरे काम में एज ए लिरिसिस्ट। तो मैं उनको भी दाद देना चाहता हूँ कि अच्छी कहानियों से ही अच्छा लिरिक्स निकलेगा।

0: बख्शी साहब के लिखे गीतों में हम देखते हैं कि लोक धुनों की प्रधानता होती है, माटी की खुशबू की झलक मिलती है। ये राकेश जी, ये एक संयोग था या फिर एक अनूठा प्रयोग?
1: सर, जो बच्चे ने 17 साल जिंदगी के एक गांव में गुजारे हों, जिस गांव में पवन बहती है, नदियां बहती हैं, मिट्टी से जुड़ा हुआ, पवन से जुड़ा हुआ, वर्षा से जुड़ा हुआ, मातृभूमि से जुड़ा हुआ, खेत खलियानों से जुड़ा हुआ, वो ही इंसान लिख सकता है ना, मेरे देश में पवन चले पुरवाई मेरे देश में।

0: में।
1: राकेश जी, आनंद बख्शी साहब के लिखे गीतों से जुड़ा कोई रोचक और दिलचस्प बातें आप हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहेंगे?
2: सर, जब हम स्कूल में थे ना, तो काफी बार हमें बड़े मजे लिए डैडी के नाम के, क्योंकि हमारे स्कूल में दो तीन हमारे प्रोफेसर जो डैडी के बहुत बड़े फैन थे, तो भले दूसरों को गुस्सा करे, मुझे गुस्सा नहीं करते थे। और ऐसे भी टीचर थे जो गुस्सा आता था कि ये आनंद बख्शी का बेटा है और ये ऐसे बिहेव कर रहा है, तो उसको ज्यादा दो चांटे ज्यादा मारने चाहिए। तो हमें दो चांटे ज्यादा भी पड़े हैं और हमें प्यार भी मिला है उसी वजह से। तो ये एक बड़ा हमें फायदा भी हुआ, थोड़ा नुकसान भी हुआ आनंद बख्शी का बेटा होके। अभी बीच में मुझे याद है कि कुछ तीन चार साल पहले मैं गाड़ी चला रहा था, संडे का दिन था, और मैंने सिग्नल लेफ्ट टर्न था, लाल सिग्नल था, मैंने लाल सिग्नल तोड़ के लेफ्ट टर्न ले लिया और आगे जाके मुझे एक हवलदार ने रोक दिया। तो मेरी आदत है, मैं जब भी कुछ गलती करता हूं तो मैं उसका हमेशा फाइन भरने के लिए रेडी रहता हूं। तो मैंने अपना पर्स खोला और मैंने 100 रुपए का नोट निकाला, मैंने उसको बोला कि पर्ची काटो, मेरा फाइन ले लो, क्योंकि मैंने वाकई में गलती की है, मैंने सिग्नल लाल सिग्नल तोड़ा है। तो उसने बोला ठीक है सर, आप फाइन बाद में भरना, पहले आप मुझे अपना लाइसेंस दिखाइए, लाइसेंस है कि नहीं आपके पास। तो मैंने अपना लाइसेंस निकाल के उसको लाइसेंस दिया, तो लाइसेंस में उसने नाम पढ़ा मेरा और मुझे कहा आपका नाम राकेश आनंद बख्शी है, ये आनंद बख्शी कौन है? तो मैंने कहा ये मेरे डैडी थे, माई फादर गीतकार आनंद बख्शी। उसने कहा गीतकार आनंद बख्शी? सर हाँ, गीतकार आनंद बख्शी। इसे ठीक है, तुम जाओ जाओ जाओ, कोई फाइन वाइन नहीं आपके लिए, जाओ। तो मैंने गाड़ी बंद की और मैंने बोला नहीं भाई, तुम ऐसा मत छोड़ो, मुझे अपने डैडी के नाम पे मत छोड़ो, ये मैंने गलती की है। और क्या ना सर, एक उम्र आती है ना, वेन यू रियलाइज किया ये जो फाइन भरते हैं ना हम, ये वेस्ट नहीं जाता, ये कहीं किसी का स्कूल बनता है, कहीं किसी हॉस्पिटल में लग जाता है, कहीं किसी गरीब को अनाज मिल जाता है। तो ये हमें फाइन की चोरी नहीं करनी चाहिए, फाइन से ही आदमी सीखता है, क्योंकि जब पैसे जेब में से निकलते हैं, जब लक्ष्मी जेब से निकलती है, तभी आदमी सीखता है लेसन। तो इसे अरे बाबा मैंने आपको कहा ना, आपको नहीं भरने का फाइन, आप जाओ। तो मैंने और मैं गुस्सा आ गया, मैं गाड़ी से उतर के वो लेफ्ट साइड पे गया, मैंने बोला देखो भैया मैं फाइन भरना चाहता हूँ यार, मेरा मेरे को देश को कंट्रीब्यूशन करना है, ये मेरी गलती है, और मैं तुमने मुझे माफ कर दिया लेकिन मैं अपने आपको माफ नहीं करूंगा। इसे अरे बाबा अभी तुमको मैं क्या समझाऊं, तुम्हारे पिताजी के गानों ने मेरे को कितना हेल्प किया मेरी जिंदगी में, मैं तुमको बता नहीं सकता हूँ, उसीलिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ, मेरा बहुत कर्ज है आपके पिताजी पे, आपके पिताजी के गानों ने मेरी बहुत सहायता की है मेरी जिंदगी को। सर ये 40-45 ईयर्स का होगा वो पुलिस वाला, उसने मुझे जाने दिया सर, वो बिल्कुल मेरे से फाइन नहीं लिया, उसने एक रुपया नहीं लिया।

0: नहीं।
1: राकेश जी एक बात बताएंगे, आनंद बख्शी साहब को फिल्मों में सिचुएशन के हिसाब से गीत लिखना ज्यादा पसंद था या फिर उनके लिखे गीत चाहे वो रोमांटिक हो, दर्द भरे हो या फिर हमारे जीवन की फिलॉसफी से जुड़े हुए हो, फिल्म मेकर्स को पसंद आते थे और फिर फिल्म निर्माता उन गीतों को अपने फिल्म के लिए सेलेक्ट कर लेते थे?
2: राजीव जी ज्यादातर जो गीत हैं वो फिल्म के लिए ही लिखे जाते हैं क्योंकि वो गीतकार थे, मतलब फिल्म के गीत स्टोरी के हिसाब से गीत लिखना। लेकिन काफी बार ऐसा हुआ कि उन्होंने कोई गीत लिखा है अपने खुद के लिए, अपनी खुद की फिलॉसफी, खुद का इमोशन, खुद के सर्कमस्टेंसेस, और वो फिर कभी कहानी सुनी तो उससे जुड़ गए कि आया ये मेरा जो लिखा हुआ है यहाँ पर काम आ सकता है। जैसे कि वो गाना है, मैं यहाँ अजनबी हूँ, मैं जो हूँ बस यही हूँ, जब जो फूल खिलेगा। वो जब बम्बई में आते तो ना इधर कोई पहचान वाला, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई दोस्त, ना कोई गुरु, कुछ नहीं, कोई नहीं। नाराज होकर वापस चले गए थे पहली बार, 6 साल के बाद वापस आए थे। तो पहली बार जब वापस चले गए तो उन्होंने एक गीत लिखा था अपने लिए, खुद के लिए नज़्म लिखी थी, यहाँ मैं बस अजनबी हूँ, मैं जो हूँ बस यही हूँ। तो जब कहानी सुनी जब जब फूल खिलेगी, उनको लगा कि ये गीत, ये नज़्म मेरी इस फिल्म में आ सकती है, जुड़ सकता है इस फिल्म के साथ।

0: कोई और दूसरा गीत राकेश जी याद आ रहा है आपको?
1: मैंने पूछा चांद से, देखा है कहीं मेरे यार सा हसी, चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं, वो खुद अपने शौक के लिए लिखा था। अली खान साहब ने सुना तो उन्होंने बोला ये फिल्म में मैं यूज करूंगा इस गाने को। पर वो जो गाना वो एक्चुअली एचडी बर्मन साहब ने उसकी धुन बनाई थी और उसको रिकॉर्ड भी किया था, लेकिन फिर 20 साल के बाद दुल्हा फिल्म में वो गाना यूज किया गया, फिर उसको आर डी बर्मन साहब ने नया ऑर्केस्ट्रा पे सेट किया था उस गाने को।

0: ये राकेश जी, एक्टिंग की ट्रेनिंग होती है, डांस की ट्रेनिंग होती है, जो संगीत की साधना करते हैं उनकी भी ट्रेनिंग होती है, लेकिन उम्दा गीतों को लिखने के मामले में क्या आनंद बख्शी साहब ने कोई ट्रेनिंग ली थी, या उनके स्वभाव में ही गीतों का सृजन रचा बसा था?
1: उनकी जो ट्रेनिंग थी ना गाने लिखने की, वो आर्मी में शुरू हो गई थी।
2: अच्छा।
1: तो जब आर्मी में थे तो जब फिल्म देख के आते थे,
2: हाँ,
1: तो फिर वापस बैरिक्स में आके उस फिल्म की पूरे गाने अपने शब्दों में लिखते थे कि अगर मैं इस फिल्म का गीतकार होता,
2: हाँ,
1: तो मैं क्या गाने लिखता इस सिचुएशन पे।
2: हाँ।
1: तो वहां से उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई।
2: सुना वो फटाफट गाने भी लिख लेते थे।
1: हाँ, कभी कभी 8 मिनट में, कभी 15 मिनट में, कभी 2 हफ्ते में, कभी 3 हफ्ते लग जाते थे। तो कभी कभी वक्त लग जाता था, कभी कभी इमीजिएटली लिखे जाते थे गाने। जब वो इंडस्ट्री में आए थे तो एसडी बर्मन, जब गाने लिखने उन्होंने शुरू किए तो एसडी बर्मन के साथ काम किया था।
2: हाँ।
1: तो एसडी बर्मन ने उनको एक बात कही थी जो उनके बहुत काम आई एज ए गीतकार, के बख्शी कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो ध्यान से, और कहानी को याद रखो गाना लिखते हुए, क्योंकि गाना कहानी से ही निकलेगा। अभी जैसे कि एक फिल्म है मिलन, मिलन में गाना था, आज दिल पे जोर कोई चलता नहीं, मुस्कुराने लगे थे मगर रो पड़े। वो गाना फिल्म में क्यों नहीं है? गाना फिल्म में था, पहले हफ्ते में गाना फिल्म में था, लेकिन जब बख्शी साहब ने फिल्म देखी पहले दिन प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ, तो उन्होंने फिल्म खत्म होने के बाद प्रोड्यूसर को बोला कि भैया ये गाना निकाल दो फिल्म से। तो उन्होंने कहा, पूछा वाई, क्यों? उन्होंने कहा क्योंकि ये कैरेक्टर को सूट नहीं करता। फिर उन्होंने प्रोड्यूसर को बुलाया डायरेक्टर ने कि बाबा ये तो कह रहे हैं कि ये गाना निकाल दो। तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने बोला, बोले गाना तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल फिट बैठता है सिचुएशन पे, हमें तो बहुत पसंद है गाना, बहुत इमोशन गाना है, बिल्कुल सही जगह पे आता है और सही लफ्ज है इसके। इसे बख्शी साहब ने कहा ये लफ्ज सही नहीं है, क्योंकि इसमें जो मैंने जो वर्ड्स यूज किए हैं वो हाई लिटरेचर के वर्ड्स हैं, और ये लड़की गाना गा रही है फिल्म में एज ए कैरेक्टर, वो उसका ये लिटरेचर बैकग्राउंड नहीं हो सकता इसका, लोगों को लगेगा कि ये कैरेक्टर गाना नहीं गा रही है, ये गीतकार ने गाना लिखा है।
2: जी।
1: वो मेरा गाना अगर गीतकार जैसा लगे कि हाँ। गीतकार ने लिखा है तो हाँ। मैं फेल हो गया एज ए लिरिसिस्ट। मेरा गाना सुन के लोगों को लगना चाहिए कि कैरेक्टर ही गा रहा है ये गाना, इस कैरेक्टर के जबान से निकल रहा है, उसकी तबीयत से निकल रहा है ये गाना। तो फिर वो गाना एक हफ्ते के अंदर फिल्म से निकाला गया।

0: राकेश जी, अगर इसी तरह का कोई वाकया किसी और फिल्म से आपको याद आ रहा हो तो थोड़ा शेयर करें।
1: अभी मुझे फिल्म का नाम याद नहीं है, लेकिन वो फिल्म देख के आए और डैडी बहुत नाराज थे। वो फिल्म लगने से पहले हमने फिल्म देखी थी, ट्रायल देखा था फिल्म का, तो डैडी बहुत नाराज और दुखी थे। तो मैंने बोला क्या हो गया आपको, इतनी अच्छी तो फिल्म है ये, आपको क्यों पसंद नहीं आई? इसे नहीं, मुझे फिल्म तो पसंद आई है लेकिन मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो मैंने बोला क्या गलती होगी आपसे? ईश्वर की वो जो फिल्म में जो कैरेक्टर है गाना गा रहा है, वो मैंने कैरेक्टर का उसको समझा ही नहीं हूं मैं बराबर, क्योंकि वो जो डायरेक्टर है वो साउथ का डायरेक्टर था। वो जब भी मुझे कहानी सुनाने बंबई आया था घर पे, तो उसने मुझे हमेशा जो कैरेक्टर का नाम है वो मिस्टर बच्चन बोल के कहा, मुझे कभी भी कैरेक्टर का नाम नहीं बताया। और मैंने भी, मेरी गलती ये है कि मैंने कभी उनसे कैरेक्टर का नाम नहीं पूछा। मैंने हमेशा वो गाने जो लिखे फिल्म के मिस्टर बच्चन सुन के उस कैरेक्टर के गाने लिखे। और मेरी गलती ये हुई है कि जो कैरेक्टर है वो मुस्लिम है और मैंने गाना लिख दिया जितनी भरी अभी राम ने उतना चले खिलौना। अगर मुझे पता था कि ये मिस्टर बच्चन का कैरेक्टर मुस्लिम कैरेक्टर है, तो मैं अपने हिसाब से एक मुस्लिम एनालॉजी या मुस्लिम की कोई क्लांग की कोई जो होती ना एनालॉजी, उसको एग्जांपल यूज करके सिमिलर गाना लिख लेता। तो वो उन्होंने अपनी गलती समझा कि आई कुड हैव यूज इस्लामिक एनालॉजी फॉर द सॉन्ग इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ सनातन धर्म हिंदू एनालॉजी।

0: आनंद बख्शी साहब के लिखे गीतों की तादाद काफी बड़ी है और उनके लिखे हर गीतों की खूबसूरती के तो फिर क्या कहने। हर गीत अपने आप में उम्दा, अपने आप में खूबसूरत और लाजवाब। इन्हीं खूबसूरत गीतों में कोई ऐसा गीत जिसे आप सुनना और गुनगुनाना पसंद करते हो?
1: राजीव जी, ऐसा होता है जब चीज खाते हैं तो मूड के हिसाब से खाते हैं। कभी हमें दिल करता है हम डोसा खाएं, कभी दिल करता है हम लड्डू खाएं, कभी दिल करता है हम पेड़ा खाएं, कभी दवाई का वक्त आ जाता है दवाई खानी पड़ती है। तो ऐसा है ना कि गाना वही आपके जहन में आएगा, दिमाग में आएगा, जो आपका जो मूड हो, इमोशनल स्टेट हो, आपकी जिंदगी की क्या सिचुएशन है। तो जैसे कि कोई तकलीफ वाली सिचुएशन हो, चैलेंजिंग सिचुएशन हो, तो एक गाना मुझे पसंद आएगा जो जैसे कि

गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है। अगर राखी का दिन है तो सब जगह एक ही गाना बजता है, फूलों का तारों का सबका कहना है, तो आपको पसंद आएगा। या कभी अगर आपको फील होता है कि आप लोनली हैं, आप अकेले हैं जिंदगी लाइफ में, तो दूसरा गाना याद आएगा, तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा।

0: राकेश जी, हर मूड, हर भाव, हर सिचुएशन पर उम्दा गीत लिखने वाले आनंद बख्शी साहब और उनके गीत हर किसी को प्रिय हैं और बख्शी साहब हर किसी के दिल में हैं। आकाशवाणी हजारीबाग के श्रोताओं की बात करें तो हम हर रोज देखते हैं कि फरमाइशी गीतों के प्रोग्राम में आनंद बख्शी साहब के लिखे गीतों की फरमाइशें ही सबसे ज्यादा होती हैं। आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए आपकी ओर से कोई संदेश?
1: आकाशवाणी प्रसार भारती के सुनने वालों को एक में कहानी सुनाना चाहूंगा। बहुत साल पहले 1990s की बात है, मैंने एक बार डैडी को पूछा कि डैडी आपके पास कम से कम 40 फिल्म फेयर नॉमिनेशन है, फिल्म फेयर अवार्ड के कम से कम 42-44 नॉमिनेशन है और आपके पास 4 फिल्म फेयर अवार्ड है, तो इतना फर्क क्यों है? 44 नॉमिनेशन है और 4 अवार्ड है। तो उन्होंने कहा, देखो बेटा, ये जो फिल्म फेयर अवार्ड है ना, या कोई भी अवार्ड हो, लायंस क्लब अवार्ड हो, फिल्म फेयर अवार्ड हो, या कोई भी सम्मान हो ना, वो उसकी एक एक्सपायरी होती है, वो आता ही एक एक्सपायरी डेट से, जैसे हमारा शरीर है, उसका एक एक्सपायरी डेट होती है। लेकिन मुझे जो सम्मान चाहिए, जो मैं अपनी अगली जिंदगी में ले जाऊंगा, अगली बर्थ में ले जाऊंगा, अगले जन्म में ले जाऊंगा, वो मुझे ऑलरेडी मिल गया है। तो मुझे ये अवार्ड से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये अवार्ड घर सजाने में काम आएंगे मेरे जाने के बाद, इससे आप घर सजा सकते हो। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कौन सी सम्मान की बात कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले मुझे एक शख्स का चिट्ठी आई थी, वो छोटे से गांव का शख्स था और उसने मुझे चिट्ठी लिखी थी कि मैं जिंदगी से निराश हो गया हूं और मेरी फैमिली भी डिस्ट्रॉय हो गई है, हमारा घर नहीं रहा, मेरी फैमिली नहीं रही, हम बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी जिंदगी का अंत कर दूं, इस शरीर का अंत कर दूं। तो हमारे गांव के पास एक रेलवे ट्रैक है, वहां से फास्ट ट्रेन निकलती है जो हमारे गांव में रुकती भी नहीं है। तो मैं वहां जाके उस पटरी पर जाके लेट गया और मैंने सोचा कि चलो अभी गाड़ी आएगी और काम कर जाएगी, मेरा काम तमाम हो जाएगा। तो मैं जाके लेट गया। जब मैं लेटा हुआ था तो उस रेलवे ट्रैक जो है उसकी जो सबसे करीब घर था, उस घर में रेडियो बज रहा था, तो आकाशवाणी ही चल रहा होगा ना। उस रेडियो में एक गाना बज रहा था और वो गाने के शब्द थे, गाड़ी का नाम ना कर बदनाम, पटरी पे रखे सर को, हिम्मत ना हार, आ हो चल सवार, आ लौट आए घर को, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। तो वो शख्स वहां से उठा, उस पटरी से उठा और तभी वहां से गाड़ी निकली सुपरफास्ट, और उसने घर आके फिर आगे जाके चिट्ठी लिखी उस गीतकार को जिसको उन्होंने शहीद दिया, अपना क्रेडिट दिया अपनी जिंदगी बचाने का। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा ये सम्मान है, मैंने गीत लिखा था, मुझे पैसे मिले थे इस गीत को लिखने के लिए और मैंने कहानी से जुड़ के उस गीत को लिखा, जो मेरी जिंदगी का अभी सफर है वो भी वही है ना, गाड़ी बुला रही है, क्योंकि मैंने इतने डिफिकल्ट टाइम देखे हैं जब से हम वहां से निकले, रावलपिंडी से निकले और यहाँ तक आए, और फिर बंबई में काम ढूंढने में इतनी जो मुझे स्ट्रगल करनी पड़ी, वो भी वो गाना ही है ना, कि गाड़ी बुला रही है, हर स्टेशन एक स्ट्रगल होता है, हर स्टेशन एक डेस्टिनेशन होता है, और हमें हिम्मत नहीं आनी चाहिए, सूरत गया तो उगेगा भी वापस सुबह। तो ये वो सम्मान है जो मैं अगले जन्म ले जाऊंगा, ये जो अवार्ड है ना ये यही रह जाएंगे पीछे, और वो जो सम्मान उस चिट्ठी ने मुझे दिया है ना, वो मेरे

आत्मा के साथ जाएगा बेटा, तो तुम ऐसा काम करो लाइफ में जो तुम्हारे आत्मा के साथ जाए और घर में ना रह जाए। तो आपने आकाशवाणी की बात कही तो मुझे ये याद आया इंसिडेंट, क्योंकि ये आकाशवाणी से ही जुड़ा है।

0: तो राकेश बख्शी साहब, आज के दिन, आज इस खास दिन आपने इतनी बातें शेयर की अपने पिता आनंद बख्शी साहब के बारे में और हमारे श्रोताओं के साथ शेयर किया, इतना वक्त दिया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: राजीव कुमार जी, आपका भी धन्यवाद और आकाशवाणी प्रसार भारती का भी धन्यवाद, और सुनने वालों ने भी तो मुझे वक्त दिया है। हाँ। सिर्फ मैंने वक्त नहीं दिया सर, आपने हाँ। भी तो मुझे वक्त दिया है। बख्शी साहब के चाहने वाले भी तो उनको वक्त दे रहे हैं अपनी जिंदगी का, उनके गाने हाँ। सुन के, तो हमें हमारा धन्यवाद बनता है आप सबको।
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर।
1: धन्यवाद सर, धन्यवाद।
0: ओके, थैंक्स अ लॉट।

रंग तरंग कार्यक्रम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूं। मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं पंकज उधास की आवाज से।

0: छाया गांगुली के स्वर में आप सुन रहे थे महादेवी वर्मा का लिखा ये गीत। संगीत था जयदेव का, ये फिल्म का नाम था त्रिकोण का चौथा कोण। विविध भारती से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
3: एक और आ गया।
2: एक और आ गया।
4: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध

0: खीरे। मन्नाडे के स्वर में ये गीत अभी आप सुन रहे थे, रचना थी श्याम सागर की।
1: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
2: वो तेरे प्यार का।
1: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
3: मुबारक हो सबको समाये सोहा।
1: विविध भारती लेकर आ रहा है 2 खास कार्यक्रम।
4: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
1: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
5: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास, एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
1: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे 2 गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: है।
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
6: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
5: विचारा,
7: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
6: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक,
7: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
6: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
8: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर, सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
7: साथ ही देश विदेश की ताजा

0: खबरें और रोचक जानकारी
1: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
0: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।
2: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आइए अब सुने चंदन दास की गाई गजल। कलाम है निदा फाजली का।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने क्यों
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

0: मंत्री गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
1: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिलकर के करें।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन मुक्त व्यापार समझौतों के बारे में भी बात की जो भारत ने कई देशों के साथ किए हैं। मंगल मिलन नाम से आयोजित बैठक के दौरान एनडीए के सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री होने पर बधाई प्रस्ताव पारित किया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्ष से सदन चलाने में सहयोग करने का आग्रह किया लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से बात की। उन्होंने नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग दुर्घटना के बचाव कार्यों के बारे में जानकारी ली। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री तमांग ने बताया कि प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। सिक्किम के मुख्यमंत्री ने राज्य के प्रति प्रधानमंत्री के अटूट समर्थन, गहरी चिंता और मजबूत एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त किया। इस बीच सिक्किम में एनएचपीसी तिस्ता पनबिजली परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। नामची जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अब तक 9 शव बरामद किए जा चुके हैं। सुरंग के अंदर करीब 25 लोगों के फंसे होने की आशंका है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सिक्किम में निर्माणाधीन सुरंग दुर्घटना में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन भारत की पहली डेंगू वैक्सीन चोडेंगा के विपणन की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश में डेंगू की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है। ये भारत में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है। इसे 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों में डेंगू की रोकथाम के लिए मंजूरी दी गई है। इस वैक्सीन को पहले ही 42 देशों में स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय आतंकवादी संगठन आईएसआई की भर्ती मामले में बंगलुरु में 8 परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रवर्तन एजेंसी ने कहा कि आरोप पत्र से पता चला है कि आरोपी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन से जुड़े थे और बंगलौर के भोले भाले युवाओं को आईएसआईएस में शामिल होने के लिए प्रेरित कर कट्टरपंथी बना रहे थे। भारतीय शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर के सत्र में 0.3% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स 289 अंक गिरकर 77,420 पर और निफ्टी 72 अंक गिरकर 24,167 पर पहुंच गया। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से शुरू हो गई है। इस समय महिला सिंगल्स के पहले दौर में भारत की देविका सिहाग और पुरुष सिंगल्स में एसएस प्रणय अपने अपने मुकाबले खेल रहे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन यादों की महफिल। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। आज का ये पूरा कार्यक्रम जाने माने गीतकार आनंद बख्शी के नाम।

0: अनुरोध फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था।
1: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
2: वो तेरे प्यार का।
1: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
3: मुबारक हो सबको समाये सोहा।
1: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
4: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
1: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
5: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
1: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: है।
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनो जी सुनो हमारी भी सुनो।
5: तो दोस्तों आज है 21 जुलाई और शाम 4 बजे आनंद बख्शी के बेटे राकेश बख्शी से बातचीत सुन लीजिएगा। फिलहाल आप आनंद बख्शी के लिखे गाने सुन रहे हैं इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम है यादों की महफिल। फिल्म आपकी कसम, किशोर कुमार की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

अमर प्रेम फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। शब्दकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार राहुल देव बर्मन। आज का ये पूरा कार्यक्रम गीतकार आनंद बख्शी के नाम है। सुनिए मर्यादा फिल्म का गाना मुकेश की आवाज में, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

0: मोम की गुड़िया फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और आनंद बख्शी की आवाजों में, रचना थी आनंद बख्शी की।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
2: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

चलते चलते एक गाना और सुन लेते हैं दुश्मन फिल्म का। ये आन मिलो सजना फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें थी, आनंद बख्शी के बोल थे। अब सुनिए जगजीत सिंह की आवाज में ये गीत, संगीतकार हैं उत्तम सिंह, फिल्म दुश्मन, रचना आनंद बख्शी की।

दुश्मन फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है। हम बोल रहे हैं विविध भारती से, सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं आज का सुरीला सफर कार्यक्रम। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, सुरीला सफर कार्यक्रम में हर रोज हम एक इबारत या टेक्स्ट फेसबुक पर पोस्ट कर देते हैं, विविध भारती के फेसबुक पेज पर। इसमें वो शब्द समाये होते हैं जिन पर आधारित गाने इस कार्यक्रम में शामिल किए जाते हैं, और आज की जो इबारत है वो हम आप तक पहुंचा दें। वैसे जो हमारे श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज पर सक्रिय हैं, उन्होंने ये इबारत पढ़ ली और टिप्पणियां भी लगातार साझा कर रहे हैं। इबारत यूं है कि बचपन में जब पापा जल्दी आते तो एक गुड़िया साथ लाते थे, तो लगता था जैसे पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में सिमट आई हो। फिर दुनिया बड़ी हुई, समय और मौसम बदला, साथ मिला सजना का, नसीब खुशियों से भर गया। पिया का इंतजार करना भी सीख लिया मन ने, कभी घटा बनकर यादें बरसी, कभी गुल और बुलबुल की तरह मोहब्बत ने गीत सुनाए। दिल ने किया सवाल, छोड़कर प्यार का दामन भला कहां जाए, तो एहसास आज भी साथ है वो। जुल्फों की छांव हो या मोहब्बत की महक, दिल की दुनिया इन्हें खूबसूरत लम्हों से आबाद रहती है। होठ गुनगुनाते हैं, जाने क्यों लोग करते हैं मोहब्बत, ओ मेरी शाहे खुबा, और भी बहुत सारे गाने हमारे श्रोताओं ने लिखे हैं, और शब्द तो बहुत जल्द पकड़ लिया। और हमारे एक श्रोता ने लिखा भी है कि आज तो आपने परीक्षा का पेपर लीक कर दिया। भाई, इसे लीक करना नहीं कहेंगे, इसे तो हम ये कहेंगे कि आप की त्वरित बुद्धि ने बहुत जल्द पकड़ लिया कि आज के इस इबारत में कौन से शब्द हैं और कौन से गाने होंगे। तो जरा ये देखिए, सुनिए और बूझिए कि ये गाना भी आपने चुना था या नहीं। इस गाने के बारे में आप क्या कहेंगे? फिल्म मेरे हमदर्द मेरे दोस्त। इस गाने से जुड़ी हुई कोई खास बात हो तो जरा बताइएगा हमें। जरा गीतकार का नाम बूझिए और संगीतकार का नाम बूझिए।

घटा सावन सजना कौन कौन से गाने हैं, इन शब्दों पर याद किया क्या आपने? जरा लिखिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर, और इस गाने से जुड़ी हुई कोई खास याद हो वो भी लिखिए।

मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म का गाना था। हमने पूछा था आपसे गीतकार संगीतकार का नाम, बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब दिया, कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया है। मजरू सुल्तानपुरी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और बहुत सारे श्रोताओं ने पप्पा जल्दी आ जाना सात समंदर पार से इस गाने के लिए लिखा है बहुत कुछ। और बहुत सारी टिप्पणियां आई है कि बचपन की गुड़िया, बचपन का संसार, लेकिन आज की इबारत में और भी तो बहुत कुछ है। तो वो जो टिप्पणी है हम पढ़कर सुनाएंगे जरूर, और वो गाना भी हम सुनवाएंगे, क्योंकि इतने सारे श्रोताओं ने लिखा है कि हमारी मजबूरी बन गई है वो गाना सुनवाना। और कौन से गाने आपके जहन में इस वक्त आ रहे हैं? और आज एक खास बात और है, हमारे एक श्रोता ने लिखा भी है, आनंद बख्शी कलम के वो जादूगर जिसने अपने रचे मधुर गीतों से सुनने वालों के दिलों में ऐसी जगह बनाई कि उन्हें भुला पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। बचपन के बारे में ऐसा लिखा कि लोग कहने लगे, आया है मुझे फिर याद वो जालिम गुजरा जमाना बचपन का। महबूबा की तारीफ, चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। और पूरी पूरी लाइनें भी लिखी है, और आगे लिखा है इन्होंने कि आनंद बख्शी कलम के वो जादूगर जिसने अपने हृदय रचे मधुर गीतों से सुनने वालों के दिलों में ऐसी जगह बनाई कि उन्हें भुला पाना नामुमकिन है। बिल्कुल सही फरमाया है। और अब बात आनंद बख्शी की चली है, आज उनकी याद का दिन है, विविध भारती से उनके बहुत सारे गाने प्रसारित किए जा रहे हैं, और शाम को 4 बजे भी उनके बेटे राकेश बख्शी से बातचीत आप सुन सकते हैं। तो चलिए फिर एक गाना आनंद बख्शी साहब के नाम, रोशन का संगीत है, आपको बूझना है फिल्म का नाम। इस गाने को सुनते हुए आपके जहन में कौन कौन से और गाने कौंध रहे हैं हमारी इबारत से जुड़े हुए? फिल्म का नाम बूझना है आपको, फटाफट बताइए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर।

0: नमस्कार, तो हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। पहले मुख्य समाचार। देश की पहली डेंगू वैक्सीन के व्यावसायिक विपणन को मिली मंजूरी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, 4 से 60 वर्ष के लोगों को दी जाएगी खुराक। रांची के नामकुम अंचल की करोड़ों रुपए के कथित जमीन घोटाले में एसीबी एक्शन में। तत्कालीन अंचल अधिकारी सहित अन्य पर दर्ज हुई प्राथमिकी। जीरो कोल लीकेज अभियान के तहत पीपरवार में सीआईएसएफ की बड़ी कार्रवाई। 11.5 टन अवैध कोयला जब्त। अवैध खनन पर अब ड्रोन से रखी जाएगी नजर। बाबा वैद्यनाथ धाम के श्रद्धालुओं के लिए पूर्व रेलवे की बड़ी सौगात। आगामी 29 जुलाई से देवघर, जसीडीह और बासुकीनाथ के बीच चलेंगी कई विशेष ट्रेनें। और राज्य के खेलगांव में चल रही 65वीं राज्य स्तरीय सुब्रत मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता का आज खिताबी मुकाबला। विभिन्न प्रमंडलों के बीच होगी भिड़ंत। और अब समाचार विस्तार से। संसद भवन में आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की मंगल मिलन बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले चुने हुए शासनाध्यक्ष बनने पर बधाई दी गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि प्रधानमंत्री ने परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए कड़े संकल्प को दोहराते हुए जिम्मेदार लोगों को सख्त सजा देने की बात कही है।
2: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है। और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को, और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिलकर के करें।
1: केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी सीडीएससीओ ने देश की पहली डेंगू वैक्सीन क्यूएनडीगा के विपणन को मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। ये वैक्सीन 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों के लिए स्वीकृत की गई है, जिसे बिना किसी पूर्व रक्त जांच के लगाया जा सकता है। जापानी कंपनी टाकेडा द्वारा निर्मित इस वैक्सीन को पहले ही 42 से अधिक देशों और विश्व स्वास्थ्य संगठन से हरी झंडी मिल चुकी है। रांची में 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के आरोपों को लेकर विरोध तेज हो गया है। इसके विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा कल जेपीएससी कार्यालय का घेराव करेगा। युवा मोर्चा के नेताओं ने परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतने और मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने इस परीक्षा को रद्द करने की मांग की है।
3: हमारे लाखों युवाओं ने रात दिन मेहनत करके परीक्षा में शामिल हुआ और उनके मेहनत को बेकार करने का काम किया, साथ ही साथ झारखंड के भविष्य के में आने वाले समय में हमारे युवाओं को अंधकार में ढकेलने का काम किया है। इस निमित्त भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के तत्वाधान में 22 जुलाई को हजारों की संख्या में हमारे युवा कार्यकर्ता जेपीसी कार्यालय घेराव करने के लिए जाएंगे।
1: झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने रांची के नामकुम अंचल के करोड़ों रुपए के कथित जमीन घोटाले की जांच तेज कर दी है। एसीबी ने तत्कालीन अंचल अधिकारी डॉक्टर श्वेता वर्मा और डीलिंग असिस्टेंट दीपक कुमार सहित अन्य के खिलाफ प्रारंभिक जांच मामला दर्ज किया है। आरोपियों पर वर्ष 2012 से 2015 के बीच सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर कर डुंडू गांव की करीब 1.25 एकड़ जमीन पर फर्जी दूसरी जमाबंदी बनाने का आरोप है। कोयला चोरी और अवैध खनन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सीआईएसएफ ने खलारी के पीपरवार क्षेत्र से करीब 11.5 टन अवैध कोयला बरामद किया है। सीआईएसएफ अधिकारियों के अनुसार बरामद कोयला सीसीएल प्रबंधन को सौंप दिया गया है और अब अवैध खनन पर लगाने वाले लगाम के लिए ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीकों से लगातार निगरानी रखी जाएगी। श्रावणी मेला 2026 के दौरान बाबा बैद्यनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पूर्व रेलवे का आसनसोल मंडल विशेष मेमू डेमू और पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन करेगा। आगामी 29 जुलाई से 30 अगस्त तक जसीडीह बैद्यनाथ धाम बासुकीनाथ और देवघर के बीच कुल 33 फेरों के साथ कई मेला स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश की @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। गिरिडीह में 25 लाख रुपए के इनामी नक्सली अजय महतो की गिरफ्तारी के बाद पुलिस और सुरक्षा बलों के हौसले बुलंद है। गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक ने एक प्रेस वार्ता में इस बड़ी कामयाबी की जानकारी देते हुए शेष बचे नक्सलियों से मुख्य धारा में लौटने और सरकार की आत्मसमर्पण नीति का लाभ उठाने की पुरजोर अपील की है।
4: नक्सली जो मुख्य धारा में आना चाहते हैं उनसे हम लोग अपील करते हैं, नक्सल के रास्ते को आप छोड़ें और मुख्य धारा से जुड़ने के लिए झारखंड सरकार की जो पुनर्वास आप समर्पण नीति है, नई दिशा नई पहल के तहत आप आए। गिरिडीह जिला में जितने भी नक्सली आत्मसमर्पण किए हैं उनको जो आर्थिक लाभ मिलना है वो भी मिल चुका है।
1: सरायकेला खरसावा के गम्हरिया कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा संकुल अग्रिम पंक्ति प्रत्यक्षण कार्यक्रम के तहत किसानों को उन्नत खेती का प्रशिक्षण दिया गया। वरिष्ठ वैज्ञानिक पंकज सेठ ने बताया कि वर्ष 2026-27 के तहत 125 चयनित किसानों को मूंगफली के उन्नत बीज और आवश्यक कीटनाशक बांटे जा रहे हैं।
5: 125 किसानों को उन्नत मूंगफली खेती के लिए उसका प्रत्यक्षण के लिए मूंगफली का प्रभेद K18-12 का हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बीज मुहैया करा रहे हैं और जिसके तहत हम लोग उनको खाद में सल्फर दे रहे हैं और बीज को उपचार करने के लिए बवेस्टिन दे रहे हैं और इमिडाक्लोरपीड दे रहे हैं जो इंसेक्टिसाइड है। साथ ही उनको प्रशिक्षण के माध्यम से बता रहे हैं कि मूंगफली की खेती क्यों जरूरी है, मूंगफली की खेती को कैसे करना है।
1: भारतीय शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर के सत्र में 0.3% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स 289 अंक गिरकर 77,420 पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी 72 अंक गिरकर 24,167 पर पहुंच गया। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,33,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,28,000 रुपए प्रति किलो है। राज्य में मॉनसून सक्रिय बना हुआ है। मौसम विभाग ने आज रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा और सिमडेगा जिले में भारी बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है। मौसम केंद्र के अनुसार 22 और 23 जुलाई को भी राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और हल्की सी मध्यम दर्जे की बारिश का दौर जारी रहेगा। रांची के खेलगांव में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा आयोजित 62वीं राज्य स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता का आज फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। चार दिनों के रोमांचक मुकाबलों के बाद आज अंडर 15 बालक वर्ग में कोल्हान और संथाल प्रमंडल, जबकि अंडर 17 बालिका वर्ग में दक्षिणी और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के बीच खिताबी भिड़ंत होगी। वहीं अंडर 17 बालक वर्ग का फाइनल मुकाबला दक्षिणी छोटा नागपुर और कोल्हान प्रमंडल के बीच खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश की पहली डेंगू वैक्सीन के व्यावसायिक विपणन को मिली मंजूरी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा 4 से 60 वर्ष के लोगों को दी जाएगी खुराक। रांची के नामकुम अंचल के करोड़ों रुपए के कथित जमीन घोटाले में ACB एक्शन में, तत्कालीन अंचल अधिकारी सहित अन्य पर दर्ज हुई प्राथमिकी। जीरो कोल लीकेज अभियान के तहत पीपरवार में CISF की बड़ी कार्रवाई, 11.5 टन अवैध कोयला जब्त। अवैध खनन पर अब ड्रोन से रखी जाएगी नजर। बाबा बैद्यनाथ धाम के श्रद्धालुओं के लिए पूर्व रेलवे की बड़ी सौगात। आगामी 29 जुलाई से देवघर, जसीडीह और बासुकीनाथ के बीच चलेंगी कई विशेष

0: ट्रेनें। और रांची के खेलगांव में चल रही 65वीं राज्य स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता का आज खिताबी मुकाबला, विभिन्न प्रमंडलों के बीच होगी भिड़ंत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: मजे करते थे। और एक श्रोता ने लिखा है कि आनंद बख्शी साहब के लिए लिखा है कि आनंद बख्शी जी ने गीत सिर्फ लिखे नहीं, उन्हें लोगों की जिंदगी का हिस्सा बना दिया गया। उनके शब्द इतने सहज थे कि हर कोई उसमें अपना एहसास, कोई रिश्ता, कोई याद ढूंढ लेता है। शायद यही उनकी सबसे बड़ी पहचान है, सादगी में गहराई और हर दिल तक पहुंच जाने वाली बात। बिल्कुल सही फरमाया है कि सादे सीधे सादे अंदाज में, सरल भाषा में गहरी बात लिखना बहुत मुश्किल है। एक श्रोता ने लिखा है कि भई आज तो पूरी लिस्ट वायरल हो गई है, आप तो प्रश्न करते रहिए, जवाब देते रहेंगे। तो हमने तो आपसे प्रश्न किया है कि अब बताइए कि आनंद बख्शी साहब के कौन से गाने इस वक्त आपको याद आ रहे हैं। कोई एक गाना अगर आपसे कहा जाए, चुनकर बताइए कि आपका बेहद पसंदीदा गाना, तो क्या आप सब बता सकेंगे? अगर बता सकते हैं तो जरा बताइए, हम भी देखते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि आनंद बख्शी साहब वो शख्सियत हैं जिनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। एक श्रोता ने लिखा है कि दुनिया में कभी एक जैसा किसी का नसीब नहीं होता है। जो देवर फिल्म का गाना सुनवाया था उसके लिए, और झूले के लिए इन्होंने लिखा है कि सावन के महीने में जब झूले पर पींगे मारते थे तो बीच में बैठी लड़कियां गाना गाती थी, पिया मेहंदी मगाए दे मोती झील से जाए के साइकिल से, ये याद है मेरी दीदी को। और एक श्रोता ने लिखा है कि पींगे भरते हुए लोगों को देखा है और स्वयं तो दरवाजे की कुंडी में चादर बांधकर तकिया लगाकर घर में झूला झूला गया है, भाई क्या बात है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज तो मेरी गुड़िया का जन्मदिवस है, आज वो 13 की हो गई। और एक श्रोता ने लिखा है कि पापा जल्दी आ जाना, ये गाना इतना भावपूर्ण है कि आंखों में आंसू आ जाते हैं। और बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारी टिप्पणियां लिख भेजी हैं। अब देखते हैं कि हमारे एक श्रोता ने क्या लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि गाने हैं सात समंदर पार से, एक था गुल और एक थी बुलबुल, तेरी जुल्फ के छांव में दिल मेरा खोना चाहे, और छोड़कर तेरे प्यार का दामन। फिर आगे लिखा, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं ओ मेरे शाहे खुबा। भई गजब, इतने सारे गाने तो आपने बूझ लिए, तो और भी श्रोता और भी गाने बूझे। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत में बहुत सारे भावनात्मक शब्द हैं, जैसे कि मोहब्बत, प्यार और एहसास। इन शब्दों पर कई सुरीली गाने सुनवाए जा सकते हैं, गुड़िया लाकर देने की बात तो दिल को छू गई। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत पापा की लाई हुई उस गुड़िया से शुरू हो रही है, जो भावनाओं से जुड़ी हुई पापा की गुड़िया कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला, समय कितनी जल्दी हाथों से निकल गया। हम अपनी बेटी को उसी गुड़िया के रूप में देखते हैं जो जल्दी ही विदा होने वाली है, ये सोचकर आंखें भर आती हैं। और वो पापा भी अपनी गुड़िया की विदाई के कामों में व्यस्त हो गए हैं, जो कभी उसके लिए गुड़िया लाया करते थे। अब देखिए ना, एक गाना कितने सारे श्रोताओं के मन की भावनाओं पर दस्तक दे रहा है, कितने सारे श्रोताओं की आंखें नम कर रहा है, कितने श्रोताओं के जज्बात से जुड़ गया है ये गाना, उनमें से एक तो हम भी हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा भावों को बदलते हैं और जुड़ते हैं, थोड़ा सा अपने बचपन के संसार को आगे बढ़ाते हैं, जब प्यार मोहब्बत की दहलीज पर हमारा मन पहुंचता है। बताइए फिल्म का नाम, हीरो हीरोइन का नाम बूझिए। हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। हीरो हीरोइन का नाम और फिल्म का नाम बूझना है आपको।

लव इन टोक्यो फिल्म का गाना था, मोहम्मद रफी की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत था। और हमने हीरो हीरोइन का नाम आपसे पूछा था, सभी श्रोताओं ने बताया जॉय मुखर्जी और आशा पारेख। कुछ श्रोताओं ने इसका गलत जवाब भी दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि बात झूले की चली है तो वो 13-14 साल की उम्र का झूले की मस्ती याद आती है। आज गांव में 2-3 पेड़ नीम के हैं, पहले तो हर घर के दरवाजे पर 2 जरूर होते थे। सावन आते ही बांस के डंडे से रस्सी बांधकर झूला लटकाते और नीचे एक पटरा बांधकर पींग मारते। फिर शाम को अक्सर गांव की लड़कियां झूलने आती हैं और हम सब मना करने पर भी तेज पींगे मारकर झूला ऊपर ले जाते थे। और कजरी गाई जाती थी, चैती गाई जाती थी, है ना? तो कौन सी कजरी, कौन सा गाना अगर याद है तो वो भी आप बता सकते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि पिता हमारे बहुत सख्त थे, बाहर का खाने से रोकते थे, यहाँ तक कि गुलाब जामुन भी घर पर बनवाया करते थे माताजी से, और मांग पर भुनी मूंगफलियां दिलाया करते थे। बस स्मृतियों में ही सब पल है और जाने वालों को भला कौन रोक सकता है।

और एक श्रोता ने लिखा है कि बच्चों को जितना हो सके डांट मार से नहीं प्यार से समझाने में ही समझदारी है। एक श्रोता ने लिखा है कि जब कोई बच्चा रोता है तो उसकी माँ बच्चे के हाथ में गुड़िया पकड़ा देती है जिससे बच्चा उससे खेलने लगता है और रोना बंद कर देता है। माँ बच्चों को झूले में सुलाकर उस पर डोरी पर गुड़िया लटका देती थी जिससे झूले के साथ गुड़िया हिलती रहती थी। पर अब वो बचपन है क्या? अब वो गुड़िया है क्या? अब तो नकली गुड़िया आती हैं और अब मोबाइल है। अब माँ छोटे से बच्चे को मोबाइल पकड़ा देती है, उसमें अपने आप से बच्चा स्क्रीन बदलता रहता है, बस यहीं से स्क्रीन की लत लग जाती है। आप अपने बच्चों के साथ क्या करते हैं जरा बताते चलिए। एक श्रोता ने लिखा है कि एक जमाना वो भी था कि बिजली, बंगले, सड़क, गाड़ियां, मनोरंजन के तमाम साधन बिल्कुल नहीं थे, फिर भी सजनी को साजन का और साजन को सजनी का इंतजार होता था। बिल्कुल सही बात कही आपने। कैसे मिट्टी के तेल से जलते माटी के दीपक की रोशनी में हम लोग मिले थे। बड़ी मान मनोबल के बाद वो हमारे पास तो आई और शरारत से दिया बुझा दिया कि हमें शर्माती है, फिर अंधेरे में दीपक रोशन हुआ था और जिंदगी भर का साथ बन गया और आज बेटे नाती पोते बहुत कुछ है। तो सचमुच तब मोबाइल और सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, रिश्ते बड़े प्रगाढ़ होते थे, आंखों की भाषा होती थी, होठों की भाषा होती थी। तो आप अपने अनुभव साझा करते चलिए। फिलहाल बहुत सारे श्रोताओं ने आनंद बख्शी के अनगिनत गाने लिखे हैं और उनमें से एक गाना हमने चुना है ये। तो आपने क्या ये गाना चुना था? याद कीजिए और बताइए इसमें हीरो हीरोइन कौन है। फिल्म महबूब की मेहंदी। गीतकार का नाम तो अंदाजा लगा ही लिया होगा आपने, संगीतकार का नाम जरा बूझिए।

महबूब की मेहंदी, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं? भाई आप अपने अनुभव ही तो बताइए कि आपने अनुभव किया ऐसा कुछ कि आपने कभी ये गुनगुनाया हो गाना किसी और के लिए, या किसी ने आपके लिए ये गाना गुनगुनाया हो। हमने आपसे पूछा था हीरो हीरोइन का नाम, राजेश खन्ना और लीना चंदावरकर। सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा कि धन्यवाद, आपने ये गाना सुनवाया, मेरी भी पसंद का गाना था। किसकी पसंद नहीं हो सकती भला। हमने संगीतकार का नाम भी आपसे पूछा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और गीतकार आनंद बख्शी। और आनंद बख्शी के गानों के लिए जब हमने पूछा कि कौन सा गाना पसंद है, तो ये गाना भी आपकी पसंद में शामिल था। और बहुत सारे गानों का जिक्र किया है हमारे श्रोताओं ने, और बहुत सारे श्रोताओं ने ये लिखा है कि आनंद बख्शी जैसा गीतकार कोई हो नहीं सकता, उनके गीतों में जो सहजता है। तमाम श्रोताओं की बात इन वाक्यों में मैं आप तक पहुंचा रही हूं। और एक श्रोता ने यह भी लिखा है कि आनंद बख्शी साहब का एकदम सदाबहार, दिल को सुकून देने वाला ये गाना था। अब हमने जो झूले की बात पूछी थी, हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि कुछ पारिवारिक परंपरा होती थी, बच्चों के लिए मोटे कपड़ों का झूला छत की कड़ी से बांधकर उसमें छोटे बच्चों को सुलाते थे, लकड़ी का पालना वर्जित था। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी दो बेटियां हैं, दोनों का विवाह हो चुका है, मैंने करीब 10 वर्ष तक उन्हें चॉकलेट नहीं खाने दिया, और इस बात को मेरी बड़ी बिटिया ने एक वाक्या बताया कि उसकी एक सहेली के दांत पूरी तरह खराब हो गए हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि जो हमने पूछा था कि झूले पर कौन सा लोकगीत गुनगुनाते थे, तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मिर्जापुर कईल हो गुलजार हो कचौड़ी गली सुन कईल बलमो सोने की थाली में जेवना परोसल, और दो तीन लाइन और लिखी है। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन की वो प्यारी यादें, पापा का प्यार, धीरे धीरे जवानी के दहलीज में बढ़ते कदम, हम सफर का साथ, खट्टे मीठे अनुभव, सब कुछ जीना सिखा दिया। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि एक पिता के द्वारा लाई गई गुड़िया सचमुच हर बिटिया के लिए एक अमूल्य उपहार होता है, ये वात्सल्य रस की प्रतीकात्मक और कोमल अभिव्यक्ति है, जिसमें पिता का निश्चल स्नेह, हृदय से जुड़ी भावनाएं रहती है। यहाँ गुड़िया का भौतिक अस्तित्व ममता की मूरत की भावना को दर्शाता है। सचमुच एक गाने ने कैसे आप सबको द्रवीभूत कर दिया है। और कौन ऐसा शख्स है जो ये गाना जो हमने सुनवाया था, पापा जल्दी आ जाना गुड़ियों के बाजार से, गुड़िया चाहे ना ले ना लाना पापा जल्दी आ जाना, सचमुच एक मर्म है इस गाने में। और अभी तो हमने महबूब की मेहंदी फिल्म का गाना सुनवाया, इससे जुड़ी हुई कोई खास बात आपके जहन में है तो वो भी बताते चलिए। और अब बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है गुल और बुलबुल वाला गाना कब आएगा, ये आ गया, लेकिन आपको पहेली का जवाब देना है कि कौन है इसमें हीरो कौन है हीरोइन। त्वरित जवाब दीजिए क्योंकि आपको पता होगा शायद हीरो हीरोइन का नाम। गीतकार और संगीतकार का नाम भी बता सकते हैं आप।

क्या ये गाना सुनते हुए आपको कोई कहानी भी याद आती है? कहानी की शक्ल में ये गाना लगता है ना।

शशि कपूर और नंदा इस फिल्म में हीरो हीरोइन थे, ये हमने सवाल पूछा था, सभी श्रोताओं ने इसका सही जवाब दिया, त्वरित जवाब आया और लंबी तादाद में अब तक जवाब आ रहा है। हम स्क्रॉल करते जा रहे हैं, टिप्पणियां खत्म नहीं हो रही हैं। शशि कपूर और नंदा, एक श्रोता ने लिखा है, बहुत ही मासूमियत भरा सुपरस्टार हिट गीत है मोहम्मद रफ़ी और नंदा की आवाज़ में। और एक श्रोता ने लिखा है कि अद्भुत अभिनय था इस फिल्म में शशि कपूर का और नंदा का। कश्मीर की वादियों में फिल्माया गया ये गाना सुनने में खूबसूरत है, देखने में भी उतना ही खूबसूरत था। बिल्कुल सही फरमाया है आपने। एक श्रोता ने लिखा है कि जहां तक मुझे याद है हमारे नाना जी ने कोई कहानी नहीं सुनाई, नानी और दादी जरूर सुनाती थी, देश के वीर जवानों की कहानी सुनाया करती थी। कितनी अच्छी बात इन्होंने लिखी है कि अपने क्रांतिकारियों के बारे में कहानी सुनाना जैसे हम भूल ही गए हैं, बच्चों को जरूर सुनाइए ऐसी कहानियां। कहानियां सुनने से एक तो उनकी कल्पना शक्ति में विस्तार होता है, वरना तो वो मोबाइल में जो कहानियां देख लेते हैं उसमें उनकी सोचने की क्षमता कमजोर होती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे गांव की सच्ची घटना है, दो लोग गुल और बुलबुल की तरह प्यार करते थे, जब उन्हें घर वालों ने एक न होने दिया तो वो दोनों साथ में जान दे दिए। उफ, ये तो दर्दनाक बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि सच में ये गीत कहानी जैसा लगता है, जैसे कोई अपना पराया सा साथी कुछ बता रहा हो और हम उनसे हर बात बड़े ही भोलेपन से पूछ रहे हो। ये आनंद बख्शी की गीतकारी की कमाल है। एक श्रोता ने लिखा है कि हम ऐप पर सुन रहे हैं गाने तो आधे मिनट देर से पहुंचते हैं, लेकिन हम जवाब त्वरित देते हैं। आ गया आपका जवाब भाई। एक श्रोता ने लिखा है कि धर्मपत्नी के साथ अगर नोकझोंक ना हो तो जीवन में मजा ही ना आए, मैं तो जानबूझकर कुछ न कुछ ऐसा टॉपिक छेड़ देता हूँ तो वो लेक्चर शुरू कर देती है और मन ही मन में हंसकर खुश होता रहता हूँ। भाई ये तो बड़ी शरारत है, अगर आपकी श्रीमती जी सुन रही हो तो एक तरह से अच्छी बात है, अगर उन्हें गुस्सा आता हो तो गुस्सा उनका ठंडा भी हो जाता होगा। एक श्रोता ने लिखा है कि गौरवशाली बचपन के गुड्डे गुड़िये की गाथा गान कर जवानी के दहलीज के दहकते दहन को दर्शाती है आज की ये इबारत। और एक श्रोता ने लिखा है कि उस जमाने में गाने बनाने वालों ने बेहतरीन गाने बना दिए और गीतकार आनंद बख्शी के लिए इन्होंने लिखा है। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब मेरे बच्चे छोटे थे और जब बहुत रोते थे तो हम दोनों पति पत्नी उसको चादर पर सुलाकर उसके दोनों कोने पकड़ लेते थे और उसे झूला झुलाकर सुलाया करते थे। भाई झूले की बात बहुत हो गई है और बचपन के तोहफों की बात हो गई, पापा के घर आने की बात हो गई है, अब जरा ये बात हो जाए कि प्यार मोहब्बत जब आपने किसी से किया और आपकी पत्नी या आपके पति ने क्या बातें कही। ये गाना सुनिए और कभी आपने भी इस तरह की बात कही एक दूसरे से, क्योंकि जिंदगी में प्यार बहुत जरूरी।

प्यार का इजहार बहुत जरूरी है, तो क्या आप अपनी पत्नी से या अपने पति से इजहार करते हैं प्यार का? उम्र के किसी भी पड़ाव में प्यार का इजहार किया जा सकता है। फिल्म का नाम जरा बताइएगा।

फिल्म थी वो कौन थी, सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया। ये हमारा सवाल था। लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजें थी, राजा मेहदी अली खां के बोल थे और मदन मोहन का संगीत था। और एक श्रोता ने लिखा है कि मनोज कुमार और हेलेन अभिनेत्री, और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा कि कमाल है ये गाना, हमने भी सोचा था, मेरी पसंद का था। और एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे कहानियां सुनाने का बहुत ज्यादा शौक है, नाना नानी दादा दादी तो इस तरह दुनिया में नहीं रहे, मगर हाँ उनकी कहानियां जरूर याद आती हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि 38 साल हो गए ये कहते और दोहराते हुए, अब तो बच्चे हंसते हैं, कहते हैं पापा डिजिटल युग में नया गीत अपनाइए। उनको समझाइए कि हम अपने युग का गीत गा रहे हैं, आप अपने युग का गीत गुनगुनाइए, लेकिन गुनगुनाइए जरूर। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी पत्नी मेरे पास ही बैठी रेडियो पर विविध भारती सुन रही है और आपकी बातें सुनकर मुस्कुरा रही है। क्या बात है भाई, हमारा कहना और बोलना सफल हो जाता है जब हमारी बात से कोई मुस्कुराए और हमारे बजाए गए गानों से किसी बात से उदास हो या प्रेरणा ले, तो हमारा प्रोग्राम करना सफल हो जाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि इबारत ऐसी होनी चाहिए कि पिरोए गए शब्दों का आकलन सहजता से हो जाए, उस पर लिखे गए गाने खूबसूरत हैं, आज के सभी गाने बहुत अच्छे लग रहे हैं। और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि हमारा ये दूसरा गाना पसंद का, किसी ने लिखा है चौथा गाना, किसी ने लिखा है तीसरा गाना। क्या बात है भाई, हमें भी अच्छा लग रहा है जानकर कि हमारी और आपकी पसंद मिल रही है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज तो सुरीला सफर सुरीला होगा, शुद्ध और साफ उच्चारण आवाज में सुनने को मिलेगी आपकी बातें। क्या बात है भाई, आगे लिखा है कि गुड़िया बुलबुल गुल दुनिया घटा वगैरह शब्द पर गाने होंगे और बहुत सारे इमोजी इन्होंने लगाए हैं, फूल पत्ती दिल और हाथ। तो आप बताइए कि क्या आप जब अपनी बात कहते हैं आज के जमाने में अपनों से, तो क्या इमोजी से काम चलाते हैं या अपने दिल की बात शब्दों से कहते हैं। अब सुनिए ये गाना आ रहा है कुछ श्रोताओं के अनुरोध पर, बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने का भी जिक्र किया है, हमारी आज की इबारत में ये शब्द है। तो सुनिए ये गाना और बताइए जरा गीतकार और संगीतकार का नाम। फिल्म रतन, गीतकार संगीतकार का नाम आपको बूझना है, जोराबाई अंबाले वाली।

रतन फिल्म का गाना जोहराबाई अंबाले वाले की आवाज में, रचना थी डीएन मधुक की, संगीतकार नौशादा। और ये हमारा सवाल था, बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है सही जवाब, कुछ श्रोताओं ने गलत भी लिखा है, लेकिन इतने जवाब नहीं आए जितने कि अन्य गानों के लिए आए थे। और एक श्रोता ने लिखा है कि वैसे तो प्यार के इजहार का सबका अलग सा अंदाज है, पर होता बड़ा ही प्यारा है। रूठना मनाना, कभी कभी बात न करना, हमारे साथी तो रूठ कर खाना नहीं खाते थे, बड़ा ही मुश्किल होता था उन्हें मनाना। एक श्रोता ने लिखा है कि वाह क्या पूछ लिया, जिंदगी अंतिम पड़ाव में पति जी से बड़ा प्यार और इजहार सुनने को मिला, लगता है सारी कमी पूरी हो गई। जब प्यार से कहते हैं तुम अपना ध्यान रखा करो, तुमने सोचा तुम्हारे बाद मेरा क्या होगा, अभी मैं 74 वर्ष की हूं। क्या बात है भाई, आपने तो हमारे जज्बात को छू लिया। और अच्छा लगा कि उम्र के इस पड़ाव में एक दूसरे से आप इजहार करते हैं और ये बात आपने यहां पर लिखी। बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि आज बहुत सारे गाने हमारे और आपके मिले, हमें भी अच्छा लगा। एक श्रोता ने लिखा है कि शब्दों के साथ साथ थोड़ी सी इमोजी भी हम भेज दिया करते हैं, बस अपने जज्बात का इजहार जरूरी है। अब जरा घड़ी की ओर देखिए, घड़ी की सुइयां तो आगे निकल गई है। चलिए अब कार्यक्रम को यहीं पर समेट लेते हैं। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

धरती की सुंदरता को बढ़ाते हैं और अपनी सुगंधित स्पर्श से वातावरण को आनंदमय बना देते हैं। फूलों को देखकर मन में प्रसन्नता, शांति और सकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं। इसलिए फूलों को प्रकृति का मुस्कुराता हुआ उपहार भी कहा जाता है। फूलों का जीवन भले ही छोटा होता है, लेकिन उनका महत्व बहुत ज्यादा होता है। वे हमें सिखाते हैं कि कम समय में भी अपने गुणों और सुंदरता से संसार को खुशियाँ दी जा सकती है। फूल बिना किसी भेदभाव के सभी को अपनी खुशबू और सुंदरता प्रदान करते हैं।

विवाह समारोहों और शुभ अवसरों पर फूल का उपयोग किया जाता है। हर फूल अपनी अलग-अलग विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है, जो पवित्रता और सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। फूल केवल सुंदरता ही नहीं बढ़ाते, बल्कि पर्यावरण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। फूलों से मधुमक्खियां और तितलियां आकर्षित होती है, जो परागण की प्रक्रिया में सहायता करती है। इससे पेड़ पौधों का जीवन चक्र चलता रहता है और प्रकृति का संतुलन बना रहता है। फूलों से हमें जीवन में कई तरह की सीख मिलती है। जिस प्रकार फूल कांटों के बीच रहकर भी अपनी खुशबू फैलाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य को भी कठिन परिस्थितियों में अच्छाई और प्रेम का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। फूल हमें विनम्रता, मुस्कान और दूसरों के जीवन में खुशियां बांटने की प्रेरणा देते हैं।

सूखे हुए फूल केवल मुरझाई हुई पंखुड़ियां नहीं होते, वे अपने भीतर बीते हुए पलों की अनगिनत कहानियां संजोए रखते हैं। किसी किताब के पन्नों में दबा हुआ फूल किसी पुराने उपहार की तरह हमें उन खूबसूरत यादों की दुनिया में ले जाता है, जहां भावनाएं हमेशा ताजा रहती है। जब कोई हमें प्रेम, स्नेह या सम्मान के रूप में फूल देता है, तो वह केवल फूल नहीं बल्कि अपने मन का एक कोमल भाव हमारे पास छोड़ जाता है। समय के साथ फूल की खुशबू भले ही कम हो जाए, उसका रंग फीका पड़ जाए, लेकिन उनसे जुड़ी यादें कभी पुरानी नहीं होती। कभी किसी पहली मुलाकात की निशानी, कभी किसी खास अवसर की स्मृति, तो कभी किसी अपने के स्नेह का प्रतीक बनकर सूखे हुए फूल जीवन के अनमोल पलों को संभाल कर रखते हैं और खत में भी भेज दिए जाते हैं।

0: आज की त्रिवेणी यहीं पर संपन्न होती है। सोनाली पाठक को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारी दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने नीट प्रश्न पत्र लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का सरकार का संकल्प दोहराया। संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित। सिक्किम के नामचे जिले में निर्माणाधीन सुरंग ढहने से 9 लोगों की मौत, कई लोग फंसे, बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। और भारत ने एक वाणिज्यिक जहाज पर हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के मामले में रूस के दूत को तलब किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
1: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी

0: प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें।
1: श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन मुक्त व्यापार समझौतों के बारे में भी बात की जो भारत ने कई देशों के साथ किए हैं।
0: प्रधानमंत्री जी ने कहा है जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के किसानों का इंटरेस्ट उसको प्राथमिकता देते हुए कोई नुकसान होने नहीं देंगे, उसमें किसानों का हित को सबसे सर्वोच्च ध्यान दिया जाएगा और दिया गया है, इसलिए ये किसानों के हित में और देश हित में रहेगा।
1: मंगल मिलन नाम से आयोजित बैठक के दौरान एनडीए के सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री होने पर बधाई प्रस्ताव पारित किया। बैठक के बाद एनडीए सांसदों ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार देश में परीक्षाओं के आयोजन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के सरकार के संकल्प को दोहराया।
2: नीट को लेकर के उन्होंने कहा कि जो गड़बड़ी हुई लोग पकड़े गए हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करना है और आगे बेहतर से बेहतर व्यवस्था होगी इसको सुनिश्चित किया जा चुका है और यही कारण है कि फिर से जो परीक्षा नीट की हुई है बहुत ही बेहतर तरीके से हुई।
1: एनडीए संसदीय दल की बैठक में पहली बार शामिल हुए भाजपा के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के साथ मजबूती से खड़ी है।
3: हर एक ने अपने तरीके से बात करनी है पर भारत एक इतना बड़ा विशाल देश है तो भारत के युवा समझदार युवा उनमें पूरा पोटेंशियल है, वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो राष्ट्रहित में ना हो।
1: भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प दोहराया।
4: हम अपने आप में मंगल भावना के साथ हम आगे बढ़ें, यह प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए संकल्पित होने का सभी अपने माननीय सांसदों को यह आग्रह और निर्देश दिया है। इस 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है तो हमें मंगल कामनाओं के साथ ही काम करना पड़ेगा।
1: संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई है। दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर हंगामे के बीच संसद की अलग अलग समितियों के चुनाव के लिए सदन में प्रस्ताव पेश किए गए। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदस्यों से अपनी सीटों पर लौटने और सदन को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया। इसके बावजूद विपक्षी सदस्य नीट तथा विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर नारेबाजी करते हुए हाथों में तख्तियां लेकर सदन के बीचों बीच पहुंच गए जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में 12 बजे के स्थगन के बाद बैठक फिर शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीटों पर जाने और सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की लेकिन विपक्ष ने उनकी बात नहीं मानी। इससे पहले सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना मुद्दा उठाने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट मुद्दे को लेकर कल नई दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मामला उठाया। इसके बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और कहा कि विपक्ष विद्यार्थियों के मुद्दे पर चर्चा करना चाहता है। संसद के बाहर श्री गांधी ने कहा कि मुद्दा विद्यार्थियों और युवाओं के भविष्य से जुड़ा है।
5: इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है। ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दैट इज ऑल दे आर सेइंग, नथिंग रॉन्ग विद इट।
1: सरकार ने उन कई सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि कल दिल्ली में हुए प्रदर्शनों के दौरान एक लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली में प्रदर्शन से संबंधित कोई मौत नहीं हुई है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।

0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सिक्किम में नामची जिले में एनएचपीसी तिस्ता पनबिजली परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। नामची जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि अब तक 11 शव बरामद किए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
1: बारिश और खराब मौसम के बावजूद रेस्क्यू टीम फंसे हुए मजदूरों को सुरक्षित निकलने की पूरी कोशिश कर रही है। माना जा रहा है कि समदंग में 7 किलोमीटर लंबी टनल के अंदर कम से कम 25 लोग फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांगुले से बात की और हालात से निपटने के लिए हर तरह की मदद का भरोसा दिया। इस बीच जिला प्रशासन ने अब तक 7 शवों की पहचान कर ली है। रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर रखने के लिए जिला के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम में निर्माणाधीन सुरंग दुर्घटना में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश में चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी और कुल्लू जिलों में 24 घंटे के दौरान कई स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है।
2: किन्नौर जिला के करछम बांध और सिरमौर जिला में गिरी जटोन बांध से अतिरिक्त पानी छोड़ा जा रहा है। स्थानीय प्रशासन द्वारा इन नदियों के साथ लगते इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने व समय समय पर जारी किए जाने वाले दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। उधर किन्नौर जिला के शलखर और समदो में भूस्खलन और चट्टाने गिरने से राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर यातायात बाधित हो गया है। वहीं लाहौल स्पीति जिला में भी जहालमा नाले में आई बाढ़ के कारण संपर्क सड़क बह जाने से यातायात बंद है। शिमला जिला के ठियोग उपमंडल में 16 सड़क संपर्क मार्ग भूस्खलन के कारण अवरुद्ध है और चंबा जिला के लाहडू नूरपुर मुख्य सड़क में भी टिक्कर गलाधार में भारी भूस्खलन से मार्ग अवरुद्ध हुआ है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: उत्तराखंड में बारिश और यात्रा मार्गों पर भूस्खलन की आशंका के कारण कल स्थगित की गई चार धाम यात्रा आज फिर शुरू हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: चारधाम यात्रा का संचालन जिला प्रशासन, पुलिस, एसटीआरएफ और संबंधित विभागों के समन्वय से किया जा रहा है। यात्रा मार्गों की लगातार निगरानी की जा रही है और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि यदि भारी बारिश, भूस्खलन या अन्य कारणों से किसी स्थान पर यात्रा मार्ग अस्थायी रूप से बाधित हो तो वे प्रशासन द्वारा निर्धारित सुरक्षित स्थानों पर होल्डिंग एरिया में ही रुके। सभी संबंधित विभागों को मौसम और यात्रा मार्गों की स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और मुजफ्फराबाद में तेज से बहुत तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी भी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, आंतरिक कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना में भी 24 तारीख तक ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अगस्त से वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मासिक आर्थिक सहायता को 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये करने की मंजूरी दी है। कल जारी एक आदेश में राज्य सरकार ने कहा कि बढ़ी हुई सहायता राशि सभी पात्र लाभार्थियों को मौजूदा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली के माध्यम से दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने वाणिज्यिक पोत एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले के संबंध में आज दिल्ली में रूस के प्रभारी राजदूत व्लादिमीर लादानोव को तलब किया। 19 जुलाई को इस जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीय मारे गए थे। हमले की कड़ी निंदा करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसे हमले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा और स्थिरता कमजोर करते हैं। मंत्रालय ने बताया कि श्री लादानोव से कहा गया कि व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना और इसके कारण निर्दोष नागरिकों की जान जाना स्वीकार्य नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय आतंकवादी संगठन

0: आईएसआईएस में भर्ती से जुड़े मामले में बेंगलुरु में 8 परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। इसमें इकरा वेलफेयर ट्रस्ट, गाइडेंस फॉर मैनकाइंड और बेंगलुरु स्थित अन्य व्यक्ति शामिल हैं। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा के विपणन की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश में डेंगू की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है। ये भारत में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है। इसे 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों में डेंगू की रोकथाम के लिए मंजूरी दी गई है। इस वैक्सीन को पहले ही 42 देशों में नियामक स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड शामिल हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा के साथ मिलकर लकाडोंग हल्दी मिशन गोल्डन स्पाइस का शुभारंभ किया। मिशन गोल्डन स्पाइस पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए शुरू की गई एक प्रमुख और महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसकी लागत 175 करोड़ रूपये से अधिक है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित उच्चाधिकार समिति ने अरावली पर्वतमाला से संबंधित मामलों पर जनता से राय मांगी है। समिति 31 अगस्त से पहले सर्वोच्च न्यायालय को अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया है कि इच्छुक व्यक्ति दस्तावेजी साक्ष्य और अन्य सत्यापन योग्य सामग्री के साथ अपनी राय mshpcaravali@gmail.com पर ईमेल के माध्यम से 3 सप्ताह के अंदर भेज सकते हैं। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर के सत्र में गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 231 अंक गिरकर 77,478 पर और निफ्टी 52 अंक गिरकर 24,186 पर आ गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल का दौरा किया और वहां डॉक्टरों के साथ बैठक की। उन्होंने नीट यूजी 2026 का पेपर लीक होने के आरोपों को लेकर कल राजधानी में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुए लोगों की स्थिति का भी जायजा लिया। श्री नड्डा ने लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का भी दौरा किया और वहां भर्ती घायल प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने नीट प्रश्न पत्र लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का सरकार का संकल्प दोहराया। संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित। सिक्किम के नामचि जिले में निर्माणाधीन सुरंग ढहने से 11 लोगों की मौत, कई लोग फंसे, बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी और भारत ने एक वाणिज्यिक जहाज पर हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के मामले में रूस के दूत को तलब किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह।

लोफर फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। आज के सदाबहार नगमे प्रोग्राम में हम याद कर रहे हैं गीतकार आनंद बख्शी को। सुनिए अगला गीत उन्हीं का लिखा हुआ, किशोर कुमार की आवाज में, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म मिस्टर एक्स इन बॉम्बे।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है।

0: कटी पतंग फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में, आनंद बख्शी की रचना थी, राहुल देव बर्मन का संगीत था। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
1: देखो जी बहार आई बाहों में खिली तेलियां,
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत,
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
0: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: नमक हराम फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, रचना थी आनंद बख्शी की, संगीतकार थे राहुल देव बर्मन।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आइए प्रोग्राम के आखिर में सुनते हैं चुपके चुपके फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज में। लिखा है इसे आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है सचिन देव बर्मन ने। सुनिए ये प्रोग्राम का आखिरी गाना और इसी के साथ अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।

नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। कोयला मंत्रालय द्वारा कल नई दिल्ली में कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी की उपस्थिति में आरोह खान बंद करने संबंधी वार्षिक रिपोर्ट जारी की जाएगी। यह रिपोर्ट भारत की 42 बंद कोयला खदानों की परिवर्तनकारी यात्रा को प्रस्तुत करती है। इसी दौरान झरिया कोयला क्षेत्र में समन्वित पुनर्वास को बढ़ावा देने, आधारभूत संरचना के विकास और सामाजिक आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संबंधित पक्षों के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO ने देश की पहली डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा के विपणन को मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। ये वैक्सीन 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों के लिए स्वीकृत की गई है, जिसे बिना किसी पूर्व रक्त जांच के लगाया जा सकता है। जापानी कंपनी टाकेडा द्वारा निर्मित इस वैक्सीन को पहले ही 42 से अधिक देशों और विश्व स्वास्थ्य संगठन से हरी झंडी मिल चुकी है। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीपल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया PLFI के पूर्व सदस्य राजन राम हत्याकांड मामले में रांची की अपर न्यायायुक्त अखिलेश कुमार तिवारी की अदालत 1 अगस्त को फैसला सुनाएगी। इस मामले में सुनवाई और ट्रायल की पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र विशेषकर महिलाओं को ध्यान में रखते हुए जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा दे रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने एक लेख को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह लेख बताता है कि कैसे प्रधानमंत्री माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस योजना सस्ती फाइनेंसिंग, टेक्नोलॉजी, ब्रांडिंग और मार्केट लिंकेज के जरिए उद्यमों को औपचारिक रूप दे रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। श्रावणी मेला 2026 के दौरान बाबा वैद्यनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पूर्व रेलवे का आसनसोल मंडल विशेष मेमू, डेमू और पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन करेगा। आगामी 29 जुलाई से 30 अगस्त तक जसीडीह, वैद्यनाथ धाम, बासुकीनाथ और देवघर के बीच कुल 33 फेरों के साथ कई मेला स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। चतरा जिले के वशिष्ठ नगर जोरी थाना क्षेत्र में चतरा डोभी मुख्य मार्ग के किनारे एक युवक का शव पुलिस ने बरामद किया है। मृतक की पहचान घंघरी निवासी मुकेश यादव के रूप में की गई है। युवक की हत्या की आशंका से आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने NH 22 को जाम कर प्रदर्शन किया, जिस कारण आवागमन पूरी तरह बाधित हुआ है। आक्रोशित लोगों ने इस मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और मृतक के आश्रितों को उचित मुआवजा देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। वशिष्ठ नगर जोरी थाना प्रभारी अमित कुमार सिंह ने कहा कि इस मामले के हर पहलू की जांच की जा रही है। रेलवे सुरक्षा बल RPF ने रांची रेलवे स्टेशन से 12 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। रांची RPF पोस्ट कमांडर शिशुपाल कुमार ने बताया कि रांची और RPF फ्लाइंग टीम के जरिए चलाए गए संयुक्त ऑपरेशन नार्कोस के तहत प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर VIP गेट के पास ये बरामदगी की गई। इस मामले में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद निवासी एक युवक को हिरासत में लिया गया है। इस मामले में NDPS अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा एक दिन के विराम के बाद आज फिर से शुरू हो गई है। लगातार बारिश और यात्रा मार्गों पर भूस्खलन की आशंका को देखते हुए कल यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित की गई थी। और राज्य में मॉनसून सक्रिय बना हुआ है। बोकारो, चतरा, धनबाद, गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, रामगढ़, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुछ भागों में अगले 1 से 3 घंटों में हल्के से मध्यम दर्जे के बादल गर्जन तथा वज्रपात के साथ वर्षा की संभावना है। साथ ही कुछ स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: खुश होता, तो बड़ा अच्छा लगता है मंदाकिनी जी। तो देखिए
1: जैसे अभी मौसम बदल रहा है ना, जगह जगह बरसात होना शुरू हो गई है और गहरी बरसात भी हो रही है। जब हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं सुनते हैं तो पता चल रहा है कि बहुत सारी जगह बरसात हुई है। तो ये जो मौसम बदलता है ठीक वैसे ही एक प्यार का मौसम भी होता है।
0: बिल्कुल मौसम होता है, लेकिन उससे पहले हम लोग एक विषय अपने विषय बता के फिर हम आगे बढ़ते हैं।
1: अरे बताओ।
0: तो आज हल्की फुल्की बातें में हम बात करने वाले उफ घर में सामानों की उठा धराई, ये इसमें कितने बिजी हो जाती थी हमारी सभी महिलाएं, तो सखियां भाभियां मौसी चाची वगैरह, तो इस पर बात करेंगे। अपने अनुभव भी लिखकर भेजिए। और सखी विशेष के अंतर्गत डॉक्टर स्वाति लोढ़ा लाइफ लेमोनेड और यूएलटीए की स्कूल की संस्थापक है, इनके बारे में हम बातें करेंगे।
1: ठीक है।
0: और मुहावरों की दुनिया में खिसानी बिल्ली खम्बा नोचे,
1: इस पर हमारी बिल्ली खम्बा नोचे। हाँ जी, अच्छा।
0: तो इसके बारे में हमारे सभी साथी लोग अपने अपने विचार लिखकर भेजिए।
1: लेकिन यहाँ मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहती हूँ कि हमारे जो सखी और सखा है उनसे हम ये कहना चाहेंगे खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे, इसका आपको वर्णन नहीं करना है कि इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। मुहावरे का अर्थ तो हम सभी जानते हैं, आपको बताना है ऐसा कोई प्रसंग जो आपकी जिंदगी में घटा हो। कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आप खिसियानी बिल्ली बनकर खंबा नोच रही होंगे, है ना? या आपके सामने खड़ा कोई इंसान है आपके जीवन में कोई भी ऐसा हो जब आपको लगता है देखा खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे।
0: बिल्कुल,
1: तो वो प्रसंग आप लिखिए तो ज्यादा मजेदार ये जो है सेगमेंट बन सकता है।
0: बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, इस पे हमारे साथी सोचेंगे और लिखेंगे। और यादों से सुकून लेकिन बदलाव को समझे, इस पर भी अपनी अपनी यादें आप साझा कीजिए तो बहुत अच्छा लगेगा। और फिर हम लोग क्या चर्चा करते हैं ये तो आपको सुनकर पता चलेगा, है ना? हाँ। लेकिन उससे पहले एक बढ़िया से गीत सुन लेते हैं जो मौसम से ही मिलता जुलता गीत है।
1: चलिए सुनाइए।

0: तो देखिए कितना प्यारा सा गीत था, मौसम प्यार का. हमारे साथियों ने देखिए जो बातें लिखी हैं उनको तो हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे, लेकिन यादों से सुकून लेकिन बदलाव, इसके बारे में हम बात करेंगे. कि अक्सर होता है मंदाकिनी जी कि हम अपनी पुरानी यादों में खो जाते हैं, और अच्छी यादें होती हैं तो बड़ा सुकून मिलता है, वहीं अगर खराब यादें होती हैं तो हर समय वही घेरे रहती हैं, किसी काम में मन नहीं लगता है, उदासी से मन व्याकुल हो जाता है, और ना किसी से मिलने का और ना बात करने का ही मन करता है, ना कहीं जाने का मन करेगा, और एक तरफ से व्यक्ति पूरी तरह से मतलब उसको अजीब सा लगने लग जाता है, दूरियां बढ़ने लग जाती हैं. और हम जब जन्म लेते हैं, हर दिन उम्र के साथ बिताया पल अगले पल में यादें बन जाता है, जिनके साथ हम रहते हैं, परिवार के लोग, रिश्तेदार, आस पड़ोसी, संगी साथी, सभी के साथ बिताए दिन यादों में समा जाते हैं. और यादें हमारी अपनी स्मृतियों की अमूल्य धरोहर हैं, और जीवन पर्यंत वे बढ़ती ही जाती हैं, जिनको कोई चुरा नहीं सकता. जैसे हम कहते हैं ना कि ज्ञान विद्या को कोई चुरा नहीं सकता है, बिल्कुल ठीक इन यादों के साथ भी होता है ना मंदाकिनी जी.
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने. और देखिए बचपन का जो बिताया पल है, वो घर शहर अगर मोहल्ला की बात करें, गांव है गलियां हैं, हम उन दिनों क्या क्या इस्तेमाल करते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसा रहन सहन था, कैसा खान पान था, घर में सीमित साधन होते हुए भी हमारे पास सभी सुख सुविधाएं होती थी, और आपस में मिलकर हम त्योहार मनाते थे, कैसे मनाते थे, उनकी रौनक सब आंखों में याद करते ही तैर जाती है, और कहीं ना कहीं मन को बड़ा सुकून मिलता है. यही यादें हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखती हैं, और परेशानियों में उन्हें याद कर मुस्कुरा भी उठते हैं कि कैसे थे वे दिन, हम कितने खुश रहते थे. उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि सीमित दायरा था और ज्यादा आवश्यकताएं भी हमारे पास नहीं हुआ करती.
0: बिल्कुल. और उन दिनों रिश्तों में प्यार होता था, एक लगाव होता था मंदाकिनी जी, और अपनापन होता था, या कोई भी मेहमान या रिश्तेदार आते तो लगता था कि वे अपने साथ खूब दिन रुके, और उनके जाने की तारीख ये बहुत जानने की उत्सुकता बनी रहती थी कि वो कैसे भी पता चल जाए कि वो कितने दिन यहाँ रुक रहे हैं, कब जाने वाले हैं. तो उसी हिसाब से वो दिन बिताने या मौज मस्ती करने के बारे में हम लोग सभी लोग ऐसा सोचा करते थे. फिर उनके रहने पर तरह तरह के जो घर में पकवान बना करते थे, तो छत पर देर रात तक की बातें करना, बच्चे बच्चों के संग खेलते थे, नदी नहर तालाब पर जाना, नहाना, खेत घूमना, और पेड़ों पर झूलना, आदि बाग से फल तोड़ना चुराना, ये सब बहुत सारी यादें हैं जो एकदम से जुड़ जाती हैं उन.
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि बचपन का वो जो समय था हमारे लिए इतना कीमती था कि आज भी हम उसे भुला नहीं सकते हैं. न जाने कितनी यादें थी, लालटेन में पढ़ते थे, कुछ बच्चे शाम होते ही खुले आसमान में चांद तानों को निहारते हुए सोते थे, और सब आज ही कहकर याद करते हैं कि क्या दिन थे वो भी. हमारे जमाने में तो ऐसा होता था, और ऐसे हमारे जमाने में वैसा होता था, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आज भी हमें मिल जाते हैं. लेकिन केवल वक्त के बदलते दौर में मंजरी हम उन यादों के साथ तो नहीं जीवन गुजार सकते, है ना. जैसे ऋतुएं बदलती हैं, परिवेश परिस्थितियां बदलती हैं, समय बदलता है, और जीवन में कई परिवर्तन देखने को मिलते हैं. लोगों की सोच बदल गई है, अब जीवन शैली समृद्धि की ओर बढ़ चली है. आज नई टेक्नोलॉजी आ गई, नई सुविधाएं आ गई हैं, रसोई में सिलबट्टे की जगह मिक्सी ने ले ली है, चूल्हे की जगह गैस ने ले ली है, अंगीठी की जगह भी गैस ने ले ली है, और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण आ गए हैं हमारे घरों में. कभी हम पैदल चला करते थे, आज साइकिल तो स्कूटर कार से जाने लग गए हैं. घर में टीवी है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, लैपटॉप है, टैब है, सभी कुछ आ गया है, और सब ऑनलाइन भी हो गया है.
0: बिल्कुल. और इसीलिए कहते हैं ना मंदाकिनी जी कि यादों को सजो कर रखें, क्योंकि भविष्य के लिए हमें पहले के दिनों के संग और आज के दिनों में तालमेल बिठाना ही पड़ता है. और वैसे ही हम धीरे धीरे आज के

0: ढांचे में सुख सुविधाओं के आदि हो गए, जैसे कि इसके बिना रह ही नहीं सकते, तो पुरानी यादों को दोहराते भी है। और यादें जहां हमें भावनात्मक रूप से समृद्ध बनाती हैं और बदलाव हमें आगे बढ़ना सिखाता है। इसलिए पुरानी यादों को भूलिए नहीं और ना ही नए समय से दूरी बनाइए। यानी जीवन का जो सौंदर्य इसी में है कि हम बीते कल से सीखें और आज की पूरी शिद्दत से जिए और आने वाले कल का पूरे आत्मविश्वास से स्वागत करें, है ना।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और जिंदगी तो पल पल बदलती है मंजरी, और इसी प्रकार हमारी यादें भी धीरे धीरे धुंधली हो जाती हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, जब हम अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं, पुराने लम्हों को याद करते हैं किसी वजह से, तो हमें वो सब याद आ जाता है जिसका जिक्र अभी तुम कर रही हो।
0: और हमारे साथी भी देखिए एक संदेश में लिखा है उन्होंने कि बीते पलों की यादें जीवन का सबसे खूबसूरत और अमूल्य खजाना होती है। भाग दौड़ भरी जिंदगी, इस जिंदगी में जब हम कुछ पल ठहर कर स्मृतियों की खिड़की खोलते हैं तो एक असीम शांति और सुकून का एहसास होता है। यादों की मिठास मन को गहरा सुकून देती है जो हमें मुश्किल वक्त में संबल प्रदान करती है। वहीं जीवन का अटल नियम बदलाव हमें निरंतर आगे बढ़ने और परिस्थितियों के अनुसार ढलने की प्रेरणा देता है। पुरानी यादें हमारी जड़ों से भावनात्मक जुड़ाव प्रदान करती हैं। इन पुरानी यादों को एक मजबूत पूंजी के रूप में सजोएं, लेकिन वर्तमान के बदलावों को खुले मन से स्वीकारें। बहुत अच्छी सी बात
1: वही
0: चुकी है।
1: वो ना, जो परिवर्तन है वो प्रकृति का नियम है और उसे हमें स्वीकार करना ही होगा, है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि यादों में सुकून इसलिए है क्योंकि वहां सब कुछ अपने हिसाब से हमें सजावा लगता है। जो लोग चले गए, जो लम्हे गुजर गए, जो गलतियां हमने की थी, वो सब यादों में आकर धुंधली और खूबसूरत तो हो जाती हैं। वहां कोई शोर नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई डर नहीं होता, बस एक ठहराव है जो दिल को थाम लेता है। लेकिन अगर हम सिर्फ उसी सुकून में उलझे रहें तो वक्त हमारे हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि बदलाव को समझना बहुत जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि जिंदगी स्थिर नहीं है, लोग बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, हालात बदलते हैं, हमें स्वयं को भी उनके साथ बदलना पड़ता है। और इसी प्रकार इन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें लिखी हैं कि जो ये बदलाव है इसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, तभी जिंदगी में संतुलन बना रहता है।
0: बिल्कुल मंदाकिनी जी। और देखिए यादों की बातें करते करते हमारे पास अभी अंतराल का भी समय होने वाला है, तो अंतराल के बाद फिर हम सबसे मिलेंगे, सबसे बातें करेंगे, सबकी यादें साझा करेंगे। तो लेते हैं एक अंतराल।
1: ठीक है।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है और कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली। तो हम लोग बात कर रहे थे यादों के बारे में, तो हमारे साथी क्या लिखते हैं, लिखती है कि लकड़ी की चौखट में सजी काली स्लेट पर बचपन में सफेद सलेटी से वर्णमाला, बारह खड़ी और अंक लिपि लिखा करते थे, और अब आज उस समय की यादों सजोते हुए स्मार्टफोन और को दिल में बसाकर मैसेज भी लिखते हैं, क्योंकि पुरानी यादें हमें सुकून, शांति और खुशी देती है, वर्तमान की भागदौड़ में ऊर्जा देती है, लेकिन समय हमेशा एक सा नहीं रहता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें समय के साथ हो रहे बदलाव को भी पल पल समझना और अपनाना होगा, नहीं तो जीवन में हम पीछे रह जाएंगे। बहुत सारी यादें इन्होंने दी अपने संदेश में।
1: और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि यादें जीवन की सबसे अनमोल धरोहर होती हैं, कठिन समय में वही यादें हमें सुकून देती हैं और आगे बढ़ने का हौसला भी देती हैं, लेकिन हमेशा यादों में ही खोए रहना ठीक नहीं होता, यादों को दिल में संजोकर रखें लेकिन वर्तमान को पूरे मन से जिएं और आने वाले बदलावों का खुले दिल से स्वागत करें, क्योंकि सुंदर यादें हमें हमारी जड़ों से जोड़ती हैं और सकारात्मक बदलाव हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाता है, यही जीवन का संतुलन भी है।
0: और एक साथी लिखते हैं कि यादों से सुकून कहां पर, अब तो हर दर्द की सीमा पार है, जो यादों में थे वो ही मुस्कुराते मिलते हैं, सामने है जो बस वो तो एक झूठी मुस्कान लिए फिरते हैं, यादों का सुकून आज भी ढूंढ रहे हैं, मिल जाए आप तो हमें रास्ता उसका दिखा दीजिए।
1: वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि लकड़ी की चौखट में सजी काली स्लेट पर बचपन में सफेद सलेटी से वर्णमाला, बारह खड़ी, बहुत ही प्यारा लिखा है जिसे आपने शायद पढ़ भी दिया है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि यादों से सुकून कहाँ, अब तो हर दर्द की सीमा पार है, जो यादों में थे वो मुस्कुराते मिलते हैं, सामने हैं। अच्छा, ये भी आपने बता दिया है कि हमारे श्रोता कहते हैं कि जो सामने लोग मिल रहे हैं वो हमें झूठी मुस्कान के साथ मिलते हैं, ऐसा नहीं है, हम सखियां तो आपसे सच्ची मुस्कान के साथ मिलती है हमेशा
0: जी,
1: है ना। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि यादों में सुकून तो सच में बहुत मिलता है, कितनी सारी पुरानी बातें हैं जिनको हम हटाना नहीं चाहते हैं, और बच्चे कहते हैं अभी हम हटाइए दूसरा लाइए, और ये एक माया है जिससे लगाव मन में रहता है, उसे हटाना नहीं चाहता, फिर उसको जब छोड़ते हैं नई चीज आती है तो बहुत अच्छा भी लगता है।
0: तो चलिए इन्हीं यादों के साथ एक सुन लेते हैं गीत।
1: बिल्कुल।

0: तो बहुत अच्छा गीत सुनवाया अभी आपने, यादों का मेला तो हमारे साथ लगा ही रहता है
1: जी।
0: और हमारी श्रोता लिख भी रही थी कि वो जब अलमारी खोलती हैं और पुराने कपड़े देखती हैं, बहुत सारी चीजें जो अलमारी में पड़ी हैं वो उनकी यादों में सजीवी और फिर वो खो जाती हैं यादों में। अलमारी खोलती कई देर हो जाती है, उन्हें लगता है कि अरे मैं तो कहाँ खो गई। तो इस तरह से भी हमारे जीवन में बहुत बार होता है कि पुरानी चीजें हमसे छूटती नहीं है।
1: बिल्कुल। और हम लोग बात करने वाले हैं सखी विशेष के अंतर्गत मंदाकिनी जी, डॉक्टर स्वाति लोढ़ा जी के बारे में। आज सखी विशेष के अंतर्गत हम स्वाति लोढ़ा जी के बेहद जो प्रतिभाशाली बहुमुखी प्रतिमा की धनी और सफल व्यक्तित्व की महिलाएं डॉक्टर स्वाति लोढ़ा जी, पीएचडी शिक्षाविद, लेखिका, सामाजिक उद्यमी और कॉरपोरेट प्रशिक्षक होने के अलावा आप जोधपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की संस्थापक निदेशक और जेएनयू में प्रबंधन संकाय की डीन और मुंबई स्थित AIMSR आदित्य इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च की निदेशक भी रह चुकी हैं।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, डॉक्टर स्वाति लोढ़ा की हम बात कर रहे हैं। इस संस्थान को देश के शीर्ष 10 उभरते 20 स्कूलों में स्थान मिला है और इसके बाद वे प्रहलाद कक्कड़ स्कूल ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप में नेतृत्व विभाग में भी प्रमुख बनी है। और डॉक्टर स्वाति की बात जब चल रही है तो उन्होंने कई शैक्षणिक और सामाजिक पहलों की संस्थापक वो रही हैं। PD प्राइवेट लिमिटेड, इनकी स्थापना उन्होंने स्वाश PD प्राइवेट लिमिटेड, इसकी स्थापना उन्होंने 1997 में की थी और ये संस्था युवाओं को महिलाओं को पेशेवरों के व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व और कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान करती हैं।
1: इसके अलावा लाइफ लेमोनेट के आप संस्थापक भी हैं और ये उनके प्रशिक्षण एवं कोचिंग की पहल है और वे नेतृत्व, पेरेंटिंग, व्यक्तित्व विकास और जीवन कौशल और पर कार्यशालाएं एवं सेमिनार आयोजित करती हैं। उनके उल्टा स्कूल जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के सक्रिय, सार्थक और आत्मनिर्भर जीवन के लिए शुरू की गई उनकी एक सामाजिक पहल है। वर्तमान में भी वे एक डायरेक्टर के रूप में कार्य कर रही हैं। डॉक्टर स्वाति लोढ़ा ने 10,000 से अधिक कॉरपोरेट अधिकारियों और युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रशिक्षित किया है, उनके जीवन को प्रभावित किया है।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। और डॉक्टर स्वाति के व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं जिसमें शिक्षा, व्यक्तित्व विकास और जीवन के क्षेत्र में सक्रिय योगदान, देश भर में छात्रों को, शिक्षकों को, अभिभावकों और कॉरपोरेट संस्थाओं के लिए प्रेरक व्याख्यान और कार्यशालाओं का आयोजन करना
1: जी, महिलाओं के सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास करना, समय प्रबंधन, लक्ष्य निर्धारण, सकारात्मक सोच, संवाद कौशल और आत्मविश्वास जैसे विषयों पर मार्गदर्शन देना, लेखन के माध्यम से भी जीवन मूल्यों, प्रेरणा और सफलता के सूत्र साझा करती हैं।
0: बिल्कुल, डॉक्टर साहिबा की बेस्ट सेलर पुस्तक डोंट रेज योर चिल्ड्रन, रेज योर सेल्फ और साल 2020 में इन्होंने अपनी स्व सहायता पुस्तक कम ऑन गेट सेट गो लिखी और कविता से गद्य में जो है कदम भी रखा और इस पुस्तक का 15 से अधिक भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है और इसे भारत सरकार द्वारा 2002 में राष्ट्रीय राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था।
1: इसके साथ ही इन्हें वीर दुर्गादास पुरस्कार 2009 में, सूर्यदत्त राष्ट्रीय पुरस्कार 2014 में, भारत गौरव पुरस्कार 2016 में, JITO बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2017 में, टाइम्स पावर वुमेन पुरस्कार 2019 में और ग्रोथ बिट्स वुमेन आइकॉन पुरस्कार 2021 में मिला। आपके पति शैलेश लोढ़ा जो एक कवि और अभिनेता लेखक भी हैं और जी, डॉक्टर स्वाति लोढ़ा का मानना है कि सफलता केवल अच्छी शिक्षा से नहीं बल्कि सही सोच, अनुशासन, निरंतर सीखने की इच्छा और सकारात्मक दृष्टिकोण से मिलती है। वे युवाओं को अपने सपने पर विश्वास रखने, चुनौतियों से सीखने और जीवन में निरंतर आगे बढ़ने को प्रेरित करती हैं। तो ऐसी सफल महिला से हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए और हम लोग बढ़ते हैं गीत की ओर।

0: तो अंतराल के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं उफ घरों में सामानों की उठाई धराई के बारे में।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, जब पहले का समय होता था मंजरी, आज भी लगभग यही होता है, लेकिन कुछ अंदाज तौर तरीके बदल गए हैं। उठा धराई के काम का कहीं अंत तो होता नहीं। सुबह होते ही घर की महिलाएं या घर के लोग जो है घर के सामानों की उठा धराई में ही लगे रहते हैं। उनके दो हाथ 10 के बराबर हो जाते हैं, जिधर से निकले वहीं से सामान को झाड़ना पोछना सही से रखना शुरू कर देती है। खासतौर से महिलाएं जो सामान जहां से उठाया वहीं रख दिया, परिवार में सबको समझाते हुए वो थकती नहीं कि भी सभी चीजें सही समय पर रखें, मगर भला किसी के कान में कोई असर नहीं पड़ता, यानी जू तक नहीं रेंगती।
0: और एक समय था जब घर के छोटे बड़े दोनों तरह के घर हुआ करते थे मंदाकिनी जी, लेकिन सलीका बड़ा होता था। घरों में हर चीज अपनी जगह तय होती थी। दादी अम्मा कहती थी कि जो चीज जहां से उठाओ वहीं रख दो। अब यही छोटी छोटी सी आदत घरों को व्यवस्थित भी रखती थी और समय भी बचाती थी। पहले घरों में रसोई में तरह तरह के डिब्बे हुआ करते थे, आपको याद होगा है ना, और उनमें रंग से हम पहचान जाते थे कि अरहर की दाल के जो है वो है डब्बा है वो उसका ढक्कन जो है वो हरे रंग का है, चावल के डिब्बे का नाम बिगड़ चुका है घिस चुका है, और चीनी के डिब्बे का ढक्कन चूहा कुतर गया है, लेकिन डिब्बा नहीं बदला क्योंकि चींटी जाने की जगह नहीं उसमें हो पाई थी, है ना। तो जब माँ या दादी की रसोई कितनी भी उनकी छोटी सी दुनिया जैसी होती थी, आंख बंद करके भी वो बता देती थी कि चाय की पत्ती वाला डिब्बा दाईं तरफ तो दूसरे खाने में रखा है और जीरा उसके ठीक पीछे। सच पूछिए तो मंदाकिनी जी, उस जमाने में डिब्बे भी शायद अपनी जगह छोड़ने से डरा करते थे, है ना, और कोई बहू भला अम्मा की धराई को इधर उधर कर भी देना तो डांट पड़ने के आसार बन जाते थे, बल्कि क्या है कि पढ़ ही जाते थे।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग थे उनका हम सभी कहना भी मानते थे, उनका सम्मान भी करते थे। जैसा कि आज बच्चे भी चिल्लाकर माता पिता को डांट देते हैं, यूं कहें कि टोक देते हैं कि क्या मम्मी आप रोज शोर करती हैं या क्या पापा, है ना। तो पहले अनुशासन होता था और सबसे मजा आता था जब बक्सा जब हम खोलते थे, अम्मा का संदूक खुलता था और कोठी में अम्मा अपने उस बड़े से बक्से को संवारती थी, बच्चे फुदकते कंधे पर लटक जाते थे या पास में बैठकर उनके सामानों को निहारा करते थे और देखते थे कि दादी अम्मा का क्या खजाना है। ऊपर करीने से जो करीने से तह की हुई साड़ियां होती थी, उनके बीच में नीम की सूखी पत्तियां जो आज तो कहीं दिखाई भी नहीं देती है, और कहीं कपूर की हल्की सी खुशबू होती थी, और अम्मा की पल्लू में डिबिया बटुआ छुपा लेती जिसमें उन्होंने एक एक पाई जोड़ी होती थी। तो इस तरह का नजारा हमें याद आता है।
0: बिल्कुल, और उस बक्से में ना जाने कितनी सारी चीजें निकलती थी, जैसे चांदी के सिक्के, चांदी की सोने की सुपारी और चांदी की तश्तरी, कोने मुड़े हुए टूटे, और दादा का खत भी उसमें होता था मंदाकिनी जी, और पोटली में पुरानी आरती संग्रह, दुपट्टे में लिपटा श्वेत श्याम फोटो का एल्बम, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो का एल्बम, और उसकी यादों में खो जाती थी, और बच्चे पूछने लग जाते थे ये कौन वो कौन, यानी ये भी उठाई धराई का एक हिस्सा होता था। जब संदूक खुलता था तो उसमें यादों में ही आदमी खोया रहता था, व्यक्ति खोया रहता था। और अब अम्मा जो थी अपनी साड़ी के पल्लू में संदूक की चाबी बांध कर रखती थी, कभी कमर में खोज लेती और कभी अगर कोई पूछ भी बैठे कि अम्मा चाबी कहाँ है तो वो मुस्कुरा कर यही कहती भाई तुम्हें उससे क्या काम।
1: बिल्कुल सही कहा,
0: ये सब बातें भी उस समय बेहद याद आती हैं।
1: हाँ बिल्कुल, यही नजारा होता था जो आप अभी पेश कर रही हैं हमारी सखी और सखियों को। सूती बनारसी रेशमी साड़ी तो कहीं चमकी ले गोटे का गोला, जिसकी जो है जरी पीली पड़ चुकी होती थी, शादी के लहंगे से निकला हुआ वो भी संजो कर रखा होता था, छोटी पोटली, 2-3-5 के सिक्के, बिछिया की कई जोड़ियां, घिसी हुई टूटी पायल जो शायद किसी को बनवाने को तो नहीं बोल पाई, एक संकोच मन में रहा होगा अम्मा के, और या अब नई मिल गई होगी नई पहन ली होगी कि कभी इसको ठीक करवा के फिर से पहन लूंगी, और कंगन मोतियों की मालाएं जो थी, कजरोटा, शीशा कंघी, दुर्जनिया तंबाकू का डिब्बा और उसमें धरे सूती धागा, और वो सुई बटन हुक न जाने क्या क्या, मतलब कपड़ों को धूप दिखाई जाती थी, छत पर जाकर कपड़े सुखाए जाते थे, बक्सा झाड़ा जाता था, उन्हें फिर से धरा जाता था, और इसी में पूरा समय गुजर जाता था।
0: बिल्कुल, और कितनी सारी यादें पास चली आती थी, और सर्दी के मौसम में ऊनी कपड़ों को धोना, सुखाना, धूप दिखाना, रजाई गद्दे धूप में डालना, पलटना, फिर वापस धरना, घर भर के कपड़ों की सिलाई ठीक करना, अलमारी बक्से जमाना, यानी गर्मी आने से पहले ही वापस इन ऊनी कपड़ों को समेटना, और पापड़, चिप्स, कचरी, यानी क्या क्या बढ़िया है इन सबको बनाना, और बारिश से पहले पीपे भरकर सब रख लिया जाता था, और दिन महीने साल साल उसकी उठा धराई के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती थी, और सब काम एक अभियान जैसे होते थे, और जैसे लगता था घर आंगन में एकदम मेला लग गया,
1: और किसी के कोई शिकन या शिकायत नहीं होती थी चेहरे पर कि हम थक गए हैं या सारे दिन हम काम ही करते रहते हैं, ऐसा कोई भी नहीं, सब मिलकर घर को संवारते थे, बड़ा प्यारा नजारा होता था। मुझे याद है मेरी मौसी कहा करती थी कि हम गेहूं में तेल लगाकर उसको सुखाया करते थे, फिर उसको डब्बे में भरा करते थे, तो हम पूछते आप थकती नहीं है, कहती काहे की थकान, सब मिलकर काम करते हैं। तो घर के सभी सदस्य जानते थे कि कौन सी चीज कहाँ रखनी है, कहाँ रखी है और कहाँ मिलेगी, और इसीलिए काम भी जल्दी होता था और बिना कारण जो भाग दौड़ हुआ करती है आज के जमाने में वो नहीं होती थी। आले ताके जिनमें लालटेन, कुप्पी, मोमबत्ती, माचिस रखी रहती थी और लाइट जाने पर हाथ बढ़ाकर जला लिया जाता था उसे, हाथ के पंखे होते थे और खटिया, पलंग, तकिए, सिरहाने पर भी वो रखे होते
0: आराम
1: थे,
0: हाँ। मिल जाते थे आराम से, है ना?
1: जैसे ही लाइट गई हमारा हाथ जाता था या दादी अम्मा का, नानी का, और उठाकर पंखा जलना शुरू हो जाता था।
0: तो ये भी एक सही एक सामान को रखने का तरीका था कि एक जगह रखते थे, और घर का बड़ा हो या छोटा, सामान कम हो या ज्यादा, हर चीज का अपना एक ठिकाना होता था। शाम को परिवार मिलकर घर समेटता था, चारपाई अपनी जगह अखबार तय करके रख दिया जाता था, सिलाई का डिब्बा बंद होकर अलमारी में चला जाता था। सुबह घर ऐसा लगता था जैसे रात भर किसी ने प्यार से उसकी छोटी सी गूद दी हो।
1: बिल्कुल सही कह रही हो मंजरी जी। लेकिन अब आते हैं हम आज के दौर पर जहां बिल्कुल सब कुछ अलग हो गया है। कभी चश्मा यहां, मोबाइल वहां, चाबी किसी मेज पर, रिमोट सोफे के नीचे, मतलब आधा समय कहां है सामान, कहां है मेरे मोजे, कहां है मेरा मोबाइल, इसी धुन में जो है पूरे घर में हंगामा बना रहता है आज के समय में। और सामान ढूंढने में लगभग पूरा समय, ऑफिस को लेट हो जाते हैं लोग, लगता है जैसे घर का हर सामान रोज अपनी जगह बदलने की कसम खाकर बैठ गया हो।
0: बिल्कुल, और बच्चों के कमरे तो बिल्कुल अलग ही होते हैं कि उनमें चाहे जैसा भी सामान रखा हो तो बच्चे चाहते भी नहीं कि आप उनको समेटिए, वो कहते हैं कि भाई आप रहने दो माँ। और अब तो माओ का भी धैर्य छूट गया है कि भाई उन्हें लगता है कि क्या करना है इनका समेट के, तो फिर फैलाएंगे, क्योंकि वो भी जॉब कर रही है, थकी आई है, तो खाने में भी समय देना है उन्हें, तो जो उनके लिए अब क्या हो गया, छुट्टी वाला ही दिन उठाई धराई का हो गया है।
1: बिल्कुल, नौकरी पेशा जो महिला है ना, उन्हें संडे बहुत प्यारा होता है, पता है मंजरी, जब उन्हें कोई रविवार को बाहर बुलाता है तो वो जाना पसंद नहीं करती है, क्योंकि पूरा दिन वो संडे का इसी काम में बिताती है। तो आज सुविधाएं बढ़ गई है, सामान भी इतना बढ़ गया है घर में, दुनिया भर की अलमारियां, दुनिया भर की हमने सामान उठा के घर में भर लिए हैं, और कहीं भी हम इधर उधर रख देते हैं तो फिर ये आवाजें लगाने का सिलसिला है, कभी खत्म नहीं होता, भाई मेरा मोबाइल कहाँ है, मेरा पेन कहाँ है, मेरी शर्ट कहाँ है।
0: यानी कहने का मतलब ये कि जो उठाई धराई का जो काम था वो उस समय महिलाएं पूरे दिन भर इसी में लगी रहती थी, और कोई शिकवा शिकायत नहीं, चेहरे पर शिकन तक नहीं होती थी। तो आज के समय में है कि भाई अगर कोई आपका कर रहा है काम तो आप मिलकर हाथ बटाइए, और उठाई धराई थोड़ी कम हो गई लेकिन आप अपना सहयोग दीजिए।
1: तो मंजरी, इसका अंत में जो इन सभी बातों का जो निष्कर्ष निकला है वो ये है कि घर की शांति जो है केवल सुंदर सजावट से नहीं आती बल्कि छोटी छोटी आदतों से आती है। जब हर वस्तु अपने स्थान पर हो तो मन भी शांत रहता है और समय भी बचता है और घर स्वर्ग जैसा लगता है।
0: बिल्कुल, और हम लोग सुनते हैं गीत।
1: बिल्कुल।

0: हाँ तो मंजरी, अभी हमारे श्रोताओं ने भी अपने विचार लिखे हैं कि भाई हल्की फुल्की बातें, घर में सामान की जूठा पटक है, बहुत ज्यादा रोचक है ये विषय। जब हम घर में किसी सामान को एक नई जगह से सेट करने की कोशिश करते हैं तो बहुत ज्यादा मजा भी आता है, या कभी कभार झगड़ा भी हो जाता है कि नहीं, इस सामान को इस जगह पर रखना है, इस जगह पर नहीं रखना। इसमें परिवार वालों के अलग अलग मत हो जाते हैं, सबकी अलग अलग मर्जी होती है, किसी को वो सामान यहां जचता है, किसी को वहां जचता है, मुझे यहां मजा आ रहा है, और ये बहुत छोटा छोटा झगड़ा होने लगता है, लेकिन मजेदार होता है। और लास्ट में सामान जहां पर भी रखा जाता है वो देखना पड़ता है कि अक्सर गृहिणियों की पसंद ही होती है कि लास्ट में घर की जो महिला है, हाँ, मुख्य महिला, वो क्या चाहती है, वहीं पर सामान रखा जाता है।
1: और एक साथी लिखते हैं, जहां घर जहां लोग रहते हैं वहां रखी चीजों की जगह बदलती रहती है, कभी सफाई के लिए, कभी सजावट के लिए, और कभी बदलाव के लिए। इससे घर की सफाई होती है, बेकार वस्तुओं की पहचान होती है, और घर अधिक व्यवस्थित बना रहता है। साथ ही इस बहाने से कई पुरानी खोई चीजें मिल जाती है जो भूली बिसरी यादों को फिर से ताजा कर देती है।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखती है कि घर के सामान की उठा पटक कई बार लगता है, अच्छा ये चीज यहाँ नहीं वहां रखकर देखते हैं, अच्छा ये सामान यहाँ नहीं वहां रखकर देखते हैं, और ऐसा करते करते फिर चीज की सही जगह कौन सी है ये भी भूल जाते हैं।
1: और एक लिखते हैं कि उफ, घर में सामानों की उठा पटक और घर में गूंजती आवाजें, जरा ये अलमारी इधर सरका दो, वो डिब्बा ऊपर रख दो, अरे ये सामान यहाँ किसने रखा। बस यहीं से शुरू हो जाती घर में सामानों की उठापटक। इसी बीच अचानक कोई पुरानी तस्वीर, खोया जरूरी सामान, या किसी अपने का लिखा हुआ पत्र मिल जाए तो चेहरे की थकान पर मुस्कान आ जाती है। लेकिन इस उठापटक में कभी चाबी नहीं मिलती, चश्मा गायब हो जाता है, या फिर अन्य कोई जरूरत की चीज, फिर जवाब मिलता है अभी तो यही रखा था। ऐसे में झुंझलाहट और गुस्सा भी बहुत आता है, लेकिन उठापटक करते समय धैर्य भी बनाए रखना बहुत जरूरी होता है।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक और खत है हमारे संदेश के रूप में कि सामान की उठा पटक का मौसम आने ही वाला है, ये कहीं आ ही गया है, यानी त्योहार का मौसम, अगस्त माह से तैयारियां आरंभ हो जाएंगी, और इसमें शामिल रहेगा घर की सफाई, रंग रोगन, पर्दे बदलना, इन सबको करते करते कुछ तो सामान की उठा पटक होगी ही, कुछ शरीर की भी, कभी गिरते हैं, कभी सामान उठाते हुए लड़खड़ा जाते हैं, कभी बड़ों की आवाज आती है, संभाल कर रखना भाई, गिरना नहीं गिराना नहीं, कहीं आवाज आती है अभी मजा, अभी यहां से हटा दो, बस यही करते करते कुछ टूट भी जाता है, कुछ बिखर भी जाता है।
1: यानी बहुत सारी बातें हमारे साथियों ने लिखकर भेजी हैं, और इसी की तरह जिके मुहावरों की दुनिया में भी हमारे साथियों ने लिखकर भेजा, जो हमने आज दिया था कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे पर। तो इस पर लिखते हैं कि मुहावरों की दुनिया भी अजब गजब की है, जहां हमें गागर में सागर जैसा अनुभव होता है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, यहां नोचने का अर्थ झटकने से खींचना, उखाड़ना या खरोचना होता है। जो व्यक्ति अपनी गलती के कारण शर्मिंदगी व्यक्त करने के बजाय क्रोधित होकर दूसरों पर गुस्सा निकालता है, उसी पर यह मुहावरा प्रयोग किया जाता है, मेरी बिल्ली और मुझे से म्याऊं।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि मुहावरों की दुनिया बड़ी निराली है। अभी हाल ही में मैं एक कहानी संग्रह की समीक्षा लिख रही थी, क्या बात है, और उसमें कहानी की नायिका बहुत खूबसूरत है, और कुछ ऑफिस के कर्मचारी उसके बारे में तरह तरह के कयास लगाते रहते हैं। मैं उस एक जगह पर अटक गई और फिर वहीं बड़ी देर तक कुछ नहीं सूझा, तो मैंने इसी मुहावरे का प्रयोग किया, और इस मुहावरे के प्रयोग से मेरी समीक्षा को तर्क मिल गया, क्योंकि साथी कर्मचारी जब हर तरह से असफल हो गए तो नायिका के बारे में गलत गलत अफवाह उड़ाने लग गई।
1: तो चलिए एक पहले गीत सुन लेते हैं, फिर हम आगे और संदेश पढ़ते हैं।
0: चलिए

0: तो बात चल रही थी कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे क्या है ना। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि अपनी असफलता या लज्जा पर गुस्सा होना और झुंझलाट को किसी निर्दोष पर या व्यर्थ की चीजों पर निकालना। मुहावरे की उत्पत्ति और भाव, जब तक कोई बिल्ली किसी चूहे को पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन चूहा भाग जाता है, बिल्ली पकड़ नहीं पाती, शर्मिंदा होकर पास खड़े खम्बे पर अपने नाखून गड़ाने लगती है। इसी स्थिति को इंसानों की इस मनोदशा से जोड़ा गया है, जहां व्यक्ति अपनी गलती या कमजोरी स्वीकार करने के बजाय दूसरों पर दोष मन देता है और मतलब का गुस्सा दिखाता है। वाक्य प्रयोग से बेहतर तरीके से समझने के लिए यहाँ कुछ उन्होंने उदाहरण भी दे दिए हैं, जैसे हम अपने परीक्षा पेपर में देते हैं। हमारे श्रोताओं ने भी बहुत प्यारे प्यारे उदाहरण लिखकर हमें भेजे हैं।
1: और इसके साथ ही एक लिखते हैं, किसानी बिल्ली खम्बा नोचे, अपनी ही गलती होने पर खुद पर शर्मिंदा होना और गुस्सा करके किसी पर भड़ास निकालना या किसी चीज को नोच डालना, इन्होंने लिखा है। और इसी के साथ ही एक साथ लिखते हैं कि किसानी बिल्ली खम्बा नोचे, लोकोक्ति का अर्थ किसी बात पर लज्जित होकर क्रोध करना है, अन्य विकल्प असंगत है, अतः सही विकल्प किसी बात पर लज्जित होकर क्रोध करना है। एग्जाम्पल में इन्होंने लिखा है कि तुम खुद परीक्षा में पास नहीं हो सके और मास्टर जी पर दोष लगा रहे हो। ये तो वही बात हुई कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे।
0: वही एक श्रोता ने लिखा है कि एक प्रसिद्ध हिंदी मुहावरा है, अपनी असफलता या शर्मिंदगी के कारण गुस्सा होना और उस झुंझलाहट में दूसरों पर गुस्सा निकालना, यानी बेमतलब की उल्टी सीधी हरकतें करना। जब कोई व्यक्ति किसी काम में नाकामयाब हो जाता है या उसे अपनी ही गलती पर शर्मिंदगी महसूस होती है लेकिन वो उस गलती को स्वीकार नहीं करना चाहता, तो वो अपना गुस्सा या खीज किसी और चीज पर निकालता है। घर में भी अगर बड़ों का मन किसी बात पर खराब है तो अपनी खीज बच्चों पर हम निकालते हैं और अपने से छोटे पर भी हम निकालते हैं। इसे ही कहते हैं खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे।
1: और एक साथी लिखते हैं कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, जब कोई गलती पर शर्मिंदा ना होना गुस्सा किसी पर उतारते हुए क्रोधित हो जाए, ऐसी ही कहावत गुजराती कि लाज माने बदले गाजवू, शर्मिंदा ना होकर गुस्सा करना, इन्होंने लिखा है।
0: जी वही एक श्रोता लिखते हैं कि आजकल बड़े बड़े कॉरपोरेट ऑफिस में और अन्य संस्थानों में देखा जाता है कि वहां उच्च अधिकारी अपनी खुद की असफलता के कारण उसे छुपाने के लिए कार्यस्थल पर कर्मचारियों पर क्रोधित हो जाते हैं और वो अपने घर पर बेचारी पत्नी और बच्चों पर गुस्सा निकालते हैं। इस मुहावरे का चरितार्थ करते हैं कि खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे, जो कि बहुत ही गलत बात है।
1: और एक साथी लिखते हैं कि घर परिवार रिश्तेदार में खिसियानी बिल्ली वाले बात हमेशा ही होती है। रिश्तेदारी में ही दो बहनों में कुछ मनमुटाव हो गया, जबकि उसमें से एक बहन बैठने पर कुछ कुछ बात बोल रही थी, दूसरी बहन को लगा कि ये उन लोगों की बात हो रही। उस समय तो कुछ नहीं बोली, बाद में वो हम ही लोग से उलझ गई और हमें समझ में नहीं आया कि इसके पीछे इतनी ये आग बबूला क्यों हो रही है। सबके सामने कुपचिकी चिल्लाई, बाद में जब उसे पता चला तो हम सब में से ये कहकर खूब हंसे कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे।
0: और एक आखिरी और है संदेश, वो लिखते हैं कि पुराने समय में घी दूध मक्खन को छत पर रस्सी का छीका बांधकर सुरक्षित रखा जाता था ताकि बिल्ली उछलकर भी वहां तक नहीं पहुंचे। जब बिल्ली वाकई में चढ़ने के लिए खम्बे नोचती है तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां तक नहीं पहुंचती तो फिर वो खम्बा नोचने लग जाती है।
1: तो चलिए इसी के साथ सुन लेते हैं।

0: तो मंदाकिनी जी, देखिए बातें करते करते प्रोग्राम एकदम समापन की ओर आ गया है, तो चलते हैं, लेते हैं सबसे विदा। तो सभी को मंजरी वर्मा और
1: मंदाकिनी जोशी का नमस्कार।
0: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: सखी सहेली
1: Thank you.

0: सेल्यूलॉइड के सितारे।
1: शाम के 4 बजने वाले हैं, आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार।
2: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। कोयला मंत्रालय द्वारा कल नई दिल्ली में कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी की उपस्थिति में खान बंद करने संबंधी वार्षिक रिपोर्ट जारी की जाएगी। यह रिपोर्ट भारत की 42 बंद कोयला खदानों की परिवर्तनकारी यात्रा को प्रस्तुत करती है। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया पीएलएफआई के पूर्व सदस्य राजन राम हत्याकांड मामले में रांची के अपर न्यायायुक्त अखिलेश कुमार तिवारी की अदालत 1 अगस्त को फैसला सुनाएगी। इस मामले में सुनवाई और ट्रायल की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। पाकुड़ जिले के मालपहाड़ी आउट पोस्ट क्षेत्र के पत्थरगड्ढा गांव में छापेमारी कर पुलिस ने अवैध विदेशी शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुमार गौरव के नेतृत्व में की गई छापेमारी में मालपहाड़ी ओपी प्रभारी और उनकी पुलिस टीम ने यह कार्रवाई की। लोहरदगा जिले में पुलिस ने पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर हत्या की नियत से हथियार लेकर घूम रहे 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 1 देसी पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस तथा कई अन्य सामान बरामद किए हैं। श्रावणी मेला 2026 के दौरान बाबा वैद्यनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पूर्व रेलवे का आसनसोल मंडल विशेष मेमू डेमू और पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन करेगा। आगामी 29 जुलाई से 30 अगस्त तक जसीडीह वैद्यनाथ धाम बासुकीनाथ और देवघर के बीच कुल 33 फेरों के साथ कई मेला स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। और उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा 1 दिन के विराम के बाद आज फिर से शुरू हो गई है। लगातार बारिश और यात्रा मार्गों पर भूस्खलन की आशंका को देखते हुए कल यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित की गई थी। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: जय जय शिव शंकर, लगे न कंकर, प्याला तेरे नाम का।
4: कभी इन गानों ने हमारी मोहब्बत

0: आज हम आपको सुनवा रहे हैं राकेश आनंद बख्शी से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। आज हम उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ अनसुने और कुछ सुने किस्से आपके साथ शेयर करेंगे। राकेश जी बहुत बहुत स्वागत।
1: नमस्कार, मुझे खुशी है कि मैं ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर आया हूँ। 1950 में बख्शी साहब ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन दिल्ली में गए थे
0: जी,
1: उन्होंने वॉइस टेस्ट दिया था
0: उद्घोषक बनने का।
1: हाँ जी, और वो फेल हो गए थे।
0: बिल्कुल, उसके बाद उन्होंने खुद को एक चिट्ठी लिखी थी और खुद से एक वादा किया था जो सारा मामला है। पर सोचिए कि ये कनेक्शन बख्शी साहब का रेडियो के साथ है। एक और कनेक्शन है, जब उनका पहला गाना उन्होंने रेडियो पर सुना था, यही से बातें शुरू कर।
1: चुन्नू पतंग को कहता है काई,
2: चुन्नू पतंग को कहता है काई, बोलो बेटा टिंगू ये रॉन्ग है या राइट, राइट राइट राइट,
0: बोलो जी ये रॉन्ग है या राइट।
1: पहली बार उन्होंने अपना गाना सुना था
0: जी
1: एक गली में, दिल्ली में घूमते घूमते, यार ये तो मेरा गाना बज रहा है। तो उनका जो बचपन का सपना था कि एक दिन मेरे गाने बजेंगे रेडियो पर
0: जी,
1: वो उस दिन पूरा हुआ।
0: क्या बात है। तो ये बख्शी साहब का जो रेडियो कनेक्शन है, उसके अलावा एक और कनेक्शन है, आप जानते हैं क्या? वो ये है कि दुनिया का कोई भी रेडियो स्टेशन जो फिल्मी गाने बजाता है, कोई दिन ऐसा नहीं हो सकता जब बख्शी साहब के गाने नहीं बजते हो।
1: यस, और एक और कनेक्शन है।
0: अच्छा,
1: कि उनकी जो जीवनी है
0: जी,
1: उसको ट्रांसलेट इंग्लिश से हिंदी में आरजे यूनुस खान ने किया
0: जी, वो भी ये मेरा सौभाग्य है,
1: तीसरा कनेक्शन बन गया।
0: जी जी बिल्कुल। तो शुरू से शुरू करते हैं, बख्शी साहब कहाँ पैदा हुए थे और वो जो खानदान था वो किस हैसियत का खानदान था, वहाँ लोग क्या क्या काम किया करते थे?
1: तो बख्शी साहब पैदा हुए थे भारत में, फिर उसका विभाजन हुआ, भारत में रावलपिंडी में पैदा हुए थे, 17 साल उन्होंने रावलपिंडी में गुजारे, और फिर विभाजन हुआ तो फिर वो पाकिस्तान बन गया
0: जी।
1: तो 1947 में वो इंडिया आए,
0: सरहद के इस पार आ गए।
1: हाँ, जो उनके 17 साल थे, वो उन्होंने एक गाना है उनका, मेरे देश में पवन चले पुरवाई
0: जी,
1: मेरे देश में,
0: बिल्कुल।
1: तो वो कहते हैं कि अगर मैंने गांव की जिंदगी नहीं जी होती तो ऐसा मैं गाना लिख ही नहीं पाता।
0: क्या प्यारी बात।
1: अगर मैंने वो गाना लिखा है इसलिए क्योंकि मैंने वो पानी पिया है, खेतों में नहा हूं, खेतों से अनाज उठाया है,
0: इसीलिए जिगरी दोस्त का वो गाना जो है वो इतना सुंदर बन पड़ा है।
1: हाँ,
0: उसमें उन्होंने पूरा वर्णन किया है।
1: हाँ, पवन चले पुरवाई।
0: हाँ,
1: क्योंकि जी सिंह के हमारे खुले गांव में,
0: हाँ,
1: सबसे ज्यादा मजा जो है वो एक आकाश का होता है, खुला आकाश, और दूसरा पवन।
0: बिल्कुल,
1: पवन का जो मजा है और जो बरसात का मजा है, पवन और खुले आसमान के नीचे, उसकी वो बातें

0: उनको अपनी मिट्टी से बहुत प्यार था। उन्होंने
1: वो जब रावलपिंडी से दिल्ली आए थे तो एक छोटी दवाई की शीशी में, खाली शीशी में वो मिट्टी भी लाए थे रावलपिंडी की, और जिंदगी भर उन्होंने वो मिट्टी रखी थी अपने कबर्ड में उस बॉटल के अंदर।
0: मैं एक चीज का जिक्र करना चाहता हूँ कि जो मिट्टी से प्यार, जो गांव से प्यार है, उसकी एक मिसाल है। मेरे देश में पवन चले पुरवाई में बख्शी साहब लिखते हैं, अमवा की डाली पे कोयल गीत सुनाए कोमल कोमल, मेरे बाग की कलियां हो पतझड़ मस्त बहारें जैसे, पत्थर भी हैं तारों जैसे मेरे गांव की गलियों के, मेरे खेत की मिट्टी ने सोने की मूरत पाई, मेरे देश में पवन चले पुरवाई। ये गांव की मिट्टी से उनका प्यार था।
1: अमवा

0: ये गांव वाले लिख सकते हैं। और एक रावलपिंडी की मिट्टी, पिंडी की मिट्टी,
1: उसका पिंडी कहते थे जी, रावलपिंडी नहीं कहते थे।
0: उन्होंने एक कविता लिखी है, उसका जिक्र कीजिए।
1: उन्होंने वो कविता लिखी थी क्योंकि उनको क्या होता है, वो भले वो विभाजन हो गया और एक दूसरा देश बन गया
0: जी,
1: लेकिन जन्म तो वही हुआ था ना।
0: बिल्कुल,
1: तो उनके लिए वो जन्मभूमि है। जब इंसान अपनी माँ से बिछड़ जाए 5 साल की उम्र में, तो वो भी तो मिट्टी है, वो भी तो एक भूमि क्या होती है, वो भी तो पैदा करती है ना। भूमि गर्भ होती है, गर्भ में से ही सब निकलता है ना, अनाज निकलता है, पानी आता है। तो वैसे ही जब माँ भी गुजर गई 5 साल की उम्र में, और मिट्टी भी रह गई पीछे 17 साल की उम्र में, तो एक जो दर्द महसूस होता है कि वो जो एक मातृभूमि है वो चली गई, दोनों माँ चली गई, एक जिसने जन्म दिया, एक जिसकी कोख से जन्म लिया। तो इसलिए वो ऐसी उन्होंने ये कविता लिखी थी, कविता का नाम है
0: पिंडी की मिट्टी। तो मेरा सौभाग्य है कि वो कविता मैंने पढ़ी है। एक किताब है बख्शी साहब की कविताओं की, जिसमें वो संग्रहित,
1: मैं जादू हूं चल जाऊंगा
0: जी,
1: उसमें लिखी है, मेंशन की हुई है।
0: बख्शी साहब के बचपन की कुछ दिलचस्प घटनाएं हमारे साथ बांटी है, जैसे वो बच्चों के साथ खेलते थे, वो सिनेमा, साइकिल, गाना, ये सारी चीज।
1: क्योंकि उनके जो ग्रैंडफादर थे दादाजी, वो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस थे।
0: अरे ये तो बहुत बड़ी पोस्ट होती है भाई,
1: सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ एंटायर पंजाब, ऑल द जेल्स,
0: पंजाब प्रांत,
1: पूरा प्रांत, अनडिवाइडेड पंजाब का जो जेल्स थे वो जेलर थे, उसकी वजह से सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, वेरी बिग, वेरी पावरफुल मैन। उनका जो घर है अभी कुछ 3-4 साल पहले ही वो डिमोलिश हुआ है, 3 मंजिल का घर था वो। और ही वॉज द ओनली चाइल्ड फैमिली जिनके पास साइकिल थी। तो वो साइकिल भी इतनी खास चीज थी तब कि जब वो कहीं भी जाते थे साइकिल छोड़ आते थे, कोई ना कोई घर में साइकिल छोड़ जाता था वापस,
0: सब पहचानते थे
1: कि दरोगा जी के पोते की साइकिल है ये।
0: क्या कहलाती है, मोहियाल,
1: मोहियाल, मोहियाल, हाँ, पंजाबियों में एक कम्युनिटी होती है मोहियाल्स
0: जी।
1: तो हमारे जो एंसेस्टर्स हैं हमारे कम्युनिटी में, अभी मेरे जो रिलेटिव्स भी हैं, मोर देन 50% रिलेटिव्स हमारे आर्मी या नेवी या एयरफोर्स में है, बिकॉज वी आर अ मार्शल क्लैन
0: जी जी,
1: हाँ, वी वर द प्रोटेक्टर्स ऑफ सोसाइटी, क्षत्रिय ऑफ सोसाइटी। और उनको शौक था फिल्मों का, और फिल्म देखने के लिए पैसा नहीं मिलता था, क्योंकि उस टाइम पे फिल्म का काम करना या फिल्म देखना कंजरों का काम होता था,
0: खराब माना जाता।
1: हाँ, तो उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास, एक सिनेमा हॉल था वहां पे पास में, तो वहां पे वो टेम्पररी नौकरी ले लेते थे कभी हफ्ते में 2-3 दिन। क्यों, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में।
0: अरे गजब।
1: हाँ, क्योंकि अगर आप सिनेमा में काम करोगे और लोगों को सीट बताओगे, सीट कहाँ बैठना है,

0: या डोरमैन का काम करोगे स्कूल के बाद, तो फिल्म पूरी देखने को मिलती है फ्री में, तो फिर दादाजी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है, फिल्म देखने को मिलने भी नहीं वाले, तो ये उनका टाइम पास होता था कि चलो मैं इसी बहाने फिल्में देखूंगा। तो जिस दिन पिताजी को पता चला कि इसने ऐसी नौकरी पकड़ी हुई है टाइम पास,
1: और जबकि वो बच्चे थे उस वक्त,
0: बच्चे थे और स्कूल की पढ़ाई नहीं ठीक से कर रहे थे और जाके इधर नौकरी कर रहे थे सिनेमा हॉल में फ्री में फिल्म देखने के लिए, तो जो उनके दादाजी की जो छड़ी थी, वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद, जबरदस्त मार पड़ी कि तुमने ऐसा क्यों किया जब हमारे को पैसों की जरूरत ही नहीं है और तुम भी ये काम कर रहे हो, गलत काम है ये फिल्में देखना, अभी तुम्हारा पढ़ाई का वक्त है। इतना शौक था उनको
1: जी जी,
0: और वो करीब कुछ 12-13 साल की उम्र से ही नज़्में लिख भी रहे थे, उसकी धुन भी बनाते थे, उसको गाते भी थे और उस पर एक्टिंग भी करते थे।
1: वाह वाह,
0: क्योंकि जब मोहल्ले में रामलीला होती थी
1: जी,
0: तो उनको भी पकड़ा जाता था डायलॉग, मतलब स्क्रिप्ट लिखने के लिए रामायण का। तो जितने भी हमारे कल्चरल फेस्टिवल होते थे हिंदू के, तो उसमें सारे में बख्शी साहब टीनेजर को बुलाया जाता था, अरे वो बख्शी को बुलाओ, अरे वो दरोगा जी के पोते को बुलाओ, वो अच्छा लिखता है, अच्छा गाता है, अच्छी एक्टिंग करता है, तो सब कर लेते थे, लिख भी लेते थे, उसको धुन भी बना देते थे, गा भी लेते थे, उसकी एक्टिंग भी कर लेते थे।
1: और उनका ख्वाब बंबई जाने का था।
0: हाँ, फिल्में देखते हैं तो पता चलता है ये कहाँ बनी है, बंबई से बंबई में बनती है। अच्छा, बंबई किधर है?
1: समुद्र के पार है।
0: समुद्र के पार है, तो उनको ये था कि मैं बंबई जाऊं, लेकिन उनको पता नहीं था बंबई क्या है, ये कि बंबई में फिल्में बनती हैं।
1: हाँ।
0: तो अगर गाना गाना है या गाना लिखना है या एक्टिंग करनी है या धुन बनानी है तो बंबई जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो गांव में कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं।
1: एक छोटे से बच्चे को ये समझ में आ गया कि उसकी मंजिल बंबई है।
0: तो जब वो 14 साल के थे, उनको नेवी में भर्ती किया गया, क्योंकि हमारी सारी एंसेस्ट्री नेवी में थी, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स या पुलिस, बिकॉज देवर मार्शल क्लैन।
1: तो 14 साल की उम्र तो बहुत कम होती है, तो कैडेट बन गए वो।
0: कैडेट, यू वाज़ अ नेवल कैडेट, और उनकी भर्ती हुई दो शिफ्ट थी, INS हिंदुस्तान और INS दिलावर, इन दो शिफ्ट में पढ़ाई जाती थी नेवल की जो पढ़ाई है।
1: और ये तो अंग्रेजों का जमाना था।
0: हाँ, 1942। तो जो पहला साल उनका नेवी में था कराची पोर्ट में, तो वहां म्यूटिनी शुरू हो गई। तो जो म्यूटिनी हुई वो बम्बई में हुई, बॉम्बे पोर्ट, कलकत्ता पोर्ट, मद्रास पोर्ट और कराची पोर्ट।
1: ये जो बगावत थी नेवी की, ये बहुत मशहूर है,
0: बहुत मशहूर है,
1: इसका इतिहास में दर्ज है।
0: पहली बगावत, सेकंड बगावत थी जब ब्रिटिश ने रियलाइज किया कि हम इस देश पे राज नहीं कर सकेंगे
1: जी।
0: क्योंकि देखिए, आम आदमी प्रोटेस्ट करे तो वो तो करेगा प्रोटेस्ट, लेकिन अगर आपकी नेवल फोर्स आपके अगेंस्ट चले जाए, आपकी आर्मी आपके अगेंस्ट चली जाए, आपकी पुलिस आपके, कू बन जाता है, लेकिन भी कू
1: बिल्कुल।
0: तो दैट इज वेन रिलाइज, यार ये तो इन पे राज करना मुश्किल होगा
1: जी।
0: तो उन्होंने उसमें भाग लिया था, और उनका जो ये जो उन्होंने नेवी ज्वाइन की थी ना, नेवी इसलिए नहीं ज्वाइन की थी क्योंकि वो पेट्रियोटिक थे। उन्होंने नेवी ज्वाइन की थी कि कराची में बोट में पढ़ाई होती है, शिप में पढ़ाई होती है, और वो शिप में घुमाते हैं, तो जब मेरी शिप बंबई जाएगी मैं शिप से जंप मार के भाग जाऊंगा, नेवी छोड़ के भाग जाऊंगा और जाके फिल्म लाइन ज्वाइन कर लूंगा। तो उनका जो गोल था वो देश के लिए नहीं था नेवी ज्वाइन करना, वो जो देश के लिए गोल था वो जब म्यूटिनी हुई तब पैदा हुआ। वहां उनको एहसास हुआ, क्योंकि जब वो पकड़े गए सब और जेल हुई, तो तब उनको उनमें ये एक एहसास हुआ कि हम गुलाम हैं। तब तक उनको वो गुलामी का एहसास नहीं था,
1: क्योंकि उम्र भी बहुत कम थी,
0: बहुत कम थी
1: जी।
0: और क्या होता है कि दादाजी भी पुलिस में है, सच्चे पावरफुल पोस्ट, तो आपको कोई गुलाम की तरह रखेगा नहीं ना, तो आपको गुलामी का एहसास नहीं होता। तो जब इनको कराची में अरेस्ट किया गया, जब म्यूटिनी को स्मैश किया गया, डिमोलिश किया गया बाय द ब्रिटिश, उनके जो ऑफिसर थे वो अंग्रेज था, तो उन्होंने पकड़ा इनको, सबको पकड़ा, जेल में गए। तो जेल में जब गए और बख्शी साहब को देखा, तो उसने बोला ये बच्चा कौन है, ये तो अंडर एज है। तो बख्शी साहब को उन्होंने बोला कि तुम तो बच्चे हो, यू आर नॉट 18 एज येट, तो अगर तुम्हें जेल होती है, अगर मैं तुम्हें जेल में भेजता हूं तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि जेल की लाइफ बहुत अलग लाइफ होती है।
1: हाँ बिल्कुल।
0: तो मैंने चाहता हूँ कि तुम्हारी इतनी कम उम्र में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाए, तो इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ
1: जी।
0: लेकिन क्योंकि मैं एक ऑफिसर हूँ ब्रिटिश नेवी का, तो मैं तुम्हें रेस्टिकेट करूंगा नेवी से। तो उनको रेस्टिकेट किया गया, यू हैव टू लीव। फिर लीव करके फिर उनके बाद वो गए, उन्होंने जब पार्टीशन हुआ, इंडिया आए, दिल्ली आए, तो वहां उन्होंने फिर इंडियन आर्मी ज्वाइन की सिग्नल्स।
1: इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो जो रॉयल इंडियन नेवी के जो फौजी अफसर थे, उनके प्रति बहुत सम्मान था बख्शी साहब के जहन में, क्योंकि अगर वो जेल भेज देते तो पूरी जिंदगी बदल जाती।
0: हाँ, तो वो कहते हैं ना कि एक तो माँ होती है जो जन्म देती है, और एक जो माँ होती है जो एक आगे जिंदगी बढ़ाती है
1: जी।
0: तो ही ऑलवेज थॉट कि इट इज अ वेरी मदर लाइक एक्ट
1: जी,
0: एक माँ की तरह एक उन्होंने उस बच्चे को एक सेकेंड लाइफ दी कि तू जा
1: जी,
0: देखो मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी जेल में,
1: और छोड़ दिया। सबसे

0: यू आर रस्टिकेटेड विद डिसऑनर.
1: अब जब घर आए तो क्या हाल हुआ?
0: घर आए तो फिर नेचुरली फिर तो इमीडिएटली अपना एक साल में पार्टीशन हो गया ना देश का, अपना भारत का. तो फिर उससे पहले उनको उधर भेजा गया गुरुकुल, जम्मू के पास में गुरुकुल था, तो वहां गुरुकुल में भेजा गया पढ़ाई के लिए, क्योंकि यहाँ रावलपिंडी में वो सिनेमा हॉल में ये चले जाते थे छोटा मोटा काम करने के लिए, पैसे नहीं मिलते थे लेकिन फिल्म देखने को मिलती थी. तो ये सब पकड़ी गई, सब उनकी सब चोरी पकड़ी गई था ये तो. और दूसरी एक बात थी कि एक बार उनके स्कूल में दो दोस्त बने थे उनके, तीन दोस्त थे स्कूल में, और तीनों का ये सपना था कि हम बम्बई जाएंगे कुछ काम करेंगे. बख्शी साहब का था कि मैं फिल्म ज्वाइन करूंगा,
1: बाकी दोस्तों
0: का कुछ था उनका कुछ सपना था. तो इन्होंने तीनों ने स्कूल की सारी किताबें बेच दी.
1: अरे बाप रे.
0: बैग वैग सब बेच दिया, पानी की बोतल सब बेच, सब कुछ जो भी स्कूल का सामान था सारा बेच दिया. और वो जिससे पैसे मिले वो जाके सुबह सुबह रेलवे स्टेशन में खड़े हो गए कि सुबह हम मिलेंगे इतने बजे और हम ये ट्रेन पकड़ेंगे, ये ट्रेन यहाँ जाएगी, यहाँ से वहां जाएगी, वहां से वहां जाएगी, वहां से बम्बई पहुंच जाएगी.
1: हाँ हाँ.
0: और हम घर में नहीं बताएंगे. अभी वो चले गए, पहुंच गए, अपना सामान वामान बेच के सब पैसे वैसे जेब में, जो भी 5-10, 6 रुपया, 1 रुपया जो भी मिला होगा उसका जेब में डाल के, अपने 2-3 एक जोड़ी कपड़ा वपड़ा कपड़े की थैली में लटका के, पानी वानी, पहुंच गए स्टेशन. 5, 6, 8, 12 घंटे निकल के वो आए नहीं दोनों दोस्त. घर चले गए वापस, घर चले गए वापस. तो फिर मालूम पड़ा कि तो सारी किताबें बेच दी इसने, कल स्कूल है,
1: फिर
0: स्कूल जाने के लिए सब जबरदस्त पिटाई हुई.
1: अरे अरे.
0: तो उसका इलाज उन्होंने क्या ढूंढा कि यहाँ से निकालो, ये यहाँ खराब हो गया गांव में,
1: यहाँ गलत संगत,
0: गलत संगत होगी इसकी. हाँ. इसके बेकार बेकार से सपने हैं इसके बम्बई जाने के, फिल्म लाइन ज्वाइन करने के. तो इसको गुरुकुल भेजो, गुरुकुल में खूब पिटाई होगी, इसकी पढ़ाई भी होगी और साथ में डिसिप्लिन, डिसिप्लिन होता ना, बिकॉज एवरीथिंग इज धार्मिक. तो वहां ये सुधर जाएगा. तो भेजा.

0: गुरुकुल ज्वाइन किया तो गुरुकुल में एक ऑफिसर आया था, ही वाज अ ब्रिटिश बॉक्सर, ब्रिटिश था वो, अंग्रेज था और वो बॉक्सर था और टीचर था, बॉक्सिंग सिखाता था वो।
1: अच्छा, मतलब गुरुकुल में इस बात पर बहुत ध्यान दिया जाता था, मतलब कि बच्चे हट्टे कट्टे बने, तंदुरुस्त बने, वो
0: ब्रिटिश राज था ना, करें ब्रिटिश को था कि हम हर जगह हमारा पैर दबा के रखें। तो जो दो गुरुकुल में पढ़ाई इंग्लिश नहीं होती थी लेकिन उनको अपना दबदबा सब जगह रखना था, तो उन्होंने वहां भी अंग्रेज को भेजते थे वो, कि ताकि वो नजर रखे सब बच्चों पे और स्टूडेंट्स पे कि हो क्या रखे, हमारे अगेंस्ट रिवोल्ट तो नहीं हो रहा गुरुकुल में। बॉक्सर था तो बॉक्सिंग सिखाता था सबको, पीटीवीटी कराता था। तो बॉक्सिंग सिखाने के लिए कोई सीखने को रेडी नहीं था, किसी को शौक नहीं था, क्योंकि हमारी जो एंसेस्ट्रल है अपना, हमारी जो कल्चर है उसमें वो है ना कुश्ती,
1: बिल्कुल
0: बॉक्सिंग तो है नहीं हमारे इसमें, तो उसको अभी कैसे स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट किया जाए। तो अगर बॉक्सिंग सीखोगे तो बड़ा ग्लास दूध का मिलता था, उसमें मलाई ऊपर रहती थी।
1: अच्छा,
0: तो वो दूध का ग्लास और मलाई के साथ पीने के लिए उन्होंने बॉक्सिंग क्लास ज्वाइन कर ली, कि यार साला इधर मलाई और दूध मिलेगा,
1: दूध मिलेगा।
0: फॉर एवरी क्लास एवरी स्टूडेंट गेट्स वन ग्लास ऑफ मिल्क विद मलाई ऑन टॉप। वो जमाने के ग्लास इतना बड़े बड़े रहते थे,
1: बिल्कुल। और वो पंजाबी व्यक्ति दूध का
0: शौक, मलाई, गांव में पैदा हुए हैं
1: जी,
0: तो ज्वाइन किया। अच्छा, वहां पर वो जो ऑफिसर था ना वो बड़ा फ्रस्ट्रेटेड था, वो सिखाने के लिए नहीं आया था, वो अपना गुस्सा निकालता था सब पे, वो रोज एक स्टूडेंट को पकड़ के इतनी पिटाई करता था कि वो बच्चे बेहोश हो जाते थे। तो बख्श साहब ने देखा यार ये तो खूब पिटाई हो रही है लेकिन यार दूध भी मिल रहा है, तो वो क्या करते थे, रोज जब क्लास होता था ना, हफ्ते में एक दिन क्लास होता था, वो किसी ना किसी के पीछे छुप जाते थे
1: ताकि रिंग में ना आना,
0: रेंज में नहीं आया, आंखों से आंखें नहीं मिल सके। तो 3-4 महीने तो बड़ा दूध पिया, मलाई खाई, मजे के ले लिए, लेकिन एक दिन वो अंग्रेज ने देख लिया इनको, बोला यार तुम कौन हो, हैव यू जॉइंड न्यू, तुम क्या नया आए हो इधर, इसे नहीं, कब आए तुम इधर क्लास में, वो सर 4-5 महीने हो गए, 4-5 महीने हो गए
1: अभी तक मेरे हाथ नहीं लगाए।
0: उनकी तो डबल पिटाई की उन्होंने,
1: अरे बाप,
0: अरे जबरदस्त खूब पीटा बख्शी साहब को। बख्शी साहब अगले दिन भाग गए वहां से,
1: अरे अरे,
0: सुबह उठे सीधा ट्रेन पकड़ी। क्या वो जमाने के जो बच्चे थे ना
1: जी,
0: वो आज के जमाने के जो हमारे मेट्रो बच्चे हैं या टायर टू सिटी के बच्चे, वो उतने प्रोटेक्टेड नहीं थे वो। तो सीधा अगले दिन ट्रेन पकड़ी जम्मू से और घर वापस आ गए कि बाबा बहुत हो गया, मुझे पढ़ाई नहीं करनी और। तो उसके बाद फिर विभाजन हो गया,
1: हाँ,
0: तो फिर वो पूरा स्टोरी चेंज हो गई ना, सारे लाइफ पाथ ही बदल गया पूरा।
1: तो एक दिन रातों रात ये तय किया गया कि पूरा परिवार दिल्ली जाएगा,

0: हाँ, तो उनको पता चल गया कि ऐसा ऐसा हमारे मोहल्ले में दंगा होने वाला है, और क्योंकि वो दरोगा जी थे वो,
1: हाँ
0: तो उनके हर घर को टारगेट किया जाएगा, क्योंकि ही रिप्रेजेंट्स नॉट ओनली कल्चरली सर्टेन पोजिशन बट ऑल्सो मैन ऑफ पावर, कि भाई इसका घर तोड़ेंगे आज उस हिसाब से. तो इनको रातों रात निकलना पड़ा वहां से. तो जो भी हाथ लगा, बर्तन बर्तन,
1: जेवर
0: गहने वहने, हाँ, खाना, जो भी छोटा मोटा खाना पीना पानी, वो लकी थे क्योंकि उनके ग्रैंडफादर, उनके दादाजी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे ऑफ पंजाब जेल. तो उनको दिल्ली आने के लिए एक डकोटा प्लेन में आए. देवर टू थ्री फैमिलीज, देवर वेरी प्रिविलेज पीपल, और वो डायरेक्ट फ्लाइट से दिल्ली आए फ्रॉम रावलपिंडी. पता नहीं कभी बीच में रुके होंगे फॉर रिफ्यूलिंग, आई डो नॉट नो, बट आई नो दैट दे केम टू दिल्ली टू रेफ्यूजी कैंप. और बहुत लकी थे क्योंकि लाखों कहानियां हैं जो लोगों का लूटा
1: ट्रेन में
0: गया,
1: आए,
0: रेप हो
1: दंगों का
0: गया,
1: शिकार
0: मर्डर हो
1: हुए।
0: गया. तो उनकी पूरी फैमिली ज्वाइंट फैमिली थी, तो सारे के सारे सेफ. तो जो भी वो उनका हाथ लगा, और घर की चाबी बाजू वाले को देके आए थे कि बाबा हम आ रहे हैं वापस, 2-3 महीने में वापस आ जाएंगे, क्योंकि
1: इतना यकीन था।
0: किसी को ये नहीं था कि वापस कभी नहीं आ सकेंगे. तो इस विश्वास से कि हम एक दिन वापस आ जाएंगे, सब चीजें ठंडी हो जाएंगी, वापस आ जाएंगे, तो पड़ोसी को घर की चाबी देके आ गए. तो यहाँ कुछ 4-5 दिन निकले और सब सेटल हो गए, खाना पीना, और रेफ्यूजी कैंप में जगह मिल गई रहने के लिए, क्योंकि दरोगा जी थे वो, रिटायर्ड नहीं हुए थे, ही वॉज इन पावर स्टिल बट ही वॉज दिल्ली. तो रेफ्यूजी कैंप में उनको जगह वगैरह मिल गई, सब ठीक हो गया. तो सबको पूछा कि भाई क्या क्या लाए हो, कि उस जमाने में चांदी के बर्तन वॉज वेरी कॉमन. तो बर्तन चांदी के, ज्वेलरी, जो लेडीज होती है तो ज्वेलरी लगती है, हमारे कल्चर में तो यही ज्वेलरी, गोल्ड लेना, क्योंकि 5 बहन है, और ही वॉज ओनली सन फ्रॉम द फर्स्ट मदर एंड 2 ब्रदर्स फ्रॉम द सेकेंड मदर.
1: सौतेली माँ भी उनकी एक थी।
0: हाँ, सौतेली माँ. तो ये सब पूरी दादा दादी साथ में, पूरे सब ज्वाइंट फैमिली. तो सबने बताया कि किसी के पास ज्वेलरी, किसी के पास ये वो कपड़े वपड़े. तो जब बख्शी साहब का पूछा कि तू क्या लाया घर से, क्योंकि उनको रातों रात भाग के निकला ना वहां से, मतलब सुबह होने से पहले हमें यहां से निकल जाना है. तो जब उन्होंने बताया सामान जो लाए हैं, तो उनको खूब डांट पड़ी दादाजी से, बाबूजी से और दादाजी दोनों से, कि बेवकूफ क्या उठा के लाया, ये क्या काम आएगा किसी के, ये सब क्या लाए थे वो 17 साल की उम्र में रातों रात वहां से जब निकले. अपनी गुजरी हुई माँ की फोटोज, क्योंकि वो 5 साल की उम्र में गुजर गई माँ, तो उनकी मेमोरीज बहुत कम है माँ के साथ.
1: तो वो तस्वीर उनके लिए
0: वो
1: बहुत
0: तस्वीर
1: मायने
0: ही उनकी
1: रखती थी।
0: मेमोरी थी, कि ये
1: जी
0: उन्होंने कहा कि मेरी तो माँ बहुत जल्दी गुजर गई, तो मेरे पास तो ज्यादा यादें नहीं है माँ के साथ, तो ये तस्वीरें ही हैं जिनको मैं देख देख के वक्त गुजारता हूँ. इन्होंने जब मुझे एहसास होता है कि मैं अकेला हूं, क्योंकि क्या है, उनके पिताजी ने भी शादी कर ली सेकंड, तो नेचुरली एक कोई भी अटेंशन डाइवर्ट हो जाता ना, तो बच्चे को थोड़ा प्यार नहीं मिलता, ये नहीं कि कम मिलता है, और हर एक बच्चा अलग होता है. कोई बच्चे को लगता है कि मुझे ज्यादा सेंसिटिव होता है कि मुझे कम प्यार मिल रहा है, तो फिर वो माँ की तस्वीर देख के रोते थे वो. तो उनको ये था कि उन्होंने बाबूजी को बोला था कि पैसे तो हम काम करके कमा लेंगे, कोई भी काम करके आप आदमी इंसान पैसे कमा लेता है, लेकिन माँ की तस्वीर अगर रह जाती तो मैं अपनी जिंदगी कैसे काटूंगा.
1: गजब, क्या गजब की बात
0: तो
1: है।
0: मैं लोगों को हमेशा ये जो किस्सा सुनाता हूं, उसका मकसद ये है सुनाने का, जो इंसान 17 साल की उम्र में रातों रात कपड़े नहीं उठाए, पानी नहीं उठाया, खाना नहीं उठाया, ज्वेलरी नहीं उठाई, जो चांदी का ग्लास था वो नहीं उठाया, माँ की तस्वीर उठा के लाया, वो ही इंसान आगे जाके गाना लिख सकता है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी प्यारी है ओ माँ.

ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर इस वक्त हमारे स्टूडियो के घड़ी में शाम के 4:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की आज की कड़ी।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
3: और मैं हूं अजीत। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू, सुजाता साहू जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: बारिश सिर्फ पानी की बूंदें नहीं होती, ये प्रकृति का धरती के प्रति प्रेम है।
3: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा, धन्यवाद। हम इसे एक पर्यावरण संदेश भी कह सकते हैं
2: जी।
3: आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है चरौदा बार नवापारा अभयारण्य, जिला बालौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर जी का।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा।
3: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
2: राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद।
3: और रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू जी।
2: जी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश और उत्तर भेजने के लिए।
3: स्वागत है आप सबका हमारी मनोरंजक ज्ञान श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत के विभिन्न मेलों की।
2: जी हाँ श्रोताओं, कुंभ और पुष्कर जैसे मेलों के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं
3: जी,
2: लेकिन आज हम लेकर आए हैं जानकारी कुछ ऐसे मेलों और उत्सवों की जो लोक संज्ञान में कम हैं, लेकिन उनका सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है।
3: जी हाँ श्रोताओं, ये मेले अपनी अनोखी परंपराओं के कारण बेहद रोचक हैं
2: जी।
3: तो विमलेश जी करते हैं शुरुआत, जरा श्रोताओं को ये तो बताएं कि आज हम किस मेले की चर्चा करेंगे।
2: अजीत जी, आज हम चर्चा करेंगे जॉन बील मेले की।
3: जॉन बील मेला
2: जी,
3: बड़ा अपरिचित सा नाम लगता है। हमारे बहुत सारे श्रोता मित्र ऐसे भी होंगे जिन्होंने शायद ये नाम सुना भी ना हो
2: जी।
3: तो अब ये तो बताइए कि ये मेला कहाँ लगता है।
2: अजीत जी, ये भी बताती हूँ, लेकिन इससे पहले कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ आपसे और हमारे श्रोताओं से भी
3: जी। पूछिए पूछिए।
2: ये बताइए कि जब हम कुछ खरीदने जाते हैं या खरीदारी का माध्यम क्या होता है।
3: ये भी कोई पूछने की बात है। हम मुद्रा या सरल शब्दों में कह लीजिए कि पैसों या रुपयों से खरीदते हैं।
2: बिल्कुल सही, लेकिन अब ये बताइए कि जब प्राचीन काल में मुद्रा नहीं थी तो किस तरह लेन देन करते थे, क्या लेन देन होता ही नहीं था, बताइए बताइए।
3: विमलेश जी, लेन देन तो होता था, लेकिन जब मुद्रा नहीं थी तो एक तरीका था लेन देन का, लेकिन क्या तरीका था आप बताइए ना।
2: अजीत जी, वो तरीका था वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम, यानी किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना या देना, ये बहुत प्राचीन तरीका था
3: जी। बिल्कुल सही, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हम आज के विषय से भटक गए हैं। कहाँ हम बात कर रहे थे मेले की और कहाँ आगे वस्तु विनिमय पर, अर्थशास्त्र पर।
2: अरे नहीं अजीत जी, हम बिल्कुल विषय से नहीं भटके हैं। यही तो हम श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि आज भी उत्तर पूर्वी राज्य असम में एक ऐसा मेला लगता है जिसे जॉन बील मेला कहते हैं। यहाँ आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा लेन देन होता है। लोग बिना पैसे के एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन करते हैं।
3: अरे वाह, आज की डिजिटल करेंसी के युग में भी वस्तु विनिमय प्रणाली का जीवित रहना सचमुच बड़ी अनूठी बात है
2: जी।
3: विमलेश जी, जरा जॉन बील मेले के बारे में श्रोताओं को विस्तार से बताइए।
2: जी जी जी, ये मेला असम के मोरीगांव जिले में हर वर्ष माघ बिहू यानी जनवरी में आयोजित होता है। अब आपकी बारी
3: जी। श्रोताओं, इस मेले में असम और मेघालय की टीवा जनजाति सहित कार्बी आंग्लोंग के जनजातीय या आदिवासी समुदाय भाग लेते हैं।
2: जी हाँ श्रोताओं, पहाड़ों की जनजातियाँ अदरक, हल्दी, शहद और बांस के उत्पाद और जड़ी बूटियाँ और अचार इत्यादि लेकर आते हैं,
3: जबकि मैदानी क्षेत्रों के आदिवासी लोग चावल, मछली, पीठा और अन्य खाद्य सामग्री लेकर आते हैं, और इन वस्तुओं का आपस में सीधा आदान प्रदान किया जाता है
2: जी।
3: तो अब बात करते हैं विमलेश जी इसके इतिहास की। तो अब आपकी बारी।
2: श्रोताओ, माना जाता है कि जॉन बील मेले की शुरुआत 15वीं शताब्दी में हुई थी। शुरुआत में इसका उद्देश्य व्यापार या लेन देन करना नहीं था। इसमें उत्तर पूर्व की पहाड़ी और मैदानी जनजातियों के मुखिया लोग मित्रता, सांस्कृतिक आदान प्रदान और अपने क्षेत्र की समस्याओं पर विचार विमर्श के लिए जमा होते थे।
3: लेकिन जब लोगों ने देखा कि उनके मुखिया लोग मोरीगांव में जमा होते हैं तो धीरे धीरे वे अपने उत्पाद भी वहां लाने लगे
2: जी। फिर वहां विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होने लगे जिनमें आदिवासी गीत, संगीत, नृत्य और विशेषकर मोरीगांव की बड़ी झील में मछली पकड़ने की प्रतियोगिता शुरू हुई।
3: बता दें श्रोताओं कि इस मेले का आयोजन तिवा जनजाति के द्वारा किया जाता है। जनजाति के तत्कालीन राजा और आज की तिथि में मुखिया के संरक्षण में ये मेला आयोजित होता है। मेले के अंतिम दिन एक शानदार रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जो महाभोज के साथ समाप्त होता है।
2: अब ये विश्व का अकेला मेला है जिसमें अभी भी मुद्रा पूर्व परंपरा यानी वस्तु विनिमय प्रणाली को जीवित रखा गया है। ऐसा भी नहीं है कि आधुनिक मुद्रा वहाँ नहीं चलती, लेकिन इस मेले का अनूठापन इसकी वस्तु विनिमय प्रणाली ही है।
3: तो श्रोताओ, ये थी जानकारी अनूठे जोन व्हील मेले की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, जोन व्हील मेला कहाँ और कब मनाया जाता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: जोन व्हील मेला कहाँ और कब मनाया जाता है?
3: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर, और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और उत्तर व संदेश भेज सकते हैं।
2: फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
3: तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए श्रोताओं, सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है सांकेन।
2: हिंदी की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम उत्तर पूर्वी भारत के सुरम्य राज्य अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों द्वारा मनाए जाने वाले बौद्ध नववर्ष के त्योहार सांकेन के बारे में मनोरंजक ढंग से जानकारी देता है।
3: सांकेन।
4: आज बल्लरी बहुत उत्साहित है, क्यों? हाँ, ये जानते हैं।
5: यमन भैया कहाँ हो भैया?
6: यहीं दूसरे कमरे में। क्या हुआ,
5: चिल्ला क्यों रही हो? बड़ी खुश नजर आ रही हो। भैया, खुश होने की बात तो

0: माता जी पूरे जोश खरोश के साथ चौखाम जाने की तैयारी कर रहे हैं।
1: भैया मैं तो ये कपड़े लेके जाऊंगी।
2: मैं भी कुछ गर्म कपड़े रख लेता हूँ।
3: अरे बच्चों, वहाँ इतने अधिक कपड़ों की जरूरत नहीं होगी, कुछ रख लो। चौखाम का मौसम अप्रैल मई महीने में सुखद और हल्का गर्म होता है। हाँ, कभी कभी हल्की बारिश भी हो जाती है। तो चलो बच्चों, जल्दी से तैयारी पक्की कर लो, कल हमारी उड़ान है।
0: नई दिल्ली से उन्होंने भरी उड़ान और पहुँचे डिब्रूगढ़।
3: उन्होंने डिब्रूगढ़ से टैक्सी ली और पहुँच गए चौखाम। टैक्सी स्टैंड पर पिताजी ने सबका स्वागत किया।
0: अरे बेटा वल्लरी, यमन, आजा आजा आजा आजा।
4: नमस्ते पापा।
0: नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कैसे हो बेटा आप लोग?
4: ठीक है।
0: और कैसा सफर रहा दिल्ली से डिब्रूगढ़ तक का?
4: बड़ा मजा आया।
0: चलो अब यहाँ और मजा आएगा। चलो जो सामान उठाओ अपना, टैक्सी पे चलते हैं। आजा आजा आजा। चौखाम पूर्वोत्तर भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो अपनी संस्कृति, बौद्ध परंपरा और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। ये असम राज्य की सीमा पर है।
3: कहां दिल्ली की भीड़ भरी सड़कें, हॉर्न बजाती हुई कारें और बसें, लोगों की लंबी लंबी कतारें, और कहां चौखाम का खुला वातावरण, जिधर देखो हरियाली ही हरियाली और फूल ही फूल। यहाँ के लोग बहुत विनम्र और हंसमुख हैं।
0: शाम होने में अभी थोड़ा समय था। पूर्वोत्तर में वैसे ही सूरज जल्दी ढल जाता है। वल्लरी के पिताजी के एक मित्र चाउतान जी ने उन्हें सपरिवार अपने घर बुलाया था। उनकी माँ अपनी एक मित्र श्रीमती चौहान से मिलने चली गई थी। जब वे घर पहुँचे तो चाउतान जी ने उनका स्वागत किया। अरे भाई चौतान जी घर पर हैं क्या?
5: अरे आइए आइए वर्मा जी। नमस्ते नमस्ते।
4: नमस्ते अंकल।
5: नमस्ते। अरे वाह, आप यमन और आप वल्लरी है ना?
0: बिल्कुल ठीक पहचाना।
5: आइए, स्वागत है आप सबका।
0: धन्यवाद।
5: आपके परिवार को देखकर हमको बहुत अच्छा लगा वर्मा।
0: अरे भाई हमें भी आपके घर आकर बहुत अच्छा लगा।
1: अंकल हमारा यहाँ आने का बहुत मन था, बड़ी सुंदर जगह है।
5: थैंक यू।
2: हमारा मन खुश हो गया यहाँ आकर।
5: ओहो वर्मा जी, मैं आपसे कहता था ना
0: जी,
5: एक बार परिवार को यहाँ बुला लीजिए, जाने का मन नहीं करेगा।
0: बिल्कुल ठीक कहा।
5: अच्छा तो पहले थोड़ा जल पान कर लीजिए, मैं कुछ लेकर आता हूँ।
0: अरे
5: तुम लोग बहुत अच्छे समय पर आए हो, आज हमारा सांखखेन का पर्व जो है।
0: अरे वाह, फिर तो बड़ा मजा आएगा।
1: अच्छा तभी मैं सोच रही थी कि आज इतनी चहल पहल क्यों है।
0: चौतान जी, मैं भी तो यहाँ नया आई हूँ, सांकेन पर्व के बारे में कुछ और बताइए ना।
5: अरे बताता हूँ वर्मा जी, बताता हूँ, पहले आप लोग नाश्ता तो कीजिए।
2: वाह वाह, कितनी स्वादिष्ट है अंकल, ये पकवान तो हमारे लिए बिल्कुल नए है। ये किन चीजों से बने हैं?
5: बेटा ये जो आप मिठाइयाँ देख रहे हो ना, ये हैं चावल की मिठाइयाँ, और ये पकौड़े ये हैं बैम्बू शूट्स के पकौड़े, और ये है भाप में पकाई हुई सब्जियों की करी, और ये जो है ये है अरुणाचल की खास चाय। ये सांकेन त्योहार के विशेष पकवान है।
0: अरे वाह वाह वाह, भाई मैं तो चाय पीऊंगा।
1: यह तो बहुत अच्छा था, मुझे बड़ा मजा आया।
5: थैंक यू।
0: अरे भाई चौतान जी, आप तो हमें सांकेन त्योहार के बारे में बताने वाले थे।
5: हाँ हाँ वर्मा जी, सांकेन बौद्ध नया साल है जो 13 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच मनाया जाता है।
0: अच्छा
1: अंकल, क्या क्या होता है इस उत्सव में?
5: बेटा इस उत्सव को ना जल उत्सव भी कहते हैं।
0: जल उत्सव क्यों?
5: वो इसलिए कि आज के दिन भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं को पवित्र जल से नहलाया जाता है।
0: अच्छा।
5: इस दिन हम लोग अपने घरों को खूब सजाते हैं, जैसा कि आप इस घर में भी देख रहे हो।
0: हाँ।
5: और हम लोग नए कपड़े भी पहनते हैं।

0: って。
1: अरे ये तो बहुत बड़ी शोभा यात्रा है, कितनी भीड़ है।
2: हाँ बेटा, ये शोभा यात्रा पास के बौद्ध विहार जा रही है।
1: तो हम भी चले?
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो आ जाओ।
1: चलो चलो चलो।
3: थोड़ी देर में शोभा यात्रा बौद्ध विहार के पास पहुँची। वहाँ की जालीदार दीवारें बांस और बांस की खपच्चियों से बनी हुई थी। बीच बीच में पेड़ों की हरी भरी टहनियाँ लगाई गई थी और खोस खोस कर उन पर रंग बिरंगे फूल सजा दिए गए थे।
4: बौद्ध भिक्षुओं ने मंत्र पढ़ते हुए मूर्तियों को पालकियों से उतारा और उन्हें विहार में रख दिया और उन पर जल चढ़ाने लगे। हंसी खुशी के इस वातावरण में वल्लरी ने देखा कि लोग एक दूसरे पर बाल्टियां भर भर कर पानी डाल रहे हैं।
3: वे एक दूसरे के चेहरों पर चावल का आटा भी लगा रहे हैं। वल्लरी को होली की याद आ गई। उसने चावतान जी से कहा,
1: अंकल लगता है हम लोग होली का त्योहार मना रहे हैं।
4: इतने में किसी ने चावतान जी, वर्मा जी और यमन पर एक बाल्टी पानी उंडेल दिया।
3: फिर तो लोग बहुत देर तक एक दूसरे पर पानी डालते रहे और सांकेन मनाते रहे। चावतान अंकल ने बताया कि सांकेन 3 दिनों तक इसी तरह मनाया जाता है।
2: बच्चों, 3रे दिन बौद्ध भिक्षु इन मूर्तियों को पालकियों में रखकर बौद्ध विहार ले जाएंगे।
1: अच्छा।
2: वहाँ वो मंत्र पढ़ पढ़कर इन मूर्तियों को इनके स्थान पर प्रतिष्ठित कर देंगे।
1: जी अंकल।
2: गांव के लोग 3रे दिन बौद्ध विहार जाएंगे और बौद्ध भिक्षु उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहेंगे, खेती फले फूले तुम्हारी, ना हो तुम्हें कोई बीमारी। क्या बोलेंगे?
5: खेती फले फूले तुम्हारी, ना हो तुम्हें कोई बीमारी।
2: हाँ, और फिर कहेंगे, हिल मिल कर सब नाचें गाएं, नए साल में खुशी मनाएं।
5: हिल मिल कर सब नाचे गाए, नए साल में खुशी मनाए।
4: उत्सव समाप्त हो गया था। वल्लरी, यमन और उनके पिताजी घर वापस जा रहे थे। बच्चे सोच रहे थे, कितना सुंदर है हमारा देश। तरह तरह के त्योहार, भाषाएं, संस्कृतियां और लोग, सचमुच विविधताओं का संगम है हमारा भारत।
6: अभी आपने सुनी कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित ये नाट्य प्रस्तुति। अब आपके लिए कुछ करने को। पूर्वोत्तर भारत में मनाए जाने वाले अन्य जनजातीय त्योहारों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। ये पता कीजिए कि सांगकेन मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है और साथ ही साथ सांगकेन त्योहार पर चावल से बने पकवान एवं मिठाइयों के नाम भी मालूम कीजिए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, कलाकार परवेज गौहर, शिमाइला परवेज और राजेश काम्बोज, बाल कलाकार वान्या और सोहम, आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण अरशद अहमद। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम सांगकेन। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, और अगला कार्यक्रम है तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर।
7: देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत ये गीत है, जिसे भारत के स्वाधीनता आंदोलन के दौरान आम जनता द्वारा जलूसों में गाया जाता था। इस गीत के द्वारा देश के करोड़ों लोगों को आजादी की लड़ाई जारी रखने के लिए प्रेरणा मिली।

अभी आप सुन रहे थे ये गीत, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। जी हाँ श्रोताओ, ये गीत आज भी हमें जीवन के प्रति एक नए उत्साह और आत्मविश्वास से भर देता है।

0: जी हाँ, जन जन होगा अब साक्षर उल्लास के साथ। आइए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के इस अभियान में बटाएं हाथ उल्लास के साथ। उल्लास भारत सरकार की एक अनूठी पहल।
1: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम क्लैप एंड स्माइल।
2: ये कार्यक्रम बच्चों को सुंदर गीत और संगीत के माध्यम से रोचक गतिविधि कराता है। कार्यक्रम में बच्चों को व्यायाम के महत्व से भी खेल खेल में परिचित कराया गया है और विनम्र व्यवहार का महत्व भी समझाया गया है।
3: क्लैप एंड स्माइल।
4: हेलो फ्रेंड्स।
5: हेलो।
4: आई नो यू डोंट वॉन्ट टू बी सैड, इवन आई डोंट वॉन्ट यू टू बी सैड, सो वी विल सिंग द हैप्पी सॉन्ग अगेन बट विद अ डिफरेंस।

0: clap and smile.
1: Friends, you were just listening to this song. We hope you enjoyed it.
2: Concept and coordination by Dr. R. Meghanathan. Sung by Neha and Children. Recorded by Butty Langdingdo. Produced by Ajit Horo. This song is presented to you by CIET NCERT, New Delhi, India.
3: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम क्लैप एंड स्माइल. और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है. तो अब अजीत,
4: उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
3: कुसुमलता,
4: जगबंधु,
3: चेतना
4: और मंजू जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए.

0: नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी की आज की कड़ी। एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। अब से बस कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के निर्देश पर कल 22 जुलाई को राज्यभर में सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य के तहत इन्यूमरेशन फॉर्म भरने के लिए बूथ लेवल ऑफिसर और बूथ लेवल एजेंट की तीसरी तथा अंतिम बैठक निर्धारित है। गढ़वा जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत कुल गणना प्रपत्रों का शत प्रतिशत वितरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इसकी जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा ने बताया कि अब तक 6,72,333 प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन किया जा चुका है। जमशेदपुर स्थित एमजीएम मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल में नियमित पेयजल आपूर्ति को लेकर आज सफल ट्रायल किया गया। मानगो नगर निगम की ओर से संचालित डिमना जलापूर्ति योजना के शंकुसाई श्याम नगर स्थित स्वर्ण रेखा नदी पर बने इंटेक वेल से अस्पताल परिसर तक जलापूर्ति कर परीक्षण किया गया। राजधानी रांची में सड़कों को अतिक्रमण मुक्त और यातायात को सुगम बनाने के उद्देश्य से नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में आज हरमू चौक पर सड़क किनारे लगाई गई 20 से अधिक अस्थायी दुकानों को बुलडोजर की मदद से हटाया गया। लोहरदगा जिले में पुलिस ने पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर हत्या की नीयत से हथियार लेकर घूम रहे दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है। और रामगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक मुकेश लुणायत ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि पुलिस ने रामगढ़, हजारीबाग तथा बोकारो जिलों में मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, साथ ही 7 बाइक भी जब्त की है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:02 हुए हैं। आइए सुनते हैं कृषक बंधुओं को संबोधित कार्यक्रम किसान वाणी।

0: के बीज के चयन के बारे में कहे का मतलब है कि हम जब खेती करो ही अमीन तो उन दो तीन बात के हमेशा ध्यान रखे जाए प्रकाश भाई। कभी भी बीज के चयन करना बहुत जरूरी, जैसे कि एक खेत में धान लगल हो केकरो कम उत्पादन केकरो बेसी भेल हो केकरो मध्यम भेल हो तो हम के ये दिमाग रखते बीमार कम बीमारी कम खाद में अच्छा उत्पादन जो बीज भेले है तो हम के अगले साल चुनाव करे खातिर अथी बीज लगवे खातिर अपन दिमाग में बैठा लिया चाहिए ओकरा पहला चीज। दूसरा जब भी कोई भी बीज के हमें लगाओ ही लगावे से पहले ओकरा जर्मिनेशन जरूर चेक करे के चाहिए तभी वो बीज के महत्व के बारे में समझ सकवा। और दूसरा चीज को जब भी बीज के हम प्रयोग करो ये उन्नत बीज यानी वो उत्पादन क्षमता सबसे ज्यादा हो वो बीज के हम इनके प्रयोग करके चाहिए जो बीमारी से लड़े यानी कम बीमारी लगे उत्पादन अधिक देवे तो वैसे वैसा बीज के हम इनके यूज करे के चाहिए।
1: देखा कि हर किसान बेस फसल वास्ते हमेशा शुरुआत बीज से ही करो है का कि जानो थे कि माटी में हमेशा खाद के डाले से और कैसे पटवन के काम और कैसे उलट फेर करे से हमें उनके माटी जो है स्वस्थ रहो है। लेकिन हाँ बीज से शुरुआत करे से पहले कहल जा सको है कि बेस ऐसा बीज चुनाव करे के चाहे जेकर में कीड़ा ना लगे कम से कम प्रकोप कम रहे बढ़वार ज्यादा रहे जेकर में प्रमाणित बीज रहे प्रमाणित दुकान से खरीदे के चाहिए और कम से कम माटी अनुसार जलवायु अनुसार बीज के अगर चुनाव कर लेवे से फसल के पैदावार भी बेस हो जाए जेकर से हम कह सको ये कि हर तरह के जे हम इनके जे मन में रोह है कि भाई हम के मेहनत के बाद जो रंग लेते हैं हम इनके जो फसल के पैदावार बढ़ते वो बीज के ही जोड़े रहो है।
0: हाँ तो देखा कि कोई भी चीज बीज के हम जैसे चुनाव की चर्चा तो करती है भाई लेकिन सबसे पहला चीज है कि अगर हम टमाटर की खेती करो ये तो टमाटर की खेती में हमेशा ये ध्यान रखे चाहिए कि बीज चुनाव के साथ ओकर महत्व यानी कि ओकरा हम नर्सरी कैसे करिए ओकर बारे में भी थोड़ा सा उमदा अगर तरीके से नर्सरी हम इन करो ये तो ओकर से भी हम इन फसल अधिक ले सको। पहले कहले कि हम इन जमीन में जो नर्सरी करो लिए तो ओकर में का होले कि मतलब कुछ गल जा कुछ सड़ जा और कुछ बहुत तरह की बीमारी लगोले जेकर चलते हम इनके अनेकों तरह का पौधा में बीमारी आ जाए तो इस सब चीज को छोट छोट बात के अगर हम ध्यान दिए तो अच्छा उत्पादन हमें ले सको या और एक महत्व से ज्यादा हमें फायदा कमा सको।
1: बेस का अलावा देखा कि उन्नत बीज के अगर फायदा के बात करिए किसान भाई बहन तो जान ला कि अधिक पैदावार भी बढ़ो है साथ ही साथ देखा कि फसल जो है एक समान बढ़ो है और मौसम के जो अगर मौसम अगर कम बेसी भी हो ओकरा अनुरूप नए भी हो तो भी सहन करके अच्छा फसल अच्छा हम इनका अनाज दो है जेकर से इनके फायदा हुआ है किसान के आय बढ़े में बहुत मदद भी करो है ना।
0: तो देखा कि हम इन तो कार्यक्रम में तो जरूर बने लिए लेकिन एक सुनो ही एक जरूरी मतलब
1: लोकगीत सुनो
0: गीत जो मनोरंजन भी होते और एक में हम फिर आगे फिर बातचीत करवे हमें।

0: हाँ तो किसान भाई बहन अब्दर हमीन एक लोकगीत सुन लिए वीरेंद्र भाई है ना। लोकगीत से पहले हम बात कर रहे थे भाई कि किसान सबके जो खेती बाड़ी से करे से पहले कम से कम बीज के चुनाव और हमेशा जानो थे कि भाई उन्नत बीज कहाँ से लावे चाहिए और कैसे हमें के विश्वास करे के चाहिए पूरा जानकारी उनका पास रहो है ना। साथ ही साथ अब हम बात करवा देखा कि समय के साथ साथ क्या हुआ कि पशु में भी देखवा कि समय के साथ जब बरसात के समय आ जाए तो ओकर में भी रख रखाव देखभाल करे के बहुत ही जरूरी है। खासकर अगर टीकाकरण के बात कहला तो टीकाकरण बीमारी से पहले लगावे के चाहिए जेकर से पशु में भी है हमेशा स्वास्थ्य के ध्यान रखल जा सको है।
1: जैसे कि माटी जहाँ तू करो है ना बढ़िया खेती खातिर तो वैसे पशु में टीकाकरण बहुत जरूरी है। जैसे आदमी में भी अगर ब्लड जांच हो के दवाई चलो हो तो वो स्वस्थ रहे तो वैसे हमें के पशु में टीकाकरण होना बहुत जरूरी है समय से। और अगर समय से तू टीकाकरण करो है तुम्हारा तो अच्छा फायदा हो। तो जैसे कि अभी कुछ देखे थे कि टीकाकरण के साथ नस्ल सुधार के भी काम पशु में बहुत जोर शोर से चल रहे हैं। आज से 15 साल पहले उठा के अगर देखा जाए तो हमी के गांव में ऊंच नस्ल के गाय नजर ना आवल थी, सब टेना टेपरा गाय नजर आवल थी, मतलब आधा किलो एक पाव दूध दिए लगा। लेकिन अभी गांव में ये चीज हो गई कि कहीं से भी तू क्रॉस करा 4 किलो 5 किलो दूध दिए लगा एक टाइम में अभी नजर बाजार में आवे लग लो पहला चीज। दूसरा चीज देखा कि हमीन यहाँ से पहले दूध हमीन खरीदो लिए बाहर से, लेकिन अभी हर गाँव से देखे थे कि 1 क्विंटल 50 kg 1.5 किलो जैसे गांव की आबादी है जैसे वहां गाय रखल थी ने उस हिसाब से दूध बिक्री के लिए ही बाजार में आवे लगले। तो भाई बदलते मौसम में पशु के टीकाकरण बहुत जरूरी चीज है।
0: और देखा कि अगर बात कहला कि खेती बाड़ी और पशुपालन एक सिक्का के दो पहलू है ना। और वैसन में कहा है कि पशुपालन के ध्यान रखे के बहुत जरूरी है कि बहुत सारे किसान ऐसन हथिन जे पशु सबके जे मादा पशु हथिन ओकर में दुग्ध उत्पादन में ही पूरा आश्रित रहो थी पूरा घर परिवार के रोजी रोजगार वह दूध के उत्पादन से ही हुआ है। और खासकर जे उन्नत नस्ल के की तो बात कहला कि गाय अगर अच्छा से पाले से देखभाल करे से और दोनों टाइम अगर सही ढंग से अगर कहल जा सको कि हम इनके दुधारू नस्ल के गाय से दूध उत्पादन हो जाए जगह से पूरा घर परिवार बेस चलू है ना। और टीकाकरण का है जरूरी है बदलत मौसम में। और किसान भाई बहन सब कैसे अपन पशु सबके टीका लगे थे ओकर जानकारी लेके आए लिए और जो जानकारी देते हथिन वो हथिन मनोहर कुमार है ना। और इनका से हमीन देने से बातचीत कर ले हथिन वीरेंद्र साहू। तो पहले इनकर जानकारी के सुनल जाए।
2: श्रोता साथियों आज हमारे ग्राम अमगावा पौष शिला जिला चतरा और हमारे साथ एक पशु चिकित्सक जो हैं मतलब ये घूम घूम के पशु का मतलब इलाज करते हैं जानवर का और इनका नाम हुआ मनोहर कुमार। सबसे पहले कार्यक्रम में स्वागत है, जोहार है।
3: जोहार
2: मनोहर जी, अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हम लोग जितने भी किसान भाई हैं गाय जानवर बकरी छगरी सब कुछ रखते हैं, लेकिन होता क्या है कि जब मौसम परिवर्तन होता है कुछ हमारी ऐसी ऐसी गलतियां होती हैं जिसका गलती के चलते हम लोग बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है, मतलब अच्छी अच्छी गाय से भी हाथ धोना पड़ जाता है। तो जैसे कि अभी हम लोग गर्मी से बरसात की ओर आ गए हैं, ऐसे में हम अपने पशुओं का क्या देख रेख करेंगे ताकि हमारा पशु अच्छा रहे स्वस्थ रहे और वो हमारा खेत के लायक भी रहे काम करने योग्य भी रहे स्वस्थ और जो दुधारू पशु वो दूध भी सही दे पाए। तो हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं कि हम स्वस्थ पशु को कैसे रखें।
3: सबसे पहला चीज है कि बकरी हो जानवर हो भैंस हो जो भी हो जोंक का दवा डिमार्मिंग जो कहते हैं जोंक का दवा हर 3 महीने में देना चाहिए। पहला चीज तो वो है। अब रही बात बरसात के टाइम आ गया, बरसात के टाइम में वैक्सीन होता है बकरी का PPR और HSBQ जो है सो जानवर का होता है। तो वैक्सीन का समय भी जा रहा है, अभी कुछ 15 से 20 दिन
2: बचा हुआ है।
3: इधर वैक्सीन अगर नहीं करवाते हैं तो पहले बकरी में है कि हम साल भर मेहनत करते हैं और PPR बीमारी क्या है कि सर्दी खांसी लेटरिन बुखार हो गया और उसमें है कि अगर हम वैक्सीन करवा लेते हैं PPR का वैक्सीन साल में एक बार होता है और वैक्सीन नहीं कराते हैं अगर बकरी का बीमारी अगर हो गया तो डॉक्टर पैसे भी ज़्यादा लेंगे और शायद बचना भी मुश्किल है।
2: तो ये जो आप वैक्सीन की बात करते हैं तो हम लोग मई जून महीने में कराएं कि जुलाई में इसको कराना चाहिए?
3: जैसे है कि ऐसे तो नियम कहता है कि बरसात आने के पहले वैक्सीन हो जाना चाहिए, लेकिन हमारे पशुपालक समझ नहीं पाते हैं और हम लोग समझाते भी हैं, कुछ पशुपालक हैं कि समय से वैक्सीन कराते हैं और कुछ लोग सोचते हैं कि मेरा जानवर अभी ठीक है ही तो हम डॉक्टर को पैसा क्यों दें, वैक्सीन क्यों कराएं? तो उनका जो है सो आगे जाकर के खामियाजा बहुत भुगतना पड़ता है, इसलिए समय से वैक्सीन होना चाहिए। अब रही बात कि आपका जो जानवर में HSBQ यानी गला घोटू लंगड़ा बुखार, गला घोटू लंगड़ा बुखार एक ऐसा बीमारी है जिस जानवर को गला घोटू या लंगड़ा बुखार पकड़ लिया तो शायद हम समझते हैं कि 100 में 90% जानवर का मरने का ही
2: चांस है।
3: बहुत वो भी समय से अगर इलाज हो गया तो जानवर बचेगा, अन्यथा जानवर बचने का संभावना कम है।
2: तो ऐसे स्थिति में हम लोग को टीकाकरण कराना बहुत जरूरी है।
3: टीकाकरण बहुत जरूरत बहुत जरूरी चीज है।
2: तो जिसे टीकाकरण आप लोग करते, बहुत सी कंपनियां हैं, तो आप किस कंपनी का टीकाकरण ज्यादा सजेशन करते हैं?
3: इंटास कंपनी का जो है सो अभी देखिए, कंपनी तो बहुत हमारे क्षेत्र में है, लेकिन जो अच्छा अच्छा कंपनी है जैसे देखिए इंटास का है, वैक्सीन आता है बहुत अच्छा है, और भी कंपनी का है, लेकिन सबसे ज्यादा हम लोग इंटास कंपनी का दवा उपयोग करते हैं।
2: जो अवेलेबल आपके यहाँ है उसको आप लोग करते हैं?
3: लोग करते हैं, लेकिन फिर भी हम ज्यादा चाहते हैं किसान को, हम अगर पैसा ले रहे हैं काम कर रहे हैं उसका काम होना चाहिए, और टीकाकरण जो है सो बहुत अति आवश्यक है।
2: तो अगर यदि हम टीकाकरण करवाते हैं, एक बकरी का टीकाकरण का क्या आप रेट रखे हुए और एक गाय का जानवर का क्या रखे हुए हैं बड़े जानवर का?
3: ऐसे देखिए PPR का जो है सो जो वैक्सीन होता है, एक पाउडर आता है 100 ml का भैल रहता है, डिस्टिल वाटर कहते हैं, उसमें हम 100 बकरी का भैल रहता है, तो हम तो किसान को बोलते हैं कि ज़्यादातर के 100 बकरी जमा कीजिए तो हमें जो है सो पैसा कुछ रुपया बचेगा। इस एवज में हम लोग बहुत ज़्यादा है कि 15 से 20 रुपया
2: में वैक्सीन आप कर दें
3: कर देते हैं, और जानवर का भी उतना ही करते हैं, क्या 10 रुपया वैक्सीन का दाम पड़ जाता है एक बकरी का, अपना खर्चा लेते हैं और उसी से किसान का भी काम हो जाता है।
2: मतलब आपका कहने का मतलब है कि एक समूह बनाकर अगर यदि वैक्सीन करवाते हैं तो कम पैसे में किसान को वैक्सीन होगा, अच्छा इलाज भी हो जाएगा।
3: सवाल है कि इससे वैक्सीन से जानवर है, अब किसी का जानवर 5 गो है, वो आदमी उसके पकड़ने वाला वैसा नहीं है, जानवर 4 गो आदमी रहेगा 10 गो रहेगा तो पकड़ने में सहूलियत आराम भी होगा और जल्दी काम भी हो जाएगा। कहे कि देखिए अगर डॉक्टर भी जो भी जाएंगे अगर तो उनका भी कहीं और जाना है तो किसान का भी अपना काम है ना, तो एक जानवर चलते पीछे आदमी दौड़ते रहे तो संभव नहीं, इसलिए ज़्यादातर समूह बना करके वैक्सीन करें लोगों तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
2: चलिए डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन एक और हम आपसे एक और चर्चा करेंगे कि जब दुधारू पशु जो होती है गाय या बकरी तो उसमें होता क्या है कि वैसे स्थिति में अगर हम वैक्सीन करना चाहिए या नहीं?
3: नहीं, दुधारू को हम वैक्सीन कर सकते हैं, गाभिन को वैक्सीन नहीं कर सकते। अच्छा। गाभिन को वैक्सीन करने के लिए हम जो है सो उसमें एक जो आता है इंजेक्शन लगा करके तभी कर सकते हैं। दुधारू पशु को वैक्सीन कराने में कोई तरह का आपत्ति कोई तरह का दिक्कत नहीं है।
2: चलिए बहुत अच्छी बात बताया। अब हम आपसे एक और बात जानना चाहते हैं, बहुत ऐसे लोग भ्रांतियां हैं लोगों में कि अगर यदि हम टीकाकरण कराते हैं दुधारू गाय को तो क्या ये भ्रांतियां सही है कि उसका दूध कम हो जाता है?
3: नहीं, दूध कम नहीं होता, ये भ्रांति सिर्फ है मनगढ़ंत कहानी है। क्या किसान बहुत अच्छा है कि जानते भी नहीं है और अपना अपना दिमाग लगाते हैं, वैक्सीन लगाने से दूध पर जानवर को फर्क नहीं पड़ता।
2: अब एक चीज आपसे हम जानना चाहते हैं, बरसात के मौसम में गाय का दूध कम हो जाता है और बहुत सी ऐसी गायें हैं अगर बाहर चरती तो उनका दूध भी पतला हो जाता है, तो इससे बचने के लिए किसान को क्या करना चाहिए?
3: देखिए सबसे पहला सवाल है कि हर गाय का जो है सो चमड़ा पर फर्क पड़ता है। अब रही बात कि गाय आपका दूध दे रही है पानी जैसे आपका आ रहा है तो उसमें कि आप अभी के समय के हिसाब से मिनरल पाउडर खिलाइए, और उसमें भी दिक्कत अगर है तो एक दुग्धान टैबलेट आता है जो कि बैम्सो कंपनी का है, उसके देने से आपका दिक्कत का समस्या हल हो जाए।
2: ये तो आप दवा के माध्यम से बताएं, लेकिन भोजन के माध्यम से उसका हम दूध कैसे ज्यादा बढ़ाएंगे?
3: भोजन में है कि आप खाली चोकर का थोड़ा सा बढ़ोतरी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं थोड़ा सा फर्क पड़ता है बरसात के टाइम में पानी का मात्रा ज्यादा रहता है थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन आप उसको जो सो अगर वैसा दिक्कत है तो आप हल्दी जैसे गाय है 100 ग्राम डेली हल्दी 5 दिन दीजिए उसको गर्म करके, और दूध साफ भी हो जाएगा और समस्या सॉल्व भी हो जाएगा,
2: दूध वो गाढ़ा भी हो जाएगा, पतला होता है। चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया। अब हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि पशुपालक भाई जिसे कि होता क्या है कि बछिया तो उसको ज्यादा सेवा करते हैं, बछड़ा तो छोड़ देते हैं, ऐसा काहे करते हैं, ऐसा क्या कारण है?
3: इसका कारण यही है कि हमारे यहाँ पहले बैल से खेती होता था, अब हमारे यहाँ ट्रैक्टर पर आश्रित हो गए हैं, इसलिए ज़्यादातर जानवर को आदमी तो रखना नहीं चाहता है कि बैल को हम क्या करेंगे, और जैसे बाछी है तो बाछी को मेहनत इसलिए करते हैं कि उससे हमको दूध मिलेगा, और इसमें कोई विशेष तो वैसा नहीं है। इसलिए कि कहने का मतलब तात्पर्य है कि हल बैल से हम खेती करते थे, अब तो करते नहीं हैं, और इसलिए बछिया जब जन्म लेती थी हम किसान लोग पशुपालक जो भी है खुश होते हैं कि हमारा बछिया आया, लेकिन ज़्यादातर हम देखते हैं किसान लोग उस पर
2: मेंटेन नहीं कर पाते
3: हैं शुरू से।
2: उसको अगर यदि हमको क्या मेंटेन करना होगा बछिया को, ताकि हमारा सही समय से वो बच्चा दे सके?
3: इसके लिए है कि गाय अगर बच्चा दी, आज बच्चा दी गाय, तो सबसे पहला चीज़ है कि जो औरा जिस देहाती भाषा में कहते हैं वो अगर नहीं आ रहा है, तो अगर जावरा अपने आप आ भी गया और नहीं भी आया, तो उसके जगह प्राकृतिक रूप से है कि जैसे बांस का पत्ता खिलाइए, उससे क्या है कि
2: औरा निकल जाएगा,
3: औरा निकल जाएगा, बच्चा दानी जो है सो साफ सफाई हो जाएगा।
2: लेकिन हम बच्चिया की बात किए कि वो उसको हम कैसे मेंटेन करेंगे, सही टाइम पर उसका मतलब वो बच्चा दे सके, प्रजनन कर सके और दूध हमको प्राप्त हो पाए हम लोगों को।
3: ऐसे देखिए, इसके लिए है कि जब बछिया जो है उसको हम अक्सर किसान लोग करते क्या है कि दूध को पूरा तरह से गाय को निकाल लेते हैं, तो उस वजन के हिसाब से ऐसे डॉक्टर का कहना है, हम लोग कहना है कि जो वजन है वजन के हिसाब से 15% से 20% उसको दूध पिलाना है,
2: पिलाना चाहिए।
3: और जब उसको दूध जब पूरा मिलेगा उसका जो सो विकास होगा, और विकास होगा तो आपको जो है सो बच्चा रखने में परेशान नहीं होता। लेकिन हमारे पशुपालक करते क्या है कि दूध को
2: पूरे निकाल लेते हैं।
3: तो
2: डॉक्टर साहब आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे पशुपालक भाई को क्या संदेश देना चाहते हैं बरसात के मौसम?
3: हम बरसात के समय पशुपालक भाई लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि टीकाकरण जो किसान नहीं कराए हैं, टीकाकरण बकरी गाय भैंस जो भी काढ़ा है सब करवा लें, और जोंक का दवा जो है सो कम से कम बरसात दिनों में दे दें, ताकि आगे भविष्य में दिक्कत ना हो। यही पशुपालक भाई से हम निवेदन करते हैं।
2: डॉक्टर साहब आपने बहुमूल्य समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो जे जानकारी सुने थे वो जानकारी है भाई कि कौन तरी हमके पशुपालन में टीकाकरण होवे के चाहिए और टीकाकरण करे से का फायदा हो है, विषय वस्तु विशेषज्ञ हलथिन जे बतेलथिन मनोहर कुमार कि कौन तरी हमके टीकाकरण पहले करा लेवे के चाहिए अपन पशु सबके, और इनका से हम इन से बातचीत कर ले हलथिन वीरेंद्र साहू। तो वीरेंद्र भाई आप बात कर रही है कि मौसम के जानकारी के, क्योंकि कहे कि मौसम के जानकारी रहो है तो बहुत बेहतर है, लेकिन उकर से पहले जानो ही है आज के बाजार भाव।
1: देखे कि आज के जो बाजार भाव हम इन चर्चा करबे, खासकर हमारे क्षेत्रीय बाजार जैसे हजारीबाग में जो भी सब्जी के रेट बिकले उकर आज के भाव के हम इन चर्चा करबे। सबसे पहला कि लाल आलू यानी कि 18 से 20 रुपया प्रति किलो, सफेद आलू 14 से 15 रुपया प्रति किलो, प्याज 25 से 30 रुपया प्रति किलो, फूलगोभी 50 से 60 रुपया प्रति किलो,
0: पत्ता गोभी जा रहा है 25 से 30 रुपया प्रति किलो, पटल 20 से 25 रुपया प्रति किलो, रमतोराय 20 से 25 रुपये प्रति किलो, और नेनुआ 15 से 20 रुपये प्रति किलो।
1: और देखा कि कद्दू 15 से 20 रुपये प्रति किलो, हरा मिर्च 60 से 70 रुपये प्रति किलो, शिमला मिर्च 80 से 90 रुपये प्रति किलो, गाजर 30 से 35 रुपये प्रति किलो,
0: बीट देखा 30 से 35 रुपये प्रति किलो, सीम 80 से 90 रुपये प्रति किलो, बीन 40 से 45 रुपये प्रति किलो, मुराय 10 से 15 रुपये प्रति किलो, और धनिया पत्ता 120 से 140 रुपये प्रति किलो।
1: और देखा कि अदरक 110 से 120 रुपये प्रति किलो, खीरा 15 से 20 रुपये प्रति किलो, टमाटर 25 से 30 रुपये प्रति किलो, लाल साग 15 से 20 रुपये प्रति किलो, पालक साग 15 से 20 रुपये प्रति किलो। और देखा कि जब मौसम हो आज के एक में कुछ फेर बदल तो मौसम में होबे लगल हो, तो देखा कल बारिश अच्छा भेलो और बारिश के संभावना बनल भी रहतो, तो आज का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस,
0: और देखा कि कम से कम आज के तापमान हलै 23 डिग्री सेल्सियस, और आर्द्रता के बात कहला तो नमी के मात्रा हलै 85%। और कल के पूर्वानुमान अगर कहबा तो कल हो देखा कि छिटपुट बारिश होते रहतो, और कहीं न कहीं हमके खेती करे के समय भी बहुत बेस मिलो लगल है, जे किसान सब पहले से तैयार रहथिन वो किसान अपन खेती में जे धान के जे मुख्य फसल होकर लगाए के भी अपन शुरुआत धीरे धीरे कर देथिन है न। हाँ। चलते चलते बात करो ये वीरेंद्र भाई की आज के समय जो रहा है डिजिटल फार्मिंग के, किस किसान जब खेत में जब जाए ही ना उनका से बात करे ले बातचीत करे हुई है। देखो ये तो किसान सब अब ना नया तरीका से खेती किसानी में शुरुआत करो लगल थी, जेकर में है डिजिटल फार्मिंग हो गलो, चाहे कहल जा सको है कि कम से कम स्मार्ट फार्मिंग हो गलो। कहे के तो एक सुने में लगो इंग्लिश वर्ड हो, लेकिन जान ला कि स्मार्ट ओकरे कहल जाए जे हर तरीका के काम के बहुत ही अच्छा तरीका से कर लो है न। खेती बाड़ी में भी देखला कि अब बहुत सारा किसान बहुत सारा अगर में मजदूरा लगोल थीं, लेकिन धीरे धीरे कहा है कि अब एक स्विच से देखा कि पानी के पटवन भी हो जाए है, खाद के छिड़काव भी हो जाए है और हम इनके खेती बाड़ी के काम भी हो जाए है।
1: और देखा कि सबसे पहला चीज जो आज के समय में स्मार्ट खेती में कहीं कहीं तो खेत के प्लॉट में देखे थे कि छोटा छोटा एक यंत्र लगावल जाए कि वहां इसलिए यंत्र लगा कर दे पता करो किसान कि अगर आज चार दिन के अंदर में का यहाँ बारिश की संभावना है का वो हिसाब से अपन खेत में भी काम करो। एक अलावे बहुत चीज पता चल जाए जैसे कुछ मतलब कीट पतंग जैसे होवो है कि जैसे वायरस कीट है ओकर में पता चल जाए उस हिसाब से किसान वो दवाई ओकर में चलावो है। अभी देखा कि एक तो सुन ले ड्रोन के माध्यम से दवाई के छिड़काव है ने, तो आज के डेट में जैसे कि एक प्रकार का मिनी हेलीकॉप्टर है वो, यानी कि 10 से 15 लीटर दवा तो हर घोर के ऊपर करीब 20 से 25 फीट के ऊपर मतलब ऊपर से उड़तो और वहां एकदम दवाई तुम्हारा छिटाल देते और दवा की मात्रा कम ओकर में लगो है और ओकरे कहल जाए स्मार्ट मतलब फार्मिंग या डिजिटल फार्मिंग ओकरा कहल जाए।
0: वीरेंद्र भाई आज के जो किसान थीं से समय समय पर अपन अनुभव के साझा भी करो थीं और नया नया तकनीक अपनावो थीं। देखा कि हर किसान के पास हाथ में मोबाइल इंटरनेट हो गलो और कृषि ऐप जेकर से खेती बाड़ी के पूरा जानकारी मिलो है ना, मौसम के जानकारी हो गलो, मंडी भाव हो गलो और कहल जा सको कि हर तरह के फसल के सलाह मिलो है, कीट रोग के नियंत्रण करके सरकारी योजना के जानकारी मिलो वो घर बैठे ही मिल जाए। तो अब किसान सब हथिन जे उनकर हाथ में जानकारी रहो, खाली जाने की इच्छा होवे के चाहिए, क्याकि जे किसान सब जाने की इच्छा रखो थीन वह सब वो अपन जानकारी के रख सको थीन, क्याकि जानकारी हो तोहरा तबे तू खेती बाड़ी हो पशुपालन हो या कोई काम धंधा के शुरुआत कर तो तोरा फायदा ज्यादा होतो।
1: तो देखा ये बहुत अच्छा तो बात बतला है प्रकाश भाई कि कोई भी खेती बाड़ी में कि जानकारी रखना बहुत जरूरी है और सही बात बतला कि मोबाइल के माध्यम से भी बहुत कुछ के हमें के जानकारी मिलो। लेकिन एकर अलावे हम जैसे कि कुछ मतलब अपन सामाजिक तौर तरीके से अगर चर्चा में भी अगर लाओ तो उकर से भी किसान के जानकारी मिलो। जैसे उदाहरण तौर में देखा जाए आज से 15 साल पहले कोई अगर ड्रिप इरीगेशन से खेती करो ले तो समझो थी कि आदमी बेकूफ है, लेकिन आज देखा ड्रिप इरीगेशन इतना जोर से पकड़ लो है बाजार में कि आज उकर खेती उकर बिना खेती अधूरा ड्रिप के बिना।
0: और देखा कि ड्रिप इरीगेशन के बात कहला तो बूंद बूंद सिंचाई पद्धति है, हर किसान जे एकड़ एकड़ खेती करो थीन लीज पर खेती बाड़ी करो थीन वो हर किसान जे हथिन उस तरह के फार्मिंग कर रहे थीन, काहे कि अब मजदूरा खोजे से भी ना मिले। हाँ। समय के साथ अगर खेती बाड़ी किसानी में अगर समय से अगर तू पटवन का काम नहीं करभा, समय से अगर तू कोड़ाई नहीं करभा, निराई नहीं करभा तो फसल तो बर्बाद होबे करतो भाई। से वास्ते का है भाई कि आप मशीन के सहायता ज्यादा लो थीन, जानकारी बेस रखो थीन कि समय से खाली हमें के बटन दबाना हो पटवन के काम आसानी से हो जितो, बटन दबाना हो उर्वरक के छिड़काव भी हो जितो। साथ ही साथ ही कहा है कि बाजार मंडी के भाव अब हाथ में मोबाइल में रह गए तो हमें के जे अपन फसल के कैसन कार रखना हो से जान जेते, कहा कि ई नाम पोर्टल भी आयल है जे दूसर राज्य में तो अपन फसल के भी बेच सको है, जे अपन जिला के जो बाजार समिति हो मध्यस्था के काम करो है तो ओकरा में ठगी के शिकार भी ना हो। तो उपाय बहुत हो, तरीका बहुत हो, खाली जाने की इच्छा रखे के चाहिए।
1: और देखा कि खास करके अभी जैसे हो हम इन खेती बाड़ी में अभी का हो कि एक मतलब सिस्टम हो मोबाइल में और तू अगर देखेल चाहो कि पत्ता में जैसे पत्ता सिकुड़ का बीमारी हो तो उगर जैसे तू मोबाइल वहां सामने रखो और उकर ऐप है ऐप के माध्यम से अगर तू देखो तुहरा पता चल जितो लेकिन ये बीमारी लगल है तो बीमारी के हिसाब से हम इन दवा के भी छिड़काव कर सको। एक अलावे अब देखा कि कार्यक्रम मतलब किसान वाणी से जाग भी बेरा होवे लगल है,
0: तो चलते चलते ये बता दिए भाई कि हमने के जो कार्यक्रम किसान वाणी और साथ ही साथ देखा कि ठीक खेती बाड़ी भी चलू है ना।
1: हाँ।
0: तो हमने के कार्यक्रम सीधा कहल जा सको है कि किसान के जागरूक करे वास्ते, उनका नया नया तकनीक के बारे में बतावे वास्ते और उनका प्रेरित करे वास्ते और उनका जानकारी पहुंचाए वास्ते हमें बहुत ही मेहनत करो ये गांव गांव। हाँ। जाकर के विशेषज्ञ जोड़े किसान के जोड़े बातचीत करो ये ताकि उनका तक सही जानकारी पहुंच सको। हाँ। है लेकिन हाँ एक पहल अगर एक गोड़ हमें बढ़ावो तो एक गोड़ा उनका भी बढ़ावे पड़ते हो जानकारी ले तभी जाके विकास हो पा रो है और सरकार बहुत पहल करो है हर तरीका से पहल करो है कि कम से कम जो है किसान के और माटी से उपज अच्छा होते हैं, किसान के बढ़ोतरी होते हैं, जेकर से सरकार भी बहुत ही प्रेरित होले है और साथ ही साथ किसान जो हथिन अपन कदम बढ़ावो थीन जेकर से उनका भी लाभ हो। तो हमारा उम्मीद है कि आज के किसान वाणी सब जन कर बहुत पसंद आयल होते वीरेंद्र भाई। हाँ। तो हमारा उम्मीद है कि अब नवा नवा जानकारी के साथ दोबारा फिर मिलबे अपन कार्यक्रम किसान वाणी में। ताल तकल हमारा प्रकाश के
1: और वीरेंद्र के अनुमति दा जोहार।

अभी आप सुन रहे थे कृषक बंधुओं को संबोधित कार्यक्रम किसान वाणी एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो के घड़ी में शाम के 5:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं ग्रामीण श्रोताओं का अपना कार्यक्रम खेती बारी।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: खेती बाड़ी सुनने वाले सभी ग्रामीण भाई बहन के अपन खास कार्यक्रम में सब जन कर स्वागत कर रही है। हम ही प्रकाश और देखा के आज हमारे जो रहते वीरेंद्र भाई, तो तोहरो जोहार।
2: जोहार प्रकाश भाई, और कार्यक्रम किसान वाणी सुन सभी किसान भाई बहन के खेती बाड़ी में स्वागत है कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और सबसे बड़ा चीज है कि आज हम जो चर्चा करबे, अभी जब मौसम हो बहुत ही अच्छा मौसम हो, अभी बारिश भी अच्छा भेलो, तो किसान के हम कहे भाई धान के रोपाई के बारे में हम इन चर्चा करबे। सबसे पहले अगर हम अगर यदि यानी कि 10 डिसमिल में अगर यदि 20 डिसमिल अगर खेती करें धान के खेती, या 50 या 100 डिसमिल या 150 डिसमिल में, तो सबसे पहला कि ओकर में खाद प्रबंधन होना बहुत जरूरी चीज है। जैसे कि हम जब भी धान के खेती करो तो ओकर में तीन बात के हमेशा ध्यान रखे के चाहिए। सबसे पहला है कि अगर हम अगर यदि जैविक खाद के अगर प्रयोग करें तो ज्यादा फायदा हुआ है। तो सबसे पहले अगर 1 एकड़ या 100 डिसमिल अगर धान के खेती करो तो ओकर में कम से कम 2 ट्रॉली या 3 ट्रॉली ट्रैक्टर से यानी कि गोबर के छिड़काव जरूर किसान के करे के चाहिए। जैसे कि जब गर्मी का मौसम रहो पहला जब जोताई करो ऊपर से छींट के ओकरा जोताई कर दा, और वही करके ओकर बाद जब हो गलो पहला। दूसरा में हो कि धान रोपाई के समय में खाद के प्रबंधन हम कैसे करवे ओकर पर भी हम थोड़ा भी चर्चा करोगे। सबसे पहले कि अगर यदि 1 एकड़ धान के खेती करोगे तो ओकर में कम से कम 30 से 35 किलो DAP और देखा कि करीब मतलब करीब 15 से 20 केजी मतलब जो हो तुम्हारा पोटास, और देखा कि 15 से 20 केजी यूरिया, और देखा कि ये सब मिला के, और अगर जैम तुम्हारा अगर मिल जाओ है ना कोई भी जैम 5 केजी ओकरा सब मिला के एक साथ धान रोपाई ठीक जब तुहर कदवा तैयार कर ले हा, और कदवा तैयार होगा कदवा ठीक बैठे दहा, बैठे के बाद ओकरा छिड़काव करके तब धान के रोपाई करे के चाहिए। धान के रोपाई के समय में एक बात और ध्यान देख चाहिए कि धान रोपे के बाद कुछ कुछ बीमारी खेत में लगे हुए है। बीमारी के कारण का हुआ कि जैसे आज के डेट में अनेकों तरह के साग सब्जी या बहुत तरह खेती जो होवे लगल है, तो बारिश जब हुए है तो बीमारी पानी के माध्यम से बह के खेत तक आ जाए, तो ओकरे में कहा हुआ कि देखवा कि तुहर धान में भी कीड़ा लग जाओ। तो धान रोपाई के ठीक 15 दिन यानी दूसरा सप्ताह में पहला यूरिया का जब तू ड्रेंचिंग करो हाँ, तो ओकर में थोड़ा सा फोरेट या थायमेट या फेराडान जी भी हो 1 एकड़ में 4 से 5 किलो मिला के ओकरा साथ छिड़काव करवा, तो ओकर में बीमारी तुहर पौधा में ना लगता। जैसे कि देखो बाली कटे के शिकायत हो जाओ, गभा में कीड़ा लग जाओ, जड़ से कीड़ा लग जाओ, धान पीला होवे लगो तो कीड़ा के प्रकोप से हो, तो एक सावधानी हम अभी बरत सको।
1: देखा कि समय समय पर जानकारी रखे से ही किसान सबके फायदा हुआ है। अधिक जानकारी के लिए देखा कि हर जिला में कहीं न कहीं कृषि विभाग केंद्र हो है भाई, वहां पर जाके कृषि विभाग केंद्र में जाके वहां पर जितना भी वहां पर विशेषज्ञ हथिन उनका जरिए से बात करथिन कि भाई हमिन के धान के खेती में कौन तरी बीमारी लगे, तो अगर फोटो खींच के वहां ले जीथिन वहां देखे थीन भाई कि देखा क्या इस तरीके से हमिन के दिक्कत हुई, तो वहां के विशेषज्ञ जो है अपन राय देथिन वहां के समाधान निकालथिन कि खेती बाड़ी कौन तरी करे के चाहिए। और देखा कि वीरेंद्र भाई कि खेत भी बहुत तरह तरह के हुए है न, और जब भी बोला घोघरा खेत हम जो बोला कि कायदो कर लेवे के चाहिए, तो वहां पर ऐसे ही बहुत सारा पानी रो है, लेकिन जो सबसे ऊपर जो खेत रो वहां पर थोड़ा सा दिक्कत हो जाए, लेकिन हाँ आखिरी में वहां पर भी खेत में रोपा जाए। क्या कि हम इनके किसान सबके एक उद्देश्य रो भाई कि धान जे साल भर के खेती हो, साल भर के अनाज हो, जे हर किसान सब उपजाओ थीन, ते इतना उपजावे के चाहिए जेकर से हर किसान के पेट पल जाए है ना, हाँ। और जमीन परती नाय रहे के चाहिए।
2: तो ये बहुत अच्छा बात तो बोला है, लेकिन एक बिना देर कुबेर कर ले एक गीत और जरूरी संदेश सुनिए।
3: मेहनत हाँ।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: ऐतू गांव जो कि किसान भाइयों आज हम आए हुए हैं मायातू गांव जो कि कटकम दाग प्रखंड में पड़ता है और हमारे साथ हैं एक सफल किसान। तो आपका
1: आइए जानते हैं इनसे इनका परिचय। आपका नाम क्या हुआ?
2: मेरा नाम रविंद्र कुमार मेहता हुआ, ग्राम सरैया।
1: तो रविंद्र जी आपका पढ़ाई लिखाई कहां तक हुई है?
2: पढ़ाई अब मैट्रिक की हुई है।
1: अच्छा अच्छा, तो आपके पास कौन कौन सा खेती करने का जो अनुभव है, कौन सा?
0: किसान भाइयों आज हम आए हुए हैं मायातू गांव जो कि कटकम दाग प्रखंड में पड़ता है और हमारे साथ हैं एक सफल किसान। तो आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है, नमस्कार।
3: नमस्कार।
0: तो सबसे पहले हम आपके परिचय जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है?
3: मेरा नाम योगेश्वर साह है, ग्राम मायातू पोस्ट सुल्ताना,
0: हाँ,
3: थाना कटकम दाग, जिला हजारीबाग का मैं रहने वाला हूँ।
0: तो योगेश्वर जी, हम जानना चाहेंगे कि अभी इस वक्त हम आपके खेत में खड़े हैं और हम देख रहे हैं कि आप पूरा तैयारी के साथ खेतीबाड़ी में जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि खेतीबाड़ी से जुड़ा आपका कैसे हुआ?
3: पढ़ लिख करके आदमी बेरोजगार हो जाता है तो लास्ट उपाय खेतीबाड़ी रहता है ना।
0: हाँ।
3: तो हम लोग पास पड़ती जमीन बहुत था, लास्ट में सोचे कि कुछ जमीन को जुताई करके और हम लोग कुछ फूलगोभी हो गया, टमाटर हो गया, मिर्चा हो गया, पत्ता गोभी हो गया वगैरह, बहुत तरह से सब्जी है वो सब लगाने के लिए शुरू कर दिए।
0: हाँ, मतलब मौसमी खेती का आपने सोचा खेतीबाड़ी करने के लिए। तो इस वक्त आप कौन कौन सा फसल लगाए हैं?
3: इस वक्त मई हो रहा था, उस समय हम लोग फूलगोभी का बीज छोड़ दिए थे, उसके बाद पत्ता गोभी जो है, बंधा गोभी जिसको कहते हैं, वो भी छोड़ दिए थे, मिर्चा का छोड़ दिए थे। करीब 20 या 25 दिन पहले टमाटर का भी हम लोग बीज छोड़ दिए हैं।
0: हाँ। तो कुछ अभी जो खेत पर हम देख रहे हैं बहुत सारा फसल पक गया है, तो कौन कौन फसल आपका तैयार हो गया है?
3: अभी तैयारी में है, सबसे पहले फूलगोभी तैयार हो चुका है।
0: हाँ।
3: वो कट के मार्केट में जा रहा है, है ना। और फर्स्ट सीजन में निकालने से क्या हो रहा है, रेट जो है मार्केट का अच्छा मिल रहा है।
0: अच्छा, क्योंकि सफल किसान वही है जिसका, जो जागरूक किसान है, वो समय रहते हुए अपना थोड़ा सा पहले भी अपना खेती बाड़ी में ध्यान देते हैं और फसल को पहले तैयार करते हैं और वक्त से पहले जब बाजार में पहुँचता है तो अच्छा खासा दाम मिल जाता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए?
3: जिस समय शुरू किसी भी फसल का शुरू जो मार्केट में जाता है उसका रेट बहुत ही अच्छा रहता है, बाद में टोटल जैसे ज्यादा अवेलेबल हो जाता है जो भी सामान मार्केट में, उसका दाम धीरे धीरे घट जाता है। तो किसान को चाहिए कि जिस वक्त खेती मतलब सबसे आगे से आगे किस समय हम लोग को ज्यादा फायदा हो, उस समय सोच के समय के अनुसार ही हम लोग को बीज छोड़ के और उसका पैदा करके मार्केट से मुनाफा कमा लेना चाहिए। हाँ। है ना,
0: यानी कि जागरूक किसान वही है जो वक्त से पहले और वक्त के साथ चले। तो हम ये कहना चाहेंगे कि इस वक्त आप फूलगोभी का फसल तैयार करके बेच दिए, तो आपको क्या लगता है कि कितना लागत लगाए थे, कितना मुनाफा हुआ?
3: फूलगोभी में खास लागत लगता नहीं है, वो देसी दाना जो पवन है, राजन है, इस पवन का जैसे निधि आ गया, 10 ग्राम पैक में आता है, 20 ग्राम पैक में आता है, 100 रुपया में हम लोग को 20 ग्राम दाना मिल जाता है, उससे हम कम से कम 20 ग्राम में 2 कट्ठा की रोपाई हो जाता है, 50 रुपये कट्ठा बीज लगा, बाकी यूरिया मान लीजिए कट्ठा में 3 kg, 4 kg DAP लगता है।
0: खाद वगैरह डालते हैं, गोबर खाद?
3: गोबर कट्ठा में लगभग 3 क्विंटल खाद
0: डाल चुके रहते हैं।
3: हाँ, डाल के मिट्टी की तैयारी करते समय डाल देते हैं।
0: तो कब लगाए थे फूलगोभी आप?
3: 20 जून को रुपाई कर दिए थे।
0: 20 जून को रुपाई की थी। इस वक्त अब फसल आप बेचने के तैयारी में है, बेच भी रहे हैं, तो हम आपसे सीधे तौर पर जानना चाहेंगे कितना मुनाफा हो रहा है आपको?
3: अभी मार्केट में 40 से 45 रुपये केजी गद्दी जो है बिकता है थोक में, वो रेट से हम लोग को बिक रहा है।
0: अच्छा,
3: है ना। हाँ। तो एक दिन ने मान लीजिए कि हम 6 कट्ठा फूलगोभी लगाए हैं और एक दिन छोड़ के एक दिन 1.5 क्विंटल माल कटता है, तो 4,500-6,000 रुपया हमको एक दिन छोड़ के एक दिन आ जाता है।
0: अच्छा अच्छा, है ना। यानी कि आपको लग रहा है कि उससे आपको 4 या 5 गुना से ज्यादा ही फायदा हो रहा है आपको?
3: जी हाँ।
0: तो यानी कि खेती बारे में किसान को जागरूक होना चाहिए और उन्नतशील किसान बनना चाहिए जिससे कि आने वाले समय में हमको अच्छा मुनाफा हो। तो हम आगे ये जानना चाहेंगे कि इसके बाद जब फूलगोभी बेच लिए उसके बाद आपने क्या सोचा?
3: फूलगोभी अभी लगभग 10 दिन और कटने में समय लगेगा, पूरा बारिश साफ होने में, उसके बाद तुरंत उसमें फूलगोभी का जो अगला बीज तो दूसरे जमीन में छोड़ दिए हैं, उस जमीन में हम लोग धनिया का खेती तुरंत 45 दिन के अंदर बेच देंगे निकाल के।
0: तो मतलब अभी धनिया पत्ता भी खेती आप कर रहे हैं अभी?
3: जी,
0: तो यानी कि फसल चक्र भी अपनाते हैं आप, क्योंकि एक फसल में अगर एक ही जमीन पर बार बार फसल बदलते हैं तो उससे उसका उर्वरता क्षमता ही बनी रहती है और बर बीमारी भी नहीं होता है। तो हम जानना चाहेंगे कि इस फूलगोभी के बाद आपके खेत में क्या क्या फसल लगे हुए हैं?
3: फूलगोभी के बाद 15 कट्ठा में टमाटर जो 10 या 15 दिन पहले रुपाई जमीन में कर दिए हैं, वो जमीन में उसका खाद दोबारा चढ़ा रहे हैं टमाटर में, कि अक्टूबर में टूटने के लिए स्टार्ट हो जाएगा
0: शरद ऋतु में ना।
3: हाँ, शरद ऋतु में।
0: तो यानी कि आप टमाटर का भी खेती किए और टमाटर भी आप तो

0: तोड़ के बेच ही रहे हैं।
1: हाँ।
0: तो इसके साथ और मिर्चा का भी खेती किए हैं, मिर्च का।
1: मिर्चा अभी फल निकल चुका है मिर्चा में, ये भी समझिए कि फर्स्ट जून में इसका दाना रुपाई की थी, बिछड़ा तैयार करके किए थे और 20 जून में इसको रुपाई कर दिए थे।
0: हाँ।
1: और लगभग ये मिर्च तैयार है,
0: तैयार है। बंद गोभी भी आपको देख रहे हैं पूरा तैयार है, तो उसको भी आप बेचे हैं या तो अभी टूटा नहीं है आपका खेत से?
1: न, बंद गोभी करीब करीब एक हफ्ता उसमें लगभग 1 kg साइज में जैसे आया है।
0: हाँ हाँ।
1: और उस साइज लगभग पौधा जिस तरह तैयार हुआ लगभग 1.5 kg बनेगा, इसलिए करीब करीब एक हफ्ता और उसको छोड़ देंगे, उसके बाद काट के उसको मार्केट में भेज देंगे।
0: यानी कि आप एक साथ अनेकों फसल लगाते हैं आप। अच्छा ये बताइए जोगेश्वर जी, एक साथ आप बोले मिर्च की खेती भी किए, बंधा गोभी, पत्ता गोभी, बैंगन भी लगाए हैं, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी फसलों की खेती भी करते हैं, तो एक साथ एक ही टाइम में आप करते हैं तो आपको क्या फायदा होता है, कैसे कैसे बेचते हैं आप?
1: मान लीजिए कि 1 acre जमीन है, 1 acre में 6 कट्ठा फूल गोभी लगा दिए, 10 कट्ठा टमाटर लगा दिए, 5 कट्ठा मिर्चा लगा दिए, उस तरह 5 कट्ठा पत्ता गोभी लगाए हैं, सबका टाइम अलग है कटने का।
0: हाँ।
1: है ना, फूल गोभी सबसे पहले कट जाता है।
0: अच्छा,
1: उसके बाद कटता है पत्ता गोभी है वो कटता है, फिर टमाटर निकलेगा। इस तरह मतलब मार्केट बंद नहीं होता है, धीरे धीरे मतलब चलते रहता है।
0: यानी कि आप अपने दिमाग का उपयोग कर रहे हैं और एक साथ समझ गए कि पहले मेरा क्या क्या निकलेगा, और जैसे जैसे आप लगाए हैं वैसे वैसे उसको काट भी रहे हैं पहले से, तो ये आपका चक्र चलता ही जा रहा है और आमदनी के जरिए बढ़ रहा है। तो जोगेश्वर जी हम जानना चाहेंगे, वे किसान जो खेती बाड़ी से जुड़े हैं तो वे खेती बाड़ी का भी काम करते हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपने खेती बाड़ी का जो जानकारी है किसी से प्रशिक्षण लिए हैं?
1: हाँ, हम लोग हॉलिक क्लोज लगभग वही मई में।
0: हाँ।
1: हर साल प्रशिक्षण मिलता है
0: हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र हजारीबाग में, आप प्रशिक्षण लेते हैं
1: जी।
0: तो हम आपसे थोड़ी सी जानकारी ये भी लेना चाहेंगे कि आपने वहाँ पर क्या सीखा था, इतना हम देख रहे हैं कि आप सफल किसान के उन्नति के कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशिक्षण का भी आपका सपोर्ट हुआ होगा, तो बताएं कि क्या आपने सीखा?
1: सबसे पहले हम लोग मिट्टी का जांच करवा लेते हैं।
0: अच्छा,
1: उसमें जो 16 पोषक तत्व होता है मिट्टी में, उसमें किस चीज का कमी है उस चीज को हम लोग मिट्टी में डालकर उसको पूरा कर लेते हैं। बाद में फसल देखते हैं कमजोर है और किस चीज का कमी कारण, किस इसका कम मतलब उसका पीलापन हुआ या तो गलना हुआ सड़ना हुआ, वो हम लोग स्प्रे द्वारा उसको पूरा कर देते हैं पौधा में।
0: यानी कि वहाँ पर आपको मिट्टी की जांच के बारे में बताया जाता है, तो जो कमी होती है 16 पोषक तत्वों में उसकी भरपाई आप करते हैं, तो कभी मिट्टी की जांच के लिए नमूना आपने कभी लेगा है?
1: हाँ।
0: पहुंचाया है अपने?
1: हाँ।
0: तो आपने क्या इसका उपयोग किया, कैसे उसका समाधान किया?
1: मिट्टी जैसे एक खेत है।
0: हाँ।
1: मान लीजिए कि 5 कट्ठा का एक गोलाकार खेत है, उसमें एक पंप द्वारा जो पंप होता है उसमें हाथ से करीब करीब 1 फीट के मतलब 8 या 7 इंच के इति तक गहराई तक हम लोग पंप को डालते हैं।
0: अच्छा।
1: और उसको 5-6 जगह डालते हैं, उसके पंप के बीच में जो मिट्टी रहता है उसी को हम लोग प्लोथिन में करके ले जाते हैं।
0: आप नाम पता और उस प्लॉट का नंबर लिख के आप जमा करते हैं
1: जी। हाँ।
0: तो आपको वहाँ मिट्टी जांच में पता चल जाता है कि इस मिट्टी में कैसा क्या चीज की कमी है, किन पोषक तत्वों की कमी है, तो इसके बाद भरपाई भी करते हैं। तो आपको क्या मुनाफा हुआ, उन किसानों को बताएं जो किस खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं?
1: लगभग एक जमीन में फसल चक्र करके 3 फसल उसमें हम लोग ले लेते हैं, और एक फसल में अगर 5,000 रुपये फायदा हुआ तो 1 कट्ठा में 3 बार लेते 15,000 रुपये हम लोग 1 कट्ठा में आमदनी उससे फायदा कर लेते
0: फायदा लेते हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी जिंदगी में खेती बाड़ी से क्या क्या बदलाव हुए हैं?
1: 2 बच्ची है।
0: हाँ।
1: 2 बच्चा अभी है।
0: हाँ।
1: फर्स्ट लड़का ISC कर रहा है, सेकंड जो बच्ची है वो वुमेन्स कॉलेज में अभी पढ़ रही है
0: जी,
1: मैट्रिक करीब 84% से पास की थी।
0: यानी कि आप खेती किसानी से जुड़ के आप आमदनी कमा के बच्चे लोगों को इतना दूर तक पढ़ा रहे हैं, ये जानकर तो हमें बहुत ही खुशी हुई।
1: घर का जैसे परिवार भी है, 1-2 आदमी भी मिला कम मतलब मजदूर, उसका 2-4 मजदूर भी लगा दिए, अपने भी खट लिए, और हम अगला भी जो खटने जाए उससे हमारा 10 गुना भी मुनाफा हो जाता है खेती, अपने खेती करने से। किसी के यहाँ हमारे काम करने जाते हैं तो 300 रुपये मिलेगा, और एक दिन अगर हम अपना जमीन में अगर काम कर लेंगे तो हमको 3,000 रुपये उससे फायदा होगा।
0: हाँ।
1: है ना,
0: ये तो बहुत बड़ी बात आपने कह दी। तो जोगेश्वर जी हम आपसे अब 2-3 प्रश्न और करना चाहेंगे कि फसलों के चयन में सावधानी के साथ साथ आप अपने खेती बाड़ी के तौर तरीकों में क्या बदलाव किए हैं?
1: सबसे पहले जमीन को है जैसे पैदा होने लगा।
0: हाँ।
1: उसके बाद हम लोग जो बाल बच्चा है जो है उसको जो घर में खेती जो तीन चार सदस्य थे वो तो कर ही रहे हैं, बाल बच्चे को पढ़ाई की ओर ले गए हैं और प्रशिक्षण करा रहे हैं, वो लास्ट में पढ़ लिख करके अगर नहीं होगा तो खेती जो पढ़ा लिखा रहेगा अच्छा ढंग से करेगा, है ना।
0: बहुत बढ़िया बात कहें कि पढ़े लिखे जो युवा किसान होते हैं प्रशिक्षण लेने के बाद बहुत तरक्की भी करते हैं, तो उनका प्रयास रहेगा, हम चाहेंगे वे सफल

0: तक कगार पे पहुंचे और उन्नति करें, तो हम जानना चाहेंगे कि यहाँ के किसान काफी संतुष्ट हैं, तो इससे आपको आप क्या बोलते हैं, आप संतुष्ट हैं?
1: यहाँ का जो म्यातू ग्राम का किसान जो है, खास करके बरसात जो कहते हैं, बरसात में हर एक गांव में देखते हैं कि बरसात में पैसा का तबाही रहता है, लेकिन हम लोग ऐसा गाँव है कि बरसात में यहाँ हर घर में, समझिए कि हर घर में लाख रुपया, डेढ़ लाख रुपया फायदा
0: खेती बाड़ी
1: कर लेता है ना किसान अपने,
0: जी जी, है ना। तो खेती से अधिक लाभ हो, इसके लिए आपको सुझाव देना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों को?
1: खेती से देखिए, हर जो परती जमीन है, हर एक किसान को बोलता हूँ उसको जुताई करके अच्छा ढंग से खेती, अगर जिसके पास 5 कट्ठा जमीन है, 5 कट्ठा में अगर अच्छा तरह से पैदा कर ले तो भी साल भर ने उससे कम से कम 60-70 हजार रुपया का फायदा कमा लेगा 5 कट्ठा में।
0: बिल्कुल,
1: है ना।
0: हाँ, सही कहा जुगेश्वर जी। और अंत में ये जानना चाहेंगे कि किसान भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
1: जो बेरोजगार है, युवा है, नौकरी की तलाश में है, न है, भटक रहे हैं, जो इधर उधर कर रहे हैं, लास्ट में खेती से जुड़ के अपना परिवार चलावे, इससे फायदा ही फायदा होगा, घाटा की बातें नहीं है।
0: तो अभी आपके खेत में खड़े हुए, आपने फसल चक्र से जुड़ी और खेती बाड़ी में आपके जो नए तौर तरीके अपनाए हैं, इससे ये बात सुन के हमारे किसान भाई बहन बहुत लाभान्वित होंगे। तो आप हमसे जुड़े और हमारे किसान भाई को अच्छी अच्छी जानकारी दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: तो देखा कि अभी हमें मिश्रित खेती के बारे में जुगेश्वर प्रसाद से सुन लिया, जब म्यातू के रहे वाला थी ना रविंद्र ने से बातचीत करलथी ने प्रकाश कुमार राणा, बहुत ही अच्छे तरीके से वो बतेलथी ने कि एक बहुत बड़ा बात बतेलथी कि गांव में बहुत ऐसा गांव में देखल जाए है कि बरसात के समय में पैसा के बहुत किल्लत हो, लेकिन ये आगात सब्जी लगा के 1-2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए तक किसान के हाथ में पैसा हो जान पूंजी खेती करे ले, ये बहुत ही अच्छा बात बतेलथिन है।
0: और देखा कि वीरेंद्र भाई की हमेशा जो है खेती बाड़ी और किसान वाणी में अगर बात करिए कि सरकारी योजना के लाभ के बारे बोलिए, तो हर प्रखंड में, प्रखंड से देखा कि जिला में जा ही है ना, तो हर जिला में हर तरह के विभाग हो, देखा कि अगर तोहरे बात कहला कि तो देखा कि किनारे करें हमीन भी हर जिला में जाइए कि वहां पर कृषि विभाग हो या तो वहां पर
2: पशुपालन विभाग हो,
0: मत्स्य विभाग हो, तो सबके पास जाइए ना, तो कहल जाइए भाई कि हमके जो किसान हथिन, जो हमके बात के सुनित हथिन, उनका तक बात के पहुंचे, ताकि वो सब सोच समझ के कोई भी काम में हाथ लगे थी। कि देखा शौकिया कोई काम करवा ने तो शौकिया जैसा रहता, लेकिन अगर तू पेट पाले वास्ते, आजीविका बनाए वास्ते कोई काम करवा, तो जान ला कि तोहर मन यही कहतो कि कुछ भी चीज के जानबूझ करके, समझ बूझ के वो काम के हाथ लगाइए।
2: हाँ, ये बहुत अच्छा तो बात बतेला है कि मतलब आदमी के जब भी कुछ करे चाहे जानबूझ के ही करना चाहिए, ताकि हम अच्छा अपन कर सको ही। एक अलावा जैसे कि अब हम इन बातचीत जो करवे कि मतलब कृषि के साथ पशुपालन है ना आय के बढ़िया जरिया, वो भी सही बात है। जैसे कि अगर हमें खेती बाड़ी करो ही है और अगर दो को एगो बकरी अगर घर में रख लिए, तो घर से जितने मतलब खेत से जितना भी वेस्टेज चीज निकलो, जैसे घास फूस पताई चौताई जो भी चीज हो, वो बकरी तू को खाल दे था, उकर से तुम्हारे बकरी जो हो मतलब पुष्ट भी रहते, अच्छा भी रहते, और साल में 2 बार अगर वो बच्चा दे, एक बकरी समझा 2 बार बच्चा दिया, मतलब 40,000 रुपये को सालाना तुम्हारा आमदनी दे सको, लेकिन 40,000 रुपये अगर तुम्हारा आमदनी दे हो तो मात्र 10,000 रुपये तू अगर खर्चा करो 30,000 तुम्हारा आमदनी ओकर से हो, तो अगर छोट छोट बात के अगर ध्यान दे हा, तो हम इन अच्छा आमदनी कर सको। एक अलावा जैसे मुर्गी पालन करके अगर घर में 5-6 मुर्गी रख लिया और अंडा उत्पादन करके बाजार में बेचे, आज के डेट में देखा देसी अंडा 15-20 रुपया पीस अंडा, एक अंडा बिकवा जबकि एक अंडा उत्पादन लिया 2-2.5 रुपया खर्च है, तो अगर हमें चाहे तो अंडा से भी पैसा कमा सको।
0: देखा कि छोट छोट बात है, लेकिन जान ला कि जो किसान सब सही में अगर बड़ा रोजगार कहल चाहथिन, वो बड़ा पैमाने पर करथिन, काहे कि समय लघु है और ओकर मेहनत भी लघु है, तो हमेशा फैलाव करथिन, काहे कि शौकिया जो बात कहते हैं कि शौकिया कोई काम में एकाध दूर में छोट छोट करे में का हो कि मन हमेशा आगे पीछे हो जाए, लेकिन जब बड़ में पैसा लघु है, बड़ सोच समझ के प्रशिक्षण लेके काम हो, तो रोजगार का बड़ा साधन बनो है, लेयर फार्मिंग हो या तो कहा जा सको कि पोल्ट्री फार्म हो, कोई फार्म खोलथिन लेकिन लाभ के पद पर रहती। तो हम उम्मीद है कि आज के खेती बाड़ी कार्यक्रम जो रोजाना चलो है सोमवार से शनिवार तक ठीक 5:32 से शाम के बेरा से शुरू है, 6 बजे तक चलो है, तो हमने के कार्यक्रम रोजाना सुनते रहतीन, मन से सुनथिन, का कि सीखे के कोई उम्र ना हो है, कोई सुन के सीखो है, कोई देख के सीखो है, कोई करके सीखो है, तो भाई कोई तरीका हो लेकिन हम इनके कार्यक्रम सुनते रहतीन और दूसरों के भी बताते रहतीन। तो हमारा उम्मीद है कि अब जाके बेरा भी हो गया है, तो हमारे प्रकाश के
2: अभिनंदन के अनुमति दा जोहार।

अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण श्रोताओं का अपना कार्यक्रम खेती बारी। एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। आपसे बस कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे राज्य केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के निर्देश पर कल 22 जुलाई को राज्यभर में सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य के तहत एन्यूमरेशन फॉर्म भरने के लिए बूथ लेवल ऑफिसर और बूथ लेवल एजेंट की तीसरी तथा अंतिम बैठक निर्धारित है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज खूंटी के तोरपा, खूंटी और तमाड़ क्षेत्र का भ्रमण कर जनजातीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उन्हें एन्यूमरेशन फॉर्म भरकर बीएलओ को जमा करने के लिए प्रेरित किया। डीजीपी श्रीमती तदाशा मिश्रा ने आज पुलिस मुख्यालय से बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के डीजीपी के साथ ईआरपीसीसी 2026 की वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में अंतर्राज्यीय अपराध, नक्सल उन्मूलन, मादक पदार्थों की तस्करी, साइबर अपराध, रेल सुरक्षा और जीरो एफआईआर के क्रियान्वयन को मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा हुई। राज्य सरकार की नई दिशा नई पहल नीति से प्रभावित होकर हार्डकोर नक्सली अजय महतो की कुख्यात नक्सली पत्नी अनीता किस्को उर्फ बबीता महतो ने आज आत्मसमर्पण कर दिया है। लोहरदगा जिले में पुलिस ने पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर हत्या की नीयत से हथियार लेकर घूम रहे दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से एक देसी पिस्टल, चार जिंदा कारतूस और कई अन्य सामान बरामद किए हैं। और राजधानी रांची में सड़कों को अतिक्रमण मुक्त और यातायात को सुगम बनाने के उद्देश्य से नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में आज हरमू चौक पर सड़क किनारे लगाई गई 20 से अधिक अस्थायी दुकानों को बुलडोजर की मदद से हटाया गया। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो के घड़ी में शाम के 6:02 हुए हैं। आइए सुनते हैं युवा साथियों को संबोधित कार्यक्रम युवाणी।

कार्यक्रम युवानी सुन रहे सभी युवा साथियों को प्रेमेंद्र कुमार मिश्रा की ओर से सप्रेम नमस्कार। युवा साथियों, आप सभी कैसे हैं? इस बरसात के मौसम में भी अपने सेहत का ख्याल आप रख रहे होंगे और इसके साथ ही पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान दे रहे होंगे। युवा साथियों, स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं को असीम ऊर्जा, शक्ति और साहस का प्रतीक माना था। उनका मानना है कि युवा ही देश और समाज का भविष्य है। युवाओं को प्रेरित करते हुए उन्होंने कई अनमोल विचार और संदेश दिए जो आज भी जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे बड़े मार्गदर्शक हैं। उन्होंने कहा था कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। आज भी हमारे देश के युवा स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानते हैं और तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहे हैं।

0: हर पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे।
2: So easy.
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: का नहीं बार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता कटार है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है।

नरकस। हाँ बाबू, ये सर्कस है और ये सर्कस है शो 3 घंटे का।

0: इस प्यारे से गीत के बाद अब हम जानकारी की तरफ बढ़ते हैं। युवा साथियों, आज हम बातें करेंगे कौशल विकास की। कौशल विकास का क्या है महत्व? युवा साथियों, कौशल विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति उन क्षमताओं को प्राप्त करता है, उनमें सुधार करता है, उनमें महारत हासिल करता है जो उसे कार्यों को प्रभावी ढंग से करने में सक्षम बनाती है। इस बदलते परिवेश में ढलने और व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कौशल विकास का होना अति आवश्यक है। कौशल विकास किसी भी व्यक्ति की क्षमताओं को बढ़ाकर उसे व्यक्तिगत और व्यावसायिक रूप से अधिक कुशल, आत्मनिर्भर और योग्य बनाता है। इस आधुनिक समय में रोजगार प्राप्त करने के लिए, करियर में प्रगति करने और आर्थिक विकास के लिए अति आवश्यक है। इसके लिए रोजगारों के अवसर में वृद्धि, आत्मनिर्भरता और आर्थिक स्वतंत्रता, आत्मविश्वास का निर्माण, देश का आर्थिक विकास जैसे पहलू भी इसमें शामिल हैं। इसके लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं जो है वो चलाई जा रही हैं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी PMKVY, जिसका लाभ युवाओं को मिल रहा है और देश निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है। युवा साथियों, आज हम इस कार्यक्रम में एक भेंट वार्ता लेकर आए हैं जो कि है अंग्रेजी शिक्षक श्री BK झा से सूरज रजक की बातचीत। आइए हम सब मिलकर इस भेंट वार्ता का आनंद लेते हैं।
1: श्रोताओं, अंग्रेजी को वैश्विक भाषा कहा जाता है। दुनिया भर में लोग संपर्क के लिए अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं। हर पढ़ा लिखा व्यक्ति चाहता है कि उसकी अंग्रेजी अच्छी हो, समृद्ध हो। में हाल के दिनों में ये देखा जा रहा है कि अंग्रेजी सफलता की गारंटी मानी जा रही है। हर कोई चाहता है कि उसकी अंग्रेजी अच्छी हो। प्रतियोगिता परीक्षा की बात करें तो उसकी तैयारी जो छात्र कर रहे हैं वो भी चाहते हैं कि बेहतर तैयारी हो, उसकी रणनीति बेहतर हो। तो इसी विषय पर बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ हैं विनोबा भावे विश्वविद्यालय में सेवानिवृत्त शिक्षक प्रोफेसर BK झा, अंग्रेजी के हैं, बहुत अच्छे शिक्षक, अंग्रेजी में इनकी गहरी पकड़ है। तो आज इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह एक बेहतर रणनीति बनाए जाने की जरूरत है। तो सर, आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: आज की पीढ़ी की बात करें या हम की जो पुरानी पीढ़ी थी, तो अंतर यह है कि

0: पहले अंग्रेजी माध्यम को उस तरह के स्कूल नहीं होते थे, लेकिन अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी, हर कक्षा में लोग अंग्रेजी पढ़ते थे। और आज अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हैं, ज्यादातर अंग्रेजी माध्यम के स्कूल है, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी समृद्ध नहीं है। इसके पीछे का क्या कारण है, यहाँ से इस बातचीत की शुरुआत करते हैं, उसके बाद आगे बातचीत करेंगे।
1: आपने बड़े ही मूलभूत प्रश्न को स्पर्श किया है सूरज जी, और मैं ये बताऊं कि इसकी व्यापकता अब इतनी बढ़ गई है कि केवल ग्लोबल लैंग्वेज कह देना, इंटरनेशनल लैंग्वेज कह देना, इसको लिंगुआ फ्रांका कह देना, ये काफ़ी नहीं है। आप या हम लोगों के नस नस में अंग्रेजियत इस तरह समा गई है कि हमें लगता है कि इस सोपान को अलग हटाकर हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और हमने देखा कि जो बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो स्कूल में ही अपनी शिक्षा को तिलांजलि उन्होंने दे दिया है, उनकी भी एक मन में जोश खरोश रहता है कि अगर मौका मिलता और एक अच्छे शिक्षक मिलते तो मैं अंग्रेजी को पहले से ज़्यादा निखार लेता। लेकिन वास्तव में एक चीज़ को कहने में मुझे कुछ भी गुरेज नहीं है कि अंग्रेजी के अच्छे शिक्षकों की निहायत कमी और गरीबी हम अभी महसूस कर रहे हैं। और सवाल ये नहीं है कि इसके कुछ एक बिल्कुल एक निष्ठ कोई रास्ता होगा, ऐसी बात भी नहीं है। हम लोगों ने उसको इस तरह से ये किया है, विलोपित कर दिया है कि हम तो समझते हैं कि जब मैंने ज्वाइन किया अपने असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में सेंट कॉलम्बस कॉलेज में, तो किताब चलती थी लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर। ये जरूरी नहीं है कि हमने ग्रामर अलग से पढ़ के ही हम अच्छा ज्ञान हासिल कर सकें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं तो समझता हूँ वो और भी सुगम सहज था कि लैंग्वेज पढ़ते पढ़ते आप उसमें से ग्रामर भी निकाल लिए, सब कुछ कर लिए। लेकिन अभी जो है ऐसे पढ़ाने वालों की कमी है, और ऐसे जौहरी बहुत कम हैं जो अंग्रेजी की उन बेशकीमती बातों को हीरा को निकाल कर लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकें। यही कारण है कि अंग्रेजी की निखार में कमी आ गई है, और सब स्टेज पर जो है अंग्रेजी धड़ाम धड़ाम गिरते चली जा रही है।
0: आपने ये बात बड़ी अच्छी बात कही कि मतलब लिटरेचर के थ्रू हम अंग्रेजी सीख सकते हैं और वो प्रवृत्ति घट गई है, या कहे कि खत्म हुई है,
1: खत्म हो गई।
0: हाल के दिनों में ये देखा कि कोचिंग में जाकर लोग अंग्रेजी सीखने की कोशिश करते हैं।
1: हाँ।
0: तो अध्ययन के दौरान छात्र किस तरह की सजगता बरते, इस बारे में कुछ बताइए।
1: हाँ बिल्कुल, अध्ययन के दौरान वो इतना ही सजग रहे कि अगर वो टीचर जो कुछ भी बात किसी लिटरेचर या किसी टेक्स्ट या किसी प्रोज पीस को या किसी पोएम को डिस्कस कर रहे हैं क्लास में, तो उनकी एक एक चीज को देखें कि वहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ। अभी मैं एग्जांपल के बतौर एक बता दूँ, छोटा सा पोएम लॉन्ग फेलो का, H.D. लॉन्ग फेलो का था, ए साम ऑफ लाइफ। और मेरा यह विश्वास है कि उस साम ऑफ लाइफ को जो पढ़ लेगा उसके हर पैराग्राफ में, हर स्टेंजा में अंग्रेजी को सुधारने और ग्रामर को सुधारने का ऐसा समाया हुआ है मंत्र कि उसके आधार पर आप बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं और अलग से ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। रही बात अगर ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत भी है तो आप उसको इस तरह से ईजाद कीजिए, उसको कुछ ऐसा नुक्स ऐसे निकाल दीजिए ताकि लड़कों को समझने में माथा पर बोझा नहीं लगे कि ये फार्मूला हुआ और इससे ये निकलेगा, यहाँ पर सेल हुआ तो यहाँ पर विल होगा, यहाँ पर विल हुआ तो यहाँ पर उड होगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं समझता हूँ कि यह पढ़ते पढ़ते केवल एक अच्छे शिक्षक की ज़रूरत है जिसका ज्ञान इतना व्यापक हो कि सब चीज़ों का समावेश, खास करके अंग्रेजी की भाषाओं, उसके जो है मैंने संस्कृति का इस तरह का समावेश हो कि वह सक्षम हो कि एक एक चीज को तोड़कर जोड़कर लोगों के दिल दिमाग पर इस तरह आरोपित कर दे कि वह कुछ दिनों फील करने लगे कि यस आई एम मच बेटर देन बिफोर।
0: सर, स्वाध्याय पर अक्सर चर्चा होती है,
1: बिल्कुल,
0: तो जो बच्चे खुद पढ़ना चाहते हैं तो उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप?
1: स्वाध्याय करेंगे तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो जो आजकल अंग्रेजी का एक बहुत ही प्रचलित वर्ड है मेंटोर, MENTOR, गलती से लोग उसको मेंटर पढ़ देते हैं लेकिन उसका प्रोनंसिएशन होगा मेंटोर। उसकी कभी न कभी जरूरत इसलिए है कि केवल वो आपका दिशा निर्देश दे दे, पथ प्रदर्शन कर दे, मां कि आप स्वाध्याय करते रहें और अपनों को चेक डबल चेक करके अपने को साधते रहें, सिद्ध होते रहें और मैं कहां तक खरा उतरा इसका बीच बीच में जो है वो
0: आकलन
1: जो है उसमें मेंटोर से करवाते रहें। बस कोई जरूरी नहीं है कि किसी क्लास को ही ज्वाइन करना है या किसी कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन करना है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सबके तह में एक अच्छे जानकार अंग्रेजी के शिक्षक की जरूरत है जिसकी निहायत कमी है। बिना उसके स्वाध्याय चलेगा, लेकिन डायरेक्शन तो चाहिए ही ना। जैसे मुझे कभी एक नाम नहीं बताऊंगा, एक बड़े ओहदे के रूप में।

0: पूछा कि सर आप घर पर हैं? हाँ, काम मैं बिल्कुल घर पर हूँ। सर थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, हमको बताइए कंफ्यूज। आप जो बोलते हैं सर, स्पीच मेकिंग करते हैं किसी प्लेटफॉर्म पर, तो वहां पर वो आप बोलते हैं इन परसुएंस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ दिस मैन और दैट मैन। हमारे बगल में जो बड़े ऑफिसर बैठे हुए हैं कहते हैं कि नहीं, इन परसुएंट टू द डायरेक्शन ऑफ फलना। हमने कहा जो भी आपके बगल में बैठे हुए हैं, श्रद्धापूर्वक उन्हें आप हमारी तरफ से ये दे दें संदेश कि इन परसुएंस ऑफ करेक्ट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, अगर उनको इतना ही प्रेम है परसुएंट को यूज करने का, तो इनको उड़ा देना पड़ेगा और परसुएंट टू कर देना पड़ेगा, परसुएंट टू द डायरेक्शन ऑफ फलना, आई एम एक्टिंग लाइक दिस, ये करना पड़ेगा। तो जब तक शिक्षक का वो ज्ञान और वो नहीं रहेगा, और वो शिक्षक बीच बीच में जो है लड़कों को मैंने उसका आकलन करते नहीं रहेंगे, तो पता नहीं चल पाएगा उस लड़के को मैं कहाँ तक पहुँचा, किस ऊंचाई तक पहुँचा, कि गिर गया कि उठ गया, कि कहाँ हूँ, इसका अंदाज नहीं लगे। मैं कम ही जानूँ, लेकिन जो जानूँ बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जानूँ। और इसके साथ इस चीज पर ही उसके ब्यूटी को निखारने के लिए एक्सेंट, इंटोनेशन, वॉइस कल्चर, ये सारी की सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। और एक चीज सूरज जी, आप देखते होंगे कि मंच पर आपको खड़ा कर दिया गया, एक लेक्टर्न ऊंचा जैसा थमा दिया गया। अब उस लेक्टर्न पर आप इस तरह से अगर खड़े हुए तो आपका गर्दन से ऊपर ही चेहरा दिखाई पड़ रहा है, यू आर पीपिंग ओवर द एज ऑफ दैट लेक्टर्न, आप पूरा प्रोफाइल जो है वो विलुप्त है। तो इससे जो है हम जो हम जो अपना इम्प्रेशन देना चाहते हैं ऑडियंस पर, वो कॉन्टेक्ट जो है विलोपित हो जाता है। इसलिए अपने प्रोफाइल को, अपने जेस्चर को, हाथ का मूवमेंट, और हाथ शुरुआती दौर में तो बिल्कुल शांत रहे, उसमें कुछ नहीं, एम्प्टी रहे, खाली रहे, और जब जिस जेस्चर की जहाँ ज़रूरत है उतनी चीज़ किया जाए, वॉइस को न ऊँचा किया जाए न नीचा किया जाए, लेकिन इस तरह से वॉइस रहे कि लगे कुछ लयात्मक ढंग से हमारी बातें इस तरह से बहने लगी है कि लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता चला जाए, और इंटरेस्ट का सब्जेक्ट जो होगा जो हमारा ऑडियंस भी पसंद करे, उस तरह की चीज़ को खोजने की जरूरत पड़ेगी, ताकि ऐसे ही जो जिस पर अनाप शनाप विषय पर, और टाइम लाइन भी जो है, टाइम का जो स्लॉट है सूरज जी, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका इंटरेस्ट कुछ नहीं है और मैं बहुत लंबे अरसे तक जो है उस चीज़ को बोलता रहा, आदमी उब जाता है, वो ओवन होती है। तो इस तरह से आप उसको ये कीजिए कि जितनी बातें आप बोलते हैं उसको जो है आपके हार्ट से दूसरे हार्ट में इस तरह से फ्लो कर दें कि फॉर लॉन्ग टाइम टू कम वो भुलाया नहीं जा सके।
1: सर प्रतियोगिता परीक्षाओं कराते हैं तो yes. वहाँ छात्र किस तरह की तैयारी करे, उनकी रणनीति क्या होनी चाहिए?
0: प्रतियोगिता परीक्षा के लिए छात्रों की रणनीति में मैं ये कहूँगा कि पहले तो टेक्स्ट का जो है आद्योपान ठीक से अध्ययन करें, और कहीं पर अगर वो पिछड़ते नजर आते हैं कि बातें समझ में नहीं आती है, तो उस विषय के जो अथॉरिटी हैं, जो आधिकारिक आदमी हैं, उनसे संपर्क स्थापित करके कहें कि मैं इस तरह से फील करता हूँ सर कि ये है, मैं गलत हूँ या सही हूँ, उसे आप हमारे सामने उसका स्पष्ट ये कर दीजिए, तो वो अथॉरिटी आपको बताएगा। और प्रतियोगिता परीक्षा में भी शिक्षक के, अच्छे शिक्षक के मार्गदर्शन के बिना आप प्रतियोगिता में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो कि स्वाध्याय भी चलेगा, टेक्स्ट का ज्ञान बहुत जरूरी है, लेकिन टेक्स्ट के ज्ञान के बाद भी अगर कहीं कहीं पर लगता है कुछ थ्योरम, कुछ ऐसी कड़ी है जो मिसिंग पॉइंट्स हैं, मिसिंग लिंक्स हैं, जहाँ पर आपकी पकड़ नहीं हो पाती है, तो उसके लिए हमें अप्रोच करेंगे एक अच्छे शिक्षक को उस विषय का, जो मास्टर माइंड है।
1: तो किस तरह के पुस्तकों को पढ़ने की आप सलाह देना चाहेंगे?
0: हाँ, इतना तो समय लोगों के पास नहीं है सूरज जी कि एक एक चीज को जो है इतने लंबे समय तक, हाँ जीवन भी बहुत छोटा है और समय भी बहुत कम है, इसलिए उसका जो है जिसको कहते हैं कि समथिंग ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग ऑफ समथिंग, पिक एंड चूज वाली नीति, एंड सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को जो है डेवलप करना पड़ेगा कि हमको डिस्क्रिमिनेट कर देना है कि क्या चीज राइट है, कितना रॉन्ग है, कितना हमें पढ़ना है, कितना पर हमको फोकस करना है, कितना को जो है हमको छांट देना है। इतना इस तरह के इसे हमें होगा क्या कि समय भी कम लगेगा और हम उसकी गहराई में जाकर जो पकड़ की चीज है, जो हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुतायत ढंग से पूछे जाते हैं, उसको हम जो है उस एरिया को हम कवर करने में सक्षम हो जाएंगे।
1: तो लेकिन किस तरह का कोई खास पुस्तक वगैरह जो आप सजेस्ट करना चाहें इस वक्त जो सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम?
0: ये प्रतियोगिता के लिए मोटी मोटी किताबें अभी बाजार में उपलब्ध हैं, उसकी एक बाढ़ आ गई है। हाँ। कोई पर्टिकुलर किताब की कोई जरूरत नहीं, केवल यही ध्यान में रखें कि जो इन्फॉर्मेशन उसमें दिए गए हैं उसमें ऑथेंटिसिटी है कि नहीं, कहीं गलत।

0: अच्छी चीज तो नहीं छप गई है,
1: अच्छे लेखक
0: के बाद उस अच्छे लेखक के चुनाव के लिए भी फिर वहीं पर एक अच्छे शिक्षक के पास जाना पड़ेगा, जो करना पड़ेगा।
1: लेकिन एक शिक्षक के रूप में आप क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: हम शिक्षक के रूप में सलाह देंगे कि आप उसमें अपने को डुबो दीजिए और उसके बाद काफी समय दीजिए, फोकस कीजिए।
1: किसी राइटर के बारे में अगर कहना हो तो जैसे जो बच्चे सुन रहे हैं उनको जरूरत है,
0: अगर अंग्रेजी की ये बात है तो किसी ग्रामर की किताब को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो है एक ऐसे मतलब लिटरेचर की किताब को जो कि स्कूल एज में सेंट जेवियर्स में या और स्कूलों में चलते हैं वो ले लीजिए और उसके कुछ प्रोज पीसेज कुछ पोएम्स को आप जो है बिल्कुल आत्मसात करने की कोशिश कीजिए तो मैं समझता हूँ कि वो काम आपका कर जाएगा। भीतर में गहराई में जाने की उसकी जरूरत नहीं, सारी उपलब्ध नहीं, जितना हमें चाहिए कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए उतना उपलब्ध होंगे।
1: सर दो बातें और इस बातचीत में हम आपसे करना चाहेंगे। अंग्रेजी के जो न्यूज पेपर्स हैं उनकी क्या भूमिका है?
0: न्यूज़पेपर्स की भूमिका तो सर्वोपरि है सूरज जी, मेरी नज़र में टेलीग्राफ हुआ करता था, सुनते हैं कि हजारीबाग में अभी नहीं आ रहा है कि नहीं कारणों से, तो लेकिन अभी भी मैं समझता हूं कि ये दो पेपर लोग बारी बारी से पढ़ते रहें, टाइम्स ऑफ इंडिया भी और ये हिंदुस्तान टाइम्स भी पढ़ते रहें और उसके जो एडिटोरियल पेज है उसको कोशिश करें, उसमें तो बहुत गंभीर बातें रहती हैं, बहुत बातें हो सकती है आपकी समझ के बाहर हो, लेकिन हाँ, लेकिन फिर भी उसमें जो भाषा है, भाषा का जो एक विस्तार और उसका जो उसकी जो निखार है उसको पकड़ सकेंगे। अब कुछ कुछ इडियोमेटिक एक्सप्रेशन जो उस रहेगा उसको दूसरे जगह अपने यूज में लाएंगे तो वो हमारे हमारे जीवन का, हमारे व्यक्तित्व का एक अंग बन जाएगा और हमको नहीं लगा कि हमने कहीं से बोरो किया है। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, एक सिंपल सा वह जो लॉन्गफेलो का पोएम कहा हमने इस्लाम ऑफ लाइफ, उसमें सिंपल सा एक फ्रेज है टेक हार्ट। अब अगर हम टेक हार्ट, इसमें नो टेक भारी है नो हार्ट भारी है, लेकिन अब टेक हार्ट का मोस्ट सोचेगा क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, तो इसका माना इतना गंभीर है टेक हार्ट, मतलब इवन इन द फेस ऑफ एडवर्सरीज और एडवर्स सिचुएशंस यू हैव टू बी एनकरेज्ड एंड प्रोग्रेसिव, नेवर यू हैव नेवर टू बी डाउन एंड आउट, यू हैव टू फील दैट टू लिव इज टू ऑलवेज functioning and without functioning life cannot be lived well.
1: और सर जैसे कि अभी ऑनलाइन के माध्यमों का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है,
0: बिल्कुल,
1: तो यहाँ भी बहुत बहुत सारी सामग्री उपलब्ध है, तो यहाँ चयन करते समय किस तरह की सावधानी छात्र रखे कि वो भटके नहीं?
0: हाँ, सोशल मीडिया तो इस तरह की खिचड़ी हो गई है कि वहाँ पर डिस्टिंग्विश करना बड़ा मुश्किल है कि ये जितने सारे समाचार हैं वो ठीक हैं कि नहीं हैं कि है। यूट्यूब वाले जितने आदमी जो भाग लेते हैं, आपको जो शिक्षा प्रदान करते हैं यूट्यूब के हिसाब से, वो मोर और लेस बहुत ही ऑथोरिटेटिव और बहुत ही समझते हैं कि इम्प्रेसिव होते हैं, उनकी ही शरण में वी हैव टू टेक रिजॉर्ट टू दोज हु आर कमिंग फ्रॉम यूट्यूब एंड गिविंग यू टीचिंग इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स।
1: यही इस बातचीत का सार हम निकाल सकते हैं कि जो पढ़ने के दौरान जो छात्र है, जो अपने पाठ्य पुस्तक है वहाँ अगर ध्यान रखे तो अंग्रेजी के जितने भी, चाहे व्याकरण से संबंधित हो या दूसरे पक्ष हो, तो वहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं, उसे अतिरिक्त कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक अच्छे शिक्षक का मार्गदर्शन भी,
0: एक मार्गदर्शन हमेशा सतत उसके माथा पर एक अच्छे शिक्षक का हाथ रहे जो बीच बीच में खुल के निर्देश कर दे कि दिस इज गुड दिस इज बैड।
1: तो श्रोताओं, हम उम्मीद करते हैं कि आज की इस बातचीत से बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र आपको जरूर मतलब उभर कर सामने आएंगे और आपकी रणनीति बनाते हैं वो सारी चीजें महत्वपूर्ण होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि स्वाध्याय का महत्व, लेकिन अच्छे शिक्षक बहुत जरूरी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में आपको स्वाध्याय में भी सफल होंगे और अच्छे शिक्षक भी आपको मिलेंगे। सर, आपने आप हमसे बातचीत की, इतनी अच्छी बातचीत की, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: धन्यवाद। नमस्कार सर। धन्यवाद।
2: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे, एक भेंटवार्ता विषय था, अंग्रेजी शिक्षक श्री बी के झा से सूरज रजक की बातचीत। हम उम्मीद करते हैं युवा साथियों की आप इस भेंटवार्ता का लाभ अवश्य लेंगे और खास करके चूंकि ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा है तो अंग्रेजी में अपनी सूझबूझ से अपनी पहुंच बनाएंगे ताकि जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वो भी आप बेहतर तरीके से दे सकें और अपना भविष्य निखार सकें। और दोस्तों, इसी के साथ कार्यक्रम युवानी से विदा लेने का समय भी हो चला है। आपसे अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी, ढेर सारी बातें होगी और इसी के साथ कार्यक्रम युवानी से अपने रेडियो दोस्त प्रमोद कुमार मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, FM 102.1 MHz पर। अब से बस कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

क्षमा करेंगे दोस्तों, ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवाने जा रहे हैं के और सुनिधि चौहान की आवाजों में हमराज फिल्म का ये गाना।

0: अभी आप सुन रहे थे काइट्स फिल्म में के और साथियों को। एक छोटे से अंतराल के बाद हम जल्द हाजिर होते हैं। आइए सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश, उसके बाद हम आपको सुनवाएंगे दुनिया दिल वालों की फिल्म के गाने। आवाजें हरिहरन के और असलम मुश्ताक की।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

अभी आप सुन रहे थे नेहा कक्कर और साथियों को, फिल्म का नाम था जानी वे। और इसी के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। अब से बस कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल हमारे रांची केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रांची केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:56 होने को है। कुछ ही पलों में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में हुई कैबिनेट की बैठक, 49 प्रस्तावों को दी गई स्वीकृति। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा, मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिक का है, संवैधानिक अधिकार। कल राज्यभर में सभी बूथों पर लगेगी चुनावी पाठशाला। रिम्स शासी निकाय की बैठक संपन्न, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, रिम्स को देश के बेहतर चिकित्सा संस्थानों की श्रेणी में लाने के लिए किया जाएगा काम। झरिया में समन्वित पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए कल नई दिल्ली में संबंधित पक्षों के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर किए जाएंगे हस्ताक्षर। और रांची के नवीन पुलिस केंद्र में दक्षिणी छोटानागपुर क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता 2026 का भव्य शुभारंभ। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज संपन्न हुए कैबिनेट बैठक में कुल 49 प्रस्तावों को मंत्रिमंडल ने सहमति दी। इनमें उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर गिरिडीह जिले के जमुआ में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण के लिए 38 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति दी गई और रामगढ़ के मांडू में मांडू डिग्री महाविद्यालय खोलने के लिए 40 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति दी गई है।
1: सस्टम झारखंड विधानसभा का सस्टम मानसून सत्र 6 अगस्त 2026 से 12 अगस्त 2026 तक आहूत किए जाने 5 कार्य दिवस। 37वां है आदर्श विद्यालय योजना का अवधि विस्तार 25-26 से 29-30 तक।
0: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के निर्देश पर कल 22 जुलाई को राज्यभर में सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य के तहत एन्यूमरेशन फॉर्म भरने के लिए बूथ लेवल ऑफिसर्स और बूथ लेवल एजेंट्स की तीसरी तथा अंतिम बैठक निर्धारित है। इस बैठक के दौरान चुनाव पाठशाला का आयोजन किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से कहा है कि वे अपने संबंधित BLA 2 की उपस्थिति इस बैठक में अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें तथा मतदाताओं को भी बैठक में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज खूंटी के तोरपा, खूंटी और तमाड़ क्षेत्र का भ्रमण कर जनजातीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उन्हें एन्यूमरेशन फॉर्म भरकर BLO को जमा करने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, इसलिए वृद्ध, दिव्यांग, PVTG सहित सभी को हर संभव मदद देकर सूची से जोड़ा जाए। के रवि कुमार ने सभी से 5 अगस्त 2026 को प्रकाशित होने वाले मतदाता सूची के प्रारूप में नाम शामिल कराने के लिए समय पर फॉर्म जमा करने की अपील की। रांची में आज रिम्स शासी निकाय की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में 26 एजेंडों पर चर्चा हुई और कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने प्रेस वार्ता कर फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रिम्स को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर देश के बेहतर चिकित्सा संस्थानों की श्रेणी में लाने की दिशा में काम किया जाएगा।
2: कल जो है यहाँ पर हम डॉक्टर्स की नियुक्ति पत्र हम बांटने जा रहे हैं। बड़ी संख्या में जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं वो आने के बाद देखिएगा कि दिन में अच्छा कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं होगा जहाँ बेहतर डॉक्टर्स नहीं होंगे, बेहतर इलाज नहीं मिलेगा। तो कल बड़ी संख्या में हम नियुक्ति पत्र हम बांट रहे हैं और यहाँ के तमाम डॉक्टर्स ने ये निर्णय लिया है, खास करके जो सीटी है वही है।
0: जमशेदपुर स्थित MGM मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में नियमित पेयजल आपूर्ति करने को लेकर आज सफल ट्रायल किया गया। मानगो नगर निगम की ओर से संचालित डिमना जलापूर्ति योजना के शंकुसाई श्यामनगर स्थित स्वर्ण रेखा नदी पर बने इंटेक वेल से अस्पताल परिसर तक जलापूर्ति कर परीक्षण किया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज लोकसभा

0: उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कोयला मंत्रालय द्वारा कल नई दिल्ली में कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी की उपस्थिति में खान बंद करने संबंधी वार्षिक रिपोर्ट जारी की जाएगी। इस दौरान झरिया कोयला क्षेत्र में समन्वित पुनर्वास को बढ़ावा देने, आधारभूत संरचना के विकास और सामाजिक आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संबंधित पक्षों के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। डीजीपी श्रीमती तदाशा मिश्रा ने आज पुलिस मुख्यालय से बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के डीजीपी के साथ ईआरपीसीसी 2026 की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में अंतर्राज्यीय अपराध, नक्सल उन्मूलन, मादक पदार्थों की तस्करी, साइबर अपराध, रेल सुरक्षा और जीरो एफआईआर के क्रियान्वयन को मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा हुई। राज्य सरकार की नई दिशा, नई पहल नीति से प्रभावित होकर हार्डकोर नक्सली अजय महतो की कुख्यात नक्सली पत्नी अनीता किस्कू उर्फ बबीता महतो ने आज गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक डॉ. विमल कुमार के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। गिरिडीह में आज पत्रकारों से बातचीत में एसपी डॉ. विमल कुमार ने बताया कि झारखंड राज्य के कई जिलों की पुलिस को बबीता की 18 मामलों में तलाश थी।
1: 2009 से ये एक्टिव रही है काफी छोटे समय से, और 2017 से इनको एरिया कमेटी की जिम्मेवारी दी गई, जो न केवल गिरिडीह के मधुबन थाना क्षेत्र में एक्टिव थी बल्कि आवश्यकता पड़ने पर इनको अन्य जगहों पे भी भेजा जाता था और ये जाती थी।
0: रामगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायत ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि पुलिस ने रामगढ़, हजारीबाग तथा बोकारो जिलों में मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, साथ ही 7 बाइक भी जब्त की है। गिरफ्तार लोगों में इस गिरोह का मुख्य सरगना भी शामिल है।
2: विगत रात्रि एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान संदेह के आधार पर बाइक सवार 2 युवकों को रोका गया। रोकने के क्रम में उनके द्वारा भागने का प्रयास किया गया। जब पकड़ के पूछताछ की गई तो उनके द्वारा चोरी की बाइक का इस्तेमाल करने और चोरी की बाइक के साथ जाने की बात बताई गई। अग्रतर पूछताछ में उनकी निशानदेही के आधार पर कुल 6 अन्य बाइक, टोटल 7 बाइक को बरामद किया गया है।
0: राजधानी रांची में सड़कों को अतिक्रमण मुक्त और यातायात को सुगम बनाने के उद्देश्य से नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में आज हरमू चौक पर सड़क किनारे लगाई गई 20 से अधिक अस्थायी दुकानों को बुलडोजर की मदद से हटाया गया। रांची के नवीन पुलिस केंद्र में दक्षिणी छोटा नागपुर क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता 2026 का भव्य शुभारंभ आज एडीजी मनोज कौशिक ने किया। 23 जुलाई तक चलने वाली इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता में पुलिसकर्मी एथलेटिक्स, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी और कबड्डी में हिस्सा ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता का समापन समारोह 23 जुलाई की शाम 5 बजे होगा, जिसमें विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी और पदक देकर सम्मानित किया जाएगा। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में हुई कैबिनेट की बैठक, 49 प्रस्तावों को दी गई स्वीकृति। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा, मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिक का है संवैधानिक अधिकार। कल राज्यभर में सभी बूथों पर लगेगी चुनावी पाठशाला। रिम्स शासी निकाय की बैठक संपन्न, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, रिम्स को देश के बेहतर चिकित्सा संस्थानों की श्रेणी में लाने के लिए किया जाएगा काम। झरिया में समन्वित पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए कल नई दिल्ली में संबंधित पक्षों के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर किए जाएंगे हस्ताक्षर। और रांची के नवीन पुलिस केंद्र में दक्षिणी छोटा नागपुर क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता 2026 का भव्य शुभारंभ। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार

समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार। प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे हजारीबाग जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे हजारीबाग संवाददाता।
1: हजारीबाग में युवाओं की टोली ने मॉनसून को देखते हुए 60 ट्रैफिक पुलिस को बरसाती उपहार स्वरूप प्रदान किया है। जिला के पुलिस अधीक्षक अमन कुमार कहते हैं,
2: बरसात को देखते हुए कार्य किया गया है ताकि ट्रैफिक के जवानों को काम करने में थोड़ी सहूलियत। ट्रैफिक का काम काफी टफ है और जवान जो है लगातार दिन भर खड़े रहते हैं और बरसात, धूप और गर्मी, कोई भी मौसम हो, ठंड हो, ये लगातार अपना ड्यूटी करते हैं। और ये सेंसिटिविटी दिखाना यूथ विंग की तरफ से कि इनको कुछ मदद की जाए और इनके कार्य में सहूलियत हो, इसकी हम सराहना करते हैं और धन्यवाद करते हैं।
1: सांसद मनीष जायसवाल द्वारा संचालित सांसद तीर्थ यात्रा का एक साल पूरा हो गया। नमो श्राद्ध किट जो हजारीबाग सदर विधानसभा में वितरण होता था, अब पूरे लोकसभा क्षेत्र में वितरित किया जाएगा। रांची से पहुंचे भाजपा के संगठन मंत्री करमवीर सिंह ने सांसद मनीष जायसवाल के प्रयास की प्रशंसा करते हुए कहते हैं,
3: का मनीष जी ने जो व्यवस्था बनाई है, 2500 चावल है, आटा है, दाल है, मसाला है, तेल है, सब मिलाकर छोटा सा एक पैकेट, और इस सेवा के काम के लिए आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हजारीबाग नहीं तो सभी पंचायतों में जाकर के, मंडलों में जाकर के रखना और वहां से जिनकी जरूरत है उनको ले जाने का काम करना, ऐसा एक बड़ा काम प्रारंभ किया है।
1: हजारीबाग में पहली बार इस्कॉन की ओर से जगन्नाथ यात्रा का आयोजन किया गया। इस रथ यात्रा में सैकड़ों की संख्या में भक्त शामिल हुए। आयोजक ने बताया,
4: डिजाइन जो रथ यात्रा हुआ है, अलग अलग भक्तों जो IIT पढ़े हुए हैं, जैसे कि मुंबई के भक्तों, खड़गपुर और कलकत्ता के भक्तों द्वारा मिलकर रथ का डिजाइन किया गया है। आप ये रथ जो देखिएगा, ये अलग टाइप का रथ है।
1: हजारीबाग में शिल्पोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से हस्तशिल्पकार उत्पाद लेकर पहुँचे। सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने बताया,
5: तो हमारे जितने भी मेहनत कर, हमारे जितना भी उद्यमी यहाँ लगे हुए हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा। जैसे पुराना संग्रहालय भी रो रहा है, वहाँ बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं। या झारक्राफ्ट बीमार हो गया है, उसको अगर जीर्णोद्धार करके बढ़िया से उसको बनाया जाए, तो वहीं भी इन लोग सारे लोग अपना अगर मार्केटिंग करेंगे तो निश्चित तौर पर इन लोग का जो धनोपार्जन का स्थिति है वो बेहतर हो पाएगा और लोग कोई हतोत्साहित नहीं होगा।
1: पूरी घर योजना भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना को लेकर हजारीबाग में केंद्र का उद्घाटन सांसद मनीष जायसवाल ने किया।
6: बिल कम हो जाएगा, वो तो एक फायदा है। इसका दूसरा फायदा है कि आज जो पावर कट का झंझट जो है, उससे भी आप, ये बहुत फायदे का चीज है। सभी से अपील करेंगे कि अपने अपने घर पे लगाएं।
1: हजारीबाग समेत पूरे राज्य भर में SIR की प्रक्रिया जारी है। हजारीबाग उपायुक्त हेमंत सती बताते हैं,
7: पर्याप्त मात्रा में हम लोगों ने वॉलंटियर्स रखे हुए हैं। अगर वॉलंटियर्स भी आपका सहायता नहीं कर पा रहे हैं तो प्रत्येक प्रखंड के प्रखंड मुख्यालय में भी हम लोगों ने 3 बजे से लेकर के और 6 बजे तक एक सहायता केंद्र स्थापित किए हैं। उन सहायता केंद्रों में जाकर के आप अपना फॉर्म भरवा करके और उसको BLO के पास सबमिट कर सकते हैं।
1: मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए SIR करवाया जा रहा है। इसका मकसद फर्जी और बाहरी मतदाताओं को हटाकर वोटर लिस्ट को पूरी तरह पारदर्शी बनाना है। इसलिए जिम्मेवार नागरिक बनकर SIR की प्रक्रिया में हिस्सा ले। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग।
0: अभी आप सुन रहे थे हजारीबाग जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज कर।

0: कार्यक्रम का पहला गाना फिल्म लज्जा से।
1: पल पल पे

सुनिधि चौहान और साथियों को भी आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था कॉलेज कैंपस। और दोस्तों इसी के साथ कार्यक्रम जानकारी यहीं समाप्त होता है।

दोस्तों कुछ आवश्यक सूचना है। हम आपको बता दें कि दिन के 10 बजे आपने सुना था मशहूर शायर और गीतकार आनंद बख्शी जी पर केंद्रित हमारा विशेष कार्यक्रम आदमी मुसाफिर है। इसका पुनः प्रसारण रात्रि के 10 बजे होगा, तो सुनना मत भूलिएगा। हमारा ये विशेष कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आदमी मुसाफिर है रात्रि के 10 बजे।

ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स। कार्यक्रम का पहला गाना जय माई राजा फिल्म से। आवाजें अमित कुमार और अलका याग्निक की हैं।

अभी आप सुन रहे थे जीत फिल्म में सोनू निगम और अलका याग्निक को, और इसी के साथ सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स यहीं समाप्त होता है। FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। अब से बस कुछ ही देर में आप सुनेंगे संसद समीक्षा हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज भी नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा कथित लाठीचार्ज किए जाने का मुद्दा छाया रहा और इसे लेकर विपक्ष के हंगामे के चलते उच्च सदन की कार्यवाही दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के कारण उच्च सदन में आज शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। पूर्वान्ह 11 बजे बैठक शुरू होने के बाद हंगामे के कारण इसे दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दोपहर 12 बजे बैठक फिर शुरू होने पर भी सदन में वही नजारा देखने को मिला और बैठक 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद 2 बजे भी हंगामा थमा नहीं और उपसभापति हरिवंश ने एक ही मिनट के भीतर बैठक को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर कार्यवाही संचालित करने के लिए आसन पर आए उपसभापति हरिवंश ने सदन में एक विधेयक पेश करने को कहा। सदन की संशोधित कार्यसूची के अनुसार आज गृह मंत्री अमित शाह को राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश करना था। इस विधेयक में 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान है। इस बीच कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर नारेबाजी और शोरगुल करने लगे। विरोध कर रहे सदस्यों को शांत कराने का प्रयास करते हुए हरिवंश ने कहा कि आप जानते हैं कि सदन में आज जो भी कामकाज सूचीबद्ध है उसी पर आप बात कर सकते हैं। उन्होंने सदस्यों से कहा कि वे यदि इसी प्रकार का व्यवहार करते रहे तो फिर सदन कैसे चलाया जा सकता है। उन्होंने विपक्षी सदस्यों से अपने स्थानों पर बैठने और सदन में चर्चा शुरू करने की अपील की। श्री हरिवंश ने कहा कि सदन में चर्चा के लिए प्रक्रियाओं के नियम आपने ही बनाए हैं, उन नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करने दीजिए। उन्होंने कहा कि सदस्य यदि किसी विषय पर चर्चा के लिए सभापति से अनुमति चाहते हैं तो इसके लिए भी नियमों में प्रावधान दिए गए हैं। उपसभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि वे सदन में निर्धारित कामकाज होने दें और सदन की मर्यादा का पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने विपक्षी सदस्यों से कहा कि यदि आप इसी तरह से अपने स्थानों पर खड़े होकर शोरगुल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप चाहते नहीं कि सदन में कामकाज हो। हरिवंश जिस समय अपील कर रहे थे उस समय विपक्षी सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर नारेबाजी और हंगामा कर रहे थे। इस दौरान सत्ता पक्ष के कई सदस्यों को भी अपने स्थानों पर खड़े होकर विपक्षी सदस्यों का विरोध करते देखा गया। सदन में हंगामा थमते न देख उपसभापति ने महज एक मिनट के भीतर ही बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जन्मदिन की जानकारी देते हुए उन्हें पूरे सदन की ओर से शुभकामनाएं दी और उनके दीर्घ स्वस्थ और खुशहाल जीवन की कामना की। श्री राधाकृष्णन ने कहा, मुझे विश्वास है कि उनका नेतृत्व युवाओं और नेताओं के लिए संविधान, लोकतंत्र और देश की अखंडता के प्रति भरोसा रखने के लिए प्रेरणास्पद मिसाल बनेगा। जिस समय सभापति उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे थे उसी समय श्री खड़गे अपने स्थान पर खड़े हुए और उन्होंने हाथ जोड़कर सभी सदस्यों का अभिवादन किया और आभार व्यक्त किया। सदन के नेता जेपी नड्डा, कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा अन्य नेताओं ने मेजें थपथपाकर श्री खड़गे को बधाई दी। उन्होंने सदस्यों को सूचित किया कि संसद टीवी पर सदस्यों के जन्मदिन की जानकारी नियमित तौर पर दी जाती है। श्री राधाकृष्णन ने इसके बाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को भुवनेश्वर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एक सदस्य को नियुक्त करने संबंधी प्रस्ताव को पेश करने की अनुमति दी। श्री नड्डा ने प्रस्ताव रखते हुए कहा कि एम्स अधिनियम के तहत सदन के किसी भी सदस्य को एम्स भुवनेश्वर में नियुक्त करने के बारे में सभापति को अधिकृत करने के लिए वो प्रस्ताव पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ममता मोहंता के 2 अप्रैल 2026 को सेवानिवृत्त होने के बाद एम्स भुवनेश्वर में ये रिक्ति बनी हुई थी। सदन ने इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। सदन ने संसदीय कार्य राज्य मंत्री एल मुरुगन द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव

0: 20 जुलाई से 4 अगस्त तक अनुपस्थित रहने की अनुमति मांगी है। सदन ने उन्हें इसकी अनुमति दे दी। बाद में श्री खरगे ने कुछ कहना चाहा और सभापति ने उन्हें अपनी बात रखने की अनुमति दी। श्री खरगे ने कहा कि नीट पेपर लीक को लेकर कल राजधानी में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया जो उचित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया और पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। उनकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने आपत्ति जताते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। इस पर विपक्षी सदस्यों ने भी हंगामा शुरू कर दिया। सदन में हंगामे को देखते हुए सभापति राधाकृष्णन ने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी और शून्यकाल नहीं हो पाया। 12 बजे बैठक शुरू होने पर शोरगुल के बीच ही राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने लोकसभा का एक संदेश सदन में पढ़कर सुनाया। उन्होंने सदन को बताया कि लोकसभा ने कल अपनी बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर राज्यसभा से लाभ के पद संबंधी संयुक्त समिति में 2 सदस्यों के निर्वाचन की सिफारिश की है। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू हुआ था और नीट पेपर लीक सहित विभिन्न मुद्दों पर हंगामे के कारण कल भी सदन में कोई महत्वपूर्ण विधायी कामकाज नहीं हो पाया था। लीजिए अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्रवाई की समीक्षा। लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद और वाचिका हैं जया भारती।
1: नीट पेपर लीक तथा अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष का हंगामा आज दूसरे दिन भी जारी रहा, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही शुरू करते हुए नियम 377 के तहत सदस्यों से अपने विषय सदन के पटल पर रखने को कहा तो विपक्षी दलों के सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। श्री सैकिया ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि आप लगातार दूसरे दिन सदन के बीच आकर कार्यवाही बाधित कर रहे हैं, जिससे सदन का कामकाज प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कई बार सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग करने की अपील की, लेकिन हंगामा थमने के बजाय और तेज हो गया, जिसके बाद उन्होंने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले सुबह 11 बजे अध्यक्ष ओम बिरला ने जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू की तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, एसपी तथा अन्य विपक्षी दलों ने सदस्य नीट पेपर लीक और अन्य मुद्दों को लेकर नारेबाजी करने लगे। श्री बिरला ने प्रश्नकाल चलने देने में सदस्यों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों के लिए सरकार से जवाब मांगने का महत्वपूर्ण अवसर होता है, लेकिन हंगामा जारी रहने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे बैठक फिर से शुरू हुई तो विपक्षी सदस्य तख्तियां और बैनर लेकर सदन के बीचों बीच पहुंच गए और नारेबाजी जारी रखी। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने हंगामे के बीच आवश्यक विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और सदस्यों से अपने अपने स्थान पर लौटकर शून्यकाल चलने देने की अपील की। उन्होंने कहा कि शून्यकाल में सदस्यों को अपने क्षेत्रों की समस्याएं उठाने का अवसर मिलता है और पूरा देश सदन की कार्यवाही देख रहा है। इसके बावजूद विपक्षी सदस्यों ने हंगामा जारी रखा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची के संदर्भ में पंचायत स्थानीय सरकार होने के कारण राज्य का विषय है। पंचायतों को राज्यों के पंचायती राज अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित और संचालित किया जाना चाहिए। संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए राज्यों ने अपने अलग अलग पंचायती राज अधिनियम बनाए हैं। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में स्थानीय सरकारों की भूमिका का आकलन करने के लिए मंत्रालय ने फरवरी 2025 में राज्यों में पंचायतों को अंतरण की स्थिति, एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग 2024 नामक शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ करने और पंचायती राज संस्थाओं में अधिक स्वायत्तता, जवाबदेही और क्षमता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की केंद्रीय प्रायोजित योजना को वित्तीय वर्ष 2022-23 से लागू किया है। इसका उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों को नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करके पंचायती राज संस्थाओं का समर्थन करना है, जिससे ग्राम पंचायतें सभी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें।

राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक लिखित जवाब में लोकसभा में कहा कि 10 इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि विनिमय चालू कर दिया गया है। इसमें त्रिपुरा के अगरतला और श्रीमंतपुर, असम के दारंगा और सुतरकंडी, उत्तर प्रदेश के रुपईडीहा, बिहार के रक्सौल और जोगबनी, पश्चिम बंगाल के पेट्रोपोल, मेघालय के डाउकी और पंजाब के अटारी में आईसीपी शुरू किया गया है। लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को यूनिफाइड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और गुड्स एंड सर्विस सिस्टम के साथ जोड़ा गया है। लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को मजबूत और भविष्य की सभी एकीकृत जांच चौकियों पर कार्यप्रणाली के प्रबंधन के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है। केंद्रीय भारी उद्योग राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं, बाजार की संभावनाओं तथा प्रौद्योगिकी विकास को ध्यान में रखते हुए समय समय पर अपनी विनिर्माण सुविधाओं का आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा क्षमता संवर्धन करता है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी ने अपनी सुविधाओं के विस्तार, आधुनिकीकरण तथा क्षमता संवर्धन के लिए 671 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय किया है। उन्होंने बताया कि BHEL ने नाभिकीय ऊर्जा, रक्षा एवं एयरोस्पेस तथा नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भी विविधीकरण किया है। BHEL द्वारा अब तक 5.4 गीगावाट क्षमता की नाभिकीय विद्युत इकाइयों के लिए उपकरणों की आपूर्ति की जा चुकी है। BHEL भारतीय नौसेना को महत्वपूर्ण रक्षा तोपों का भी नियमित आपूर्ति करता है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो के घड़ी में 8:14:17 हुए हैं। आइए सुनते हैं फरमाइशी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपकी चाहत।

दोस्तों, गीत संगीत मानव जीवन का एक अभिन्न अंग है। यह मन को शांति, आनंद और नई ऊर्जा प्रदान करता है। संगीत हमारी भावनाओं को व्यक्त करने का सबसे सुंदर माध्यम भी है। खुशी, दुख, प्रेम और भक्ति जैसे हर भाव को गीतों के माध्यम से आसानी से व्यक्त किया जा सकता है। भारतीय संगीत अपनी समृद्ध परंपरा, रागों और लोक धुनों के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है। गीत संगीत न केवल मनोरंजन करता है बल्कि तनाव कम करने और मानसिक संतुलन बनाए रखने में भी सहायक होता है। तो दोस्तों, आइए इस गीत के सफर में आप हमारे हम सफर बने। फरमाइशी गीतों के माध्यम से हम आपके उन तमाम गीतों को इस कार्यक्रम में शामिल करने जा रहे हैं जिन गीतों को अपने सुनना चाहे खातों के माध्यम से।

तो अब देर किस बात की दोस्तों, आरंभ करते हैं हम कार्यक्रम के अगले गीत के साथ, जिसे हमने लिया है फिल्म जींस से। आवाजें हरिहरन और साधना सरगम की हैं। इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने। भतुटी झुमरी तिलैया से आप हैं अमित चंद्र पांडे, समूह चंद्र पांडे, अनिल चंद्र पांडे, साकेत शुभम, नर्मदा पांडे, अक्षता, प्रियंका, समी, इला, अपराजिता और समस्त पांडे परिवार ने इस गीत को सुनना चाहा है। लाखे से आप हैं महामुनि मोना, मुकेश, राखू और गुड़िया। गोविंदपुर से आप हैं गोविंदपुर कतरा से अजय केसरी, बबीता देवी, सुहानी कुमारी, सराफत हुसैन, अंसारी, बेगम रेहाना, परवेज अशरफ और हसन इमाम ने इस गीत को सुनना चाहा है। साथ ही आप इंद्रपुरी चौक हजारीबाग से अरविंद ठाकुर और दिलीप ठाकुर, चंदा रेडियो श्रोता संघ चंदा चौक आंध्रा ठाड़ी जिला मधुबनी बिहार से आप है शोभिकांत झा, मुखिया जी हेमलता सज्जन, मनोज सज्जन, लकी सज्जन, मोहित सज्जन, परी सज्जन, सरोज सज्जन, स्तुति सज्जन, नैतिक सज्जन, सोनाक्षी सज्जन, अर्चना सज्जन, विवेक सज्जन और मास्टर ए के सज्जन। जंडिया वरुण अमरावती महाराष्ट्र से आप हैं मुकेश कासलेकर, दिनकर विमल, विशाखा कासलेकर, शिवाजी चौक कटनी से आप हैं अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, संतोष शर्मा, रज्जन नजक, राजू ताम्रकार, दिलीप वर्मा और प्रकाश पिंटर, पवन यादव, सतुशोनी, अरुण कनौजिया, संजय सोनी, लालू, सोना, मोना, हनी, यश, सौम्या और उनके मम्मी पापा ने भी इस गीत को सुनना चाहा है।

और दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले गीत की तरफ। और अब हम जो गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म कृष्णा कॉटेज से। आवाजें कुमार सानू और अलका याग्निक की हैं। इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी ने। कनेरा मोहल्ला पटियाला से आप हैं, मुकेश भट्टा, नीलम भट्टा, नितिन पलक, करण जीतू, निहारिका और वंश भट्टा। अहमदाबाद से आप हैं जतिन मेहता, भालचंद्र वटके, फुलवा मेहता, विकास वटके और नीलेश वटके। जीटी रोड बरही से आप हैं सीताराम मालाकार, वासुदेव मालाकार, इंदु देवी, कैलाश भगत, पूनम कुमारी, नूतन कुमारी, कुसुम और आर्यन ने इस गीत को सुनना चाहा है। साथ ही आप हैं रेलवे स्टेशन हजारीबाग से समीम अहमद, निखत परवीन, खलील अहमद, आरजू परवीन, नसीम अहमद, सबाना परवीन, एहसान अहमद और नूरजहां बेगम।

हम आपको बताते चले कि इस कार्यक्रम में जो श्रोता अब तक नहीं जुड़ पाए और वो जुड़ना चाहते हैं, तो कार्यक्रम का पता आप नोट कर लीजिएगा, पता हम इस कार्यक्रम के आखिर में बताएंगे। बहरहाल गीतों का सिलसिला चल रहा है दोस्तों, अब हम अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं। और अब जो गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म दिल है कि मानता नहीं से। आवाजें कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की हैं। इस गीत के ख्वाहिशमंद आप सभी श्रोता हैं। जामा मस्जिद रोड से आप हैं, महावीर लाल चौरसिया, कुंती देवी, अनंत चौरसिया, आकाश चौरसिया, संगीता देवी, पूजा देवी, जागृति कुमारी, कृष्णकांत और अश्मित राज। बड़का गांव रोड सिमरा रिस चौक से है, हजारीबाग से आप मानसी राज, ज्ञानसी राज, मिताली राज, प्रांजल राज, अर्पित राज और राजवीर राज। पंचमंदी रोड हजारीबाग से आप हैं कला मोहम्मद आरजू, नीलोफर परवीन आरजू, हबीबा खातून आरजू, कहकशा परवीन आरजू, इरफान अहमद आरजू, शबाना परवीन आरजू, फिरोज अहमद आरजू और शमा परवीन आरजू। खिरगांव मारी टोला से आप हैं कल्लू मालाकार, अरविंद मालाकार, अनिकेत मालाकार, आदर्श मालाकार, अमन मालाकार और आशा देवी मालाकार। तो आइए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम के इस गीत को। फिल्म का नाम है दिल है कि मानता नहीं।

और दोस्तों अब हम जो गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म जान तेरे नाम से, आवाजें कुमार शानू और साथियों की हैं। और इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने। मेन रोड बड़का गांव से आप हैं दिनेश मालाकार, नीरज मालाकार, आशीष मालाकार, विकास मालाकार, रंजना मालाकार, गुड़िया रानी, गोलू बाबू, भोला बाबू, उनके मम्मी पापा तथा ढेर सारे साथी ने इस गीत को सुनना चाहा है। दंतरी की छत्तीसगढ़ से आप हैं भागवत वर्मा, सिरसी से आप हैं राम कुमार साहु, तुलसी साहु, कुलेश्वर साहु, अमृत राम, बबलू पासवान, बादशाह पासवान, शैलेंद्र मिश्रा, प्रदीप पासवान, अभय मिश्रा, भवेश मिश्रा ने इस गीत को सुनना चाहा है। साथ ही आप हैं परविल पासवान, जीवा पासवान, शंभू ठाकुर और सुयोग ठाकुर। माली टोला खिरगांव से आप हैं वीरेंद्र भगत, मालती भगत, विकास भगत, जितेंद्र भगत, रितेश भगत, रोहित भगत, अनिकेत भगत, ऋषि और राहुल। चंद्रपुर महाराष्ट्र से आप हैं कमल साहनी, श्रीमती पिंकी साहनी, ऋत्विक साहनी, निपी साहनी, अफजाल इब्राहिम, श्रीमती साहिल सुल्ताना, डॉक्टर तस्लीम कौसर और एसएम जावेद।

दोस्तों, जान तेरे नाम फिल्म के संगीत के साथ कार्यक्रम आपकी चाहत यही समाप्त होता है। जाते जाते कार्यक्रम का पता आप नोट कर लीजिए। कार्यक्रम का पता है कार्यक्रम आपकी चाहत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी हजारीबाग पोस्ट बॉक्स संख्या 1 पिन संख्या 825301। इसी पते पर आपके खतों का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए अपने रेडियो दोस्त परमेंद्र कुमार मिश्रा को अनुमति दीजिए आपकी चाहत से। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब सुबह से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या न्यूज एट 9 और स्पोटलाइट हमारे दिल्ली केंद्र से। उसके ठीक बाद आप सुनेंगे विविध भारतीय प्रसारण सभा के कार्यक्रमों को हमारे मुंबई केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार।

0: सरकार नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा को तैयार, विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया, कहा सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठा रही है। भारत और उत्तरी मैसेडोनिया स्कोपिये में राष्ट्रपति स्तरीय वार्ता के बाद व्यापार बढ़ाने और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर सहमत। मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया। अमरीका और ईरान के लगातार 10वें दिन एक दूसरे पर हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ा। और भारत ने अगले महीने से शुरू होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्य टीम की घोषणा की। हरमनप्रीत सिंह होंगे टीम के कप्तान। और अब समाचार विस्तार से। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉ जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है।
1: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
0: इस बीच लोक कल्याण मार्ग के पास विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और विपक्षी दलों के अन्य सदस्यों को हिरासत में ले लिया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन तीन बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
3: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें।
0: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने आज कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। संसद भवन परिसर में श्री पासवान ने विपक्ष से रचनात्मक सुझाव देने और सार्थक बातचीत में भाग लेने का आग्रह भी किया।
4: प्राइम मिनिस्टर इज वेरी क्लियर कि हमें रिफॉर्म्स करने होंगे। हर मंत्रालय को कहा जा रहा है, इंक्लूडिंग शिक्षा मंत्रालय, कि आप रिफॉर्म्स लाइए। आज की परिस्थिति के हिसाब से हम लोगों को व्यवस्था निर्माण करने की जरूरत है। आप सुझाव देंगे, हम करेंगे रिफॉर्म्स। कल से संवाद के दरवाजे खुले हैं।
0: वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा है कि सरकार ने बदलती वैश्विक भू राजनैतिक और आर्थिक स्थितियों के बीच निर्यात बाजारों में विविधता लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री प्रसाद ने कहा कि इनमें मुक्त व्यापार समझौते और व्यापक आर्थिक साझेदारी तथा सहयोग समझौतों का विस्तार करना और प्राथमिकता वाले बाजार पहुंच हासिल करने के लिए प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और क्षेत्रों के साथ व्यापार वार्ता करना शामिल है। भारत का वस्त्र और परिधान निर्यात 2025-26 में 3,25,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा, जिसमें 1.8% की वृद्धि दर्ज की गई। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार ने वस्त्र और परिधान क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित कर दिया। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन सदन में हंगामे और विपक्ष के कड़े विरोध के बीच यूसीसी विधेयक पारित हुआ। एक रिपोर्ट।
5: कांग्रेस विधायकों ने बिल को प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की, लेकिन सरकार ने ये मांग खारिज कर दी। इसके बाद विपक्षी विधायक सदन के बीच में आकर नारेबाजी करने लगे और कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी, लेकिन सरकार ने बहुमत के बल पर बिल को पास करा लिया। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू हो जाएगा। यूसीसी के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा, तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी और महिला पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप में 1 महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और विवाह का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर तक जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे अलग रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने नामची जिले के समरदुंग में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम NHPC की घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। घटनास्थल से अब तक 12 शव निकाले जा चुके हैं और 13 अन्य लोग अभी भी सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के मुख्यमंत्री से बात करके हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।
6: सिक्किम के गवर्नर ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले ने आज दुर्घटना वाली जगह का दौरा किया और हालत का जायजा लिया। श्री गोले ने उम्मीद जताई कि एक उच्च स्तरीय जांच से इस दुखद घटना से जुड़ी सभी बातें सामने आ जाएंगी। उन्होंने कहा कि सिक्किम सरकार मृतकों के परिवार को मुआवजा देगी। इस बीच सिक्किम के मुख्य सचिव ने भी आज नामची में अलग अलग विभागों के साथ समीक्षा बैठक की ताकि चल रहे बचाव अभियान में तेजी लाई जा सके। इस बीच NDRF की और एक टीम नए उपकरणों के साथ बचाव अभियान में लगे हुए है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्काल स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया। सरकार ने दिल्ली में नीट पेपर लीक मामले में विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस के पैलेट गन का इस्तेमाल करने की सोशल मीडिया की खबरों को गलत बताया है। सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस द्वारा कील लगे डंडों के इस्तेमाल करने के दावों को भी खारिज कर दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर प्रतिबंधित नक्सली संगठन के कट्टर माओवादी अजय महतो की पत्नी अनीता किस्कू उर्फ बबीता महतो ने आज गिरिडीह पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक डॉ विमल कुमार ने बताया कि उसे झारखंड सरकार की नई दिशा एक नई पहल पुनर्वास नीति के तहत 3 लाख रूपये की सहायता और अन्य पुनर्वास सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप NewsOnAIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपियो में राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोवस्का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों ही देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं।
1: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
0: पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के एक दूसरे पर लगातार 10वें दिन हमले जारी रहने से होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार बुशहर प्रांत को भी निशाना बनाया गया है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजर रहे एक टैंकर पर हमला किया, वहीं अमेरिका ने ईरान के भीतर तक हवाई हमले किए। इस बीच ईरान के एक अधिकारी ने आज पाकिस्तान में मध्यस्थों के साथ बैठकें शुरू की। ईरान और अमेरिका के बीच अंतरिम समझौते को बचाने के राजनयिक प्रयास भी लगातार जारी है। इससे पहले अमेरिका ने हमलों में दक्षिण पश्चिमी ईरान के होर्मुज शहर को निशाना बनाया। जॉर्डन, कुवैत और बहरीन ने ईरान की ओर से नए हमलों की जानकारी दी है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी JAAC ने आज कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर POJK में बंद और चक्का जाम जारी है। JAAC ने आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के लिए न्याय और अपनी मांगे मनवाने के लिए 23 जुलाई को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। मौसम विभाग ने अगले दो दिन में गुजरात, पूर्वी राजस्थान और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, उत्तराखंड, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में अगले तीन दिनों में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी कल तक आंधी तूफान की संभावना है। दिल्ली में कल बादल छाये रहने का अनुमान है। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। मोहित एचएस और सूरज करकेरा गोलकीपर के रूप में हैं। हरमनप्रीत सिंह, अमित रोहित, जुगराज सिंह, सुमित मनप्रीत और हार्दिक सिंह भी इस टीम का हिस्सा हैं। उधर कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में विश्व स्क्वॉश जूनियर चैंपियनशिप में 7 भारतीय खिलाड़ी अगले दौर में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग में अनाहत सिंह, सानवी कलंकी, अनिका दुबे और रुद्र सिंह ने अगले दौर में जगह बना ली है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा को तैयार। विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। कहा, सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठा रही है। भारत और उत्तरी मैसेडोनिया स्कोपिये में राष्ट्रपति स्तरीय वार्ता के बाद व्यापार बढ़ाने और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत करने पर सहमत। मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया और भारत ने अगले महीने से शुरू होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्य टीम की घोषणा की। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Government says it is ready to discuss NEET paper leak issue and other related matters in Parliament. Both houses adjourned for the day amid opposition protests. Prime Minister Narendra Modi vows strict action against those involved in NEET issue, says government taking steps to prevent such incidents. India not

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है? यशोदन, एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: यशोदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे यशोदा आ गई सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

0: सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे गीतकार की जिसने मुंबई की शहरी चमक दमक के बारे में ये बात कही।
1: यहाँ

0: पागल।
1: दोस्तों, आनंद बख्शी की गीतकारी का संसार इतना विस्तृत है कि आधे घंटे के एक कार्यक्रम में उनकी गीतों की दुनिया को समेटना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हम अपने तरीके से याद करेंगे इस अनमोल गीतकार को, जो 21 जुलाई 1930 को जन्मा था रावलपिंडी में। वो रावलपिंडी जो बंटवारे के बाद सरहद के उस पार रह गई, तब ये लड़का 17 बरस का था और उसकी प्यारी रावलपिंडी उससे छूटी जा रही थी। इस रावलपिंडी की याद में बहुत बरस बाद आनंद बख्शी ने लिखी एक नज्म, और ये नज्म हमें फोन पर सुना रहे हैं उनके बेटे राकेश बख्शी।
2: जब पार्टीशन हुआ था, बख्शी साहब 17 साल के थे, तो उन्होंने 17 साल जिंदगी जीती रावलपिंडी में, तो दूसरा देश बन

0: लेकिन वो थी बख्शी साहब की जन्मभूमि, उन्होंने वहां जन्म लिया था, वहीं गाने सुने, वहां उधर का कल्चर उन्होंने पिया और खाया, जिसकी वजह से वो गीतकार भी बने आगे जाके, पंजाबी कल्चर, फोक कल्चर, सूफी गाने। जब यहाँ हिंदुस्तान आए तो उन्होंने एक नज़म लिखी, उस नज़म का नाम है रावलपिंडी, और तकसीम के ऊपर है उनकी फीलिंग्स, और उन्होंने इस खूबसूरत पोएम को इस तरीके से लिखा जैसे कि एक आदमी एक बिलेवड के लिए लिखता है या कोई जो छूट जाता है जिंदगी में पीछे, उन्होंने उस हिसाब से ये पोएम लिखी है। तो मैं ये नरेट करना चाहता हूँ अपने बख्शी साहब फैंस के लिए।
1: जरूर।
0: सनहा ये मेरी जिंदगी सह गई, सनहा ये मेरी जिंदगी सह गई, मैं यहाँ आ गया वो वहां रह गई, कुछ ना मैं कर सका, कुछ ना मैं कर सका, देखता ही रह गया, कुछ ना वो कर सकी, देखती रह गई। लोग कहते हैं तकसीम सब हो गया, लोग कहते हैं तकसीम सब हो गया, जो नहीं बट सकी चीज वो रह गई। याद पिंडी की आती है अब किस लिए, याद पिंडी की आती है अब किस लिए, मेरी मिट्टी थी जहलम में वो बह गई। इन जमीनों ने कितना लहू पी लिया, ये खबर आसमानों तलक है गई। रास्ते में खड़ी हो गई सरहदें, रास्ते में खड़ी हो गई सरहदें, सरहदों पे खड़ी बेबसी रह गई। दे गई घर गली शहर मेरा किससे, दे गई घर गली शहर मेरा किससे, क्या पता किससे बख्शी वो क्या कह गई।
1: क्या बात है।
0: ये तकसीम के ऊपर बख्शी साहब का जो दर्द था कि अपनी जन्मभूमि को पीछे छोड़ के आना पड़ा,
1: जी जी,
0: माँ की तरह, इस पोएम से ही जाहिर होता है।
1: जी, आनंद बख्शी एक जमाने में फौज में थे, लेकिन वहाँ उनका मन नहीं लगता था, वो तो फिल्मी दुनिया में बतौर गायक शामिल होना चाहते थे, लेकिन ये हो न सका। मुंबई में उन्होंने संघर्ष किया और किस्मत ने उन्हें गीतकार बना दिया। सन 1962 में आनंद बख्शी को पहली कामयाबी मिली, फिल्म थी मेहंदी लगी मेरे हाथ। सन 1965 आनंद बख्शी की कामयाबी का एक बेमिसाल साल, क्योंकि तब आई जब जब फूल खिले। इसी बरस आई हिमालय की गोद में।

ये वो दौर था जब आनंद बख्शी बाकायदा एक कामयाब गीतकार बनने के रास्ते पर आगे बढ़ते चले जा रही थी। सन 1967 में फिल्म मिलन के गाने उन्होंने लिखे।

0: आनंद बख्शी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है। वो रेल से सफर कर रहे थे, एक प्लेटफॉर्म पर ट्रेन रुकी थी और गांव का एक व्यक्ति मिलन फिल्म का उनका एक गाना गा रहा था। आनंद बख्शी का दिल बहुत खुश हुआ और उन्हें ये एहसास हो गया कि अब वो पक्के गीतकार बन चुके हैं, क्योंकि अब वो जन जन तक पहुंच चुके हैं। आनंद बख्शी के कुछ गानों की कहानी फोन पर सुना रहे हैं उनके बेटे राकेश बख्शी।
1: शुक्रिया यूनुस जी, और मैं इतना खुश हूँ कि मैं विविध भारती पे हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं हर चैनल सुनता हूँ। मैं हिंदुस्तान में जितने चैनल हैं, बाहर के भी जो चैनल हैं, मैं ऑनलाइन सुनता हूँ। और मैं अभी भी कहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई चैनल नंबर वन है भारती जो है, दैट इज एक्चुअली द रीडर डाइजेस्ट ऑफ रेडियो।
0: राकेश जी, बख्शी साहब की याद का दिन है और पूरा देश जो है वो उन्हें याद कर रहा है, संगीत के चाहने वाले, गीतों के चाहने वाले। हम चाहते हैं कि कुछ गानों के बनने की कहानियां आप सुनाएं।
1: बख्शी साहब का एक गाना था एक फिल्म में, जहाँ पर विलियन और वैम्प ने हीरो को बांध कर रखा हुआ है और उसका फैसला नहीं हो रहा कि क्या किया जाए इसके साथ। तो बख्शी साहब को एक लाइन याद आई, उन्होंने अपने स्कूल में पढ़ी थी।

0: कई कहानी में पढ़ी थी कि जब इंडिया वॉज इन्वेडेड बाय अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर ने हरमा हमला किया था हिंदुस्तान पे, तो तब जब किंग पोरस को कैद कर दिया गया, डिफीट कर दिया गया, तो तब ये सवाल उठा था कि क्या किया जाए उनका, उनको मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। तो उनको ये बात याद आई और जो राजकुमार साहब की फिल्म थी मेरा गांव मेरा देश में जो सिचुएशन बनी तो उन्होंने फिर वो वहां यूज किया, मार दिया जाए छोड़ दिया जाए बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए।
1: क्या बात है, मतलब देखिए इतिहास से रेफरेंस लेके और उन्होंने उसे एक मॉडर्न गाने में बदल दिया।
0: यस यस,
1: एक तो अच्छा तो हम चलते हैं कि भी बड़ी दिलचस्प कहानी है।
0: हाँ, वो बख्श साहब और जब सेटिंग चल रही थी गाने की तो काफी वक्त निकल गया, मेरे ख्याल में एक दो दिन कुछ बात नहीं बनी, सेटिंग हो रही थी, लक्ष्मी जी प्यारलाल और बख्श साहब और डायरेक्टर साहब जी ओम प्रकाश जी, और कुछ बात नहीं बन रही थी, कुछ मुखड़ा नहीं बन रहा था, कुछ अंतरे नहीं बन रहे थे, कुछ बन ही नहीं रहा था। जब तो मुखड़ा नहीं बनेगा फिर अंतरे नहीं निकल सकते, क्योंकि अंतरे मुखड़े से ही निकलते हैं। तो बड़े परेशान हो गए, फड़प हो गए वो लोग, और उन्होंने बख्शी साहब ने उठा, या बख्शी साहब उठे या लक्ष्मी जी उठे, उन्होंने कहा भाई बहुत हो गया, अच्छा तो हम चलते हैं। बख्शी साहब ने पूछा फिर कब मिलोगे, तो जब वो जवाब देने लगे तो बख्शी साहब ने उनको रोक दिया, उन्होंने कहा कि रुको रुको बैठो बैठो, अभी मुझे एक आइडिया है। और वहीं उन्होंने वहीं थर्ड लाइन लिखी, जब तुम कहोगे, और उससे गाना गाने की शुरुआत होती है, अच्छा तो हम चलते हैं फिर कब मिलोगे, जब तुम कहोगे, आधी रात को, हाँ हाँ आधी रात को, कहाँ वही जहाँ कोई आता जाता नहीं।
1: क्या बात,
0: तो ये वहां से वो बात निकली।
1: अच्छा,
0: गाना है अपना, एक बार सुभाष भाई साहब आए थे घर पे
1: जी,
0: उन्होंने बख्श साहब से कहा कि मैंने नई फिल्म बना रहा हूँ तो मैं आपको आज आके स्टोरी सुनाता हूँ। तो स्टोरी सुनते सुनते वो रात हो गई और खाने का वक्त हो गया, और खाना वाना खाया, और जब खाना खा के जब हाथ धोने चले गए बख्श साहब वॉश बेसिन पे, तो हाथ धोते धोते बख्श साहब ने सुभाष जी भाई साहब को कहा कि एक मुझे एक लाइन याद आ रही है, तेरी फिल्म का नाम सौदागर है, मुझे एक लाइन याद आ रही है, सौदागर सौदागर सौदागर, दिल लेकर दिल देकर। वॉश बेसिन में हाथ धोते धोते वो लाइन उनके दिमाग में आ गई। एक और मुझे बड़ा अच्छा किस्सा याद आ रहा है कि एक बार वो बख्श साहब कहीं गाड़ी में जा रहे थे बम्बई, उनके शायद फादर आ रहे थे बाहर गाँव से, तो वो बम्बई सेंट्रल स्टेशन जा रहे थे उनके अपने पिताजी को लेने के लिए, उनके साथ एक दोस्त था उनकी गाड़ी में, उनके दोस्त अपने दोस्त की गाड़ी में गए थे, क्योंकि तब उनके पास पैसे नहीं थे अपनी गाड़ी खुद की गाड़ी खरीदने के लिए। तो दोस्त की गाड़ी में जा रहे थे और बख्श साहब बैठे थे बाजू में और दोस्त चला रहे थे, तो वहीं पर रस्ते में कहीं बख्श साहब ने गाड़ी रोक दी, मतलब रुक रुक रुक लिखना है मुझे, और उन्हें कागज पे लिखा कि गाना है अपना मेरे हम सफर का, राह पर इस मोड़ पर कहीं तुम,
1: किसी राह पर किसी मोड़ पर कहीं चल न देना छोड़कर।
0: हाँ, तो वो एक आगे ट्रक जा रहा था और ट्रक के पीछे लिखा था मेरे हम सफर।
1: ओहो,
0: वहां से उन्होंने ये लाइन पकड़ी के गाड़ी निकल जाएगी, सड़क निकल जाएगी, लोग निकल जाएंगे, मेरा साथ नहीं छोड़ना मेरे हम सफर।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: दोस्त है उनका हरी मेहरा, उनके दोस्त हैं, जिनके रिकॉर्ड की शॉप थी अभी भी है स्वीट, तो रोज डेली जाते थे पान खाने खार स्टेशन के बाहर। तो एक बार पान खा के वहां से निकले और वहां पर एक स्कूल है खार में, सेक्रेड हार्ट स्कूल, स्कूल के स्कूल से आगे आ रहे थे एसवी रोड की तरफ, और सामने से कोई बहुत खूबसूरत लड़की चलती हुई आ रही थी, तो वहीं पर बख्श साहब ने वापस गाड़ी रोक दी, रुक रुक रुक मुझे कोई लिखना है। उन्होंने कुछ अपना उनके पास, जब उनके पास किताब नहीं रहती थी ना, तो वो अपना 555 सिगरेट पैकेट पे पीछे लिख देते थे लाइनें जो भी था, क्योंकि पेपर तब तो मोबाइल नहीं था, कुछ लोग हमेशा पेपर लेके नहीं घूमते थे, पेन तो हमेशा रहता था जेब में, राइटर है तो हमेशा पेन लेके घूमते थे। तीन चार छह महीने बाद जब एक बार ट्रायल हुआ फिल्म का, तो बख्श साहब ले गए अपने दोस्त को ट्रायल लेके, चलते को नई फिल्म दिखाता हूँ लगने वाली दो हफ्ते में, वो चले गए फिल्म देखने। और जब वो गाना आया तो बख्श साहब ने बोला, याद है तेरे को हमने वो खूबसूरत लड़की को देखा था, तूने क्या कहा था, तूने कहा था क्या रूप पाया इस लड़की ने, तो मुझे वहीं पे लाइन स्ट्राइक की थी और मैंने ये गाना लिखा था तब, कि रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, भूल कहीं हमसे ना हो जाए।
1: ओहो, तो इस तरह से बहुत छोटी छोटी जिंदगी की घटनाओं को उन्होंने गीत का रूप दे दिया। कोई एक घटना बताइए, एक फादर के तौर पर कैसे थे बख्शी साहब, पिता पुत्र की कोई घटना याद कीजिए।
0: हजारों घटनाएं हैं, दो घटनाएं जो हैं, एक तो जब मैं छोटा था तो हमेशा रात को लेट आते थे काम से, क्योंकि 70s में बहुत पॉपुलर हो गए थे बख्श साहब, 68-64 के बाद बहुत पॉपुलर हो गए थे, जब जब फूल गले रिलीज हो गई थी, मिलन आ गई थी, आराधना आ गई थी, तो ही वॉज वेरी पॉपुलर, वेरी इन डिमांड, तो लिखते भी थे 10-15 घंटे डेली, 10 घंटे लिखना डेली, फिर रात को फिर दोस्तों की पार्टी, फिल्मी पार्टी में जाना, इवेंट्स में अपना अवार्ड फंक्शन में जाना, काफी बार लेट आते थे रात को, हम सो जाते थे, बख्श डैडी आए घर पे, लेकिन हम तो सोए हुए रहते थे, 2 बजे आते थे, कभी 3 बजे आते थे। तो जब मैं बहुत छोटा था, उनकी आदत थी, वो हमेशा आके सर को या बदन को हमारे थपथपाते थे, यू नो, लाइक जैसे माँ कैसे लोरी गाती है बच्चे के लिए, वो हमेशा वो बच्चे को थपथपाती हाथ से, यू नो।

0: के हाथ ऐसे लगा के टप टप करके, तो वो हमेशा रात को आके ही शुड डू दैट फॉर टू मी एंड टू माई ब्रदर टू माई सिस्टर. लेकिन उनके हाथ लगाने से मैं जाग जाता था. जब मैं जाग जाता था वो शर्मा जाते थे और वो चले जाते थे, फिर वो फिर नहीं करते थे वो छोटा कोई लोरी सुनाना या कुछ. तो मुझे याद है कि मैं हमेशा फिर जब आते थे अगर मैं उठ जाता था तो मैं आंख बंद ही रखता था ताकि उनको पता चल जाएगा तो चले जाएंगे. मैं आंख बंद करके उसका मजा लेता था उनकी उनकी लोरियों का. दूसरी मुझे एक बात याद है कि जब शायद कॉलेज में था तो मैंने नाश्ता किया और अंडा छोड़ दिया, अंडा नहीं खाया मैंने. तो मेरे डैडी ने कहा कि तेरे को पता है इस अंडे का भाव क्या है? तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, होगा 50 पैसे 25 पैसे जो भी होगा, 1 रुपया होगा, आई डोंट नो. तो इसे की जब तुम छोटे थे ना, तुम दो भाई दो बहने छोटे थे, तुम्हारी माँ एक अंडा 4 टुकड़े में बांट के तुम चारों को देती थी और खुद नहीं खाती थी ताकि तुमको न्यूट्रिशन मिले. तुम्हारी माँ ने ये प्राइस पे किया एक अंडे का, बिकॉज माई फादर वॉज स्ट्रगलिंग फॉर एटलीस्ट 10-15 ईयर ऑफ हिज करियर इन द बिगनिंग.
1: बिल्कुल.
0: तो तब उनके पास शायद अंडे के भी पैसे नहीं होते थे, तो एक ही अंडा हम चारों को बांटना पड़ता था फैमिली में. तो मेरे फादर ने कहा था कि ये है अंडे की कीमत, तो ये तुम्हारी माँ ने जो अंडे की कीमत दी है ना, वो अंडे की कीमत कभी नहीं भूलना. फूड कभी वेस्ट नहीं करना, खाना कभी वेस्ट नहीं करना.
1: क्या बात है,
0: भले वो एक अंडा ही हो.
1: क्या बात है.
0: इसी बात मुझे बड़ी अच्छी याद है कि एक बार मेरा कॉलेज में किसी के साथ अफेयर हो गया
1: जी,
0: और वो मेरे डैडी की पसंद की नहीं थी. तो मेरे डैडी ने कहा कि मिलना जुलना सब बंद करो, ये सब लव वर्व नहीं चलता, अभी पढ़ाई का वक्त है, पढ़ाई करो. तो मैंने झट से एकदम रूडली उनको एकदम कॉन्फिडेंटली जवाब दिया. मैंने कहा अरे आप तो आनंद बख्शी हो, आपने तो अभी लव स्टोरी में गाना लिखा है, आपने प्रताप में गाना लिखा, जब हम जमा होंगे जाने कहाँ होंगे, आपने लव स्टोरी में कुमार गौरव के लिए कितने अच्छे गाने लिखे हैं, आपने बॉबी में इतना अच्छा लगा गाना लिखा है, आपने रॉकी फिल्म में इतना लव स्टोरी लिखी, अच्छी गाने लिखे, आपने एक दूसरे के लिए कितने अच्छे लव स्टोरी गाने लिखे, अब अभी मेरा वक्त आया तो आप बोल रहे कि यू कैन नॉट मीट हर, अभी तुम्हारा रोमांस का टाइम नहीं है, पढ़ाई का टाइम है
1: जी.
0: तो मुझे डैडी ने कहा कि वो मेरा शौक नहीं है, वो मेरा काम है. काम में और शौक में फर्क होता है. वो मैं जो गाने लिखता हूँ लव स्टोरी के लिए, तुम्हारे लिए नहीं लिखता. मैं लिखता हूँ क्योंकि वो स्टोरी की डिमांड होती है, कैरेक्टर की डिमांड होती है, एक सिचुएशन की डिमांड होती है. वो मैं अपनी फैमिली के लिए लिखता. अब तुम्हारा वक्त है स्टडीज करने का, लव स्टोरी में पढ़ने का अभी तुम्हारा वक्त नहीं है.
1: क्या बात है. अच्छा अब मुझे बताइए कि बख्शी साहब की याद में आप कौन सा गाना समर्पित करना चाहेंगे अपनी तरफ से विविध भारती पर?
0: गाने तो बहुत है, हजार है. जैसे कि क्या होता है, हर गाना आपको एक जब आप किस मूड में हो उस मूड के हिसाब से आपको कोई गाना अच्छा लगता है.
1: मैं समझ सकता
0: हूं. मुझे याद है एक बार मेरा हार्ट ब्रेक हो गया था, मेरा अफेयर डामल डोल से चला गया था, यू नो विद अ गर्ल कॉलेज में था शायद, वो मेरा अफेयर टूट गया था, मेरा बड़ा दिल का बड़ा मुझे दर्द हुआ था. तो मैं कम से कम 2 हफ्ते एक ही गाना सुनता रहा, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आता किनारा मिल गया था. तो मेरे डैडी ने झट से एक बार रूम में आके पूछा क्या हो गया तेरे को, 2 हफ्ते से एक ही गाना सुन रहा है मेरा, कुछ लफड़ा उड़ा नहीं हो गया लड़की के साथ कुछ? अच्छा मुझे बहुत पसंद है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है,
1: जीत
0: चाहेंगे हम अगर तू संग है. क्योंकि काफी वक्त हम जिंदगी में शायद अगर हमारे साथ कोई नहीं होना हम हार मान जाते हैं. तो अगर कोई हो साथ में, माँ हो, बाप हो, लवर हो, बिलवेड हो, भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, तो हर एक इंसान को कुछ ताकत चाहिए. तो इसलिए वो गाना मुझे आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट.
1: क्या बात
0: है? ऐसा ही एक गाना है बख्शी साहब का जो मेरे ख्याल में किसी की भी जिंदगी में काम आ सकता है. और ये गाना है फिल्म अंगार का, मुश्किल में है कौन किसी का, मुश्किल में है कौन किसी का, लेकर अपना नाम कभी तुम खुद को आवाज दो.
1: क्या बात है, क्या बात.
0: काफी बार क्या होता है, हम जब मुश्किल में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, तो हम दूसरों पे डिपेंड करते हैं, दोस्तों पे, रिलेटिव्स पे, लेकिन काफी बार ये सब भाग जाते हैं लोग, कोई साथ नहीं देता. तो बख्श साहब ने ये कहा था मुझे कि कभी भी तुम जिंदगी में तकलीफ में होगे तो खुद को याद करो हमेशा, दुनिया अपने आप साथ चलेगी तुम्हारे.
1: क्या बात.
0: लेकिन पहले खुद को याद करो
1: जी,
0: किसी और को याद करने से पहले, भगवान को याद करने से पहले भी पहले खुद को याद करो. तो ये लाइन आई थिंक ये गाना किसी की भी जिंदगी के काम आ सकता है. मुझे लगता है यही एक अच्छा गाना हो सकता है जो किसी की जिंदगी के काम आ जाए.
1: जी राकेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, बख्शी साहब की याद का दिन और आपने ये लम्हे हमारे लिए यादगार बनाए, बहुत शुक्रिया.

0: आनंद बख्शी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उन्होंने हर तरह के हर सिचुएशन के गीत लिखे हैं, और कमाल की बात यह है कि बातचीत को गीतों में बदल देने का हुनर है आनंद बख्शी के पास।
1: सुनो कहा सुना।

0: फिल्मी दुनिया के तमाम संगीतकारों के साथ आनंद बख्शी ने काम किया, और कोई ऐसा रेडियो स्टेशन दुनिया में नहीं होगा, और शायद दुनिया में कोई ऐसा हिंदी रेडियो स्टेशन नहीं होगा जहां से आनंद बख्शी के गाने नहीं बजते होंगे।
1: रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना।

फिल्मी दुनिया के युग बदलते चले गए, संगीतकारों की पीढ़ियां बदलती चली गईं और आनंद बख्शी का काम बदलता चला गया। जहां उन्होंने चित्रगुप्त के साथ लिखा तो आनंद मिलिंद के साथ भी लिखा, एसडी बर्मन के लिए गाने लिखे तो आरडी बर्मन के लिए भी लिखे, रोशन के लिए लिखे तो उनके बेटे राजेश रोशन के लिए भी लिखे, कल्याण जी आनंद जी के लिए लिखे तो विजू शाह के लिए भी लिखे। यानी संगीतकारों की ही कई पीढ़ियों के साथ बख्शी साहब ने काम किया। फिल्म फेयर पुरस्कारों की बातें करें, सन 1979 फिल्म अपनापन का ये गाना।

बख्शी साहब 30 मार्च 2002 को इस फानी दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए अपने हजारों गाने, और उन गानों का गाने सुनने वाली जनता से अभूतपूर्व लगाव।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गीतकार आनंद बख्शी पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9:58 हुए हैं। आज 21 जुलाई को जन्मदिन है मशहूर शायर और गीतकार आनंद बख्शी साहब का। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम आदमी मुसाफिर है। इस विशेष कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं आनंद बख्शी साहब के सुपुत्र राकेश आनंद बख्शी और इनसे बातें कर रहे हैं राजीव कुमार। एडिटिंग और मिक्सिंग की है अभिषेक कुमार ने, तकनीकी सहयोग दिया है शंभुनाथ और संजीव मुर्मू ने, प्रस्तुतकर्ता हैं राजीव कुमार और संयोजक विक्रम कुमार रंजन।

0: आनंद बख्शी एक अजीम शायर, एक महान गीतकार, शब्दों के ऐसे जादूगर सिर्फ याद नहीं आते बल्कि हर वक्त रहते हैं अपने चाहने वालों के दिलों में। आज जन्मदिन है उनका और इस खास मौके पर हमारे साथ हैं आनंद बख्शी साहब के सुपुत्र राकेश आनंद बख्शी। बहुत स्वागत आपका राकेश जी और नमस्कार आपको।
1: राजीव जी नमस्ते और नमस्कार सारे ऑल इंडिया रेडियो प्रसार भारती के सुनने वालों को। आनंद बख्शी जी की जन्म तिथि है आज 21 जुलाई और मुझे आपका इंट्रोडक्शन बड़ा अच्छा लगा। लोग क्या होते हैं नॉर्मली कहते हैं गीतकार आनंद बख्शी, बहुत रेयरली किसी ने कहा है शायर और गीतकार आनंद बख्शी, क्योंकि वो ऐसे इंसान थे, वो ऐसे लिरिसिस्ट थे और वो ऐसे शायर थे जो हमेशा कहते थे भाई मैं शायर ही नहीं हूँ, मैं तो लिरिसिस्ट हूँ, मैं तो सिर्फ गीत लिखता हूँ फिल्मी गीत। मैंने कभी ना शायर होने का दावा किया, ना मैं बनना चाहता हूँ, ना मैं बनने आया था। और जो उनके चाहने वाले हैं और जो सबसे बड़े उनके चाहने वाले थे साहिर साहब, साहिर साहब ने तो उनको कितने अनगिनत प्रोड्यूसरों डायरेक्टर को मिलाया 1960s में और 1970s में भी, और 1980s में भी यश चोपड़ा जी को बोल रहे थे वो कि आप अपना आनंद बख्शी को भी लो कभी, वो अच्छा लिखता है, हमेशा मुझे ही क्यों लेते हो। तो जो लोग कहते थे तब कि आनंद बख्शी शायर नहीं है, शायर तो साहिर हैं, अब सोचो कितनी आयरनिकल बात है कि जिसको वो शायर कहते थे और जिसको वो शायर कहते थे वो कहते थे कि आनंद बख्शी शायर नहीं है और साहिर शायर है, वो ही शायर साहिर जी आनंद बख्शी को रिकमेंड कर रहे थे 60s 70s 80s में भी। आपने जो शायर करके मुझे साहिर साहब की याद आ गई।
0: लेकिन राकेश जी एक गीत उन्होंने लिखा था फिल्म बॉबी के लिए, मैं शायर तो नहीं मगर मुझे शायरी आ गई।
1: हाँ ये उनका जवाब था उन लोगों के लिए जो क्रिटिसाइज कर रहे थे तब कि आप तो शायर ही नहीं हो, आप तो गीतकार हो। मैं

0: ये राकेश जी, सिल्वर स्क्रीन के लिए आनंद बख्शी साहब के लिखे गीतों की संख्या देखिए बेशुमार है। हम रोमांटिक गीतों की बात करें या फिर दर्द भरे नगमों की, देशभक्ति की भावना से भरे गीत हों या फिर जिंदगी के हर फलसफे या फिर पहलू को बयां करने वाले गीत हों, उनके हर गीत लाजवाब हुआ करते। फिल्म इंडस्ट्री के लिए काम करते हुए, क्या एक मैं निजी सवाल कर रहा हूं, अपने घर में भी वो उतने ही फिल्मी थे? घर के सदस्यों और खासकर अपने बच्चों के साथ क्या वो फिल्मी थे या सिर्फ एक अभिभावक, एक स्ट्रिक्ट पिता थे?
1: तो मुझे याद आ रहा है कि मैं जब कॉलेज में ना, तो एक मेरा एक लड़की के साथ रोमांस हो गया था।
2: वाह।
1: तो मैं उसको बड़ा घुमाता था। मेरे पास डैडी ने मुझे एक नई मोटरसाइकिल लेके दी थी।
2: अच्छा।
1: तो मैं उसे मोटरसाइकिल में इधर उधर सब जगह घुमाता था शाम को। तो एक बार मैं घर आया तो डैडी ने बोला कि भाई बेटा, सुना तेरा कुछ चक्कर शुरू हो गया है। तो मैंने कहा भाई हम तो पंजाबी हैं तो हमें पता है चक्कर का मतलब क्या होता है। जब डैडी बोलते हैं बेटे को कि तेरा कोई चक्कर तो नहीं शुरू हो गया, उसका मतलब है कि रोमांटिक कुछ रिलेशनशिप शुरू हो गया आपका। तो मैंने कहा कि मैं तो इमीडिएटली डिफेंसिव पे चला गया। मैंने बोला नहीं डैडी, मेरा तो ऐसा कोई चक्कर वक्कर नहीं है किसी के साथ। इसे झूठ मत बोल मेरे से, मैंने तेरे को देखा, मैं दो तीन बार देखा तू उसको जब घुमाता है काटर रोड पे, बैंड स्टैंड पे घुमाता है मोटरसाइकिल पे। तो मैंने बोला भाई अभी मैं पकड़ा गया, मेरी चोरी पकड़ी गई भाई, हम भी रोमांस कर रहे थे कॉलेज के दिनों में। तो उन्होंने बोला देखो अभी सब बकवास बातें हैं, ये सब बंद करो, अभी तुम्हारी पढ़ाई का वक्त है, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। हम जवान थे तो हमें बड़ा गुस्सा आ गया। हमने बोला भाई डैडी आप तो बिल्कुल हिपोक्रेट हो। तो उन्होंने बड़े गुस्से में पूछा मुझे, व्हाट डू यू मीन हिपोक्रेट, कि क्या तुम बड़े बड़े वर्ड सीख के आते हो कॉलेज में, स्कूल में, अभी मुझे आपके अपने

गीत लिखने के पैसे देता है, ये मेरा पेशा है। मैं ये जो गीत लिखता हूँ ना, ये एक इमेजिनरी कैरेक्टर होते हैं फिल्म में, इमेजिनरी स्टोरी होती है, राइटर होता है, डायरेक्टर होता है, एक्टर होते हैं सारे, एवरीबॉडी इज पेड टू डू द जॉब एंड आई एम ऑल्सो डूइंग माई जॉब। मैं भी एक नौकरी कर रहा हूँ अपने प्रोड्यूसर के लिए। ये जो गाने ये मैं तुम्हारे लिए नहीं लिखता, ये मैं अपनी फैमिली के लिए नहीं लिख रहा हूँ कि मैं जो लिख रहा हूँ जा तुम जिंदगी में ऐसा करो। ये एक फिल्म की कहानी है, फिल्म का गाना है। अभी तुम ये सब बकवास बातें बंद करो और जाओ अपनी पढ़ाई करो, पढ़ाई में ध्यान दो।

0: आनंद बख्शी साहब ने अनगिनत रोमांटिक गीत लिखे जो सिनेमा के पर्दे पर काफी सफल रहे और आज भी सदाबहार गीतों की श्रेणी में वे गीत आते हैं। प्यार में आकंठ डूबे ऐसे गीत लिखने की प्रेरणा उन्हें कहां से मिलती थी?
1: पहली बात यह है कि आपने कहा कि उन्होंने अनगिनत रोमांटिक गीत लिखे हैं। रोमांटिक गीतों से मुझे याद आता है कि एक बार एक जर्नलिस्ट ने बख्शी साहब को पूछा था कि बख्शी साहब आपने इतने ढेर सारे हजारों रोमांटिक गाने लिखे हैं, क्योंकि हमारे फिल्मों में ऐसे रोमांटिक सिचुएशन तो आते ही आते हैं हर फिल्म में, तो आपके तो लाइफ में बहुत रोमांस होगा, आपने तो इतने गाने लिख दिए रोमांस पे और सब अलग अलग गाने हैं, एक भी कोई दूसरे का कॉपी नहीं है, तो बताइए आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा रोमांस है कि आप इतने सारे गीत लिख लेते हैं, इतने 40 साल से आप लिखते आ रहे हैं नॉन स्टॉप। तो बख्शी जी का जवाब था कि बेटा अगर मेरी जिंदगी में रोमांस होता तो मैं कभी रोमांटिक गीत लिख ही नहीं पाता, क्योंकि वो जो चीज आपकी जिंदगी में रह जाती है, वो जो चीज पीछे रह जाती है या वो जिंदगी में थोड़ी कम होती है ना, उसी को तरसता है इंसान आदमी।

0: होगा।
1: राकेश जी,
2: ये फिल्मी दुनिया में आने से पहले ऐसा मैंने सुना है कि आनंद बख्शी साहब का जीवन जो है वो काफी संघर्ष से भी भरा रहा, और फिल्मों में एक शायर और गीतकार के रूप में खुद को स्थापित करने की राह भी उनकी बहुत आसान नहीं थी, कई चैलेंजेस थे, थोड़ा बताएंगे इस बारे में।
3: तो सबसे बड़ा पहला जो चैलेंज उनकी जिंदगी में आया वो था कि उनकी जो माँ है वो 5 साल की उम्र में वो गुजर गई, तो वो एक बहुत बड़ा उनको सदमा पहुंचा था। तो कि उसके बाद फिर उनके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी, तो उनकी दूसरी माँ भी अच्छी थी, लेकिन क्या होता है खुद की एक माँ होती है, कोई चली माँ होती है, थोड़ा फर्क तो हो गई, थोड़ा फर्क होता है, मामूली सा फर्क भी हो, लेकिन बच्चे को वो छोटा फर्क भी ज्यादा फर्क लगेगा, क्योंकि वो इतनी छोटी उम्र का है, 6-7 साल का है। तो वो एक उनको एक धक्का लगा था कि मेरी माँ चली गई मुझे छोड़ के। तो इसलिए मुझे याद है जब हम अपनी मम्मी के साथ लड़ते थे ना, हम जब बच्चे थे छोटे थे तो हम बहुत लड़ाई करते थे मम्मी डैडी के साथ, कुछ ना कुछ चाहिए नहीं मिलेगा तो लड़ाई करता बच्चा, क्योंकि माँ बाप ही दो लोग हैं पूरी दुनिया में, पूरी संसार में दो ही लोग हैं जो आपकी हमारी बकवास सुन लेते हैं, माँ और बाप। बाकी कहीं हम बकवास करेंगे तो सीधा थप्पड़ पड़ेगा या घर से निकाले जाए या ऑफिस से निकाले जाएंगे। तो हम जब झगड़ा करते हैं तो डैडी हमेशा बोलते थे, तो डैडी के साथ झगड़ा करते थे तो डैडी को कभी बुरा नहीं मानते थे, लेकिन हम कभी भी मम्मी से झगड़ा करते थे ना तो बहुत बुरा मानते, बहुत गुस्सा हो जाते थे वो, और वो कहते थे कि तुम अपनी माँ से बदतमीजी से क्यों बात कर रहे हो पता है, क्योंकि तुम्हारी माँ जिंदा है, हमसे पूछो जिनकी माँ चली गई छोटी उम्र में कि माँ से कैसे बात की जाती है, तुम्हें माँ की इज्जत ही नहीं है क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने खड़ी है, जिस दिन ये चली जाएगी ना तुम समझोगे माँ की कीमत क्या होती है, माँ की अहमियत क्या होता है उनका पोजीशन घर में या क्या किसी भी बच्चे की जिंदगी में। देखिए लेकिन ये एक वजह है क्योंकि माँ हमें आसानी से मिल जाती है, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आज की माँ काफी मदर्स जो है मेट्रो सिटीज में वो नौकरी कर रही है, बिजनेस कर रही है, कुछ कर रही है, तो उनको बच्चों के साथ वक्त कम मिलता है। लेकिन जो हमारे जमाने के लोग हैं उनकी माँ तो बाय एंड लार्ज ज्यादातर घर पे ही, घर उन्होंने घर ही संभाला था। तो जब हमारे पिताजी गुजर गए तो मुझे एहसास हुआ कि माँ तो मिली हमें आसानी से मिल गई, क्योंकि माँ तो हमेशा घर में ही थी, हमें जिनका प्यार नहीं मिला वो थे डैडी। और ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, मैंने एक किताब लिखी डायरेक्टर्स डायरीज, उसमें मैंने इंडिया के भारत के सबसे बढ़िया गीत जो फिल्म मेकर्स हैं 24-25 फिल्म मेकर्स की मैंने पूरी जीवनी लिखी है उनकी बचपन से लेकर उनकी पहली फिल्म तक। तो मैं काफी डायरेक्टर को मिला और मैंने एक चीज पाया, वेदर देवा मेल डायरेक्टर्स या फीमेल डायरेक्टर्स, मैंने एक चीज पाई कि जब वो अपनी मम्मी के बारे में बात करते तो देव इश टू बी वेरी इमोशनल, लेकिन कई ऐसे डायरेक्टर थे जब वो अपने डैडी के बारे में बात करते थे वो रो पड़ते थे वो। तो मुझे तब एहसास हुआ कि मैं क्यों अपना इमोशनली अटैच हूं अपने डैडी के साथ ज्यादा अभी, क्योंकि हमें डैडी के साथ, क्योंकि हमारे डैडी बिजी होते हैं, बाहर जाते हैं काम पे, जैसे आप आज ऑलरेडी रेडियो में हैं या जहां भी हैं, आप घर से निकलते हो ऑफिस जाते हो, शाम हो जाती है आते आते, कभी कभी तो हम डैडी घर आते तो हम तो सो जाते थे काफी बार, क्योंकि रिकॉर्डिंग खत्म होती है 9 बजे, 10 बजे, 8 बजे, 11 बजे, 12 बजे रात को, तो हम सो जाते हैं, सुबह 6 बजे हम स्कूल चले जाते थे। तो हमें जिंदगी में डैडी के साथ बहुत कम वक्त मिला, तो इसीलिए अब जब मुझे लोग कहते हैं यार तुमने इतनी अच्छी डैडी पे जीवनी लिखी है, तुम अपने डैडी के लिए कितने बातें करते हो, सब जगह आप कहीं भी बुलाते हैं हम आप आ जाते हैं, तो मैं हमेशा

0: हूँ कि क्योंकि मेरे को मेरे डैडी बहुत कम मिले, और ये मेरी सिर्फ कहानी नहीं है, ये काफी लोगों की कहानी होगी कि उनको अपने डैडी बहुत कम मिलते हैं वक्त, और ज्यादा वक्त मम्मी के साथ ही मिल जाता है, तो इसलिए आई मिस हिम मोर देन आई मिस माय मदर, आई लव माय मदर एज मच, माँ से भले मुझे ज्यादा या कम प्यार हो लेकिन डैडी को मैं ज्यादा मिस करता हूँ क्योंकि बहुत कम वक्त मिला हमें उनके साथ, और जो चीज जिंदगी में कम मिलती है वो हमेशा याद रह जाती है, ज्यादा करीब हो जाती है हमारे दिल के। देखिए जब विभाजन हुआ ना तो वो 17 साल के थे, रावलपिंडी में थे, भारत का विभाजन से पहले भारत था, तो रावलपिंडी में उनको पता चला कि जो हमारा मोहल्ला है यहाँ पर अटैक होने वाला है, और अटैक बहुत बुरे होते थे तब, बहुत बुरा हाल हो जाता था औरतों का, धन दौलत का, घर का, दुकान का, तो उनको मौका मिला निकलने का इमीडिएटली, यहां से भागो, तो उन्होंने एकदम इमीडिएटली डिसाइड किया कि अभी कभी निकलना है, कहीं सुबह तक वेट नहीं करना है क्योंकि रात को शायद आ जाएं लोग, तो जिसके जो हाथ लगा वो उन्होंने हाथ में थामा और भागे, और बहुत लकी थे वो, बहुत लकी थे क्योंकि उनके जो ग्रैंडफादर थे, दादाजी थे, वो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस थे पंजाब जेल के, पूरे पंजाब के जेल, अनडिवाइडेड पंजाब के जितने जेल थे उनके अंडर थे।
1: अच्छा।
0: तो वो बहुत लकी थे कि उनको सेफली एयरपोर्ट तक लेके गए पुलिस, और वहां पर एक डकोटा प्लेन खड़ा था, उस डकोटा प्लेन में काफी रेफ्यूजीज थे, उसमें डैडी की फैमिली भी, पूरी फैमिली, दरोगा जी, उनके बाऊजी, उनके डैडी के पिताजी, बाऊजी, सारे लोग उसमें इकट्ठा हुए प्लेन में, और वो बाय प्लेन दिल्ली आए, रेफ्यूजी कैंप पहुंचे। जब रेफ्यूजी कैंप पहुंचे तो 3-4 दिन में सेटल हो गए, तो वहां फिर सबको पूछा भाई तुम क्या लाए, तुम क्या लाए, जो जो कुछ ले आया ले आया। तो जब डैडी को पूछा कि बेटा तू क्या लाया, तू वहां से क्या, घर से क्या उठा के लाया, तो उन्होंने दिखाया कि वो क्या लाया, तो वो शौक हो गए सब जो बुजुर्ग थे, बड़े थे, बाऊजी और दादाजी, और उनको खूब डांट पड़ी कि तू गधा है, बेवकूफ है, तू क्या ले आया उठा के, किसी के काम आने आने वाला, कुछ और चीज उठा के लिया था, हमारे काम आती इधर दिल्ली में, तो क्या ले आए थे वो रातों रात, जब ऐसा वक्त आया जब आपको घर छोड़ के भागना पड़े। मम्मी की फोटोज, उनकी जो माताजी थी उनकी जो फोटोज थी वो उठा के ले आए, खाली वो सर एल्बम में उठा के ले आए, जितने एल्बम थे घर में सारे एल्बम उठा के ले आए। तो उन्होंने कहा कि देखो बाऊजी अभी हम काम करने से पैसे आ जाते हैं घर में, लेकिन अगर माँ की फोटो पीछे रह जाती तो मैं माँ को कैसे याद करता, क्योंकि मैं तो 4-5 साल की उम्र था, मम्मी गुजर गई, माँ गुजर गई, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है मम्मी के बारे में, तो मुझे जब मम्मी का ध्यान आता है तो मैं माताजी की फोटोज देख के ही मेरा दिल बहलाता हूँ, अगर ये फोटो रह जाती तो मैं अपनी जिंदगी कैसे काटूंगा, पैसे तो आ जाएंगे नौकरी करके, जिंदगी कैसे कटेगी मेरी माँ की फोटो के बगैर। ये जो इंसान 17 साल का बच्चा जो रातों रात भागने के वक्त लाइफ डेंजर में है, फैमिली डेंजर में है, वो अगर माँ की तस्वीर लेके निकला है घर से, यही एक इंसान है जो गाना लिख सकता है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी प्यारी है माँ, ये सब यही इंसान लिख सकता है सर।

0: ना सिर्फ एक शायर और गीतकार के रूप में बल्कि कई गीतों को स्वर देने में भी आनंद बख्शी साहब का जवाब नहीं रहा। कई गीतों की खूबसूरती तो उनकी वजह से ही है जिसमें साथी कलाकार के साथ उन्होंने स्वर दिया है। वे चाहते तो गायन का रास्ता भी चुन सकते थे, लेकिन चुनिंदा गीतों में ही उन्होंने स्वर दिया। राकेश जी, इस संबंध में थोड़ी चर्चा करेंगे आप?
1: पहली बात यह कि बख्शी साहब को जब भी किसी ने उनके काम की तारीफ की तो हमेशा कहते थे, भैया ये सिर्फ मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये टीम वर्क होता है। इसमें एक संगीतकार और एक सिंगर का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। और काफी वक्त इतने बड़े बड़े एक्टर हमारे फिल्म की स्क्रीन पे हमारे गीत गाते हैं तो उसकी वजह से भी फर्क पड़ता है। जैसे अगर मेरे गाने लोगों को पसंद आ रहे हैं जो राजेश खन्ना ने फिल्म में गाए हैं तो वो राजेश खन्ना सुपरस्टार है इसलिए वो ज्यादा पसंद आए हैं। और उन्होंने एक और बात कही है जो मैंने आज तक किसी से किसी के मुंह से नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि मेरे अगर गीत आपको पसंद आ रहे हैं तो उसकी एक और वजह है, उसकी दूसरी एक वजह यह है कि जो वो गीत अगर आप सोचते हो कि गीत मैंने बहुत अच्छा लिखा है तो उसकी वजह क्या, उसकी वजह है कि वो जो फिल्म का डायरेक्टर है वो अच्छी कहानी मेरे पास लाया, उसने मुझे बहुत अच्छी कहानी बढ़िया कहानी से इंस्पायर किया, उसने अपनी जिंदगी की कोई 2-3-4-5 किस्से सुनाए मुझे उस कहानी से रिलेटेड जो मुझे इंस्पायर किए। वो फिल्म का जो राइटर है और जो फिल्म का डायरेक्टर है उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे काम में, मेरे काम में एज ए लिरिसिस्ट। तो मैं उनको भी दाद देना चाहता हूँ कि अच्छी कहानियों से ही अच्छा लिरिक्स निकलेगा।

0: बख्शी साहब के लिखे गीतों में हम देखते हैं कि लोक धुनों की प्रधानता होती है, माटी की खुशबू की झलक मिलती है। ये राकेश जी, ये एक संयोग था या फिर एक अनूठा प्रयोग?
1: सर, जो बच्चे ने 17 साल जिंदगी के एक गांव में गुजारे हों, जिस गांव में पवन बहती है, नदियां बहती हैं, मिट्टी

से जुड़ा हुआ, पवन से जुड़ा हुआ, वर्षा से जुड़ा हुआ, मातृभूमि से जुड़ा हुआ, खेत खलियानों से जुड़ा हुआ, वो ही इंसान लिख सकता ना, मेरे देश में पवन चले पुरवाई मेरे देश में।

0: तुम्हें।
1: राकेश जी, आनंद बख्शी साहब के लिखे गीतों से जुड़ा कोई रोचक और दिलचस्प बातें आप हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहेंगे?
2: सर, जब हम स्कूल में थे ना, तो काफी बार हमें बड़े मजे लिए डैडी के नाम के, क्योंकि हमारे स्कूल में दो तीन हमारे प्रोफेसर जो डैडी के बहुत बड़े फैन थे, तो भले दूसरों को गुस्सा करे मुझे गुस्सा नहीं करते थे। और ऐसे भी टीचर थे जो गुस्सा आता था कि ये आनंद बख्शी का बेटा और ये ऐसे बिहेव कर रहा है, तो इसको ज्यादा दो चांटे ज्यादा मारने चाहिए। तो हमें दो चांटे ज्यादा भी पड़े हैं और हमें प्यार भी मिला है उसी वजह से। तो ये एक बड़ा हमें फायदा भी हुआ, थोड़ा नुकसान भी हुआ आनंद बख्शी के बेटा होके। अभी बीच में मुझे याद है कि कुछ तीन चार साल पहले मैं गाड़ी चला रहा था, संडे का दिन था और मैंने सिग्नल लेफ्ट टर्न था, लाल सिग्नल था, मैंने लाल सिग्नल तोड़ के लेफ्ट टर्न ले लिया और आगे जाके मुझे एक हवलदार ने रोक दिया। तो मेरी आदत है, मैं जब भी कुछ गलती करता हूं तो मैं उसका हमेशा फाइन भरने के लिए रेडी रहता हूं। तो मैंने अपना पर्स खोला और मैंने 100 रुपए का नोट निकाला, मैंने उसको बोला कि पर्ची काटो, मेरा फाइन ले लो, भाई मैंने वाकई में गलती की है, मैंने सिग्नल लाल सिग्नल तोड़ा है। तो उसने बोला ठीक है सर, आप फाइन बाद में भरना, पहले आप मुझे अपना लाइसेंस दिखाइए, लाइसेंस है कि नहीं आपके पास। तो मैंने अपना लाइसेंस निकाल के उसको लाइसेंस दिया, तो लाइसेंस में उसने नाम पढ़ा मेरा और मुझे कहा आपका नाम राकेश आनंद बख्शी है, ये आनंद बख्शी कौन है? तो मैंने कहा ये मेरे डैडी थे, माई फादर, गीतकार आनंद बख्शी। उसने कहा गीतकार आनंद बख्शी? सर हाँ, गीतकार आनंद बख्शी। इसे ठीक है तुम जाओ जाओ जाओ, कोई फाइन वाइन नहीं आपके लिए, जाओ। तो मैंने गाड़ी बंद की और मैंने बोला नहीं भाई, तुम ऐसा मत छोड़ो मुझे, अपने डैडी के नाम पे मत छोड़ो, ये मैंने गलती की है। और क्या ना सर, एक उम्र आती है ना, वेन यू रियलाइज कि यार ये जो फाइन भरते हैं ना हम, ये वेस्ट नहीं जाता, ये कहीं किसी का स्कूल बनता है, कहीं किसी हॉस्पिटल में लग जाता है, कहीं किसी गरीब को अनाज मिल जाता है। तो ये हमें फाइन की चोरी नहीं करनी चाहिए, फाइन से ही आदमी सीखता है, क्योंकि जब पैसे जेब में से निकलते हैं, जब लक्ष्मी जेब से निकलती है, तभी आदमी सीखता है लेसन। तो इसे अरे बाबा मैंने आपको कहा ना आपको नहीं भरने का फाइन, आप जाओ। तो मैंने और मैं गुस्सा आ गया, मैं गाड़ी से उतर के वो लेफ्ट साइड पे गया, मैंने बोला देखो भैया मैं फाइन भरना चाहता हूँ यार, मेरा मेरे को देश को कंट्रीब्यूशन करना है, ये मेरी गलती है और मैं तुमने मुझे माफ कर दिया लेकिन मैं अपने आपको माफ नहीं करूंगा। ईश्वर है बाबा, अभी तुमको मैं क्या समझाऊं, तुम्हारे पिताजी के गानों ने मेरे को कितना हेल्प किया मेरी जिंदगी में, मैं तुमको बता नहीं सकता हूँ, उसीलिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ। मेरा बहुत कर्ज है आपके पिताजी पे, आपके पिताजी के गानों ने मेरी बहुत सहायता की है मेरी जिंदगी। सर 40-45 ईयर्स का होगा वो पुलिस वाला, उसने मुझे जाने दिया सर, और बिल्कुल मेरे से फाइन नहीं लिया, उसने एक रुपया नहीं लिया।

0: बाबा नहीं।
1: तो राकेश जी एक बात बताएंगे, आनंद बख्शी साहब को फिल्मों में सिचुएशन के हिसाब से गीत लिखना ज्यादा पसंद था या फिर उनके लिखे गीत चाहे वो रोमांटिक हों, दर्द भरे हों या फिर हमारे जीवन की फिलॉसफी से जुड़े हुए हों, फिल्म मेकर्स को पसंद आते थे और फिर फिल्म निर्माता उन गीतों को अपने फिल्म के लिए सिलेक्ट कर लेते थे?
2: राजीव जी, ज्यादातर जो गीत हैं वो फिल्म के लिए ही लिखे जाते हैं क्योंकि वो गीतकार थे, मतलब फिल्म के गीत स्टोरी के हिसाब से गीत लिखना। लेकिन काफी बार ऐसा भी हुआ कि उन्होंने कोई गीत लिखा है अपने खुद के लिए, अपनी खुद की फिलॉसफी, खुद का इमोशन, खुद के सर्कमस्टेंसेस, वो लोग फिर कभी कहानी सुनी तो उससे जुड़ गए कि आया ये मेरा जो लिखा हुआ है ये यहाँ पर काम आ सकता है। जैसे कि वो गाना है, मैं यहाँ अजनबी हूँ, मैं जो हूँ बस यही हूँ, जब जो फूल खिलेगा। वो जब बम्बई में आते तो ना इधर कोई पहचान वाला, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई दोस्त, ना कोई गुरु, कुछ नहीं, कोई नहीं। नाराज होकर वापस चले गए थे पहली बार, 6 साल के बाद वापस आए थे। तो पहली बार जब वापस चले गए तो उन्होंने एक गीत लिखा था अपने लिए, खुद के लिए नज़्म लिखी थी, यहाँ मैं बस अजनबी हूँ, मैं जो हूँ बस यही हूँ। तो जब कहानी सुनी जब जब फूल खिलेगी, उनको लगा कि ये गीत, ये नज़्म मेरी इस फिल्म में आ सकती है, जुड़ सकता है इस फिल्म के साथ।

0: कोई और दूसरा गीत राकेश जी याद आ रहा है आपको?
1: मैंने पूछा चांद से, देखा है कहीं मेरे यार सा हसी, चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं, वो खुद अपने शौक के लिए लिखा था।
2: लेकिन
1: अली खान साहब ने सुना तो उन्होंने बोला ये फिल्म में मैं यूज करूंगा इस गाने को। और वो जो गाना है वो एक्चुअली एचडी बर्मन साहब ने उसकी धुन बनाई थी और उसको रिकॉर्ड भी किया था, लेकिन फिर 20 साल के बाद दुल्हा फिल्म में वो गाना यूज किया गया, फिर उसको आरडी बर्मन साहब ने नया ऑर्केस्ट्रा पे सेट किया था उस गाने को।

0: ये राकेश जी, एक्टिंग की ट्रेनिंग होती है, डांस की ट्रेनिंग होती है, जो संगीत की साधना करते हैं उनकी भी ट्रेनिंग होती है, लेकिन उम्दा गीतों को लिखने के मामले में क्या आनंद बख्शी साहब ने कोई ट्रेनिंग ली थी या उनके स्वभाव में ही गीतों का सृजन रचा बसा था?
1: उनकी जो ट्रेनिंग थी ना गाने लिखने की, वो आर्मी में शुरू हो गई थी। अच्छा। तो जब आर्मी में थे तो जब फिल्म देख के आते थे,
0: हाँ,
1: तो वो फिर वापस बैरक्स में आके उस फिल्म की पूरे गाने अपने शब्दों में लिखते थे कि अगर मैं इस फिल्म का गीतकार होता, हाँ, तो मैं क्या गाने लिखता इस सिचुएशन पे। हाँ। तो वहां से उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई।
0: सुना है वो फटाफट गाने भी लिख लेते थे।
1: हाँ, कभी कभी 8 मिनट में, कभी 15 मिनट में, कभी 2 हफ्ते में, कभी 3 हफ्ते लग जाते थे। तो कभी कभी वक्त लग जाता था, कभी कभी इमीजिएटली लिखे जाते थे गाने। जब वो इंडस्ट्री में आए थे तो एसडी बर्मन, जब गाने लिखने उन्होंने शुरू किए तो एसडी बर्मन के साथ काम किया था, तो एसडी बर्मन ने उनको एक बात कही थी जो उनके बहुत काम आई एज ए गीतकार, के बख्शी कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो ध्यान से, और कहानी को याद रखो गाना लिखते हुए, क्योंकि गाना कहानी से ही निकलेगा। अभी जैसे कि एक फिल्म है मिलन, मिलन में गाना था, आज दिल पे जोर कोई चलता नहीं, मुस्कुराने लगे थे मगर रो पड़े। वो गाना फिल्म में क्यों नहीं है? गाना फिल्म में था, पहले हफ्ते में गाना फिल्म में था, लेकिन जब बख्शी साहब ने फिल्म देखी पहले दिन प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ, तो उन्होंने फिल्म खत्म होने के बाद प्रोड्यूसर को बोला कि भैया ये गाना निकाल दो फिल्म से। तो उन्होंने कहा, पूछा वाई, क्यों? उन्होंने कहा क्योंकि ये कैरेक्टर को सूट नहीं करता। फिर उन्होंने प्रोड्यूसर को बुलाया, डायरेक्टर ने, कि बाबा ये तो कह रहे हैं कि ये गाना निकाल दो। तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने बोला, बोले गाना तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल फिट बैठता है सिचुएशन पे, हमें तो बहुत पसंद है ये गाना, बहुत इमोशनल गाना है, बिल्कुल सही जगह पे आता है और सही लव्स है इसके। इसे बख्शी साहब ने कहा ये लव्स सही नहीं है, क्योंकि इसमें जो मैंने जो वर्ड्स यूज किए हैं वो हाई लिटरेचर के वर्ड्स हैं, और ये लड़की गाना गा रही है फिल्म में एज ए कैरेक्टर, वो उसका ये लिटरेचर बैकग्राउंड नहीं हो सकता इसका, लोगों को लगेगा कि ये कैरेक्टर गाना नहीं गा रही है, ये गीतकार ने गाना लिखा है।
0: जी।
1: और मेरा गाना अगर गीतकार जैसा लगे कि ये गीतकार ने लिखा है, तो मैं फेल हो गया एज ए लिरिसिस्ट। मेरा गाना सुन के लोगों को लगना चाहिए

0: राकेश जी, अगर इसी तरह का कोई वाकया किसी और फिल्म से आपको याद आ रहा हो तो थोड़ा शेयर करें।
1: अभी मुझे फिल्म का नाम याद नहीं है, लेकिन वो फिल्म देख के आए और डैडी बहुत नाराज थे। वो फिल्म लगने से पहले हमने फिल्म देखी थी, ट्रायल देखा था फिल्म का, तो डैडी बहुत नाराज और दुखी थे। तो मैंने बोला क्या हो गया आपको, इतनी अच्छी तो फिल्म है ये, आपको क्यों पसंद नहीं आई? इसे नहीं, मुझे फिल्म तो पसंद आई है लेकिन मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो मैं बोला क्या गलती होगी आपसे, ईशर के वो जो फिल्म में जो कैरेक्टर है गाना गा रहा है, वो मैंने कैरेक्टर का उसको समझा ही नहीं हूं मैं बराबर, क्योंकि वो जब डायरेक्टर है वो साउथ का डायरेक्टर था। वो जब भी मुझे कहानी सुनाने बंबई आया था घर पे, तो उसने मुझे हमेशा जो कैरेक्टर का नाम है वो मिस्टर बच्चन बोल के कहा, मुझे कभी भी कैरेक्टर का नाम नहीं बताया। और मैंने भी, मेरी गलती ये है कि मैंने कभी उनसे कैरेक्टर का नाम नहीं पूछा। मैंने हमेशा वो गाने जो लिखे फिल्म के मिस्टर बच्चन सुन के उस कैरेक्टर के गाने लिखे। और मेरी गलती ये हुई है कि जो कैरेक्टर है वो मुस्लिम है और मैंने गाना लिख दिया है जितनी भरी अभी राम ने उतना चले खिलौना। अगर मुझे पता था कि ये मिस्टर बच्चन का कैरेक्टर मुस्लिम कैरेक्टर है, तो मैं अपने हिसाब से एक मुस्लिम एनालॉजी या मुस्लिम की कोई इस्लाम की कोई जो होती है ना एनालॉजी, उसको एग्जाम्पल यूज करके सिमिलर गाना लिख लेता। तो वो उन्होंने अपनी गलती समझा कि आई कुड हैव यूज इस्लामिक एनालॉजी फॉर द सॉन्ग इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ सनातन धर्म हिंदू एनालॉजी।

आनंद बख्शी साहब के लिखे गीतों की तादाद काफी बड़ी है और उनके लिखे हर गीतों की खूबसूरती के तो फिर क्या कहने। हर गीत अपने आप में उम्दा, अपने आप में खूबसूरत और लाजवाब। इन्हीं खूबसूरत गीतों में कोई ऐसा गीत जिसे आप सुनना और गुनगुनाना पसंद करते हो?

जी, ऐसा होता है जब चीज खाते हैं तो मूड के हिसाब से खाते हैं। कभी हमें दिल करता है हम डोसा खाएं, कभी हम दिल करता है लड्डू खाएं, कभी दिल करता है पेड़ा खाएं, कभी दवाई का वक्त आ जाता है दवाई खानी पड़ती है। तो ऐसा है ना कि गाना वही आपके जहन में आएगा, दिमाग में आएगा, जो आपका जो मूड हो, इमोशनल स्टेट हो, आपकी जिंदगी की क्या सिचुएशन है। तो जैसे कि कोई तकलीफ वाली सिचुएशन हो, चैलेंजिंग सिचुएशन हो, तो एक गाना मुझे पसंद आएगा जो जैसे कि गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है। अगर राखी का दिन है तो सब जगह एक ही गाना बजता है, फूलों का तारों का सबका कहना है, तो आपको वो पसंद आएगा। या कभी अगर आपको फील होता है कि आप लोनली हैं, आप अकेले हैं जिंदगी लाइफ में, तो दूसरा गाना याद आएगा, तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा।

0: राकेश जी, हर मूड, हर भाव, हर सिचुएशन पर उम्दा गीत लिखने वाले आनंद बख्शी साहब और उनके गीत हर किसी को प्रिय हैं और बख्शी साहब हर किसी के दिल में हैं। आकाशवाणी हजारीबाग के श्रोताओं की बात करें तो हम हर रोज देखते हैं कि फरमाइशी गीतों के प्रोग्राम में आनंद बख्शी साहब के लिखे गीतों की फरमाइशें ही सबसे ज्यादा होती हैं। आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए आपकी ओर से कोई संदेश?
1: आकाशवाणी प्रसार भारती के सुनने वालों को एक मैं कहानी सुनाना चाहूंगा। बहुत साल पहले 1990s की बात है, मैंने एक बार डैडी को पूछा कि डैडी आपके पास कम से कम 40 फिल्म फेयर नॉमिनेशन हैं, फिल्म फेयर अवार्ड के कम से कम 42-44 नॉमिनेशन हैं और आपके पास 4 फिल्म फेयर अवार्ड हैं, तो इतना फर्क क्यों है? 44 नॉमिनेशन है और 4 अवार्ड हैं। तो उन्होंने कहा, देखो बेटा, ये जो फिल्म फेयर अवार्ड है ना, या कोई भी अवार्ड हो, लायंस क्लब अवार्ड हो, फिल्म फेयर अवार्ड हो, या कोई भी सम्मान हो ना, वो उसकी एक एक्सपायरी होती है। वो आता ही एक एक्सपायरी डेट से, जैसे हमारा शरीर है, उसका एक एक्सपायरी डेट होती है। लेकिन मुझे जो सम्मान चाहिए, जो मैं अपनी अगली जिंदगी में ले जाऊंगा, अगली बर्थ में ले जाऊंगा, अगले जन्म में ले जाऊंगा, वो मुझे ऑलरेडी मिल गया है। तो मुझे ये अवार्ड से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये अवार्ड घर सजाने में काम आएंगे मेरे जाने के बाद, इससे आप घर सजा सकते हो। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कौन सी सम्मान की बात कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले मुझे एक शख्स का चिट्ठी आई थी, वो छोटे से गांव का शख्स था और उसने मुझे चिट्ठी लिखी थी कि मैं जिंदगी से निराश हो गया हूं और मेरी फैमिली भी डिस्ट्रॉय हो गई है, हमारा घर नहीं रहा, मेरी फैमिली नहीं रही, हम बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी जिंदगी का अंत कर दूं, शरीर का अंत कर दूं। तो हमारे गांव के पास एक रेलवे ट्रैक है, वहां से फास्ट ट्रेन निकलती है जो हमारे गांव में रुकती भी नहीं है। तो मैं वहां जाके उस पटरी पे जाके लेट गया और मैंने सोचा कि चलो अभी गाड़ी आएगी और काम कर जाएगी, मेरा काम तमाम हो जाएगा। तो मैं जाके लेट गया। जब मैं लेटा हुआ था तो उस रेलवे ट्रैक जो है उसकी जो सबसे करीब घर था, उस घर में रेडियो बज रहा था, वो आकाशवाणी ही चल रहा होगा ना, उस रेडियो में एक गाना बज रहा था और वो गाने के शब्द थे, गाड़ी का नाम ना कर बदनाम, पटरी पे रखे सर को, हिम्मत ना हार, आ हो चल सवार, आ लौट आए घर को, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। तो वो शख्स वहां से उठा, उस पटरी से उठा और तभी वहां से गाड़ी निकली सुपरफास्ट, और उसने घर आके फिर आगे जाके चिट्ठी लिखी उस गीतकार को जिसको उन्होंने शह दिया, अपना क्रेडिट दिया अपनी जिंदगी बचाने का। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा ये सम्मान है, मैंने गीत लिखा था, मुझे पैसे मिले थे इस गीत को लिखने के लिए और मैंने कहानी से जुड़ के उस गीत को लिखा। जो मेरी जिंदगी का अभी सफर है वो भी वही है ना, गाड़ी बुला रही है, क्योंकि मैंने इतने डिफिकल्ट टाइम देखे हैं जब से हम वहां से निकले

राहुल टंडी से निकले और यहाँ तक आए और फिर बम्बई में काम ढूंढने में थी जो मुझे स्ट्रगल करनी पड़ी, वो भी वो गाना ही है ना कि गाड़ी बुला रही है, हर स्टेशन एक डेस्टिनेशन होता है और हमें हिम्मत नहीं आनी चाहिए, सूरत गया तो बुगेगा भी वापस सुबह। तो ये वो सम्मान है जो मैं अगले जन्म ले जाऊंगा, ये जो अवार्ड है ना ये यही रह जाएंगे पीछे, और वो जो सम्मान उस छिट्टी ने मुझे दिया है ना वो मेरे आत्मा के साथ जाएगा बेटा। तो तुम ऐसा काम करो लाइफ में जो तुम्हारे आत्मा के साथ जाए और घर में ना रह जाए। तो आपने आकाशवाणी की बात कही तो मुझे ये याद आया इंसिडेंट, क्योंकि ये आकाशवाणी से ही जुड़ा है।

0: राकेश बख्शी साहब, आज के दिन, आज इस खास दिन आपने इतनी बातें शेयर की अपने पिता आनंद बख्शी साहब के बारे में और हमारे श्रोताओं के साथ शेयर किया, इतना वक्त दिया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: राजीव कुमार जी, आपका भी धन्यवाद और आकाशवाणी प्रसार भारती का भी धन्यवाद, और सुनने वालों ने भी तो मुझे वक्त दिया है। हाँ। सिर्फ मैंने वक्त नहीं दिया सर, आपने हाँ। भी तो मुझे वक्त दिया है। बख्शी साहब के चाहने वाले भी तो उनको वक्त दे रहे हैं अपनी जिंदगी का, उनके गाने सुन के, तो हमें हमारा धन्यवाद बनता है आप सबको।
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर।
1: धन्यवाद सर, धन्यवाद।
0: ओके, थैंक्स अ लॉट।

आदमी मुसाफिर है। अभी आप सुन रहे थे मशहूर शायर और गीतकार आनंद बख्शी साहब पर केंद्रित फिल्म संगीत का हमारा ये विशेष कार्यक्रम। एडिटिंग और मिक्सिंग थी अभिषेक कुमार की, तकनीकी सहायक थे शंभुनाथ और संजीव मुर्मू, प्रस्तुति थी राजीव कुमार की और संयोजक थे विक्रम कुमार रंजन।

ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से बस कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और फिर अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन तीन बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से

0: बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित कर दिया। मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में हंगामे और विपक्ष के कड़े विरोध के बीच ये विधेयक पारित हुआ। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए लागू प्रवर्तन उपायों की समीक्षा की। प्रवर्तन कार्यबल की बैठक के दौरान आयोग ने बताया कि उसने उड़न दस्तों ने पहली से 13 जुलाई के बीच 175 निरीक्षण किए। इनमें निर्माण और विध्वंस स्थलों, औद्योगिक इकाइयों तथा डीजल जनरेटर सेट से संबंधित गतिविधियों का निरीक्षण शामिल है। युवा कार्य विभाग ने माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी 2026 का शुभारंभ किया है। ये प्रश्नोत्तरी 15 अगस्त तक खुली रहेगी। इससे देशभर के युवाओं को भारत के राष्ट्रीय ध्वज तथा उसके महत्व के बारे में अपनी समझ को बढ़ाने का अवसर मिलेगा। युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने कहा है कि इस पहल का उद्देश्य युवाओं में भारत के राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास, विकास, महत्व और गरिमा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपिये में राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोवस्का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के एक दूसरे पर लगातार 10वें दिन हमले जारी रहने से हॉर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर रहे एक टैंकर पर हमला किया, तो वहीं अमेरिका ने ईरान के भीतर तक हवाई हमले किए। इस बीच ईरान के एक अधिकारी ने आज पाकिस्तान में मध्यस्थों के साथ बैठकें शुरू की। ईरान और अमेरिका के बीच अंतरिम समझौते को बचाने के राजनयिक प्रयास भी लगातार जारी है। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Reshma Tiwari. The government today said it is ready to hold discussion in Parliament on NEET paper leak case and other related issues. Talking to media in New Delhi this evening, Union Minister Jitendra Singh accused Leader of Opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, of deviating from his earlier demand of having the discussion over NEET related issues despite government assurance.
3: It was conveyed that on behalf of the government, I could assure Rahul Gandhi ji that government is ready to have a detailed discussion on NEET related agitation, protest, also on all the other issues related to NEET. When I went back to Rahul ji with this message, he said no, but I also want the resignation of the education minister. Then I politely tried to submit before him. I said, look here, this is not done, because just a few minutes back you told me that if I got the assurance from the government, you would call off your dharna immediately, but now you're saying no.
2: Earlier in the day, Congress President Mallikarjun Kharge, Congress leaders Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra, along with other party members, staged a protest demanding discussion on the NEET issue. Union Minister Jitendra Singh and Union Home Secretary Govind Mohan met the Congress leaders at the protest site at Lok Kalyan Marg. Meanwhile, in the Parliament, both Lok Sabha and Rajya Sabha were adjourned for the day following repeated disruptions by opposition members over several issues, including the NEET paper leak case today. Prime Minister Narendra Modi has vowed strict action against those involved in the recent